0: रेडियो पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।
1: अजी सुनते हो?
2: हाँ सुनी तो रहा हूँ।
1: क्या सुन रहे हो?
2: रेडियो पुणेरी आवाज।
1: ओ रेडियो पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुश

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: मेजोरिटी पीपल सिर्फ अगर अपने जीवन और अपने मन की एक्सरे करनी है उस क्षण चेक करें जब सुबह उठते हैं। अगर सुबह उठते फर्स्ट थॉट आती है कि मुझे थोड़ा और सोना है, इसका मतलब मेरी जो 6 घंटे की 8 घंटे की नींद थी मेरी उसमें रेस्ट और रिचार्जिंग नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? शरीर सो रहा था लेकिन मन अभी भी कंटिन्यूसली चल रहा था। मन की बात का समाधान नहीं मिला उसको। अब हमारा मन अगर उसको उसकी बात का समाधान नहीं मिलता है तो वो 5 दिन नहीं 5 साल चल सकता है उस प्रॉब्लम के साथ, 50 साल चल सकता है उस प्रॉब्लम के साथ। और अगर फिर भी समाधान नहीं मिला तो आत्मा शरीर छोड़ेगी, दूसरा शरीर लेगी और वो ही सोच और संस्कार अपने साथ लेकर जाएगी।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड, आज जितनी बीमारियां हो रही हैं, जबकि हम आज हेल्थ के बारे में ज्यादा अवेयर हैं, ज्यादा ध्यान रखते हैं, ज्यादा हमारे पास मेडिकल ट्रीटमेंट्स हैं, फिर भी बीमारियां ज्यादा हैं, ठीक है। चाहे वो हमारी साइकोसोमेटिक इलनेसेस हो गई कि हाई कोलेस्ट्रॉल हुआ, ब्लड प्रेशर हुआ, शुगर हुआ, या आज के जो समय में है वो है ज्यादा मेंटल हेल्थ इलनेसेस, कि डिप्रेशन, एंग्जाइटी, स्ट्रेस, पैनिक अटैक, द बिगिनिंग स्टेजेस। अब ये सारी चीजें क्यों हुई? क्योंकि बहुत बहुत बहुत सालों से हमारा जो थिंकिंग पैटर्न था वो एक अलग तरह से चलते चलते चलते, चाहे वो गुस्से को कहें, चाहे हर्ट को कहें, कोई भी इस तरह का जो कंफर्टेबल नहीं था, ना मन के लिए ना शरीर के लिए।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: अगर देखने का समय नहीं है तो सुनिए लीजिए पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।
1: नमस्कार दोस्तों, ज्ञान की धारा इस कार्यक्रम में मैं ज्योत्सना आपका स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी हेल्दी वेल्दी होंगे और प्रसन्न भी होंगे। तो आज हम चर्चा करते हैं, आज का हमारा विषय है मानसिक बीमारियों का कारण और निवारण। आज जैसा कि हम देख रहे हैं, संसार में बीमारियों की भरमार है। चिंताएं पहले भी थी, समस्याएं भी थी, जीवन काफी कठिन था। यातायात के साधन व दूसरे साधन भी इतने नहीं थे, परंतु आज इतने साधन होते हुए भी बीमारियां बढ़ती जा रही है। इन बीमारियों में मानसिक बीमारियां जो अन्य बीमारियों का भी कारण बनती है, जैसे रात को नींद ना आना, किसी भी काम में मन न लगना, उदास रहना, परेशान रहना, ज्यादा सोचते रहना आदि शामिल है। इनको चिकित्सा विज्ञान ने भिन्न भिन्न नाम दिए हैं। इन मानसिक बीमारियों से 50 साल की उम्र तक के युवा ज्यादा प्रभावित हैं।

आत्मा जब शरीर छोड़ देती है तो शरीर जड़ बन जाता है, जिसे मृत्यु कहते हैं। आत्मा की तीन शक्तियां हैं। पहला है मन, अर्थात संकल्प शक्ति। दूसरा है बुद्धि, अर्थात विवेक या निर्णय लेने की शक्ति। और तीसरा है संस्कार, जो हम कर्म करते हैं, कर्म के प्रभाव से जो बनते हैं वो होता है संस्कार। तो इन तीनों के बारे में नहीं जाने जानते हुए हम आगे के कार्य को करते रहते हैं और हमें आत्मा का ज्ञान ही नहीं होता है। इस कारण हमारी मानसिक बीमारियां जो है बढ़ती चली जाती है और हम खुद को ही नहीं समझ पाते हैं और हम खुद को पहचान भी नहीं पाते हैं कि हम कौन हैं। तो खुद को जानना बहुत जरूरी है। तो हम अपने आगे की चर्चा जारी रखते हुए लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद मैं फिर से आपसे आकर मिलती हूँ, और तब तक के लिए ये सुनते हैं इस गीत को।

नमस्कार दोस्तों, तो ज्ञान की धारा इस कार्यक्रम में मैं ज्योत्सना आपका फिर से स्वागत करती हूँ और हम अपने आगे की चर्चा जारी रखते हैं। आज का हमारा विषय है मानसिक बीमारियों का कारण और निवारण। मन और मस्तिष्क, इसमें क्या भेद है हम इसके बारे में भी नहीं जानते। चिकित्सा विज्ञान वाले अभी तक मन और मस्तिष्क में भेद नहीं कर पाए हैं। मन आत्मा की शक्ति है जबकि मस्तिष्क शरीर का अंग है जो आत्मा के लिए जैसे कंप्यूटर का काम करता है। आत्मा मन और बुद्धि के द्वारा मस्तिष्क रूपी कंप्यूटर को चलाती है जिससे पूरा शरीर चलता है। जैसे गाड़ी का इंजन चलने से पूरी गाड़ी चलती है और चलाने वाला है ड्राइवर। बच्चे को बचपन से ही अच्छे संस्कार देने की कोशिश होती है ताकि वह बड़ा होकर अच्छा इंसान बने। अगर वह गलत संग पकड़ लेता है तो खुद को भी बर्बाद करता है और परिवार व समाज के लिए भी कई तरह की समस्याएं खड़ी कर देता है। मन भी बच्चे की तरह है, उसके संग की संभाल की भी आवश्यकता है। ईश्वरीय ज्ञान और राजयोग से आत्मा की बुद्धि ज्ञान से भरपूर व शक्तिशाली बन जाती है तो उसका पूरा नियंत्रण मन पर रहता है। मन वही संकल्प रचता है जो सही हो, कल्याणकारी हो। फलस्वरूप आत्मा की जो कर्म है, कर्म भी श्रेष्ठ होते हैं जिससे आने वाली सतयुग और त्रेतायुग में संसार सुखी होता है। तो इसी के साथ हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद मैं फिर से आपसे आकर मिलती हूँ और तब तक के लिए आइए सुनते हैं इस गीत को।

नमस्कार दोस्तों, तो ज्ञान की धारा इस कार्यक्रम में मैं ज्योत्सना आपका फिर से स्वागत करती हूँ और हम अपने आगे की चर्चा जारी रखते हुए चलते हैं। हमारा आज का विषय है मानसिक बीमारियों का कारण और निवारण। जैसा कि हम सभी जानते हैं, मन का इलाज होना चाहिए। द्वापर के बाद देह अभिमान में आने के कारण और आत्मा की बुद्धि रूपी दीपक को ज्ञान घृत न मिलने के कारण उसके विवेक की रोशनी मंद हो गई है और उसका मन पर नियंत्रण कम होता चला गया है। मन मनमानी कर जहां नहीं जाना चाहिए वहां जाने लगा है। मन कर्मेंद्रियों का गुलाम बन कभी आंख से अच्छा अच्छा देखने को, कानों द्वारा अच्छा अच्छा सुनने को, जीभ के द्वारा अच्छा स्वादिष्ट भोजन खाने को भटकने लगा है और थकावट के कारण कमजोर होने लगा है। उसको ये पता नहीं रहा कि बाहरी वस्तुएं जो कि नश्वर है सुख नहीं दे सकती। जो शांति सुख वो बाहर ढूंढ रहा है वो उसके अंदर ही है, परंतु उसे अंदर झांककर देखने की फुर्सत नहीं है। इसी कारण उसने गलत जीवन शैली अपना ली है और अपने को, अपने शरीर को रोगों का घर बना लिया है। इसलिए इलाज होना चाहिए मन का, परंतु चिकित्सा विज्ञान वाले भी मन और मस्तिष्क में भेद न

कर पाने के कारण मस्तिष्क का इलाज करके इलाज की जो इतिश्री कर लेते हैं, जैसे मानसिक रोगियों को बिजली जैसे झटके मस्तिष्क में लगाते हैं। अब सर्व आत्माओं के परम पिता निराकार परमात्मा शिव अपने साकार माध्यम ब्रह्मातन द्वारा अपना परिचय हम आत्माओं के स्वरूप का ज्ञान, सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान दे रहे हैं, जिससे आत्मा की अज्ञानता और सर्व प्रकार के संशय मिट जाते हैं। आत्मा अपने निजी आत्मिक स्वरूप में स्थित होकर परमात्मा द्वारा सिखाए गए राजयोग की विधि द्वारा अपने मन बुद्धि की तार सर्वशक्तिमान ज्ञान सागर, शांति के सागर, दुखहर्ता सुखकर्ता परमात्मा से जुड़कर शक्तिशाली बन समस्याओं और बीमारियों पर जीत पा लेती है। ईश्वरीय ज्ञान से सद्बुद्धि जागृत होती है, जिससे व्यर्थ और समर्थ को परख कर निर्णय करने की क्षमता आत्मा में आ जाती है, जिससे ऐसे कर्म ही नहीं होते कि दुख बीमारी हो। अतः आज विश्व की सर्व आत्माओं से अनुरोध है कि प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर पधारकर परमात्मा द्वारा दिए जाने वाले सत्य ईश्वरीय ज्ञान और राजयोग को सीखकर अपने को मानसिक व शारीरिक बीमारियों से मुक्त बनाए। याद रहे, अभी नहीं तो कभी नहीं। तो इसी के साथ आज का कार्यक्रम हम यही समाप्त करते हैं और मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए हंसते रहिए, गाते रहिए और कुछ गुनगुनाते रहिए।

0: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
1: जब हम भगवान को दोष देना शुरू कर देते हैं दैट इज नॉट फेयर, बिकॉज पिता है

0: बच्चे हैं वो कभी नहीं ये डिसाइड करेगा कि एक बच्चा ट्रेन ब्लास्ट का विक्टिम हो जाए और दूसरा बच्चा बिल्कुल ठीक है। एक पिता कभी ये नहीं कर सकता है। और अगर परमात्मा ये कर भी रहा है तो देन वी कैन क्वेश्चन ऑन व्हाट बेसिस। परमात्मा हमारी जीवन की यात्रा नहीं डिसाइड कर रहा है, हमारे अपने किए हुए कर्म। एंड दैट्स व्हाई थॉट्स लीड्स टू डेस्टिनी। उसमें सब थॉट्स जो अभी किए, जो बहुत सारे पहले, लेकिन वही थॉट्स अब उस डेस्टिनी को चेंज कर सकते हैं। अब जो हुआ हादसा वो पिछले किसी कार्मिक अकाउंट की वजह से हुआ, लेकिन उस हादसे के बाद अब क्या करना है, एटलीस्ट दैट इज इन माई कंट्रोल नाउ।
1: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0102 बोरियत की एरर, नएपन की कमांड रिजेक्टेड। अब हर चीज हर जगह तो नहीं मिलती, कुछ नयापन चाहिए तो सुनिए पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: ओम शांति एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज। इस पूरे सफर को हम देखें तो रिश्तों को नए अंदाज में देखने का एक तरीका ढूंढ रहे हैं। जब हमने समझा कि हम मैं कौन हूँ, मेरी अपनी पहचान हुई, उस परमात्मा का साथ मिला, तो रिश्तों को भी एक नई जान, एक नया अंदाज, एक नई खुशबू मिली। घर तक जब सीमित थे तब तक तो ठीक था, लेकिन अपनी पिछली कड़ी से हमने बात शुरू की है कि घर के बाहर कदम रखा जाए और जब हम अपने कर्म क्षेत्र या ऑफिस पहुंचते हैं तो वहां रिश्तों को कैसे मजबूत कर सकते हैं और कैसे विश्वास की एक डोरी उनमें भी डाल सकते हैं। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और आज एक बार फिर इस सफर को आगे बढ़ाते हुए बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। हर बार की तरह हमारे साथ हैं रमा कुमारी, सिस्टर शिवानी। ओम शांति।
1: ओम शांति।
0: सिस्टर शिवानी, पिछली बार अगर हम देखें तो हम ऑफिस पहुंच गए थे और ऑफिस पहुंच के हमने ये जाना था कि जब हम ऑफिस में एंटर कर रहे हैं या जब ऑफिस जाने की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं एक ऐसा दबाव है कि जाना पड़ेगा, एक कंपटीशन की भावना, एक बोझ लेकर हम जाते हैं और फिर वो पूरा दिन हमारे साथ चलता रहता है, जैसे कट थ्रोट कॉम्पिटिशन की बात आपने की थी। एक बार आगे बढ़े और उस पूरे सिलसिले को और जाने, थोड़ा सा रिवाइव करते हैं कि क्या एग्जैक्टली होता है, क्यों घर और ऑफिस के माहौल में या ऑफिस जाने में हमें इतनी प्रॉब्लम आती है।
1: कहा जाता कि होम इज वेयर द हार्ट इज, यू नो, एंड नॉर्मली वी लीव द हार्ट एट होम व्हेन वी गो टू वर्क, एंड नाउअडेज इन द ऑफिसेज इट इज सेड ब्रिंग योर हार्ट टू वर्क। क्योंकि एक समय था जब कहा जाता है कि ब्रिंग योर हैंड्स टू वर्क, सिर्फ यू नो कि यहाँ पर है इंटेलिजेंस, हम सारे आइडियाज देंगे, टॉप मैनेजमेंट सारे आइडियाज देगी, जिसको हम पिरामिड स्ट्रक्चर कहते थे कि जो टॉप के लोग हैं आइडिया सिर्फ उन्हीं के होंगे और जो लोअर लेवल पर आएंगे उनको सिर्फ उस आइडिया को इम्प्लीमेंट करना है। तो आपको अपना दिमाग बहुत ज्यादा नहीं लगाना है, आपको जो कहा जाए वैसे का वैसे उसको करना है। दिस वॉज द कॉन्सेप्ट वे बैक, जस्ट ब्रिंग योर हैंड्स टू वर्क। फिर जैसे जैसे परिवर्तन आता गया तो इट सेज ब्रिंग योर हैंड्स टू वर्क बट ब्रिंग योर हेड टू वर्क ऑल्सो, अपना दिमाग भी साथ में लेकर आइए, आपका आइडिया भी बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन कर सकता है। और तब हम अब जो समय पर चल रहे हैं कि हर एक के आइडिया को बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है, ये नहीं देखा जाता कि वो आइडिया यू नो लोअर लेवल से आया या टॉप मैनेजमेंट से आया, एवरीबडी इज इक्वली इम्पोर्टेंट, सो ब्रिंग योर हेड टू वर्क। बट देन वॉट हैपन, वी स्टार्टेड ब्रिंगिंग आवर हैंड्स and head to work. Earlier we were bringing only hand to work. It was very simple. एक व्यक्ति का दिमाग ऊपर, बाकी सब
0: कई सारे हाथ काम करने वाले,
1: तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी उसमें। एक ने बताया, सब ने उसको सिर्फ फॉलो
0: करते गए। और उस बारे की जरूरत भी शायद वही थी।
1: अब जब so many heads started coming to work, you know, क्योंकि हम एक horizontal structure पे आ गए कि सब लोग एक ही level पर हैं as far as giving the idea is concerned, तो जहाँ इतने सारे heads came to work, तो that means head अर्थात ego, इतने सारे egos came to work also, my idea is better than your idea, या आपका idea क्यों लिया गया, मेरा idea क्यों नहीं लिया गया, मेरा idea ज्यादा better है। तो जहाँ सिर्फ हाथ आ रहे थे ना, ego problem कम थी क्योंकि कोई कंपटीशन नहीं था, लेकिन वेयर ऑल द हेड स्टार्टेड कमिंग टू वर्क, तो सारी जो आईक्यूज थी, ईगोस थी, वो सारी क्लैश होने लग गई। और जहां इतनी सारी ईगोस क्लैश होने लग गई तब प्रॉब्लम्स आने लग गई और फिर हम काम तो कर रहे हैं बट वी आर नॉट फीलिंग गुड अबाउट इट। एंड सो नाउ द करंट ट्रेंड इज ब्रिंग योर हैंड्स टू वर्क, ब्रिंग योर हेड्स टू वर्क, बट ब्रिंग योर हार्ट टू वर्क ऑल्सो, हेड्स hands and heart to work. क्योंकि heart to work से क्या होगा, you're not just bringing your ideas, आपकी ego सिर्फ नहीं लेकिन belongingness. Heart जहाँ है अर्थात क्या कि belongingness है,
0: this is your office.
1: हम एक पॉसिबल है ये कि हम अगर चाहें तो अपने ऑफिस को अपना घर बना सकते हैं।
0: लेकिन यहाँ पे बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट ये भी कहा जाता है कि ऑफिस के साथ इमोशनली अटैच नहीं हो जाना चाहिए, ऑफिस को इतना सब कुछ नहीं बना देना चाहिए।
1: जहाँ तक अटैचमेंट की बात आती तो वो तो हम वैसे भी अब डिटैचमेंट के कॉन्सेप्ट पे चल रहे हैं कि हमें सब कुछ करना है लेकिन दर्द नहीं होना चाहिए। ऑफिस के साथ भी आज हम कहते हैं कि अटैचमेंट नहीं होने चाहिए, लेकिन दर्द कितना है सारा दिन ऑफिस में, बिकॉज अटैचमेंट मे नॉट बी टू द ऑफिस बट अटैचमेंट इज टू माय इमेज, अटैचमेंट इज टू माय आइडिया। आप मेरा आइडिया स्वीकार नहीं करो आज, मुझे कितना दर्द होने वाला है। क्यों? क्योंकि मेरा अटैचमेंट अपने आइडिया से है, आपसे भले ना हो, इस ऑफिस से भले ना हो, इस पोजीशन से ना, अपने आइडिया से तो है। मेरी एक इमेज है इस ऑफिस के अंदर, आप अगर आकर कुछ और कह गए, लेट्स से मेरी इमेज है दैट आई एम अ वेरी सिंसियर पर्सन, अगर आपने आज आकर कह दिया कि आपने ये काम ठीक से नहीं किया, आई एम हर्ट, मुझे बहुत दर्द होने वाला है, क्योंकि आई एम अटैच्ड टू दैट इमेज। तो अटैचमेंट तो हमारी बहुत सारी चीजों से है, लेकिन अटैचमेंट और बिलोंगिंगनेस दो अलग अलग बातें हो गई। अगेन, अटैचमेंट वो जहाँ दर्द है, और बिलोंगिंगनेस वो जहाँ प्यार है लेकिन दर्द
0: नहीं है। और अभी भी अटैचमेंट, अगर जो हमने जितने भी एग्जांपल्स देखे हैं, वो मुझसे ही रिलेटेड थे।
1: बिकॉज अटैचमेंट है क्या, फिजिकली तो अटैचमेंट ही है ना, यहाँ हम किसी चीज को अपना समझकर, आइडेंटिटी को अपना समझकर पकड़कर खड़े हो जाते हैं कि दिस इज माय आइडिया, या मेरा आइडिया सबसे अच्छा है, मैंने जो प्रोजेक्ट बनाया वो सबसे अच्छा है, इन्होंने उसके अंदर गलती निकाली कैसे। सारा दिन तो सबसे ज्यादा हर्ट इसी बात पर है कि मेरे काम को आपने क्रिटिसाइज किया कैसे, अटैचमेंट्स। और ये सारी अटैचमेंट्स किस लिए, क्योंकि ईगो, अटैचमेंट टू अ रॉन्ग इमेज ऑफ माई सेल्फ, सो माई आइडिया, माई पोजिशन, माई स्टेटस, सो मेनी थिंग्स, वो सारी अटैचमेंट्स यहाँ। लेकिन बिलोंगिंगनेस वो एक अलग चीज है। बिलोंगिंगनेस हुई कि जैसे ये मेरा परिवार है, वैसे ये भी मेरा परिवार है, है तो परिवार ही ना। और वास्तव में देखा जाए तो आज हम घर से ज्यादा समय ऑफिस में बिताते हैं, अब के समय पर जो हम चल रहे हैं, तो शायद हम घर तो रात्रि को सोने ही जाते हैं, यू नो, बाय द टाइम वी रीच होम इट इज 8, 8:30 व्हाटएवर टू ईच वन, एंड वापस सुबह 8, 8:30 बजे हम निकल जाते हैं। तो जो मेजर पोर्शन है वेकिंग अप टाइम, क्योंकि वो जितनी देर घर गए वो तो सोने का समय, वो सारा तो ऑफिस में है। तो शायद अ मोर इम्पोर्टेंट फैमिली इज हियर, क्योंकि उनके साथ हम ज्यादा समय बिताते हैं, तो वहाँ हाउ टू फील गुड, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट अपने जीवन को इंजॉय करना।
0: वहाँ तो मैं हमेशा ऑन टोज हूँ, वहाँ इफ वी लुक एट, एक्चुअली तभी तो कहते हैं कि इतना स्ट्रेस है ऑफिस में, इतना स्ट्रेस है। अगर हम देखें, बिल्कुल देखा जाए, तो वहाँ हम कभी भी बिलोंग फील ही नहीं कर सकते, क्योंकि हमेशा डर रहता है कि वो कभी भी आपकी पीठ पे छुरा भोंक दे।
1: तो ये डर यहाँ है, ये डर हमें है, क्यों, क्योंकि हम इनसिक्योर है, हमारी सेल्फ एस्टीम लो है। अगेन, हर सिचुएशन में जो ऑफिस में आने वाली है, हर व्यक्ति जो ऑफिस में हमें मिलने वाला है, उसमें पर्सपेक्टिव को चेंज करके उधर से हटाकर अपने ऊपर लेते जाइए। ऑफिस और घर में क्या फर्क है, लेट्स से फॉर एग्जांपल, घर में एक बच्चा या एक मेरा यंगर ब्रदर या छोटी बहन गलती कर देती है, हम सारे घर में बैठते हैं और हम कहते हैं घर की बात को घर में रखना, ये बात कहीं भी बाहर नहीं जानी चाहिए, और वो बात सच में घर में रह जाती है। बड़ी से बड़ी गलती छुप जाएगी, क्योंकि परिवार वाले कहते हैं ये हमारी परिवार की इज्जत का सवाल है, इसको घर में रहना चाहिए। ऑफिस में भी कोई छोटा नया रिक्रूट आया, छोटा बच्चा है मेरे कंपैरिजन में, मे बी आई एम 30 एंड ही इज जस्ट 20 और व्हाटएवर, वो एक गलती करता, व्हाट विल आई डू,
0: सारी जगह फैलाया जाएगा।
1: नाउ दैट इज द डिफरेंस, क्यों, क्योंकि ये मेरा भाई था, ये नहीं है, तो देयर द एटीट्यूड विल बी उसकी गलती को हाईलाइट कर दो, उसकी गलती को हरेक को सुना दो, सीनियर्स तक रिपोर्ट कर दो, ये सब किस लिए, बिकॉज ही इज नॉट माई फैमिली मेंबर, ही वाज माई फैमिली मेंबर, डिफरेंस। यहाँ उल्टा मुझे चांस मिला है कि उसने गलती की, इट्स एक्चुअली एज इफ आई विल कीप वेटिंग कि वो जो मेरे कलीग्स हैं या जो भी जिनके साथ मुझे जो इनसिक्योरिटी फील होती है वो गलती करे और मैं सबको बता दूं कि देखा, एंड प्लस आई गेट अ चांस टू कीप ऑन आल्सो पुलिंग हिम डाउन, ये गलती की, तो वो एक अंडरकरंट कैसा बिल्डअप हो जाएगा, और ये जो मैं करूंगा तो उसके बाद मुझे कैसा फील होगा, और जिसके प्रति मैंने ये किया तो उससे मुझे कैसी वाइब्रेशन आएगी, तो हाउ कैन आई फील गुड इन द ऑफिस इफ आई टेक दैट सेम रिलेशनशिप देयर, अ यंगर ब्रदर और अ यंगर सिस्टर और इवन सेम एज व्हाटएवर, गलती की, help the person out and just keep it between the two people, kya hoga us relationship mein, this is cooperation, wo tha competition, ab ye jo agar humne kar liya ek baar ki kisi ne galti ki aur humne usko kisi ko nahi bataya, bilkul kisi ko nahi bataya, jahan tak zarurat nahi hai, report nahi ki uski aur usko sikha kar samjha kar sort out karke bilkul usko bhi halka kar diya, what you have a family member for the rest of your life, not till you are only in that office, you have a friend for the rest of your life, But we don't want to build these relationships because we are in that belief system कि सबको पीछे गिराना है और खुद आगे भागता जाना है. तो अगर ऑफिस में वो जो लोग हैं उनको भी परिवार की तरह भी नहीं, परिवार ही, दिस इज माय फैमिली, दिस इज माय ऑफिस, दिस इज माय होम, तो वो ऐसे होने लगेगा कि जब आप सुबह घर से उठेंगे तो आप एक घर से उठेंगे
0: दूसरे परिवार,
1: दूसरे घर में पहुंच जाएंगे. एंड संडे को आप उस परिवार को मिस करेंगे क्योंकि आप उनसे नहीं मिलते हैं. एंड मंडे मॉर्निंग
0: You will
1: look forward to meeting them again. It is possible. And for that, I don't have to wait ki pura office kab aisa ban jayega. No, kyunki wo hone nahi wala. It's again like waiting for the world to change. It's not going to happen. Just my way of looking at the people. And that person who can do this is a leader. Wo chahe junior most vyakti ho us office ka. That person is a leader in the office who can do that. It's possible. And then I would love to go to work.
0: Actually, I can feel the, you know, vibrations. अगर एक परिवार से उठ के हम दूसरे परिवार की तरफ जा रहे हैं तो पूरा का पूरा attitude, पूरा का पूरा हमारा देखने का नजरिया बदल चुका होगा जब हम अपने ऑफिस में एंटर करेंगे.
1: और जब आप पहुंचेंगे ना सारा दिन में तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आप काम कर रहे हैं. यू नो दैट फीलिंग, क्योंकि वो आपको यही नहीं लगेगा कि आप ऑफिस में हैं. कोई भी चीज अगर आप इंजॉय करते हैं कोई भी ग्रुप के साथ, लेट्स से आप अपने फ्रेंड्स के साथ कुछ काम कर रहे हैं तो हल्का कितना लगता है, क्योंकि आप
0: घर में भी जो काम कर रहे होते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के तो बिल्कुल भी प्रॉब्लम
1: बिल्कुल नहीं लगता. तो थकावट नहीं होती है, एनर्जी सारा दिन ऑफिस में एनर्जी ड्रेन आउट क्यों हो जाती है, ये छोटी छोटी बातें जो हम करते हैं, इसको नीचे खींचना, इसको नीचे गिराना, इधर से उधर तक गए, वेंडिंग कॉफी मशीन तक गए, उसके वहां खड़े हुए, कॉफी पी, जब तक वो इतना सा कॉफी का कप होता है जब तक वो पिया, चार लोगों के बारे में डिस्कस करके आ गए. दीज स्मॉल स्मॉल थिंग्स, बट देन व्हाट विल हैपन, माय एनर्जी गेट्स पुल्ड डाउन, हाउ कैन आई फील गुड, तो कैसा अच्छा लगेगा. तो मैंने अपने लिए ही, किसी और ने नहीं. लोग नॉर्मली कहते हैं जी क्या करें हमारे ऑफिस का वायुमंडल ऐसा है ना, इट्स एन एनर्जी फील्ड विच आई क्रिएट, नाउ माय चॉइस कि मैं किस तरह की एनर्जी फील्ड अपने लिए क्रिएट करना चाहती हूँ. तो टुमारो व्हेन आई गो बैक टू वर्क, लेट मी गो बाय दिस थॉट, आई एम गोइंग टू माय फैमिली.
0: बट देन इफ आई गेट ऑल द नेगेटिव वाइब्रेशंस,
1: इट्स ओके, इट ऑल डिपेंड्स ऑन व्हाट आई वांट टू गिव
0: एंड हाउ स्ट्रांग आई एम.
1: जब वो नेगेटिव अगर आ भी रही है अभी, तो मेरी फिर भी चॉइस है कि मुझे क्या देना है. सी नॉर्मली जब दो लोग एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में आते हैं तो ईच वन इज कैरिंग एन एनर्जी फील्ड, एक ऑरा तो है हर एक का. तो अभी वर्तमान समय क्या हो रहा है, दोनों का ऑरा थोड़ा सा नेगेटिव है. तो बहुत जल्दी जब एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं तो नेगेटिव ही एक दूसरे से कैच करते हैं. अब अगर हमने अपने बिलीफ सिस्टम को चेंज करके, इंट्रोस्पेक्ट करके, अपनी थॉट को चेंज करके और थोड़ा मेडिटेशन भी प्रैक्टिस अगर करें तो हमारा ऑरा धीरे धीरे, एनर्जी फील्ड चेंज होता जाएगा टुवर्ड्स पॉजिटिविटी एंड मेरा इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रॉन्ग हो जाए. नाउ व्हेन आई कम इन कॉन्टेक्ट विद दिस पर्सन, इनका नेगेटिव ही है, दे हैव नॉट चेंज्ड, मे बी द होल ऑफिस हैज नॉट चेंज्ड, लेकिन मेरा ऑरा पॉजिटिव है एंड मेरे पास एक प्रोटेक्टिव शील्ड है कि अब आपका ऑरा
0: मुझ तक नहीं पहुंच
1: रहा, आई एम स्टेबल, आपको जो बोलना है आप बोलते जाइए, मेरे को एक विधि आ गई है जिससे मैं अपनी स्टेबिलिटी को मेंटेन कर सकती हूँ, अब आप मुझे ओवर पावर नहीं कर सकते. तो आप यहाँ नेगेटिव हैं, लेकिन आई मेंटेन माय स्टेबिलिटी. ये सेकंड स्टेज थी. फर्स्ट स्टेज थी मैं आपके कांटेक्ट में आई, आपके नेगेटिविटी ने मेरे ऊपर ओवरपावर किया. सेकंड स्टेज आप जहां हैं वहां हैं, आई रिमेन स्टेबल. नाउ आई कीप वर्किंग मोर ऑन माय सेल्फ, लीकेज नहीं होने दू सारा दिन. थर्ड स्टेज क्या पहुंचेगी,
0: मेरी आप तक पहुंचेगी, आई ओवरपावर यू.
1: एब्सोल्युटली माय पॉजिटिविटी आपको ओवर पावर करेगी और तब ये लोग कहेंगे कि इनसे मिलकर बहुत अच्छा लगता, दिस पर्सन इज नाउ अ लीडर, क्योंकि इनके साथ काम करके औरों को अच्छा लगता है. नाउ व्हाई विल दिस पर्सन नॉट मूव अप इन टर्म्स ऑफ कॉर्पोरेट लैडर, क्यों नहीं जाएंगे ऊपर, क्यों इनको प्रमोशन नहीं मिलेगी. इनफैक्ट जब इनको प्रमोशन मिलेगी तो ये लोगों को जेलसी नहीं होगी, इनको खुशी होगी.
0: लेकिन अगेन जो ये था, मैं भी उसी पे आ गई, उनको जो भी वो प्रमोट कर रहे हैं इंटरनली और आउटर बोथ शुड बी सेम इन सिंक.
1: हाँ, वी आर टॉकिंग ओनली ऑफ इनर.
0: यू नो, हर बार क्या होता है, ऊपर से तो बहुत अच्छे हो जाते हैं. ऑफिस में ये बहुत एक पूरा का पूरा एस्पेक्ट ये चलता है कि हम ऊपर से तो वी आर लाइक वेरी पॉजिटिव, वेरी नाइस, लेकिन इंटरनली बहुत कुछ एफर्ट चल रहा
1: है. हम एक ऑफिस के ग्रुप में, एक कंपनी में ग्रुप के साथ वर्कशॉप कर रहे थे, तो हमने कहा कि सपोज वी हैव लिटिल लिटिल मशीन्स जिससे आप सबकी थॉट्स इस समय रीड हो जाए. तो एवरीबडी लुक्ड एट ईच अदर लाइक दैट एंड देन दे सेड फिर हम सब एक रूम में नहीं बैठ सकेंगे. यू नो, एंड बाहर से देखें तो एवरीबडी इज परफेक्टली फाइन, बट जो हम एक दूसरे के प्रति सोच सकते हैं उसकी तो लेवल
0: वही आई थिंक दैट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट.
1: बट वो ही तो वायुमंडल है, ऑफिस कल्चर और क्या है. लेकिन हम वेट नहीं कर सकते कि सारे कब चेंज होंगे. इफ आई चेंज
0: एंड आई हैव टू चेंज एक्चुअली इंटरनली, बहुत
1: ओनली इंटरनली. क्योंकि अगर आपकी थॉट्स पॉजिटिव है तो यू डोंट हैव टू मेक एफर्ट कि मुझे बोलना पॉजिटिव है, कि कहीं मेरे मुंह से कोई नेगेटिव वर्ड नहीं निकल जाए. वो कैसे निकलेगा? यू नो, उसका बीज नहीं है अंदर. अभी एफर्ट करना पड़ रहा है क्योंकि बीज नेगेटिव है यहाँ, तो एफर्ट करना पड़ता है कहीं गलती से बाहर ना निकल जाए. तो यहाँ सारा दिन अटेंशन रखना पड़ता है कि आई शुड टॉक प्रॉपरली, कहीं मेरे मुंह से कुछ गलत ना निकल जाए, आई शुड वर्क प्रॉपरली. लेकिन जब रॉ प्रोडक्ट, यू नो, रॉ मटेरियल ठीक होगा तो आपको एंड प्रोडक्ट पर मेहनत
0: के बारे में नहीं सोचना पड़ेगा. वंडरफुल, एक्चुअली दैट रियली मेक्स लॉट ऑफ डिफरेंस. यू नो, ये माइंडसेट दिमाग में आते हैं कि मैं एक परिवार से निकल के दूसरे परिवार में जा रहा हूँ, कहीं ना कहीं एक पूरा यू नो बॉडी लैंग्वेज भी चेंज हो जाएगी. अब हम उस परिवार में जा रहे हैं जहां मुश्किलें हो सकती हैं, क्योंकि हमने अभी पिछले रिलेशनशिप में देखा है कि जब हम घर में थे तो उन रिश्तों में इतनी मुश्किलें थी. तो वो मुश्किलें आएंगी, उन्हें हम सॉल्व करेंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात, इसका मतलब वो मेरा परिवार है तो मैं उन्हें छोड़ूंगा नहीं. यू नो, हम पहली चीज ऑफिस में क्या करते हैं, आई वॉन्ट टू लीव, आई डोंट वॉन्ट टू वर्क हियर, मैं यहाँ काम नहीं करना चाहता. घर पे तो मैं नहीं कहती कभी भी कि मैं घर में नहीं रहना चाहती.
1: बिलोंगिंगनेस नहीं है ना. देखो, घर पे बड़े से बड़ा झगड़ा हो जाए, यू नो, बच्चे कितनी बार झगड़े में गुस्से में मैं छोड़ के चला जाऊंगा, लेकिन छोड़कर कौन जाता है? कोई नहीं जाता. अगले दिन वापस वही, उतना ही प्यार, हस्बैंड वाइफ भी, मैं छोड़ के चला जाऊंगा. वाइफ तो कितने प्यार से अपना सूटकेस भी निकाल देती है, सारा पैक कर देती है, मैं चली जाऊंगी थोड़ी देर के बाद वापस. व्हाई? इट्स ओके. सी, कॉन्फ्लिक्ट इन, यू नो, छोटी छोटी बातों पे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, दैट्स गोइंग टू ऑलवेज बी देयर. लेकिन जहां वो बॉन्डिंग है तो वो झगड़ा अगले दिन तक भूल जाता है. लेकिन यहाँ बॉन्डिंग नहीं है ऑफिस में, तो वो छोटी सी बात भी वो इतनी यहाँ इम्पैक्ट कर देती है, वो हर्ट इतना डीप हो जाता है. और क्योंकि बिलोंगिंगनेस नहीं है तो छोड़ना बहुत इजी हो जाता है.
0: पहली चीज, पहला थॉट आता है लीव.
1: आई लीव, या क्योंकि बॉन्डिंग नहीं है ना. तो जहाँ बॉन्डिंग नहीं है तो उस रिश्ते को तोड़ना बहुत इजी है.
0: बहुत सुंदर. आई थिंक दिस रियली गिव्स अनदर विजन टू माय रिलेशनशिप इन द ऑफिस एंड माय रिलेशनशिप टू द ऑफिस. यू नो, माय बिलोंगिंग, फीलिंग कि आई बिलोंग टू दैट ऑफिस. अगर ये माइंड सेट लेकर चलते हैं, अब पहला तो हमने पहला पड़ाव पार किया है कि हमारा एटीट्यूड जब हम ऑफिस जा रहे हैं वो क्या होगा. अब हम उन प्रॉब्लम्स पे आते हैं, जैसे हमने रिश्तों के घर में बात की थी, वैसे यहाँ पर भी जब इंटरपर्सनल रिलेशनशिप में हम आते हैं तो डिफरेंट हैं थोड़ी प्रॉब्लम्स, लेकिन प्रॉब्लम्स सॉल्व करने का मुझे लगता है कि हम सोल्यूशन उसी में ढूंढ सकते हैं. फर्स्ट इज कि मेरे प्रोजेक्ट को, या मैंने जो जितना जहां तक पहुंचा था, मेरी अचीवमेंट को एक्नॉलेज नहीं किया गया. दैट्स द बिगेस्ट हर्ट.
1: अगेन, आई विल हैव टू अंडरस्टैंड दैट आई एम ऑन अ जर्नी. एक प्रोजेक्ट इज नॉट द बी ऑल एंड एंड ऑल ऑफ एवरीथिंग. एक चीज की हुई कभी वेस्ट नहीं जाती है. और अप्रिसिएशन मुझे किससे चाहिए? मोटिवेशन. कई बार लोग बोलते हैं मोटिवेट ही नहीं कोई करता है, अप्रिशिएट नहीं करता तो हम मोटिवेट कैसे होंगे? तो वर्तमान समय, एक चीज को हमें याद रखना पड़ेगा, वो हम बार बार डिस्कस करते आए हैं रिश्तों में, कि जो चीज औरों के पास नहीं है उनसे एक्सपेक्ट नहीं करें. मे बी दे डोंट हैव दैट मोटिवेशन इन देम राइट नाउ, तो वो हमें कैसे मोटिवेट करेंगे? द मोटिवेशन या अप्रिसिएशन, ये पॉजिटिविटी है. लेकिन अगर मेरा सीनियर खुद ही बहुत नेगेटिव है, खुद ही बहुत स्ट्रेस्ड है, तो वो कहाँ वो अप्रिशिएट करे? उस तो अपने ही प्रॉब्लम्स

0: not think the same thing about his senior, कि maybe he is upset about something, वो किसी और conflict में है, क्या बात है जो उन्होंने recognize ही नहीं किया मैंने ये किया, क्या होगा उससे, immediately आपके यहाँ से एक positive vibration जाएगी. अभी क्या था, ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों नहीं किया, जान के खींचने चाहिए ये, हाँ मुझे आगे नहीं, क्या गया,
1: खुद डर गए हैं. सबसे बड़ी इनसिक्योर, हाँ खुद इनसिक्योर हैं क्योंकि मैं ज्यादा हूँ. तो हो सकता है आप ज्यादा,
0: दो एस्पेक्ट्स हो सकते हैं, हो सकता है कि सच में ये रीजन हो इफ यू फील लाइक दैट. लेकिन ऑफ कोर्स ये जजमेंट हमें एक या दो बार में कभी भी किसी के लिए पास नहीं करने चाहिए. मेजोरिटी टाइम्स आज वर्तमान समय लोग बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट में अंदर ही है. कई बार तो वो अपनी घर की किसी प्रॉब्लम से डिस्टर्ब्ड है, वो बैठे हुए हैं ऑफिस में लेकिन उनकी वो घर की प्रॉब्लम, कई बार उनकी तबियत, कुछ भी, सो मेनी एस्पेक्ट्स आर देयर कि वो सब चीजें उनके माइंड पर हैं और उस समय उनका मूड ही नहीं होता अप्रिशिएट, क्योंकि आपको कोई चीज उस समय बहुत ज्यादा अच्छी लगती नहीं है, आपका अपना कॉन्फ्लिक्ट इतना ज्यादा है. तो पहले तो आप वो सॉर्ट आउट करने की कोशिश करें, फिर अगर आपके अंदर करेज है, कॉन्फिडेंस है, तो आप जाकर बात कर सकते हैं कि मैंने ये प्रोजेक्ट किया इस तरह से, आपको कैसा लगा, डू यू थिंक इट वॉज ओके, आप मेरे बड़े हैं, यू कैन गिव मी ऑल वॉट यू फील कि इसमें क्या क्या रॉन्ग था. वेन विल आई डू दिस, इफ आई वॉन्ट टू मेक द रिलेशनशिप वर्क, इफ आई वॉन्ट टू, नॉट आई हैव टू. लेकिन क्योंकि हम वो सब नहीं करना चाहते, हम बस चुपचाप बैठ जाते हैं और उनके अगेंस्ट सोचना शुरू कर देते हैं कि इनको तो चाहिए ही नहीं था, ये तो करेंगे ही नहीं अप्रिशिएट. तो उससे क्या होगा, हमारा डायलॉग नहीं होता, हम और ही विड्रॉ हो जाते हैं. अब अगर कई बार ऐसा हो गया है, मेनी मेनी मेनी मेनी टाइम्स इट हैज हैपेंड, एंड आपको कहीं ना कहीं समझ में आने लग गया कि देयर इज सम स्ट्रेटजी या इनसिक्योरिटी, अब क्या कर सकते हैं, नाउ व्हाट आर यू गोइंग टू डू, यू स्टिल हैव टू कीप डूइंग योर वर्क, व्हाट इज द चॉइस, क्योंकि आपकी विशेषता है. अब हमें ये समझना पड़ेगा कि दूसरे का इनसिक्योर होना हमारे प्रति, ये हमारी गलती नहीं है, ये उनकी अपनी कमजोरी है. और अगर सामने वाला व्यक्ति कमजोर है तो फिर मुझे रहम करना पड़ेगा उस पर, आई विल हैव टू सिंपथाइज रादर देन गेटिंग एंग्री, क्योंकि उनका अपना कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा सा लो है और वो इसलिए अप्रिशिएट नहीं कर पा रहे क्योंकि वो डर रहे हैं, तो फिर मुझे क्या होना चाहिए.
1: लेकिन मैं डिप्रेस्ड होता जा रहा हूँ ना, क्योंकि
0: पर अगर मैं डिप्रेस्ड हो गया तो मेरी अपनी विशेषता वो खत्म हो जाएगी. आई हैव टू रियली रियली टेक केयर, सी दिस इज वॉट इट इज, वॉट इज हैपनिंग, कि ये नेगेटिविटी मेरे ऊपर ओवर पावर हो रही है. ये तो सारा दिन हमें ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि उससे क्या होगा, वो चाहते थे कि मेरा काम खराब हो जाए, इफ वी फील कि वो चाहते थे मेरा काम खराब हो जाए, एंड दे सक्सीडेड, क्योंकि मेरा मूड ऑफ होता गया होता गया होता गया, मैं डिप्रेस्ड होता गया, तो मेरा काम से माइंड हट गया और मेरा मन इन्हीं बातों में चल गया कि ये ऐसे क्यों वैसे क्यों. तो वो जो क्रिएटिविटी मेरे काम में थी जिसकी वजह से वो इनसिक्योरिटी थी, अब वो क्रिएटिविटी खत्म हो गई एंड नाउ ही सिक्योर. अब वो सिक्योर हो गए कि हाँ इनकी जो विशेषता थी वो खत्म हो गई, तो आई लेट हिम विन ओवर, आई लेट हिम ओवर पावर मी, एंड देन आई से उनकी वजह से मैं नीचे गया या उनकी वजह से मैं ऊपर नहीं गया, किसी की वजह से नहीं, मैंने होने दिया ऐसा, आई गेव इन, आई यू नो आई गेव इन टू दैट पावर. दूसरे ने कोशिश की, मे बी इंटेंशनली अनइंटेंशनली, दूसरे ने कोशिश की मुझे क्रिएटिविटी से हटाने की या मेरी विशेषता को खत्म, मैंने वो होने दिया. अगर मैं चाहता प्रोटेक्शन, वो करते रहेंगे अपना इनसिक्योरिटी में, मुझे सिर्फ अपने ऊपर ध्यान रखना पड़ेगा, उनकी मोटिवेशन की वेट नहीं करनी पड़ेगी क्योंकि आई हैव एक्सेप्टेड कि वो मोटिवेट करने वाले नहीं है. तो अब मुझे मोटिवेट कौन करेगा,
1: मैं खुद.
0: हर चीज इज गोइंग टू कम बैक टू माई सेल्फ, सेल्फ मोटिवेशन. व्हेन विल आई बी एबल टू डू दैट, जब मेरे को ये समझ में आ जाए आई एम नॉट वर्किंग फॉर हिम, आई एम वर्किंग फॉर माई सेल्फ. ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट अच्छा बनना, ये किसी और को अच्छी लगे या नहीं अच्छी लगे, दैट्स नॉट इम्पोर्टेंट, एम आई हैप्पी विद इट.
1: लेकिन इससे मेरे जो ग्रोथ के जो रास्ते थे वो बंद हो गए.
0: ग्रोथ के रास्ते कभी बंद नहीं होंगे, क्योंकि अगर आप अपनी पावर को मेंटेन करेंगे, किसी को वो अथॉरिटी नहीं देंगे आपकी एनर्जी को डिप्लीट करने की, तो जहां पावर है, एनर्जी है, वहां ग्रोथ है. जहां पावर ही खत्म हो जाती है तब ग्रोथ फिनिश हो जाती है, आप रुक जाते हैं या फिर

0: पीछे जाना शुरू कर देते हैं। आप एज लॉन्ग एज अपनी पावर को मेंटेन करते हैं, अपनी मोटिवेशन को मेंटेन, आप करते जाएंगे, इन द प्रोसेस आप नया सीखते जाएंगे। एक टाइम ऐसा आएगा कि सारे लोग उस चीज को अप्रिशिएट करेंगे, वो एक व्यक्ति करे या नहीं करे। एंड फिर भी इफ आई वॉन्ट टू लुक एट द वर्स्ट केस सिचुएशन, विच विल नॉट हैपन, बट इफ आई लुक एट द वर्स्ट केस सिचुएशन, देन मे बी नॉट हियर, मे बी इन सम अदर जॉब, लेकिन माई होल प्रोसेस ऑफ मेंटेनिंग दैट, लर्निंग, वर्किंग हार्ड, गोइंग ऑन, वो अगली जगह पर यूज हो जाएगा, लेकिन वो कभी भी वेस्ट नहीं जा सकता। ट्रूथ डज नॉट हैव टू बी जस्टिफाइड, ट्रूथ विल रिवील इटसेल्फ, तो उसको गिव अप नहीं करें। इसलिए शिव बाबा कहते हैं कि जो सच की नाव है, परमात्मा हमेशा कहते हैं सच में चलने में थोड़ा सा ऑब्स्टिकल आता है, तो कहते सच की नाव हिलेगी डुलेगी लेकिन कभी भी डूबेगी नहीं, लेकिन जब वो हिलती डुलती है तो थोड़ा सा डरना नहीं, क्योंकि ये कॉन्फिडेंस रखना कि ये डूबेगी नहीं। सत्यता को प्रत्यक्ष करना नहीं पड़ता कि मुझे प्रत्यक्ष करना पड़ेगा मैं कितना अच्छा, सत्यता स्वयं प्रत्यक्ष हो जाती है। सो जस्ट लिटिल पेशेंस, गो ऑन ग्रोइंग इनसाइड एंड वर्किंग हार्ड।
1: वंडरफुल, आई थिंक इट गिव्स अ न्यू रियल न्यू डायमेंशन शिवानी। अभी तो वक्त हमारे पास नहीं है, लेकिन कॉर्पोरेट्स की बात करते हैं, जो आज वर्क कल्चर की बात करते हैं, तो मेडिटेशन एंड स्पिरिचुअलिटी एक्चुअली इज नीडेड देयर। हम ये सोचते थे कि घर तक सही है, लेकिन काम में मेरा ये क्यों आए, लेकिन अगर काम भी अब घर या एक परिवार बन गया है तो वहां ये सारे कॉन्फ्लिक्ट्स को दूर करने के लिए मेडिटेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। किस तरह से किया जाना चाहिए, यहाँ किस तरह से ग्रुप एनर्जी जो है वो पूरे माहौल को बेहतर कर सकती है, इसके बारे में और ज्यादा चर्चा करेंगे अपनी अगली कड़ी में। अब इजाजत लेते हैं, ओम शांति।
0: ओम शांति।
1: एक परिवार से निकलकर अगर हम दूसरे परिवार की तरफ जा रहे हैं, अगर ऑफिस का जो कल्चर है उसे भी हम अपने हिसाब से ये मान ले कि वो मेरा एक परिवार है, तो शायद कहीं ना कहीं मुश्किल इतनी नहीं लगेगी। जो सारे आपके सामने अड़चने आ रही हैं उन्हें भी आप सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, आप हथियार नहीं डाल देंगे और ये नहीं मान लेंगे कि जहां एक प्रॉब्लम आई आई चेंज, बिकॉज दैट्स वेयर योर डेस्टिनी इज। अगर आपने ऑफिस ज्वाइन किया है तो उसको पूरा वक्त देने की कोशिश कीजिए और पूरा एनर्जी देने की कोशिश कीजिए एक पूरी पॉजिटिविटी के साथ। कोई ऐसी बात है, कोई ऐसा सवाल है जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, आपका स्वागत है। आप हमें ईमेल पर या फिर फोन पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर्स हैं 09999344555, 09999344666, 09873666555, और हमारा ईमेल आईडी है omshantistudio@gmail.com। वक्त बदला है और आज जब हम एक परिवार से निकलकर दूसरे परिवार की तरफ जा रहे हैं तो वहां मेडिटेशन कितनी जरूरी हो जाती है और कितना स्पिरिचुअलिटी का एस्पेक्ट वहां पर भी होना जरूरी हो जाता है, इसके बारे में थोड़ा और जानेंगे और किस तरह की प्रॉब्लम्स ऑफिस में हम और आप फेस करते हैं, कैसे उनसे निकल सकते हैं, इसके बारे में थोड़ी और चर्चा करेंगे अगली कड़ी में। अब दीजिए इजाजत, ओम शांति।

0: खुशी को निरंतर बनाए रखने के लिए सुनिए शिवानी बहन के प्रेरणादायी विचार।
1: जैसे गुस्सा एक एनर्जी है, खुशी भी एक एनर्जी है। जैसे कोई मुझे गुस्सा नहीं दिला सकता, वैसे कोई मुझे खुशी भी नहीं दिला सकता। ये एक एनर्जी है जो मेरे अंदर है, और बाहर की कोई भी फिजिकल चीज, एक कार, एक बंगलो, एक डेजिग्नेशन, वेरी बिग सैलरी फिगर या एक व्यक्ति, वो मेरे अंदर उस एनर्जी को नहीं क्रिएट कर सकता है। दैट एनर्जी कैन ओनली बी क्रिएटेड बाय मी। बट व्हाट आई डू इज कि उस चीज को लेकर आई कैन क्रिएट दैट एनर्जी। ये लैपटॉप है, तो लैपटॉप मेरे अंदर हैप्पीनेस नहीं क्रिएट कर सकता। ये एक फिजिकल चीज है, ये एक एनर्जी है। ये फिजिकल चीज उस एनर्जी को नहीं क्रिएट करता, बट द थॉट दैट आई क्रिएट, नाउ आई हैव अ लैपटॉप, यू नो, ये थॉट जो क्रिएट कर ली, ये थॉट वो पॉजिटिव एनर्जी को क्रिएट कर देता है। तो सबसे पहली रियलाइजेशन ये है कि कोई भी बाह्य चीज या व्यक्ति उस फीलिंग को नहीं क्रिएट कर रहा है, मेरी अपनी थॉट्स, क्योंकि हमने चेन में देखा कि थॉट गिव्स राइज टू फीलिंग, नथिंग एल्स। कोई भी और चीज वो फीलिंग नहीं क्रिएट कर सकती है। तो नाउ इट्स इन माई हैंड कि लैपटॉप लाने के बाद में उस अच्छी फीलिंग को क्रिएट करूं, या बिना लैपटॉप के भी उसको क्रिएट कर लूं, या वेट करती रहूं, एक साल सेव करती रहूं कि जिस दिन लैपटॉप आएगा तब वो अच्छी वाली फीलिंग क्रिएट करूं। यू नो, इट्स इन माय हैंड कि मैं कितना देर खुश रहना चाहती हूं। डू आई वांट देन, नाउ व्हाट हैज हैपेंड, हैप्पीनेस वी हैव मेड इट वेरी टेम्पररी, कि ये होगा तो खुशी। दैट्स बिकॉज जब वो चीज होती है, हम अपने आप को उस तरह की अच्छी थॉट्स देते हैं, अच्छी फीलिंग आती है। लेकिन जब हमें समझ में आ जाता है कि ये मेरी अपनी क्रिएशन है, एंड आई कैन क्रिएट इट व्हेन, वेयर एवर एंड फॉर हाउ एवर लॉन्ग आई वॉन्ट, सो देन इट्स माई चॉइस। सो नाउ इट्स योर चॉइस, आप जितनी देर खुश रहना चाहते हैं, क्रिएट इट।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

लिबास चाहे जो हो, अंदर से हम सब हिंदुस्तानी हैं। एकता की डोर में सबको बांधता पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: पावसाच्या थेंबात दडलेलं जुनं प्रेम, आठवणींचा ओलावा. कधी कधी विरहातलं मौन सुद्धा गाण्यापेक्षा जास्त बोलत.
1: अश्विनी
0: जीवन म्हणजे चालत राहणं, गाणं, हसणं आणि स्वप्न पाहणं.
2: वाऱ्यावरती गंध पसरला ना ते मनाचे.
0: आईचा आवाज म्हणजे मनाला शांती मिळवण्याचं संगीत. या सगळ्यांची सांगड कुठे बर घातली जाते? आपल्याच पुणेरी आवाज 107.8 FM वर. आनंदी रहा, आनंद लुटा.
3: मननचे मनोबल तक, आस्था से अस्तित्व तक. पुणेरी आवाज 107.8. खुश रहो, खुशियाँ बांटो.
4: नमस्कार, आज फिर आप सबका हार्दिक स्वागत करते हैं अवेकनिंग विद ब्रह्म कुमारीज में. एक महत्वपूर्ण बात इस पूरे सफर में जो हमें समझ में आई है वो ये कि सबसे पहला कदम अपनी इस तलाश में जो हमें उठाना है वो ये कि खुद को स्वीकारना है. दूसरे हमें स्वीकारें या ना स्वीकारें, सबसे पहली जरूरत है कि हम जैसे हैं, जहां पे भी हैं, जिस पल में हैं, खुद को स्वीकार लें. जहां हमने खुद को स्वीकार लिया वहीं हमारी ये जर्नी, हमारा ये सफर शुरू हो जाता है. फिर कई तरीके अपना के हम इस खूबसूरत सफर में उस मंजिल तक भी पहुंच जाते हैं. अब आगे बात थोड़ी सी करते हैं और ये देखते हैं कि हम दूसरों को कैसे एक्सेप्ट करेंगे या दूसरे अगर हमें एक्सेप्ट करते हैं या नहीं करते तब किस तरह की मुश्किलें आती हैं. और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं वेल नोन साइकोथेरेपिस्ट डॉक्टर गिरीश पटेल. अ वेरी वार्म वेलकम सर.
5: नमस्कार.
4: नमस्कार. और हर बार की तरह हमारे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर शिवानी. आपका स्वागत.
6: ओम शांति.
4: ओम शांति. डॉक्टर पटेल, हमने बात तो की थी कि खुद को स्वीकारना कितना जरूरी है, और क्योंकि बिना किसी क्वेश्चन के जैसे हम हैं वैसे हम अपने आप को खुद ही स्वीकारें.
5: देन वी विल चेंज. लाइक आवर पॉइंट वाज कि हम अपने आप को स्वीकारेंगे तो फिर परिवर्तन पॉसिबल.
4: हाँ, लेकिन पहली बात, पहला पड़ाव ये था कि हम खुद को बस जैसे हम हैं वो सही है. उसके बाद फिर अपने ऊपर वो जो जर्नी थी वो शुरू हो
5: जाएगी.
4: आगे अब पढ़ते हैं थोड़ा सा और दूसरों की तरफ चलते हैं, क्योंकि हमारा समाज, हमारा जो पूरा परिवार है, हमारा एनवायरमेंट जो होता है वो भी बहुत महत्वपूर्ण होता है. सो हाउ इम्पोर्टेंट इट इज कि दूसरों को हम स्वीकारें, क्योंकि ज्यादातर देखते ये है कि हम ये चाहते हैं कि वो अच्छा तो है लेकिन अगर वो ऐसे होता तो ज्यादा अच्छा होता, अगर वो ये कर लेता तो ज्यादा अच्छा होता. तो दूसरों को हम चेंज क्यों करना चाहते हैं?
5: चेंज अभी करना चाहते हो गलत है एक रीति से देखना चाहे तो. व्यक्ति को चेंज होने की आवश्यकता है वह दूसरा क्वेश्चन है, परंतु जो हम उनका पीछा करते हैं कि जब तक आप चेंज नहीं होंगे हम आपको प्यार नहीं देंगे, जब तक आप चेंज नहीं होंगे हम आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, है ना, जब तक आप में यह नहीं आएगा आई विल नॉट स्माइल एट यू. नहीं, पेरेंट्स
6: इमोशनली
5: दूसरों के साथ इमोशनल ब्लैकमेलिंग एक प्रकार से.
4: नहीं, बट कहाँ तक सही है दूसरों को हमें, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि मे बी वी हैव बीन कंडीशन लाइक दिस कि दूसरों में हमेशा हमें गलतियां नजर आती हैं, आ ही जाती हैं. हम, मुझे आप सब कुछ अच्छे लग रहे हैं, उसके बावजूद भी मेरा मन ये कहेगा कि नहीं ये कुछ ये सही नहीं है. ये अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस नहीं आ पाती है.
5: बट वही होना चाहिए.
4: हाँ, वो कैसे?
5: वो दूसरी बात है, क्यों होना चाहिए? पहली बात तो यह है कि भी क्यों हो, क्योंकि आप अनकंडीशनली एक्सेप्ट करेंगे तो बहुत तो बड़ी बात है कि आपकी जो वेवलेंथ है, ट्यूनिंग, हमने पहले भी ट्यूनिंग की बात की है, वो आपका ट्यूनिंग बहुत ही अच्छा हो सकता है.
4: ऑरा की जो हमने बात की,
5: ऑरा की बात, या तो कहे कि भी विचारों की वेवलेंथ भी एक दूसरे के साथ मिलती हो, वो ट्यूनिंग आपका अच्छा हो सकता है. दूसरा कि जब आप दूसरों को एक्सेप्ट करेंगे तो वो आपको सहयोग भी देगा. जब तक आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे सामने वाला व्यक्ति सहयोग भी नहीं देगा. और अब रही बात चेंज की, तो वो चेंज भी तब ही पॉसिबल है
4: जब हम पहले एक्सेप्ट
5: करते हैं, और फिर वो आपकी बात को सुनेगा. उसको रियलाइजेशन भी पॉसिबल है, क्योंकि चेंज इजी नहीं है. एक तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि मुझे चेंज की जरूरत है. दूसरी बात, अभी एक्सेप्ट करने के बाद भी मेरे में स्ट्रेंथ भी होनी चाहिए
4: कि मैं वो चेंज.
5: हाँ, तो वह सब करने के लिए फर्स्ट स्टेप इज एक्सेप्ट.
4: यस सिस्टर शिवानी, मैं आपको कह तो देती हूँ कि आप जैसे हैं मैं एक्सेप्ट कर रही हूँ, मतलब
6: क्योंकि वो सही तरीका है, कर रही हूँ अपने आप को भी मैं बोल रही हूँ कि हाँ वो जैसे ही है मैं एक्सेप्ट कर रही हूँ, लेकिन मैं कर नहीं रही हूँ कहीं ना कहीं. हाउ टू एक्चुअली गेट इन टू दैट रियल सेंस कि मैं रियली उसे एक्सेप्ट कर लूँ, कि मुझे कोई प्रॉब्लम ना हो कि आप जैसी हैं वैसी ठीक है. वो हो नहीं, मतलब मैं कितना भी कह लूँ कि आप जैसे हैं ओके, मुझे आपने कहा कि मुझे करना चाहिए तो मैं ठीक है जैसे हैं ओके, लेकिन इंटरनल जर्नी व्हेन विल आई रियलाइज इट, यस आई हैव एक्सेप्टेड इट द वे यू आर,
3: द क्वेश्चंस विल स्टॉप. ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये अगर ऐसा ना करते ऐसा करते तो ज्यादा अच्छा होता, या ऐसा ना बोलते ऐसा बोलते तो ज्यादा अच्छा होता. तो वो क्वेश्चंस जब स्टॉप हो जाएंगे और वो जो जैसा कर रहे हैं वैसे ही आपको अच्छे लग रहे हैं, देन इज एक्सेप्ट.
6: देखिए मुझे इरिटेशन होती है ना उससे,
3: सो देन देयर इज नो एक्सेप्टेंस येट ना, एक्सेप्टेंस नहीं है. तो उसका थोड़े अपने ऊपर थोड़ा सा अटेंशन देके शुरू में एफर्ट करना पड़ता है.
6: पर मैं कहूँ कि मैं क्यों करूँ,
3: इट्स जस्ट सिंप्लिसिटी फॉर योर सेल्फ, नथिंग एल्स. दूसरे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा. सी इफ इट इज लाइक, अगर आप जैसे हैं वैसे मुझे पसंद नहीं है, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता उस बात से. मेरी लाइफ कॉम्प्लिकेटेड होती है क्योंकि आपको मिलते ही, आपको देखते ही, आपसे बात करते ही मेरे मन में वो सारी चल रही है, यू नो ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा करते. फिर मैं आपको फोर्सफुली चेंज करने की कोशिश कर रही हूँ जो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आई कैन नॉट चेंज यू. तो आई डू दिस जर्नी ऑफ ट्राइंग टू डू समथिंग विच इज इम्पॉसिबल, ट्राइंग टू चेंज अदर पीपल. तो इफेक्ट इज कि आप जैसे हैं वैसे आप खुश हैं, लेकिन आई वेंट थ्रू लॉट ऑफ पेन
6: अननेसेसरी.
3: सो इट्स जस्ट कॉम्प्लिकेशन इन माई ओन लाइफ, यू नो. तो इफ आई कुड ओनली से कि आप जैसे हैं मेरे को ठीक है बिल्कुल, इट्स जस्ट सिंपल फॉर मी. सी अवेकनिंग मीन्स एवरीथिंग सिंपल फॉर मी, नॉट उसका बेनिफिट दूसरे को ऑटोमेटिकली होगा, लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट इज एवरीथिंग सिंपल फॉर मी. बाकी आपने कुछ कह दिया और मैं चार दिन उस पर वो सोचती रहूं क्यों ऐसा क्यों, तो देन इट्स जस्ट कॉम्प्लिकेशन फॉर मी. तो एक्सेप्टेंस हमारे जीवन को बहुत सरल बना दे,
6: चाहे वो खुद को कर रहे हो या दूसरे
3: किसी को या परिस्थिति को.
6: डॉक्टर साहब लेकिन इतना आसान नहीं होता है.
5: अनुप्रिया जी आपने जो कहा बिल्कुल ठीक है कि मुश्किल जरूरी है परंतु वह आवश्यक है.
6: दिस इज एक्चुअली इट हैज टू बी डन,
5: एक्सेप्ट इज रियली नेसेसरी. और उसके लिए जो एक मुख्य पॉइंट कि क्यों एक्सेप्ट करे या तो कैसे करे, क्योंकि हम सभी डिफरेंट है, ये बात भी समझ में आ जाए कि भाई हमारे सर का एक बाल भी सेम नहीं है इस दुनिया में, वो यूनिक है. तो जैसे ही मैं जो हूं सामने वाले की पर्सनालिटी में बहुत फर्क होना है, तो इसके कारण वो डिफरेंस को भी हम इंजॉय करें एक्सेप्ट करने के बदले भी. जैसे सीरियल्स में भी जब लोग अलग अलग रोल करते हैं उसमें स्पाइस है, ट्रेजेडी है, नहीं मारा मारी है, तब तो इंजॉयमेंट होती है, तब उसको लोग देखते हैं, नहीं तो नहीं देखते. तो ऐसे ही जीवन में भी ये होना जरूरी है,
6: सब तरह के लोग होने जरूरी है, कहते हैं. लेकिन बात वही आ जाती है कि अगर मुझे ऐसा लग रहा है कि जो जैसा बिहेव कर रहा है उसकी बजाय अगर वो इस तरह से बिहेव करे या इस तरह का हो जाए तो उन्हीं के लिए बेहतर हो जाएगा, क्या तब भी मुझे उन्हें बदलने की कोशिश नहीं करनी चाहिए?
5: नहीं, वो ठीक है तो वहां आप उसको चेंज करना चाहते परंतु पहले एक्सेप्ट करो.
6: हाँ
5: फर्स्ट यू एक्सेप्ट, गिव देम अ कम्फर्टेबल फीलिंग. जैसे हमारे बच्चे ही है, उनको हम एक कम्फर्टेबल फीलिंग करें कि वी विल गिव यू अनकंडीशनल लव, नो वी विल एक्सेप्ट यू एज यू आर. और फिर उनको अगर एक बार जब वो स्टेट ऑफ माइंड में हो, क्योंकि चेंज कब आता है, बार बार टोकने से चेंज नहीं आता है, उल्टा उससे तो रेजिस्टेंस डेवलप होता है.
6: लेकिन क्या सिस्टर शिवानी मुझे ये पता चल पाएगा कि मैंने उन्हें एक्सेप्ट किया है उसके बाद मैं उनको चेंज करने की कोशिश कर रही हूँ, या मैं बिना उन्हें एक्सेप्ट किए ही चेंज कर रही हूँ? क्योंकि दिस इज अगेन अ लॉट ऑफ कन्फ्यूजन.
3: एक्चुअली जो भाई साहब ने कहा ना कि चेंज को लाने के लिए एक शक्ति की जरूरत है, पावर के बिना चेंज नहीं आएगा. ट्रांसफॉर्मेशन कम्स, यू नीड पावर. आप सिर्फ सोच रहे हैं कि मैं हो जाऊं चेंज, वेरी डिफिकल्ट. हमारे खुद के लिए भी बहुत डिफिकल्ट है, तो वैसे ही दूसरे के लिए भी डिफिकल्ट. आज देखो एक एक आदत छोड़ना या चेंज करना कितना चैलेंजिंग हो जाता है. तो वो पावर कौन सी होगी, कौन सी पावर वो है जो आपको इंस्पायर कर देगी चेंज होने के लिए? दैट विल बी द पावर ऑफ लव. यू नो वो एक पावर जब मिल जाती है ना हमें किसी से, यू नीड एनर्जी टू चेंज, तो दैट शुड बी पॉजिटिव एनर्जी. अभी हम जो एनर्जी भेजते हैं वो क्रिटिसिज्म वाली एनर्जी होती है. यू नो एनर्जी तो हम भेज रहे हैं, अपनी तरफ से ठीक ही बोल रहे हैं, तुम तो हो ही ऐसे, वी थिंक कि ये मोटिवेट कर देगा दूसरे को, तुम्हारा भाई देखो कितना अच्छा कर रहा है, कंपैरिजन, ये सारे जो नेगेटिव वेज हम यूज कर लेते हैं जिससे दूसरा इंस्पायर हो जाएगा चेंज होने के लिए, दैट्स वेरी टेम्पररी. अगर हम किसी को सही मायने में करना भी चाहते हैं इंस्पायर, तो वी नीड टू सेंड पॉजिटिव एनर्जी, नॉट नेगेटिव एनर्जी. तो क्रिटिसिज्म, कंपैरिजन, ये सब नेगेटिव एनर्जी है जिससे वो और भी, मतलब जिसको हम कहते हैं जिद्दी होते जाते हैं, स्टबर्न होते जाते हैं अगर उन्हें अपनी बात राइट लग रही है. तो पहले वी हैव टू सेंड लॉट ऑफ लव,
4: बट देन
3: व्हेन लव कम्स विद एक्सेप्टेंस, सी दैट्स वेयर द कनेक्टिविटी इज गोइंग. आई विल बी एबल टू लव यू ओनली इफ आई एक्सेप्ट यू एज यू आर, यू नो, एंड दैट्स लाइक व्हाट अ मदर डज फॉर अ चाइल्ड. एक माँ के लिए कहते हैं ना कि उसका बच्चा चोर भी होगा तो भी वो कहेगी नहीं मेरा बच्चा बहुत प्यारा है, यू नो, दैट्स द काइंड ऑफ लव शी हैज फॉर द चाइल्ड.
4: तो हम दुनिया के लिए उस लेवल तक पहुंच सकते हैं, हम अपने दोस्तों के लिए, अपने हस्बैंड के लिए अगर हम बात करें.
3: बिल्कुल. तो जब हम वो एक्सेप्टेंस कर लेंगे ना कि वो जैसे है, अब क्या हो रहा है, थोड़ा सा आप चेंज होते हैं तो मेरा व्यवहार चेंज हो जाता है, थोड़ा सा आपने मेरे कहे अनुसार बात नहीं की तो मैं अपना मुंह बना लू, या मैं अपना, दिस इज नॉट एक्सेप्टेंस. थोड़ा सा आपका थिंकिंग पैटर्न चेंज हो गया तो मुझे अच्छा नहीं लगने लगा. यू नो, इट नॉर्मली हैपेंस बिटवीन अ हस्बैंड एंड अ वाइफ, क्योंकि एक लंबी जर्नी है और जब शायद आप मिले थे, जब आप 20-22 की एज में थे, तब थिंकिंग पैटर्न बहुत डिफरेंट था. आप 30-35-40 की एज में जाते हैं, हो सकता है दोनों में से एक का इवॉल्वमेंट थोड़ा सा डिफरेंट हो जाए, एंड देन वी से बट यू नो जिससे मैंने प्यार किया था वो ये नहीं था. यू नो पीपल टॉक लाइक दैट, दैट पर्सन हैज चेंज्ड, सो दैट मीन्स के अब जैसा वाला देन आई डोंट लाइक, सो देन दैट इज नॉट एक्सेप्टेंस. तो देन द पर्सन सेज आप वैसे वाले बन जाओ जिससे मैंने शादी की थी. सो दीज आर, देन दैट वाज नॉट रियली,
4: वो कहां चला गया जिससे मैंने प्यार किया था,
3: दीज ऑल दीज वर्ड्स. या जैसे पेरेंट्स बच्चों को कहने लग जाते हैं कई बार, क्योंकि जब तक वो छोटे थे दे लाइफ वॉज अराउंड द पेरेंट्स, लेकिन बड़े होने के बाद यू नो द सन इज विद द वाइफ, तो द मदर विल से वो मेरा बेटा वो वाला कहां गया. यू नो वी लुकिंग फॉर दैट सेम, वी डोंट एक्चुअली वी डोंट वॉन्ट पीपल टू चेंज. इट्स अ वेरी पैराडॉक्सिकल थिंग. हम चेंज भी करना चाहते हैं उनको हर टाइम, लेकिन अपने अनुसार. अगर वो चेंज हो गए किसी और अपनी लाइकिंग अनुसार, वी डोंट लाइक द चेंज,
4: एंड वी डोंट इवन अंडरस्टैंड दैट एनीथिंग व्हिच इज कॉन्स्टेंट इन लाइफ इज चेंज, इट हैज टू हैपन,
3: इट हैज टू चेंज. तो हम उनको अगर हम कहते हैं आई लाइक यू, आई रियली लव यू बिकॉज दिस रिलेशनशिप इज लाइक दैट, देन आप जैसे भी होंगे, आज आप ऐसे हैं कल आप किसी और तरह होंगे, I still really like you. तो then that positive energy वो transmit होती है. और ये बोलने की बातें नहीं होती है, you don't have to keep saying this to somebody. उसको automatically वो positive energy आपसे मिलेगी, और वो positive energy जब आपसे मिलेगी, और फिर अगर आप you know उसको कहते हैं कि ये चीज करके देख लो, you know, हम जो founder हैं ब्रह्मा कुमारीज के, that's how it happened. कि जब ये पूरी organization शुरू हुई और जैसे एक एक भाई बहने आते गए, हर एक अलग अलग परिवार से, अलग अलग संस्कार, अलग अलग बैकग्राउंड, कमजोरियां और विशेषताएं, सब कुछ, लेकिन जो फाउंडर है प्रजापिता ब्रह्मा बाबा, उन्होंने क्या किया, ही जस्ट लव्ड एवरीबॉडी, एंड व्हेनेवर ही यूज्ड टू मीट अ चाइल्ड, वो पहले उनकी विशेषताओं को पहले उस बच्चे को सुनाते थे, यू नो नॉट फ्लैटरी, लेकिन जो सही मायने में उसकी विशेषता है, आपके अंदर ये है, ये है, ये है, और वो आत्मा बिल्कुल एक यू नो एम्पावर हो जाती थी, बिकॉज इट वॉज ऑल्सो विद वाइब्रेशन, इट वॉज नॉट विद वर्ड्स. एंड फिर वो सब कुछ कहकर ब्रह्मा बाबा कहते थे, बच्चे अगर इस सब के साथ तुम ये एक बात भी कर दो ना और साथ में, तो देखो कहां से कहां पहुंच जाओगे. एंड दैट पर्सन जस्ट वॉन्टेड टू डू इट,
4: क्योंकि कहा जाए कन्विक्शन के साथ,
3: एंड फॉर द बेटरमेंट. यू नो चेंज में भी दो चीजें हैं, एक है आई वॉन्ट यू टू चेंज बिकॉज इट्स गुड फॉर यू, एंड एक है आई वॉन्ट यू टू चेंज बिकॉज आई लाइक इट दैट वे. दो चीजों में बहुत ज्यादा फर्क है.
4: बिल्कुल.
3: आई वॉन्ट यू टू चेंज बिकॉज मेरी लाइफ ज्यादा कन्वीनियंट हो जाएगी इफ यू चेंज लाइक दैट. तो ये सारी जो कंडीशनल्स आ जाती है बीच में, तो दूसरा व्यक्ति फिर चेंज
4: अगेन वी नीड टू चेक आवरसेल्फ्स.
5: एक्चुअली एक बात एक जरूरी ये है कि भल हम बार बार ना कहे, वो शिवानी बेन ने बहुत अच्छा कहा कि भी रोज रोज कहने की जरूरत नहीं, एक्सेप्ट यू, परंतु आवश्यकता है कि हम उनको अप्रिशिएट तो करते ही.
3: हाँ, डेफिनेटली,
4: जो उनकी पॉजिटिविटी.
5: हाँ, डेली भी आप कुछ कुछ बातें अप्रिशिएट करो, छोटी सी भी, आपने अच्छा ड्रेस पहना अप्रिशिएट करो, ये नहीं कि वे तो हमेशा ऐसे ही चलता रहता है.
3: एक्सचेंज ऑफ एनर्जी पॉजिटिव होना चाहिए.
5: कुछ चीजें याद भी रखो, जैसे बर्थडे है उसको याद रखो, कई बार तो याद दिलाया होता है तो भी उस दिन भूल जाते हैं।
4: बिल्कुल, ये छोटी छोटी बातें जो हैं ये हमें एक्चुअली हम सोचते हैं कि हमने उन्हें पता ही है, लेकिन कहते रहना बार बार कन्विक्शन के साथ बहुत जरूरी होता है। डॉक्टर साहब आपने कहा कि एक्सेप्टेंस जो है वो होनी ही नहीं चाहिए, इट इज नेसेसरी, आपने कहा कि आवश्यक है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा शायद। क्यों आवश्यक है इतना ज्यादा?
5: इसलिए एक्सेप्टेंस आवश्यक है कि भी तब ही हम साथ में मिलके, क्योंकि एक टीम है, आज टीम स्पिरिट की बहुत बड़ी बात है, न केवल कंपनीज में परंतु फैमिली भी एक टीम है, तो फैमिली जो एक टीम है वो भी अच्छे से आपको अगर अपने परिवार को चलाना है तो वह टीम स्पिरिट होनी चाहिए। वह तब ही होगी कि जब एक दूसरे को एक्सेप्ट करेंगे। एक बहुत अच्छा उसका अर्थ है कि भी फैमिली का अर्थ क्या है, है ना, फैमिली का स्पेलिंग अगर आप देखो तो फैमिली का अर्थ है, है ना, फादर एंड मदर आई लव यू। तो बस यह बात है, तब आएगी कि जब एक्सेप्टेंस है। अगर बच्चों को आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे तो कभी भी ऐसा नहीं कर।
4: आई लव यू, ये आई थिंक सबसे ज्यादा कहा जाने वाले तीन शब्द हैं,
3: लेकिन
4: बिल्कुल मोस्ट मिसअंडरस्टूड वर्ड्स जो है वो, बिकॉज सही तरह से अगर देखें हम तो एक्सेप्टेंस, अच्छा दूसरों को एक्सेप्ट ना करने में, कि दूसरों को ये कहें कि हमारी तरह से चेंज क्यों नहीं होते, कहीं ना कहीं हमारी ईगो भी काफी इम्पोर्टेंट हो जाती है, काफी उसमें सामने आती है। हाउ डू वी रियली डिफ्रेंशिएट बिटवीन आर ईगो एंड सेल्फ एस्टीम, यू नो, क्योंकि कितनी बार हम ये बात करते आ रहे हैं कि ईगो और सेल्फ एस्टीम, मतलब मैंने तो ये इसमें मेरी ईगो नहीं थी, ये तो मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट थी, सेल्फ एस्टीम थी, इस कारण मैंने ऐसे किया, इस कारण मैं ये चाहता था या मैं चाहती थी, लेकिन समवेयर वो ईगो का एक एस्पेक्ट होती है।
5: बहुत सारी डिफरेंस है वास्तव में, नो इट इज पोल्स अपोजिट, पर लगता है सिमिलर लेकिन उसमें आसमान जमीन का फर्क है। जैसे कि ईगो जो है वो हमें ऑलवेज एक्सटर्नल ले जाएगा, नहीं बाह्य बातों में ले जाएगा, सेल्फ एस्टीम आपको इंटरनलाइज करेगी वास्तव में, है ना, ईगो को बार बार प्रूव करना पड़ेगा कि भी मैं राइट हूं, मैं राइट हूं, है ना, सेल्फ एस्टीम को यह प्रूव करने की जरूरत नहीं, इसलिए ईगो वाला औरों को कहेगा कि देखो मैंने अच्छा किया, कुछ ना कुछ ऐसी युक्तियां ढूंढेगा कि लोगों को यह कन्विंस हो कि भाई ये जो कर रहा है अच्छा कर रहा है, ये बहुत बड़ा व्यक्ति है। परंतु सोमान वाला व्यक्ति जो है वो इंटरनल उसका डायलॉग होगा, वो अपने आप को कन्विंस करेगा कि मैं अच्छा हूं। जैसे सूर्य को ये कहना नहीं पड़ता है कि सूर्य तुम बहुत अच्छे हो, वो अच्छा है ही है, तो ऐसे ही सेल्फ एस्टीम वाला जो है उसका वो इंटरनल डायलॉग है और वो ईगो से बाहर आना ही पड़ेगा। मैं कई बार सोचता हूं कि अगर आध्यात्मिक दुनिया में हर व्यक्ति थोड़ा तो पुरुषार्थ करता ही है, आप आध्यात्मिक जगत में आगे बिल्कुल नहीं बढ़ सकते हैं जब तक ईगो को ब्रेक नहीं करें।
4: वो जो आप कह रहे हैं कि वो जो शेल है वो ब्रेक होना ही
5: पड़ेगा। पंछी को अगर मुक्त होना है तो अंडे को तोड़ना ही पड़ेगा, जब तक नहीं टूटेगा वह मुक्त दुनिया में नहीं आएगा।
4: तो वो जो ईगो का शेल हमने है, जो वो शेल है उसको ब्रेक करना होगा। इतना आसान है, डिफ्रेंशिएट ही नहीं कर पाते। मैं तो मानती हूँ कि मेरी ईगो ही नहीं है, तो मेरी सेल्फ एस्टीम है। अच्छा, कई बार ये भी देखा गया है कि कहते हैं कि जो ईगो है वो बहुत जो ज्यादा बोल रहे होते हैं, ज्यादा लाउड होते हैं वो लोग होते हैं, और जो बड़े शांत होकर बैठे हैं, जो अपने गरिमा में बैठे हैं, उनमें ईगो नहीं होती है। बट
3: समवेयर डीप
4: दे ऑल्सो आर प्रीटी ईगोइस्ट।
5: इट कैन बी अ स्मॉल साइन कि जो बार बार बाहर बोलता है, There is a possibility.
4: ये कहा जाता है, ये मान्यता है कि ये
5: साइलेंट वाला व्यक्ति वो सेल्फ एस्टीम वाला हो सकता है, साइलेंट वाला ईगोइस्ट भी होगा,
3: कि वो इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स वाले लोग भी बहुत साइलेंट बैठते हैं, मतलब वो एक ग्रुप में बैठे हैं तो वो बहुत ज्यादा कंफर्टेबल ही नहीं है इंटरैक्ट करने में।
5: लेकिन वो डिफरेंशिएशन ही है इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स और सेल्फ एस्टीम का, कि इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स वाला अकेला रहेगा बट वो अनकंफर्टेबल फील करेगा, उसके चेहरे से भी पता चलेगा कि वो खुश नहीं है।
4: लेकिन सुपीरियरिटी वाला भी कई बार होता है कि ओहो अच्छा चलिए आप बातचीत कीजिए, मैं तो सुन रहा हूँ कि क्या बात कर रहे हैं आप। अगेन दैट्स पार्ट ऑफ बीइंग एन ईगोइस्ट एक्चुअली।
5: यह सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स इज ईगोइस्ट।
4: हाउ डू आई एक्चुअली रियलाइज, यू नो, कि मैं जो मैं बिहेव कर रही हूँ और या जो भी मैं एक चीज कर रही हूँ वो ईगो है या सेल्फ एस्टीम, हाउ डू एक्चुअली आई कम टू नो अबाउट इट, बिकॉज पता ही नहीं चल पाता कई बार तो, कि कई बिहेवियर्स ऐसे हैं जिसमें मानती हूँ कि वो सेल्फ एस्टीम है, मैंने तो इसलिए कहा था, इसलिए किया क्योंकि वो मेरी
6: मुझे लगा कि सेल्फ एस्टीम का एक रूप है, लेकिन वो अल्टीमेटली अगर हम उसमें जाएं तो वो ईगो निकलती है.
3: कोई भी नेगेटिव बिहेवियर जैसे रिफ्यूजिंग, क्रिटिसाइजिंग, जस्टिफाइंग, बॉसिंग, कम्पीटिंग, ये जितने भी नेगेटिव बिहेवियर्स हैं जिनको हम सेल्फ रिस्पेक्ट की कैटेगरी में डाल देते हैं, क्योंकि सेल्फ रिस्पेक्ट एक पॉजिटिव फीलिंग है. ईगो एक नेगेटिव फीलिंग है, यू नो, इट जनरेट्स अ डिस्टर्बेंस. नेगेटिव और पॉजिटिव से वही है, पॉजिटिव स्टेबल है, नेगेटिव एनर्जी डिस्टर्बेंस है. तो जहां भी एक एनर्जी डिस्टर्बेंस है तो वो जितने भी बिहेवियर्स हैं जो मेरे में या जिनके प्रति वो टारगेट किए गए हैं, यू नो, समटाइम्स आई कैन से यस आई एम स्टेबल बट आई एम शाउटिंग एट समबडी, बट दूसरे पर क्या असर पड़ रहा. तो आप पे वही असर पड़ेगा जिस क्वालिटी ऑफ एनर्जी. इट्स नॉट पॉसिबल ना कि आई एम सेंडिंग यू पॉजिटिव एनर्जी बट यू आर फीलिंग नेगेटिव. ये कैसे होगा? आप वो ही फील करेंगे जो मैं आपको भेज रही हूँ. तो अगर आप यू नो इफ आई से कि नहीं मैं बिल्कुल ईगो में नहीं, बिल्कुल गुस्सा नहीं है, ये तो बिल्कुल राइट था, तो दूसरे को वही फीलिंग आनी चाहिए.
6: अगर वो नहीं आ रही है,
3: अगर दूसरा हर्ट हो रहा है, दूसरा अपसेट हो रहा है या कुछ, देन आई हैव सेंट दैट एनर्जी. यू नो इट्स ओके, इट्स नॉट दैट. हो सकता है दूसरे का भी परसेप्शन, बट ऐसा हो ही नहीं सकता कि इफ आई सेंड पॉजिटिव एनर्जी यू विल टेक इट नेगेटिवली. एंड ऐसा हो नहीं सकता कि आई सेंड यू नेगेटिव एनर्जी एंड ऑफकोर्स नाउ दैट डिपेंड्स इफ यू टेक द पावर टू कन्वर्ट दैट एनर्जी देन इट्स एलिवेटेड. आई एम टॉकिंग ऑफ टू नॉर्मल पीपल. इफ आई सेंड यू पॉजिटिव यू विल गेट पॉजिटिव, इफ आई सेंड यू नेगेटिव यू विल गेट नेगेटिव. तो वो ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा.
5: डिमांडिंग, इसके द्वारा पता चल सकता है कि दोज हु आर वेरी मच डिमांडिंग तो ईगो है. सेल्फ रिस्पेक्ट वाला वो डिमांडिंग नहीं
6: हो. अच्छा, यहाँ एक स्टूडेंट टीचर और पिता और बच्चे के माँ बाप और बच्चे की बात भी आती है कि जब स्टूडेंट जो एक टीचर है डिमांड की बात करे, वो उम्मीद करता है कि स्टूडेंट मुझसे ढंग से ही बात, मुझे वो रिस्पेक्ट देगा वो, क्योंकि मैं स्टूडेंट, बिकॉज ऑफ माई स्टेटस. क्या ये उसकी ईगो है या उन्हें वो यू नो लाइक ही शुड बी लाइक दिस, कि वो अपने आप उन्हें यू नो एक्सपेक्ट ना करनी पड़े. स्टूडेंट शुड बी रिस्पेक्टिंग,
5: दैट इज द राइट. आपने सही उत्तर भी दिया.
6: नहीं, पर यहाँ कंफ्यूजन रहता है. वो टीचर कंटिन्यूअसली सोचता है कि उसको मेरी रिस्पेक्ट करनी चाहिए. पेरेंट्स भी कहते हैं कि उसको मेरी मेरी बात माननी चाहिए, मेरी रिस्पेक्ट करनी चाहिए.
5: नो, दैट इज ईगो. इनफैक्ट नो, यू बिहेव इन सच अ वे, आप अपनी वैल्यूज को इतनी अच्छी बनाओ और जो आपका व्यवहार है ऐसा अच्छा हो कि ऑटोमेटिक वो रिस्पेक्ट करे आपको. डिमांड नहीं करनी पड़ेगी, एक्सपेक्ट नहीं करना पड़ेगा.
3: रिस्पेक्ट रोल के लिए नहीं होने चाहिए.
6: कि मैं क्या हूँ.
3: रिस्पेक्ट इज फॉर द सोल, दैट्स व्हाट वी से. रिस्पेक्ट रोल के लिए नहीं, इट्स फॉर द सोल. दैट मीन्स इट्स फॉर द पर्सन दैट यू आर, इट्स नॉट नेसेसरी जस्ट फॉर. क्योंकि अगर वो जो हम बाह्य रोल के लिए देते हैं उसको हम रिगार्ड कहते हैं. दैट्स व्हाई देयर टू डिफरेंट वर्ड्स, रिगार्ड एंड रिस्पेक्ट. रिगार्ड है कि कोई बड़ा अंदर आता है तो हम कुर्सी से उठते हैं, उनको जगह देते हैं, ये रिगार्ड है. एंड इट्स ऑलवेज आउटर, आउटर वर्ल्ड में. लेकिन जो रिस्पेक्ट है वो अंदर से, यू नो इट, वो अंदर से निकलेगी आपके.
6: तो वो
3: लिए
6: अंदर से, वो बच्चे के लिए भी हो सकती.
3: हाँ,
6: है
3: तो इट इज नॉट नेसेसरी कि रिस्पेक्ट एक बच्चा पेरेंट को करेगा. रिस्पेक्ट एक पेरेंट को भी बच्चे के लिए करनी है. रिस्पेक्ट एक टीचर को भी स्टूडेंट के लिए करनी है. क्योंकि रिस्पेक्ट इज एनर्जी विच इज फ्लोइंग फ्रॉम अ सोल टू अ सोल, इरिस्पेक्टिव ऑफ रोल, एज, एनी बैरियर. क्योंकि बच्चा सिर्फ शारीरिक रूप से वो बच्चा है, लेकिन आत्मा तो वही है, एनर्जी वही है. एंड आई रिस्पेक्ट दैट एनर्जी. तो वो रिस्पेक्ट फिर आंतरिक एक दूसरे के लिए, दैट्स पॉजिटिव. अगेन इट्स एक्सेप्टेंस, इट्स अगेन इट्स इंटरकनेक्टेड. इफ आई एक्सेप्ट यू, आई रिस्पेक्ट यू.
5: एक भाई था जो सारे हमारी जो संस्था है उसमें काफी ही हैड प्रीडोमिनेंट रोल. तो एक बार उन्होंने बहुत गुस्सा किया, कई बातें दादी को सुनाई. तो भी उन्होंने शांति से सुना, तब रिएक्ट नहीं हुए पीसफुली. और फिर थोड़ी देर हुई तो तुरंत कहा कि भी वो भाई को खाने पे बुलाओ, मेरे साथ बैठ करके हम भोजन करेंगे. तो देखिए यह बात है. वो भाई खुद सुनाते हैं कि भी यह इवेंट हुई, जीवन भर में दादी को रिस्पेक्ट करता हूँ. क्योंकि वह महानता की निशानी है कि मैंने तो इतना सुनाया था. अगर वो नहीं भी बुलाते तो शायद मेरे मन में कोई नेगेटिव बात आने वाली नहीं थी. लेकिन यहाँ उनका स्वमान है, ईगो नहीं है कि जिसके कारण उनको रिस्पेक्ट दिया.
4: और अगेन उनकी उनकी एक्सेप्टेंस थी ना, उन्होंने एक्सेप्ट किया कि इट्स
3: वेरी इजी,
4: इट्स लाइक ओके.
5: या तो उस समय उनके पॉजिटिव थॉट चले होंगे साथ, उस समय जो भी 15-20 मिनट का समय होगा कि बिल्कुल कोई कारण से इन्होंने कहा मुझे भी अपने को शायद कुछ जीवन में चेंज करने के, ऐसा पॉजिटिव सोचा होगा तब उनको एक्सेप्ट करता.
4: और वही आपने कहा ना कि अगर आप नेगेटिव देते हैं तो जब तक सामने वाला एलिवेटेड नहीं होगा तब तक उसको नेगेटिव को पॉजिटिव में नहीं.
3: सो दैट इज फॉर दीज सोल्स हु रीच दैट लेवल कि जो एनर्जी आप भेज रहे हैं वो उसको कन्वर्ट कर लेते हैं.
4: बहुत बहुत अच्छा लगा आज हमने जो बातचीत की कि सचमुच हम कहते हैं तो बहुत आसानी से है कि मैं दुनिया से प्यार करना चाहती हूँ, मैं दुनिया को प्यार देती हूँ या मैं चाहती हूँ कि सबको प्यार किया जाए, लेकिन हम सच सही मायने में नहीं जान पाते क्योंकि हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं. तो जितना जरूरी खुद को एक्सेप्ट करना है उतना ही जरूरी दुनिया को एक्सेप्ट करना भी है. तो डॉक्टर गिरीश पटेल एंड सिस्टर शिवानी बहुत बहुत शुक्रिया. खुद से प्यार हम में से हर कोई करता है. हम ये भी चाहते हैं कि हम लोगों को प्यार करें और लोग भी हमें प्यार करें. तो इसमें सबसे बड़ी बात जो सामने आती है वो यही कि स्वीकारें, खुद को स्वीकारें, लोगों को स्वीकारें, जैसे हैं उन्हें स्वीकार लें और फिर प्यार स्वतः ही हो जाएगा. ऐसी कई और बातें हैं जो आपके दिल में भी उठ रही होंगी. तो अगर आपके पास कोई सवाल है आपका स्वागत है. आप हमें फोन पर या फिर ईमेल द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं. हमारा फोन नंबर है 9873666555 और हमारा ईमेल आईडी है omshantistudio@gmail.com. इसके साथ ही अब वक्त है कि आपसे विदा लें, लेकिन इसी वादे के साथ कि अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी.
7: शिवाजी की तलवार है, लावणी बेमिसाल है, टेक्नोलॉजी के साथ संस्कार है. मराठी करती स्वागत हर भाषा का, यहाँ भूमि अपनाती हर त्योहार है. सुनिए पुनेरी आवाज 107.8. खुश रहो, खुशियाँ बांटो.

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: हम भी भूल गए कि हम मन के, बुद्धि के, संस्कारों के, इन कर्म इंद्रियों के हम मालिक हैं, हम राजा हैं, हम भूल गए। आज हम कहते हैं मुंह से निकल गया, हाथ उठ गया, आंखों से देख लिया, किसी का बुरा बोल दिया। मन तो सारा दिन चलता है, वो तो कभी सोचा, वो तो उसके बारे में तो कर्म इंद्रियों के भी गुलाम। ये तो सूक्ष्म इंद्रियां, इसको हम कहते हैं सटल ऑर्गन्स, मन, बुद्धि, संस्कार। लेकिन फिजिकल सेंस ऑर्गन्स, ये पांचों कर्म इंद्रियां, ये भी आज हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो आत्मा आउट ऑफ कंट्रोल ओवर इट्स ओन ऑर्गन्स, ट्राइंग टू कंट्रोल एवरीबडी एल्स। इट्स लाइक ड्राइविंग ऑन द रोड, अपनी गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल, लेकिन चाहते हैं कि बाकी सबकी गाड़ी मेरे हिसाब से चले। रिजल्ट क्या होगा? एक्सीडेंट के अलावा और तो कुछ हो ही नहीं सकता ना। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बाकी सब गाड़ियों में भी जो बैठे हैं ना, उनकी भी अपनी गाड़ी पे कंट्रोल नहीं है, उनकी भी अपनी गाड़ी पे कंट्रोल नहीं है। वो भी ये चाहते हैं कि हमारी गाड़ी उनके हिसाब से चले। जस्ट विजुअलाइज दिस सीन ऑन द रोड, जस्ट ओनली सी कि पांच गाड़ियां एक सड़क पर हैं, पांचों के ड्राइवर्स का अपनी अपनी गाड़ी पर कंट्रोल खत्म हो चुका है। एंड पांचों चाहते हैं कि जो बाकी चार हैं गाड़ियां, वो उनके कंट्रोल से चले।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM पर। मैं स्मिता जयकर, खुश रहो, खुशियां बांटो।

हुआ भी ऐसा ही। निराशा की काली बदरिया उमड़ घुमड़ कर बरसी तो, लेकिन उसी में आशा की किरण फूट पड़ी और

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: ट्रैक्स बने होते हैं एंड पानी उसमें बह रहा है, ठीक है, गार्डन है, रास्ते हैं, ट्रैक, सपोज इधर ही इस सड़क पर एक ट्रैक बना हुआ है। अब वो रोज पानी उसी में बहता है, ठीक है। अब पानी का बहते बहते उस एरिया के अंदर वो एक ट्रैक बन ही गया ना। अब जैसे ही पानी आएगा वो दूसरी साइड पे कहीं जाएगा ही नहीं, राइट, वो ऑटोमेटिकली उसी ट्रैक में फ्लो होगा। होते होते होते वो ट्रैक उस पानी के लिए एक परमानेंट पाथ बन चुका है, राइट। अब अगर हम आज से चाहते हैं कि वो उस ट्रैक में नहीं जाए, उस डायरेक्शन में वो पानी नहीं जाए, लेकिन वो एक नए तरह से जाए, तो हमें थोड़े दिन के लिए, सिर्फ ज्यादा नहीं, थोड़े दिन के लिए जैसे ही वो पानी आता है, फ्लो होने लगता है, हमें उसको चैनलाइज करके एक डिफरेंट डायरेक्शन में जाना है। ऐसे ही माइंड भी जब एक थॉट क्रिएट करता है, फिर अगले दिन वही थॉट क्रिएट करता है, फिर अगली बार वो सिचुएशन आती है, फिर वो उसी तरह रिस्पॉन्ड करता है, तो एक फिक्स्ड पैटर्न बन जाएगा अंदर, जिसको हम कहते हैं ब्रेन में भी उसका एक ग्रूव बन जाता है। अब नेक्स्ट टाइम जब वो सिचुएशन आएगी तो आप चूज नहीं करते, आपकी थिंकिंग ऑटोमेटिकली उस पैटर्न से ही होती है, एंड करते करते करते वो ग्रूव एक बहुत स्ट्रॉन्ग पैटर्न बन जाएगा, जिसको हम कहेंगे ब्रेन की मैपिंग, वो पैटर्न्स बन जाते हैं। अब हम एक जीवन अनेक जन्म उसी पैटर्न उसी मैपिंग से काम करते जा सकते हैं, लेकिन अगर हम आज डिसाइड करें तो हम आज चेंज कर सकते हैं।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM, खुश रहो खुशियां बांटो।
2: नमस्कार साथियों, आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज। अब हम आपके लिए रेडियो मधुबन द्वारा निर्मित एक विशेष कार्यक्रम प्रस्तुत करने
3: दोस्तों
2: जा रहे हैं।
3: जब भी हम हमारे जीवन की ओर देखते हैं, कुछ ऐसी जरूरतें होती हैं जिनके बगैर जीवन आगे बढ़ता ही नहीं है। रोटी, कपड़ा, मकान, ये बातें हमने सुनी जरूर हैं, लेकिन अगर गौर किया जाए तो शायद सबसे ज्यादा जरूरी रोटी ही होती है। भोजन वो हमारे जीवन का केवल एक अभिन्न अंग ही नहीं, जीवन को चलाने वाला एक बहुत ही अभूतपूर्व और बेशकीमती साधन है। सारा जीवन चक्र, सारा कार्य व्यवहार, हमारा पूरा समाज ही भोजन के इर्द गिर्द घूमता है, और ये भोजन को उगाने वाले हमारे किसान, इसलिए उन्हें अन्नदाता कहा जाता है, उन्हें देवता का स्थान दिया गया है। यशस्वी भारत कार्यक्रम में मैं आरजे शांतनु आज आपके बीच में एक ऐसे ही अन्नदाता की कहानी लेकर आया, जिन्हें भारत सरकार ने हाल ही में पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया है। इन्हें नवाजा गया है नव अनाज के नायक।

0: के टाइटल के साथ। आज हमारे बीच में हैं नेक राम शर्मा जी। देवभूमि हिमाचल प्रदेश से हमारे बीच में आज नेक राम शर्मा जी जुड़े हुए हैं। नेक राम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, आभार है।
1: जी धन्यवाद जी।
0: नेक राम जी, आज आपने समय निकाला है, मुझे पता है कि आप बहुत ही व्यस्त रहते हैं और जगह जगह आपको जाना पड़ता है, कई ऐसे जगहों पे भी आप जा रहे होते हैं जहाँ पर की कनेक्टिविटी नहीं होती है, फिर भी आपने समय निकाला हमारे साथ जुड़ने के लिए, पहले तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
1: धन्यवाद जी।
0: नेक राम जी, आपके नाम में ही नेक शब्द जुड़ा हुआ है और आपने नेकी का काम करना बहुत पहले से शुरू किया, थोड़ा आप अपने जर्नी के बारे में बताएं, आपकी यात्रा कैसे शुरू हुई, क्या आपको प्रमोट करता है, कौन सी वो बातें थी जिनकी वजह से आज आप जो काम कर रहे हैं उस पर आप टिके हुए हैं?
1: देखिए, मेरा तो ये सफर काफी लंबा, और मैं बेसिकली तो किसान का बेटा हूँ और किसानी हमारे लिए कोई नया चीज नहीं है, वो बचपन से ही सीखते जाते हैं माँ बाप दादा दादी के साथ साथ। और मैं जब अपना पढ़ाई लिखाई खारी करने के बाद, मुझे शौक था अपना खेतीबाड़ी से सबसे ज्यादा। मेरे माँ बाप चाहते थे मैं नौकरी करूं, मगर मैंने नौकरी के लिए कुछ प्रयास भी किए परंतु वो कहीं ना कहीं मैं उसमें सफल मैं नहीं रहा, जबकि बहुत मैंने जगह पे टॉप किया इंटरव्यू में, कई जगह भर्तियों में, मगर फिर भी मेरे हाथ नौकरी नहीं लगी। और उसी वक्त मुझे मन में लगा कि मैं नौकरी नहीं करूंगा, मुझे अपना काम करना है। तो इसके चलते मैंने अपना खेतीबाड़ी शुरू किया, और जिसमें कि मेरे माता पिता भी मुझे खुश नहीं थे कि मैं अपना खेतीबाड़ी करूं। और मैंने बहुत सारा सीजनली सब्जियां, अपना लोकल चीजें, वो सब तैयार करना शुरू किया। उसी बीच में मुझे एक घटना ऐसे हुई कि हमारे वहां क्योंकि सभी लोग किसान हैं और वो पशुपालन मुख्य व्यवसाय है, मगर पशु के लिए जो चारा है उसका बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। मेरा जहां पर गांव है, गांव के दोनों तरफ जो है ना ऊपर को पहाड़ियां थी, और जिसमें जब बरसात में फ्लड आते हैं, बारिश आती तो पूरा फ्लड, उसमें पत्थर कंकर मिट्टी सब नीचे खेतों तक पहुंचते हैं, और घरों में भी कई बार बड़ा डर रहता था, बड़े नाले आते बहुत। तो मैंने सोचा ये तो बहुत गड़बड़ है और हमें ये जंगलों को इसको कुछ तरह से संरक्षण देना चाहिए। लोग कई बार ये आग्रह वन विभाग से भी करते रहे हैं, वन विभाग क्या करता है कि कोई चेकडैम लगाता है, तो मुझे लगा ये तो बहुत गलत है, अनसाइंटिफिक है कि चेकडैम बांधा नाले में, उसमें जो पक्के पत्थर है उनको तोड़ा और जाके कच्चा सा एक डैम बना दिया हल्का, और जब फ्लड आता है तो वो डैम समेत सब नीचे जाता। मैंने कहा वो तो तरीका नहीं है, इसको टोटल कंजर्वेशन होना चाहिए। तो मैंने अपने गांव में ये मीटिंग करना शुरू किया। ये लगभग बात ही 1990 के आसपास में, दिसंबर जनवरी का महीना रहा। इस बीच में तो हमारे यहाँ गर्मी भी बहुत होती है, और मैंने तब तत्काल क्या किया, लोगों के साथ मीटिंग करके खासकर महिलाओं को उसमें जोड़ा कि वो घास के लिए उनको बहुत दूर जाना पड़ता था, उनका बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। हाँ, महिलाओं को साथ मीटिंग किया और उनको काफी अच्छा भी लगा, मगर सवाल यही था कि उस वक्त विभाग, वन विभाग और लोगों के बीच में काफी सारा एक था, एक मैं खाई कहूं कि वो विभाग जो है जनता को उसमें जो सहभागिता होना चाहिए, जो जोड़ना चाहिए, उनको उसके संसाधनों के प्रति जागरूक करना चाहिए, वो सब बात नहीं होती थी। सिर्फ बजट आता और उस बजट को खर्च करने के लिए गांव के लोगों को लेबर के रूप में लगाया जाता, और बस इतना सा ही रिश्ता था। और उसके बाद वो गांव के लोग भी परवाह नहीं करते, तारें टूट गई, पशु चले गए, सब वो सब चलता जाता, तो बजट खत्म हो जाता। तो हम लोगों को बोला कोई तार बार नहीं लगानी, हम लोग सोशल फेंसिंग करेंगे और इसमें हम लोग कुछ वन महोत्सव करेंगे और वन देवता को हम लोग पूजा करेंगे, फ्लड ना आए ऐसे। फिर लोग जुड़े और वो जंगल में हमने गतिविधि करना शुरू किया। तो उसमें बहुत सारे लोगों ने बहुत विरोध किया कि ये कैसे हो सकता है ऐसा, वो तो वन विभाग करेगा, ये जंगल तो वन विभाग के हैं। हमने कहा वन विभाग नौकरी करता है, वो 2 साल होगा, 1 साल होगा गार्ड वहां पर, उसके बाद वो दूसरी जगह जाएगा। लोग गांव के लोग परमानेंट है, तो हमें अपना समस्या को जो है ना खुद उसको निपटारा करना है, वन विभाग हमारी मदद करे जो भी वो कर सकता है। तो हमने दूसरी तीसरी मीटिंग में वन विभाग के गार्ड को भी बुलाया, परंतु वो भी हमारे से बहुत खुश नहीं थे, तो कहते तुम ये क्या कर रहे हो, तुम ये जंगल में ऐसे नहीं कर सकते, वो तो सरकार का है और हम लोग उस पर करेंगे। हमने कहा हम उसको बचाने का प्रयास कर रहे हैं और तुम भी उसको बचाने का प्रयास ही करते हैं। जब हम और आप मिल करके ये सब करेंगे तो सफलता मिलेगी ना। तो ऐसा करके अभी उनको, क्योंकि उनके बड़े ऑफिसर जब तक ना बोले तो छोटे वाला मदद नहीं करता, तो मैंने जाकर के वहां के जो DFO थे उनसे बात करी। उनको भी लगा कि लोग कैसे कर सकते हैं, लोग तो जंगल में चोरी करते हैं, वो तो नुकसान करते हैं। हमने कहा नहीं, लोग नुकसान इसलिए करते हैं कि उसमें उनका भागीदारी नहीं है। जिस दिन वो खुद पेड़ लगाएंगे, बिना पैसे के लगाएंगे उसमें, और आप पेड़ मुहैया कराओ, हमें दिहाड़ी नहीं चाहिए, वो जंगल हमारा है और उसमें हमारी जरूरत के पौधे लगाइए, घास के पौधे लगाइए, उसमें बहुत सारा जो वाइल्ड लाइफ के लिए हम लोग उसमें लगाएंगे, कुछ पौधे लगाएंगे, ऐसा करके करेंगे। तो उनको कुछ समझ आया तब जाके थोड़ा विभाग भी जुट गया। और ऐसा करते हुए
0: ये जो आपने कहानी बताई ना, यहाँ पर मुझे आपको रोक करके ये जानने का और ज्यादा मन कर रहा है कि जो आपने ये बात कही कि भाई जब तक लोगों को अपनी भागीदारीता नहीं दिखती किसी प्रयास में, जब तक लोगों को उसमें उनका फायदा नहीं दिखता किसी प्रयास में, तब तक उनको उस चीज के साथ जोड़ना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन ये तो वन विभाग वालों को तो चलो फिर भी समझाना आसान है, क्योंकि ऐसा माना जाता है वो उसी विषय से जुड़े हुए हैं, वो पढ़े लिखे हैं, वो समझते होंगे। लेकिन गांव वालों को ऐसा नहीं लगता कि ये किन क्या बातें कर रहे हो भाई, हम चाहते हैं पैसा कमाना, धन का कमाना, आप कहां हमसे मुफ्त में पौधे लगवा रहे हो। तो वो जो मानसिकता है गांव वालों का, उसको तोड़ने में आपको क्या मेहनत लगा?
1: देखिए जो गांव के लोग हैं, मैं पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर का मेरे पास अनुभव है, लोग वनों को देवता मानते थे, लोग जगह जगह पौधे लगाते हैं, बैठक स्थल है वहां पौधे लगाते हैं, पानी देते हैं, बचाते हैं, मगर जंगल में वो इसलिए नहीं लगाते कि जंगल में जो वन विभाग का जो आदमी होता है फॉरेस्ट गार्ड, वो पूरा पुलिस की तरह डंडा लेकर के खड़ा होता है। और वहां क्या होता है कि जो हमारी जरूरतें हैं जंगल से, उसके लिए वो क्या होता था कि वो रोकते थे हमारी जरूरतें, जंगल हमारा है। जब तक वो सारी चीज, वो विभाग से पहले लोगों में बहुत सारी यहाँ की कथाएं हैं कि लोग वृक्ष, फलदार वृक्ष नहीं काटते थे, लोग जहाँ 2-3 पेड़ हैं उसमें से पेड़ नहीं काटते थे, जंगल में अकेला पेड़ नहीं होना चाहिए, इस तरह के बहुत सारे गीत हैं लोगों के प्रचलित है यहाँ। और जंगल पेड़ पौधे का लोग बहुत पूजा करते थे, मगर विभाग के आने के बाद वो विभाग के साथ जब वो उसमें पार्टिसिपेशन नहीं रहा, सहभागिता नहीं कि हम तुम्हारे लिए हैं, हम तुम्हारे लिए मददगार हैं, तो ये सब ना हो करके तो जो जंगल वाला जो पार्ट है उसमें वो नुकसान कर सकते थे, मगर वहीं दूसरी तरफ अपनी जमीन में, अपनी घासनियों में बड़े अच्छे ढंग से पौधों का लॉपिंग करना, पौधों को बचाना, उनकी रक्षा करना। तो ये धीरे धीरे हिमाचल सरकार को भी समझ आया और कुछ महीने के बाद यहाँ शुरुआत हुई हमारे बन लगाओ रोजी कमाओ योजना, कि भाई जंगल तुम पौधे लगाओ पैसा भी बनेगा तुम्हारे को। तो उसमें बहुत सारी सफलता मिली। 1990 के आसपास में ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट एक कार्यक्रम आया और उसमें लोगों को रोजगार भी, और लोगों को बोला कि इससे जो भी उत्पाद होगा वो सब तुम्हारा है। तो हम लोगों ने भी जंगल में बहुत सारा आंवला, दाड़ू, हरड़, भेड़ा, ये नाना प्रकार के पौधे, घास के पौधे वो लगाए। ये सब जब लोगों ने देखा कि ये हमारा इनकम का सोर्स है, तब लोग जंगल में जो जाते, एक दिन वन महोत्सव मनाते, सीड सोइंग करते, इतना ही समय लगना, ज्यादा समय नहीं, उनको पता हो गया कि वो हमारा इनकम का एक सोर्स बन रहा है। उसमें जो ये दाड़ू है, दाड़िम अनारदाना, वो कई जगह पे हमारे लोग हजारों रुपया कमाते हैं वो दाड़ू अनारदाना बना करके, आंवला बेच करके। तो ये सब जंगल में है, तो वो उसको वो अपनी संपत्ति जब मानेंगे तो उसमें वो मदद करेंगे। मैं इसलिए कह रहा हूँ आपको, आज ये स्थिति है, अगर जंगल में कोई आग लगाता है, वैसे तो डर के मारे कोई लगा नहीं सकता, जंगल में कोई जो है ना ग्रीन फैलिंग नहीं कर सकता, वो गार्ड के डर से नहीं, लोगों का डर है कि कोई मुझे देख लेगा और मैं पकड़ा जाऊंगा। तो डर लोगों का होना चाहिए, विभाग का डर नहीं होना चाहिए। तो ये जो चेक है गांव के अंदर आ गया, अब अगर जंगल में आग भी लगती हो तो तो लोग तुरंत जाकर के उसको बुझा भी देते हैं। परंतु वही थोड़ा सा एक सवाल होता है जो विभाग है उस पर, कि जो समय रहते विभाग को जो कार्रवाई करनी चाहिए अवेयरनेस प्रोग्राम, वो सब नहीं हो पाता है। वहाँ बहुत कमी है विभाग की, और हिमाचल प्रदेश में बहुत सारे जंगलों में आग लगती है, और जब आग लगती है तब जाकर के विभाग जाकर के बोलेगा कि अब आग बुझाने, मगर वो सब काम तो उससे पहले होना चाहिए। पंचायतों को जिम्मेवारी दें, उनको चिट्ठी जाए, कुछ अवेयरनेस का कार्यक्रम हो, पब्लिसिटी डिपार्टमेंट है मगर वो कहीं दिखता नहीं है। तो इस तरह से फिर लोगों को भी लगता है कि वो अपना गांव के पास का जंगल तो बचा देते हैं, मगर जो बाहर है कहीं पर वहां के लिए फिर उतना ध्यान नहीं रखते। जी
0: जी, मतलब ये जो कहानी आपने बताई, मैं समझता हूँ केवल हिमाचल की कहानी नहीं होगी, ये और भी पहाड़ी इलाकों की कहानी हो सकती है।
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
0: लेकिन भाई साहब, मुझे ये भी जानना था कि जैसे जो रास्ते आपने अपनाए या हिमाचल के लोगों ने अपनाए, या सरकार की भी जो प्रेरणा मिली, मदद मिली आपको इस चीज को करने के, जैसे आपने कहा कि भाई एक अच्छा पार्टनरशिप तैयार हुआ, क्या आपको लगता है सेम चीजें दूसरी जगह की पहाड़ियों पर भी किया जा सकता है? क्योंकि मैं खुद माउंट आबू से जुड़ा हूँ, रेडियो मधुबन माउंट आबू में है, यहाँ पर भी हमारे आसपास में कुछ ऐसा ही वातावरण है कि पेड़ जो है पहाड़ियों पे कोई लगाता नहीं है।
1: हमारा जो बातचीत करने का ढंग है वो एक बार हमें ये समझना पड़ेगा कि गांव के लोगों का जरूरतें क्या है, उनको जंगल से क्या कोई उनको आवश्यकता है, उनकी क्या निर्भरता उस जंगल पे है। तीसरी बात यह है कि वो सब लोगों को कुछ मालूम भी है कुछ नहीं भी है। एक गांव की एकता जो इस बात के लिए सोचे कि ये सारा जो क्लोरोफिल है हरियाली ये जंगल से आती है, ये ऑक्सीजन है ये जंगल से आता है, ये अच्छा सा वातावरण ये जंगल से होता है, तो सेहत के लिए वो अच्छा है। तो हम लोगों ने पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर, मुझे 1995 के बाद बहुत जगह विभाग के बड़े अधिकारियों ने बुलाया और बड़े बड़े कार्यक्रम हुए जिसमें हमने ये सारी बात लोगों के जहन में बिठाई, और बहुत छोटे छोटे संगठन बनाए, वन समितियां बनाई, और उनको उसकी जिम्मेवारी दी, उनको कुछ बजट दिया कि ये पैसा है तुम इससे जो भी करना है करो और ये जंगल को बचाओ। बहुत सारे महिला मंडल को हम लोगों ने विभाग को मोटिवेट किया और हमने कहा कि ये महिला ग्रुप है उसका ये जंगल है 10 हेक्टेयर 15 हेक्टेयर 20 हेक्टेयर है और इनको तुम कुछ मदद करो, 10,000 20,000 40,000 एक चेक दे दो, मगर ये इतना जंगल बच जाएगा। उसमें प्लांटेशन करने का जरूरत नहीं है, वो नेचुरली उसमें बहुत सारे वहाँ की जो स्पीसीज है जो वहाँ पे होता है वो स्वतः ही उग आता है और उसमें कभी सूखा भी नहीं पड़ता, और ये सब जगह संभव है। सवाल ये है कि हम किस तरह से गांव वालों की उनकी जो उनको कैसे समझते हैं पहले, और उसके बाद वो खुद अपने मुंह से बोलेंगे कि हाँ हमें ये करना है, और वो एक अभियान के रूप में शुरू होता है कार्यक्रम, और उसमें विभाग आता है। हमारे यहाँ सब लोग धार्मिक सद्भावना के लोग हैं, हमारे जंगल हैं उसको देवता मानते हैं लोग और उसको भगवान मानते हैं लोग, प्रकृति भगवान है, ऐसे करके कोई भी आदमी हरा पेड़ को काटने के लिए आगे नहीं आता। मगर जब कोई दुष्ट आदमी ऐसी हरकत करता हो, उसको अगर सजा नहीं मिले, विभाग सजा नहीं देता है, तो धीरे धीरे वो जो गलत प्रवृत्ति है वो फिर फैलती जाती है, उसको रोकना होता है, जिसके लिए जरूरी है एक गांव के लोगों का अच्छा सा संगठन, उसमें महिलाएं, हिमाचल प्रदेश में तो महिलाएं बहुत आगे आई हैं, और आप कभी भी आकर के यहाँ आप आए, आपका कोई ग्रुप आए यहाँ देख सकते हैं, हमारे यहाँ तुरंत 100-200 महिलाएं इकट्ठा हो जाती हैं और बहुत सारी बातें होती है, और बरसात में और सर्दी के दिनों में वन महोत्सव की प्रक्रिया ऐसे शुरू होती है। वो जंगल में जाकर के हलवा बनाते हैं, देवता के नाम से वो चढ़ाते हैं, भगवान के नाम से, प्रकृति के नाम से वहाँ सबको प्रसाद बांटते हैं और जंगल को बचाने की कसम खाते हैं। और इस बार तो हम लोग, क्योंकि इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट है, वैसे तो मैं पिछले 8-10 सालों से कोशिश कर रहा हूँ अपने लेवल पे, जहाँ भी कहीं हमारा वन महोत्सव होता है, हम लोग जंगल में जाकर के जो हमारे मिलेट्स हैं, फिंगर मिलेट्स, फॉक्सटेल मिलेट, बार्नयार्ड मिलेट, उसको महिलाओं के हाथों ही उसको ब्रॉडकास्टिंग करते हैं, ताकि वो उसमें उगेगा, वो चिड़िया का भोजन होगा, और उसके लाभ ये हैं कि चिड़िया किसान के सेब में नहीं आएगी, टमाटर के खेत में नहीं आएगी, और उसमें जंगल का ये लाभ है कि सॉइल कंजर्वेशन होगा और पशु के लिए चारा भी होगा। तो ये सब संभव है, ये हो सकता है। जी
0: आपने बहुत सुंदर तरीके से बता दिया कि कैसे वन महोत्सव के द्वारा आपने सबके जीवन में परिवर्तन लाया, ना केवल इंसानों के लेकिन पशु पक्षियों के जीवन में भी बहुत बड़ा परिवर्तन आया। लेकिन आपने एक सवाल भी रखा कि क्या मैं समय निकाल करके ये पता लगाने की कोशिश करता हूँ कि मेरे आसपास जो लोग रहते हैं उनकी क्या आवश्यकताएं हैं, उनकी क्या नीड्स हैं, कौन सी आवश्यकताओं को हम पूरा कर सकते हैं। अगर ये हम पता लगा ले तो उस जगह की समस्या का समाधान करना सरल हो जाता है। तो साथियों, जो भी आज आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन यशस्वी भारत कार्यक्रम, नेकराम जी का ये मैसेज आप जरूर ध्यान रखिए कि आपके आसपास में जो भी गरीब लोग रहते हैं, जो भी लोग पहाड़ों में रह रहे हैं या आदिवासी चंचल एरिया में रहते हैं, उनकी क्या समस्याएं हैं, उनकी क्या आवश्यकताएं हैं, पहले उसको समझने का प्रयास करें, तभी मैं या आप उनको सही मदद पहुंचा पाएंगे या उन तक सही मदद पहुंचा पाएंगे। नेकराम जी, ये अभी आपने मिलेट्स की बात करी तो अब उसी विषय पे आते हैं। इस वर्ष को संयुक्त राष्ट्र संघ ने अंतरराष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है मिलेट्स के लिए। मिलेट्स को हिंदी में जैसे जो हमारे मोटे अन्न होते हैं उनको हम मोटे अन्न कह देते हैं, बट एक्चुअली उसका बहुत सुंदर नाम रखा है भारत सरकार ने, श्री अन्न कहा जाता है, श्रेष्ठ अन्न कहा जाता है। तो ये श्री अन्न के बारे में थोड़ा सा आप बताएं।
1: देखिए, ये हमारे यहाँ जो ये सब जो पौष्टिक अनाज है, हम तो इसको बोलते हैं पौष्टिक अनाज, मूल अनाज, हमारे परंपरागत अनाज, ये मेरे जो समझ है, मैं तो पिछले 30 वर्षों से इन सब कामों में जुटा था। पहले गांव का जंगल बचाया, उसके बाद पूरा पंचायत का जंगल बचाया, फिर उसके बाद पूरा अपना जो हमारा ब्लॉक हेडक्वार्टर है वहां पर हमने लगभग 70-80 महिलाओं के ग्रुप बनाए, उनके साथ भी ये सब जंगल वाला काम किया। उसके बाद शुरुआत हो गई थी 1991-92 में कि जो हमारे ये परंपरागत अनाज है, जो कभी 50 साल भी रखो तो उसमें कीड़ा नहीं लगता, वो कितना बलवान वो अनाज है, और वो जो है उसको कभी कोई खराबी नहीं आती, कोई कीड़ा नहीं खाता। और मैं ये समझा हूँ कि ये जो हमारे पौष्टिक अनाज है, ये सिर्फ हमारा भूख नहीं मिटाता, ये हमारे शरीर को वो पोषक तत्व देता है जिससे कि हमारे सारे रोग मिट जाते हैं, कोई रोग ही नहीं आता, और ये औषधि का काम करते हैं हमारे शरीर में। और हमारा भूख तो मिटाते ही मिटाते हैं, मगर हमें ये जरूर जानना चाहिए कि ये हमारे बीमारियों को भी मिटाते हैं और किसी भी रोग को आने नहीं देते, रोग हो भी जाए तो भी उसको खत्म कर देते हैं। ये जो श्री अन्न है, मैं भारत सरकार का बहुत बहुत धन्यवादी हूँ इस बात के लिए, और क्योंकि इस बार इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट हो रहा है, मुझे तो अति प्रसन्नता है इस बात की, और इसी साल ही मुझे ये सब सम्मान भी मिला, पद्मश्री से मुझे सम्मानित किया गया, और क्योंकि मैं पूरे हिमाचल प्रदेश में नहीं बल्कि दूसरे स्टेटों में भी जा जा करके कई जगह कई संस्थाओं को मैं इसके बारे में ट्रेनिंग देता था कि ये खाएं और ये उगाएं, इसके बहुत बड़े लाभ हैं। एक तो ये रेनफेड एरिया में होगा, इसको पानी ज्यादा नहीं चाहिए, पानी आ भी जाए तो भी नुकसान नहीं है। दूसरा, ये मिक्स क्रॉप के रूप में होते हैं, इसमें 9 तरह के अनाज का जो मैंने बात कही उसमें बहुत सारे इसमें अनाज होते हैं, कुछ इसमें दालें होती हैं जो इसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करती हैं, कुछ इसमें तिलहनी चीजें लगती हैं, तो वो भी हमारा अपने रसोई की जरूरत को पूरा करता है। तो इस तरह से 9 अनाज खेती हमारा खरीफ में और 9 अनाज खेती हमारा रबी में, इस तरह से साल में 18 तरह के जो अनाज है वो हमारे रसोई में आता है, और हमारे शरीर के सारा कोई भी डेफिशिएंसी है वो नहीं होती फिर, क्योंकि वो जो भी पोषक तत्व हमारे शरीर को चाहिए वो इन 18 तरह के अनाजों में होता है। तो ये 2 सीजन हमारे यहाँ होते हैं, रबी और खरीफ। और इसमें बहुत बड़ी बात ये है कि एक तो ये मिश्रित रूप में खेतों में उगते हैं, एक दूसरे को कोई नुकसान नहीं करते, और बल्कि कुछ जमीन में छोड़ जाते हैं, और तीसरा लाभ एक ये है, इसमें कोई भी पेस्टिसाइड और ये जो रसायन है उसमें डालने की आवश्यकता नहीं रहती। ये कम उपजाऊ मिट्टी में भी पैदावार देते हैं और इससे जो हमारा पर्यावरण है उसको भी बहुत लाभ होता है। और सबसे बड़ा लाभ जो मैं समझ पाया हूँ आखिरी में, वो ये है कि वो हमारे शरीर के लिए पूरी तरह से औषधि है। और ये जो आज हम हॉस्पिटल में भीड़ देख रहे हैं, अगर मेरे देश में सभी लोग ये श्री अन्न का इस्तेमाल करना शुरू कर दें, तो मुझे लगता है ये हॉस्पिटल का भीड़ कुछ ही समय में ये बहुत कम हो जाएगी, बहुत कम बीमारियां आएंगी, लोग स्वस्थ रहेंगे और लोग ये खाने से खाना भी कम पड़ेगा। क्योंकि सुबह अगर हम लोग दो रोटी खा लेंगे तो लंच तक भूख नहीं रहेगी, हमको शाम को ही भूख आएगी, शरीर को पूरा पौष्टिकता प्रदान होगी और हमारा और भी खर्चा बचेगा, हमारा समय बचेगा, हम लोग मजबूत होंगे, ऐसा मेरा मानना है श्री अन्न के बारे में।
0: नेकराम जी, आपने कितनी सारी बेनिफिट्स हमें बताई, कितनी सारी पौष्टिकता की बात कहें या स्वास्थ्य की बात कहें या पर्यावरण को जो मदद मिलती है इन श्री अन्न को उगाने और खाने से, इन सब के बारे में आपने बताया, लेकिन मैं जानना चाहूंगा आपको पर्सनल क्या बेनिफिट हुआ है, आपको व्यक्तिगत रूप में, क्या आप मिलेट्स का ही उपभोग करते हैं, क्या आप वही भोजन करते हैं, आपकी दिनचर्या का कैसा है मिलेट्स के साथ कनेक्शन?
1: देखिए, मैं आपको बताऊं बात कि मेरे घर में पिछले 15 साल से चीनी का कोई इस्तेमाल नहीं होता है, मेरे घर में पिछले 15 साल से चाय पत्ती का इस्तेमाल नहीं होता है। चाय बनाते हैं हम लोग, मिलेट टी बनाते हैं। आपको कभी मौका मिले, हमारा हिमाचल में तो ये चाय प्रसिद्ध हो गई, हमने काफी पहले से इसको शुरू किया था और कोविड के दौरान तो हमने बहुत सारे लोगों को इसको पिलाया, डॉक्टरों को पिलाया, हॉस्पिटल में जा करके हमने थर्मस में इसको डाल करके लोगों को बोला, डॉक्टरों को बोला ये पियो, ये बहुत सारा कैल्शियम इसके अंदर है, 344 मिलीग्राम कैल्शियम है प्रति 100 ग्राम, आप ये 2 कप पी लीजिए, आपको ब्रेकफास्ट करने का जरूरत नहीं है, ये आपके शरीर को पूरा एनर्जी देगा और आपका पाचन तंत्र अच्छा रहेगा और ये आपके शरीर को जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो उसका बढ़ाएगा। मेरे घर में सुबह चाय बनती है तो ये सब जो हमारा अद्भुत अनाज है, हमारा जो फिंगर मिलेट बोलते हैं इसको, रागी बोलते हैं शायद आपके राजस्थान में, हमारे यहाँ मंडुआ बोलते हैं, कोदरा बोलते हैं, तो उसी का हम लोग बनाते हैं, ये सब चाय बनती है और बहुत घरों में आज सैकड़ों घरों में यही चाय बनना शुरू हो गई। और इससे ये सारे लाभ हैं कि हम लोग जो दूसरा चाय जिससे बहुत सारा प्रॉब्लम आ सकती है, गैस्ट्रिक हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, हमें अच्छा नहीं लगता, ये सब अनाज है, श्री अन्न है, ये खाने से हमें लाभ होगा। इसमें कुछ ड्राई फ्रूट्स भी हम लोग कूट करके डाल देते हैं और बाद में बिना छाने उसको पी लेते हैं। और मेरी उम्र 60 साल है, मैं आज भी लगभग 14 से 16 घंटे काम करता हूँ, लगातार सफर में रहता हूँ और 2-4 घंटा 5 घंटा मेरा कहीं ना कहीं कोई लोगों के साथ वार्तालाप होता है तो मैं थकता नहीं हूँ। और मेरे घर में कोई बीमार नहीं होता, हम लोग कोई दवा का इस्तेमाल नहीं करते और मेरे खेतों में कोई केमिकल नहीं आता बाहर से, कोई भी जो मेरा जो इनपुट कॉस्ट है वो 0 है और जो भी है वो सब आउटपुट है। मेरे पास देसी अपना गाय है, उसी का गोबर और गोंतर से हम लोग सारा कुछ कीट नियंत्रक बनाते हैं, कीट नाशक नहीं, हमें किसी भी कीट को मारने का अधिकार नहीं है, सिर्फ अपने खेत में वो ना आए वहां से भगाने के लिए हमारे पास बहुत सारी औषधियां हैं जिनको हम लोग जो कौ यूरिन है उसमें उबाल करके उसका स्प्रे करते हैं। मेरा अपना आम का बगीचा है, लीची है, अनार है, सब्जियां लगाते हैं उसमें सब ये हम लोग स्प्रे करते हैं और पौधों को बहुत ताकत मिलती है और ये बेनिफिट है सभी जो मुझे इससे मिले हैं जी।
0: आपने जितने सुंदर तरीके से चित्रण किया आपके बगीचे का, आपके अनाज का, मुझे तो मन कर रहा है कि मैं अभी पहुंच जाऊं और मुझे लगता है हमारे श्रोता साथियों को भी ऐसा मन करेगा कि कभी ना कभी हिमाचल जाए और नेकराम जी के बगीचों का जरूर दौरा करे।
1: मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर कोई आएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा जी।
0: नेकराम जी, ये जो एक आपने भी बात कही कि इसमें लोगों का स्वास्थ्य भी बना रहता है आदि आदि। और मैं तो ईश्वर से यही प्रार्थना भी करूंगा कि आपके परिवार में इसी प्रकार से निरोग बना रहे, आप सभी स्वस्थ रहे, आरोग्य रहे आपके परिवार में। लेकिन ये चीज हर घर तक कैसे पहुंचे, हर घर तक, हर युवा पीढ़ी तक, बच्चों तक कैसे पहुंचे जिनको आज पिज्जा, बर्गर, हॉटडॉग और ऐसे फास्ट फूड खाने की आदत पड़ गई हो, उनको श्री अन्न तक लाने के लिए क्या लगता है आपको, क्या करना चाहिए हमें?
1: देखिए, एक तो ये चीज जो है ये सरकार के करने का काम है। ये हमारा बच्चों का पढ़ाई के सिलेबस में आना चाहिए पहली बात। हमारे स्कूलों में, कॉलेजों के अंदर ये जो है उसमें प्रैक्टिकली रूप में इसका शिक्षा दी जानी चाहिए। उनमें क्यारियों में स्विंग होना चाहिए। मैं पिछले 15 सालों से इन सब कामों में लगा हूँ। मेरा कॉलेज में मैं जा करके वॉलंटियरली प्रिंसिपल से बात करके टीचर्स को, लेक्चरर को, बच्चों को ये सब बातें करता कि कैंसर क्यों हो रहा है, हमारा डायबिटीज का लेवल यहाँ भी बहुत बढ़ रहा है हिमाचल में, डायबिटीज क्यों हो रहा है। तो मैं बारीकी से जो पूरी तरह से ये साइंटिफिक है वो मैं बच्चों को बताता हूँ। उसमें बहुत सारे जो हमारे टीचर्स लोग हैं उन्होंने इस जो श्री अन्न है उसको उगाना शुरू किया। अभी इस साल बहुत सारे स्कूलों के अंदर अभी तक मैं ये श्री अन्न के जो बीज है मैं बांट चुका हूँ। 1-2 घंटा लेक्चर बच्चों के साथ कर चुका हूँ। मुझे अब बहुत सारे स्कूलों से बुलाते हैं, मॉर्निंग असेंबली में दिन में बच्चों से बात होती है। और काफी स्कूलों में वो जो है हफ्ते में 2-3 दिन मिलेट खाना बनेगा, ये सब प्रक्रिया शुरू हो गई है। और वो मुश्किल काम कुछ भी नहीं है, ये सब संभव है। सवाल यही है एक सरकार का आदेश हो जाए ये करना है। हमारा जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है उसमें ये मैंडेटरी होना चाहिए। हमारा जो ICDS है, बच्चों को जो भोजन मिलता है छोटे बच्चों को, वहां पर ये होना चाहिए। क्योंकि वहां पर मुझे बहुत दुख होता है कि जो तेल हम लोग पिछले 10-15 सालों से छोड़ दिया है वो तेल ICDS में आ रहा है। जो चीजें, जो बिस्किट, जो मैदा वाला है हमने 15 साल पहले छोड़ दिया, वो छोटे बच्चों को उसमें दिया जा रहा है। ये सब बैन होना चाहिए धीरे धीरे। और उसमें हम लोग जब छोटे थे, हम लोग पढ़ते थे तो हमें चना दिया जाता था, तो चना को भून करके ऐसे करके स्कूल में आता था। दालें, कुछ दालें उनको रोस्ट करके स्कूल में दिया जाता था। तो ये सब हो सकता है और ये सरकार के करने का है काम। अगर सरकार इसको ऐसे करे, हम लोग तो अवेयरनेस ला सकते हैं जनता में, मगर सरकार अगर आदेश करे तो ये सारा पालन, ये सारी संस्थाएं। कल भी मेरा जो लेक्चर था उत्तराखंड स्टेट के, वहाँ बहुत बड़ा यूनिवर्सिटी है और बहुत बड़ी एक संस्था है, उन सबको मैंने ये सारी बात कही कि यूनिवर्सिटियों को भी आगे आना चाहिए, सरकार स्कूल में दो और इस तरह से इसका पब्लिसिटी होगी और कोई आदमी बीमार नहीं होना चाहता, सब स्वस्थ रहना चाहते हैं। मगर ये शिक्षा हमारी खत्म हो गई है। मैंने बचपन में पढ़ा था स्वास्थ्य ही धन है, हेल्थ इज वेल्थ, परंतु मैंने जब तक पढ़ाई फारग की तो मैं सब पूरा गंद खाता रहा। बाद में जाकर के मुझे समाज में ये लोगों से कुछ प्रेरणा मिली, बुजुर्गों से, वो शिक्षा मेरी जिंदगी में काम आई और तब जाकर के मैं इधर को मोड़ा। और आज मेरी 60 साल मेरी उम्र है, मैं कभी थकता नहीं हूँ और मेरे जो ऊर्जा है वो कम नहीं है। जी
0: नेकराम जी, ये जो आपने बताया कि सरकार की तरफ से इस पे बहुत बड़ी पहल होनी चाहिए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है घरों में जो सरकार है उनकी भी इसमें बहुत बड़ी पहल होनी चाहिए। और घरों का सरकार मतलब मैं हमारी माताओं बहनों के ओर ध्यान खींचवाना चाहता हूँ, क्योंकि घर का जो चूल्हा होता है, जो घर का इंजन होता है, वो माताओं बहनों के हाथ में होता है। और राशन पानी क्या आना है, घर में नहीं आना है, वो भी उनके हाथ में होता है। अगर उन तक ये बात पहुंच जाए कि ये खाने से आपका परिवार ज्यादा सेहतमंद रहेगा, बच्चे ज्यादा सेहतमंद रहेंगे, तो शायद ये चीज, ये परिवर्तन जल्दी हो सकता है, ज्यादा सरल तरीके से हो सकता है। जैसे आपने भी बताया कि आपके गांव में किस प्रकार से महिलाओं ने मुहिम को समझा और उसमें योगदान दिया, मैं समझता हूँ ये भी जो है महिलाओं के लिए एक बहुत बड़ा रास्ता हो सकता है अपने घर में स्वास्थ्य को वापस लाने का, आरोग्य को वापस लाने का।
1: इसमें देखो ना, बहुत आसान है, हमारे पास अच्छा सिस्टम है, हर जगह पे पंचायत है और वहाँ पे ग्राम सभाएं होती हैं, है ना, और वहाँ पे एक सरकारी आदमी भी होता है अगर ये गवर्नमेंट का ऊपर से सख्ती से आदेश हो जाए, ये उसमें एजेंडे में

0: हो कि भैया ये ग्राम सभा में ये एजेंडा भी रहेगा कि जो सीरियन है उसको खाने के क्या क्या लाभ हैं, ठीक है। वो सब जब वहां एजुकेशन दी जाएगी, बहुत सारे जो महिला मंडल हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं, काफी सारे और FPO हैं, FPC हैं, कितनी सारे, हम लोग तो ये सब कर रहे हैं लगातार, परंतु जब ये कोई आदेश उसमें आ जाएंगे ना, एजेंडे के रूप में आ जाएंगे, तो ये मैंडेटरी हो जाएगा, तो तब वो वहां पर पूरा इसका प्रचार। कई बार हमने ये देखा, मैं किसी पंचायत में गया, वहां ग्राम सभा है, हमने कहा भैया मुझे कुछ ये बात करनी है, कुछ सीट भी देने हैं, तो कई बार ये होता है कि अरे भैया नहीं, अभी हमारे एजेंडे में नहीं है, हमें तो ये जो एजेंडा है ये बात करनी है। तो इसलिए ये सब एजेंडे के अंदर आना चाहिए, और वहां से जब ये ऑर्डर होगा तो नीचे उनको फॉलो करना पड़ेगा, और ये बहुत आसान है ये सारी चीजें। और मैंने कहा ना कि ये जो हमारा PDS है डिपो में, ये मिलना थोड़ा थोड़ा शुरू हो जाए तो लोग खाएंगे इसको। अब तो लोग जागरूक हो रहे हैं, और काफी सारी जागरूकता हमारे देश में आ गई है, और हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं वो बहुत सारा इस पर बात करते ही रहते हैं, और उससे काफी बदलाव आ रहा है। तो ऐसा नहीं है कि ये बदलाव नहीं आएगा, वो आएगा, बस थोड़ा सा एक और धक्का देने की आवश्यकता है।
1: जी, ये जो आपने कहा कि जरूर बदलाव आएगा, ये उम्मीद मैं भी रखता हूँ और मैं समझता हूँ जो हमारे श्रोता साथी हैं वो भी रखते होंगे। लेकिन श्रोता साथियों, आपसे यही उम्मीद रहेगी कि थोड़ा जानकारी हासिल करें, थोड़ा पढ़ें, थोड़ा पूछें, और ये मिलेट्स का हमारे जीवन के साथ क्या ताल्लुक है इसको समझें। हो सकता है केवल आपके चुनाव मात्र से, आपके प्लेट की सजावट मात्र से आप एक बहुत बड़ा परिवर्तन पूरे समाज में ला सकते हैं। नेकराम जी, मुझे आपसे ये जानना था, ये जो आपको टाइटल मिला है नव अनाज के नायक, इसमें ये नव अनाज कौन कौन से हैं, क्या आप हमारे श्रोताओं को बताना चाहेंगे?
0: जी बिल्कुल। इसमें देखो ये जो है पांच तो हमारे जो पॉजिटिव मिलेट हैं, है ना, जिसमें आपका ओडो मिलेट है, और दूसरा रागी है, तीसरा आपका कंगनी है, चौथा आपका इसमें बार्नयार्ड मिलेट है, पांचवा आपका प्रोसो मिलेट है, और इसके अलावा दूसरे मिलेट में आपका जवार है, अब बाजरा है, उसके साथ साथ इसमें जो एमरेंथस है जिसको रामदाना कहते हैं वो हो गया, और उसके साथ में एक दाल, कोयसा दाल, जो उसमें सहफसल के रूप में नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है, और कुछ एक इसमें तिलहन भी बीच में हम लगाए। तो इस तरह से ये 8, 9, 10 इस तरह के अनाज हैं, उसमें से कोई एक आध मिस हो सकता है, परंतु 9 अनाजा हमारे यहाँ पर क्या होता था कि 9 तरह के अनाज के ग्रंथियां भी बनाते थे, और जब बच्चों का जन्मदिन होता था तो उस दिन भी उसका इस्तेमाल हुआ करता था, और ये हमारे हमारे कल्चर है, हमारे कल्चर के अंदर भी ये चीजें रही हैं।
1: इन 9 अनाजों में से आप जो इनको आप यूज भी करते हैं अपने डेली लाइफ में, आपका सबसे प्रिय अनाज कौन सा है? व्हाट इज योर फेवरेट?
0: सबसे प्रिय मेरा है बार्नयार्ड मिलेट, जिसको शिव चावल कहते हैं, मेरा सबसे फेवरेट है, एक नंबर पे। दूसरे नंबर पे मेरा फॉक्सटेल है,
1: ओके,
0: कांगनी,
1: लेकिन
0: जो
1: इनकी
0: पूरी तरह से
1: खासियत क्या है?
0: एंटीटॉक्सिन है,
1: ओके, फॉक्सटेल जो है
0: इसका खासियत
1: एंटीटॉक्सिन है।
0: जो शिव चावल है ये पूरी तरह से बहुत ही सुपाच्य है, और ये थोड़ा सा खाने से आदमी रच जाता है, और ये देर तक भूख नहीं लगती, इसका बहुत बड़ा ये लाभ है। और जो ये फॉक्सटेल मिलेट है, जिस वक्त चिकन पॉक्स जैसी बीमारी का कोई इलाज नहीं था, तो गांव में हमारे जो बैत लोग हैं इसी का ही मीठा भात गुड़ डाल करके खिलाते थे, और तब बोलते थे कि अच्छा अब ये सारा बीमारी बाहर हो गई। तो हम लोग भी बचपन में जब बीमार होते थे तो बोलते थे शरीर में छोटे छोटे दाने बाहर आ गए, तो बोला बस अब ये नहीं मरेगा, अब ये बच जाएगा, तो बिस्तर पे अभी छिड़कते थे उसको। तो हमारे यहाँ इसको बहुत ज्यादा और स्टोर करके रखते थे पहले, और आज भी कई घरों में 50 साल पुराना फॉक्सटेल मिलेट है, और फिंगर मिलेट है, और एमरेंथस है, ये अभी भी बचे हुए हैं घरों में।
1: ये जानकर के ताज्जुब होता है कि 50 साल से भी रखा हुआ जो अनाज है उसको यूज किया जा सकता है। भारत देश की महिमा का क्या वर्णन करे समझ ही नहीं आता। ये वही देश है जहां पर ये श्रीअन्न बाहुलता में एक समय पे उगाया जाता था। धीरे धीरे वैश्वीकरण और पश्चिम की देखा देखी हमने हमारे श्री अन्न को एकदम अनदेखा कर दिया और आज हम वापस से उस राह पे जाने की कोशिश कर रहे हैं। नेकराम जी, आप बहुत जगहों पे जाते हैं, आपने कहा आप कई राज्यों का भ्रमण भी करते हैं, लोगों से मिलते भी रहते हैं, आप अलग अलग भारत देश के प्रांतों में जाते हैं, लेकिन क्या कोई एक ऐसी बात है अलग अलग प्रांतों में जो भारत को भारत बनाती है, जो आपको लगता है कि ये बात जो है ना वो सारे देश में एक ही जैसी है, वो कौन सी एक बात होगी?
0: आपने बड़ा अच्छा सवाल किया और मैं भी इस बात को समझता हूँ। मैंने बहुत जगह जा जा करके एक चीज देखी कि हमारे यहाँ जो अपना जो हमारा संस्कृति रही है वो जो किसी तरह का बच्चों का बच्चे पैदा होना उसके बाद उनका कुछ करना क्या करना गीत हैं अलग अलग तरह के और अलग अलग तरह का हमारा जो खाने का जो हमारा कल्चर रहा है और जो हमारा एग्रीकल्चर का जो सिस्टम रहा है वो आप चाहे आप कहीं भी चलो आप दक्षिण में चले जाओ तो दक्षिण में भी आपको रागी का जो है डोसा मिलेगा, हमारे हिमाचल में रागी का चिलड़ा मिलेगा, नाम अलग है मगर वो बात एक ही है। और इसके साथ साथ ये सारी चीजें हमारा कुछ हमारा धार्मिक संस्कृति के साथ भी जुड़ा हुआ है, हर जगह पे देवता हैं, देव गांव के हैं अपना ऐसा कुछ भी मैंने देखा। और जब भी कोई अनाज पैदा होता है उसकी बालियां पहले अपने किसी भगवान को वहां पे उसको अर्पित करते हैं। हमारे यहाँ पर मैंने देखा पूरा हिंदुस्तान भर में जो धरती माँ है उसका पूजा होती है सभी जगह, और जो हमारा गाय है गाय की पूजा होती है। ये मैंने चीजें बहुत सारी चीजें देखी और हमारा जो कुछ कल्चर है वो भले ही भाषा अलग है मगर वो जिंदगी जीने के लिए बहुत सारी प्रेरणा दायक उसमें बातें होती थी जो आज बहुत हद तक खत्म हो रही है वो नहीं है। और ये मैंने देखा बाहर भी जाकर के, हम नेपाल जाएं हम भूटान जाएं तो हम लोग वहां भी देखते हैं वहां पर भी जो है ये सब जो हमारे देश के साथ मिलते जुलते राज्य देश हैं उनमें भी इसका प्रभाव है। और आपके मैं राजस्थान में मैं कई जगह गया हूँ तो मेरे बड़े मित्र भी हैं वहां से, तो हमने देखा कि वहां भी ये सब जो पूरा देश के अंदर जो हिमाचल में है कहीं ना कहीं वो चीजें राजस्थान के अंदर भी मानी जाती हैं। वैद्य लोग हैं तो राजस्थान में भी थे हिमाचल में भी थे, बीमारियों का इलाज ढूंढते थे तो वो सब जगह है। तो ये सारी चीजें जो है हमारा देश को एक करती हैं, ऐसा मेरा मानना है।
1: देश को एक करने की जो आपने बात कही कि संस्कृति, जीवन शैली, प्रकृति के प्रति जो सम्मान है, जो आदर है, सत्कार है, सद्भावना है, ये पूरे देश को एक करने वाला एक सूत्र आपको लगता है। लेकिन हमें लगता है देश को एक करने वाला एक और सूत्र है और वो है आपके जैसे ओजस्वी तेजस्वी देश के नागरिक जो पूरे देश की प्रगति के लिए बहुत बहुत मेहनत करते हैं। लेकिन आपके सामने समस्याएं भी बहुत आई होंगी जिनका आपने पहले भी हमारे साथ जिक्र किया। मुझे एक चीज आपसे ये जानना था कि जब भारत सरकार ने आपको पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया
0: जी,
1: तो क्या आपके ऊपर जिम्मेवारियां बढ़ गई, आपके लिए क्या जीवन थोड़ा ज्यादा व्यस्त हो गया है, क्या आपको अभी भी लगता है कि आप वही वाले पुराने नेकराम जी हैं? क्या है अभी के नेकराम जी में और तब के नेकराम जी में फर्क?
0: नहीं, फर्क कुछ नहीं आया, मैं वही नेकराम हूँ, मैं किसान हूँ और पूरा बिल्कुल धरती में ही हूँ। और जब मुझे ये सम्मान मिला, मैं तो इससे पहले भी बहुत मेरा ये शौक था कि मैं अपनी जिंदगी में एक तो ये जो हमारा जो मूल अनाज है पौष्टिक अनाज है इसको मैं कितना फैलाऊंगा वो मुझे बहुत खुशी थी। और मैं अपने जो जंगल है पेड़ पौधे हैं लोगों में ये भावना पैदा करूं, स्कूल कॉलेज के बच्चों के माध्यम से कहीं ना कहीं उसका जो महत्व है वो मैं लोगों को ये सारी चीजें मैं बताऊं, और ये मेरा ऐसा कुछ था। परंतु जब से ये मुझे ये सम्मान जो ये अनाउंस हुआ है 25 जनवरी 2023 के शाम जब ये अनाउंस हुआ और मुझे हमारे जो डिप्टी कमिश्नर है उनका फोन आया और हमारे चीफ मिनिस्टर हैं उनका फोन आया मुझे, तो मुझे ऐसा लगा कि अरे मैं जो काम कर रहा था और मेरे काम को सिर्फ मेरे कुछ ही जो गुरुजन लोग हैं वो बहुत मेरी वो करते थे मुझे बहुत आशीर्वाद देते थे कि तुम ठीक कर रहे हो। बाकी तो बहुत सारे लोग बोलते थे ये पागल है, ये ठीक नहीं है, वो हमें पीछे की तरफ धकेल रहा है और दुनिया तो चांद पर जा रही है। जब मुझे ये सम्मान मिला, इससे क्या हो गया, अभी मैं जनवरी जो 25 जनवरी से अभी मैं अपने घर में नहीं रह पा रहा हूँ। पहले अगर मैं 12 घंटे लगभग काम करता था तो अब मुझे 14-16 घंटे करना पड़ रहा है काम। और मैं कल भी रात तक हम लोग मीटिंग में थे, सुबह आज मैं 4 बजे जागा हूँ और 4 बजे से मैं चला हूँ और रास्ते में दो जगह दो ग्रुप के साथ हम लोग मीटिंग किया, लोगों को पता चल गया कि मैं इधर आया हूँ और तब उन्होंने कहा कि यहाँ भी आप रुकें और हमें कुछ आइडिया दें, तो वहां पर बात हुई। और मेरे पास तो सीड मेरे साथ रहता है कुछ कुछ, और दो दो मुट्ठी बीज हम लोग बांटते रहते हैं और वो मैंने दिया, मुझे बहुत खुशी होती है इस बात की। तो बस यही बदलाव आया है कि मेरी व्यस्तता ज्यादा बढ़ गई और अब जो लोग ये श्री अन्न को अच्छा नहीं ज्यादा मानते थे, अब वो लोग भी बोलने लगे कि नहीं नहीं ये बहुत बढ़िया है, हम भी उगाएंगे, क्योंकि अब वो एक मोर लग गई तो इसका बहुत बड़ा लाभ हुआ।
1: आपकी तपस्या ने न केवल लोगों के विचारधारा में बदलाव लाया लेकिन पूरे विश्व के स्तर पे भी आज इस श्री अन्न का नाम हो रहा है, उसके लिए जागरूकता फैलाई जा रही है, इसके लिए आपकी तपस्या बहुत मायने रखती है। लास्ट में मैं नेकराम जी आपसे ये पूछना चाहूंगा कि आपका अगर कोई एक ऐसा मैसेज है, कोई एक ऐसा संदेश है जो आप हमारे श्रोताओं को देना चाहेंगे, क्या होगा वो एक संदेश?
0: जी मेरा संदेश यही है कि अभी हम लोग जहाँ पर पहुंचे हैं है ना, वो जो है हम लोग सही नहीं है, खतरा है। हमने पानी गंदा कर दिया, हमने हवा गंदी कर दी, मौसम में बदलाव ला दिया, हमने नेचर को हमने डैमेज कर दिया पूरी तरह से। और खाने की तो बात छोड़ो, हमारी थाली में जो भोजन आ रहा है वो अच्छा नहीं है, मगर हमें इसकी जानकारी नहीं है कि हम क्या खा रहे हैं। मेरा एक ही सुझाव है जो मेरे भाई लोग हैं और जो खास करके जो हमारा आने वाली पीढ़ी है कि बैक टू बेसिक, बैक टू नेचर, हम लोग नेचर से जुड़े, हम लोग ये जो श्री अन्न है हमारे पौष्टिक अनाज है, हम इनको समझें, ये हमारे अनाज ही नहीं है, ये हमारी संस्कृति भी है, तो ये बहुत बड़ी बात है। और हमारा खान पान अच्छा होगा तो हम शारीरिक तौर से स्वस्थ होंगे, मानसिक तौर से भी स्वस्थ होंगे। अगर हमारा खान पान सही नहीं होगा तो हम शारीरिक तौर से भी बीमार और मानसिक तौर से भी हम लोग बीमार होंगे और हम देश की तरक्की में कोई योगदान नहीं दे सकते। इसलिए हमें वापिस आना पड़ेगा अपने जो परंपरागत हमारे जितनी भी चीजें थी जो हमारे ऋषि मुनियों ने तपस्या करके खोज खोज करके ये सारी बातें कही थी वो आज भी सत्य है। इसलिए हमें उन सब रास्तों पे चलना चाहिए, अपना जो हमारा प्रकृति है हमें उसको संवारना चाहिए और सबसे जरूरी है हमारा स्वास्थ्य, हम उसका ध्यान रखें। हमारा बड़ा महल ना हो, हम झोपड़ी में ही रहें, मगर हमारे पेट में जो अन्न जाए वो पूरी तरह से सजीव होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए और इस तरफ सब लोग आगे मुड़े। और यही बहुत बड़ा हमारा शायद धर्म भी होना चाहिए कि हम सबको ये शिक्षा दें, अच्छी शिक्षा दें और अच्छा जो अनाज है उसका बीज हम लोग बांटें, अच्छा पर्यावरण होगा तो हम लोग सब अच्छे होंगे। ये मेरा संदेश।
1: नेकराम जी आपने अपने संदेश में पूरे समाज को कवर कर लिया, हर एक के लिए कुछ ना कुछ इसमें था, किसानों के लिए था कि आप श्री अन्न उगाएं, तो दूसरे नागरिकों के लिए था कि श्री अन्न को अपनाएं। जैसे मैंने अपने पर्सनल लाइफ में ये एक छोटा सा रेजोल्यूशन लिया है कि हफ्ते में कम 2 दिन मैं केवल श्री अन्न का उपभोग करूंगा, तो उससे मैंने देखा है कि मेरे पर्सनल लाइफ में भी चेंज आया है और ऐसा लगता है कि मैं देश की प्रगति में थोड़ा सा हाथ बटा रहा हूँ। श्रोता साथियों, बहुत बड़ा कुछ अगर नहीं कर सकते तो केवल अपने प्लेट में जो भोजन आ रहा है उसके चुनाव का बदलाव कीजिए, केवल श्री अन्न को थोड़ा सा टाइम दीजिए, थोड़ा सा हिस्सा दीजिए, 7 दिन 3 बार आप भोजन करते हैं उसमें से कोई एक दिन डेडिकेट कर दीजिए श्री अन्न के लिए, तब मैं समझूंगा कि आपने इस एपिसोड से बहुत बड़ा फायदा लिया है और देश के सेवा में भी ये आपका एक बहुत बड़ा योगदान होगा। बाकी नेकराम जी जाते जाते आपके साथ एक रैपिड फायर राउंड खेलना चाहेंगे, जिसमें हम आपसे एक सवाल पूछेंगे और आपको एक शब्द में या एक वाक्य में उसका जवाब देना होगा। तो आप तैयार हैं?
0: चलिए ठीक है,
1: बिल्कुल। तो शुरुआत करते हैं, श्री अन्न क्या है?
0: वो एक हमारा संस्कृति है।
1: वाह, श्री अन्न हमारी संस्कृति है, बहुत बढ़िया। सेवा क्या है?
0: सेवा हमारा धर्म है।
1: हिमाचल प्रदेश क्या है?
0: हिमाचल प्रदेश हमारा एक भौगोलिक इकाई के हिसाब से वो एक राज्य है और जिसमें हम लोग रह रहे हैं वो हिमाचल प्रदेश।
1: और भारत क्या है आपके लिए?
0: बहुत सारा हमारा जो राज्य है उनको मिलाकर के हमारा एक भारत है और उसमें हम सब लोगों की शक्ल दिखती है।
1: तो आईना है आपके लिए भारत, जिसमें हर एक की शक्ल दिखती है।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: बहुत सुंदर। शांति क्या है आपके लिए?
0: शांति एक वो चीज है जो जिसको पास आ जाए, मिल जाए, वो सबसे बड़ा धनवान मैं उसको मानता हूं।
1: तो शांति आपके लिए वैभव है, धन है।
0: बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत बड़ा चीज है,
1: कीमती है, बेशकीमती है,
0: कीमती है। बिल्कुल
1: जी। प्रकृति क्या है?
0: प्रकृति एक परमात्मा का एक रचा हुआ ऐसा एक भौगोलिक एक ऐसी इकाई है जिसमें भगवान ऊर्जा देते हैं, उसमें हरियाली आती है, वहीं से हमारे लिए फ्यूल आता है और हमारी गाड़ी चलती है, वो प्रकृति।
1: तो इसका मतलब प्रकृति आपके लिए परमात्मा का दिया वो तोहफा है जिसका हम इस्तेमाल कर रहे हैं।
0: बिल्कुल।
1: आखिरी सवाल आपसे, नेक राम कौन है?
0: ये तो मेरा एक नाम है जिससे मुझे जाना जाता है, परंतु ये सब ईश्वर का ही एक, मैं छोटा सा कण हूं, एक अंश हूं, और मुझे वहीं जाके वापिस मिलना है। नाम तो सिर्फ मेरा इस मृत्यु लोक में एक मेरे पहचान के लिए नाम है मेरा, ऐसा मेरा मानना है।
1: नेकराम जी, आपने बहुत आध्यात्मिक रीति से अपने बारे में बताया कि आप एक अविनाशी सत्ता है जिसपे नाम तो केवल टेम्पररी लगाया गया है, इसलिए नाम, पद, पदवी, इनके ऊपर आपका इतना ध्यान नहीं जितना आपका ध्यान आपकी सेवा पर है, आपके कर्तव्य पर है।
0: जी।
1: ये मैसेज आपने जो हमारे सभी श्रोताओं को दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद नेकराम जी। मैं
0: जी,
1: समझता हूँ कि हमारे सभी श्रोता साथी आज बहुत खुद को धनवान समझ रहे होंगे कि नेकराम जी ने अपने कीमती समय में से हमारे लिए थोड़ा सा समय निकाला।
0: आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवादी हूँ कि ये सब जो मुझे समझ है ये सब आप जैसे बड़ों का कहीं ना कहीं आशीर्वाद है, और मैं अपने आप में कुछ भी नहीं हूँ और ये सब ईश्वर की कृपा है। आप सब जो बड़े लोगों का एक सहयोग है, कहीं ना कहीं आशीर्वाद है, तो ही मैं हूँ, अदरवाइज मैं अपने आप में कुछ भी नहीं हूँ। तो आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद
1: जी। श्रोता साथियों, अब तक आप सुन रहे थे एक बहुत सुंदर बातचीत नेकराम शर्मा जी, जो कि पद्मश्री सम्मान से सम्मानित हैं और उन्हें कहा जाता है नव अनाज के नायक। तो नव अनाज के नायक ने आज हम सभी को नायक बनने का एक मौका दिया है, छोटे छोटे बदलाव करके हमारे जीवन में, हमारे प्लेट में कौन सा भोजन आ रहा है उसका चुनाव करके हम भी देश के आगे बढ़ने में एक बहुत बड़ा भूमिका निभा सकते हैं। मिलेट्स को अपना करके, श्री अन्न को अपना करके हमारे जीवन को सुधार सकते हैं, सेहत को सुधार सकते हैं। नेकराम जी की ये उम्मीद, ये आशा और उनका ये परिश्रम, मैं समझता हूँ आपके दिल तक पहुंच रहा है। यशस्वी भारत कार्यक्रम का ये परिश्रम भी आपके दिल तक पहुंच रहा है, और अगर आपने अपने प्लेट में एक भी बदलाव किया आने वाले कुछ हफ्तों में, तो मैं समझूंगा आज का ये एपिसोड हमारा सफल रहेगा। यशस्वी भारत कार्यक्रम के साथ यूं ही जुड़े रहिएगा साथियों, एक और एपिसोड में हम आपके बीच में आएंगे एक और हस्ती के साथ। रेडियो मधुबन 90.4 FM, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और हाँ, श्री अन्न के मजे लेते रहिएगा। मैं इजाजत लेता हूँ आरजे शांतनु आपसे, दोबारा फिर से मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।

0: अहो ऐकलत का रेडिओ पुणेरी हो आमचा रेडिओ पुणेरी
1: सुनो सुनो अरे सुनो सुनो

0: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
1: जब हम भगवान को दोष देना शुरू कर देते हैं, दैट इज नॉट फेयर, बिकॉज पिता है, हम बच्चे हैं, वो कभी नहीं ये डिसाइड करेगा कि एक बच्चा ट्रेन ब्लास्ट का विक्टिम हो जाए और दूसरा बच्चा बिल्कुल ठीक है। एक पिता कभी ये नहीं कर सकता है। और अगर परमात्मा ये कर भी रहा है तो देन वी कैन क्वेश्चन ऑन व्हाट बेसिस। परमात्मा हमारी जीवन की यात्रा नहीं डिसाइड कर रहा है, हमारे अपने किए हुए कर्म, एंड दैट्स व्हाई थॉट्स लीड्स टू डेस्टिनी। उसमें सब थॉट्स जो अभी किए, जो बहुत सारे पहले, लेकिन वही थॉट्स अब उस डेस्टिनी को चेंज कर सकते हैं। अब जो हुआ हादसा, वो पिछले किसी कार्मिक अकाउंट की वजह से हुआ, लेकिन उस हादसे के बाद अब क्या करना है, एटलीस्ट दैट इज इन माई कंट्रोल नाउ।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 1।

0: पुनेरी आवाज ऐकण्यासाठी कर्ण आतुर झाले, पुनेरी आवाज ऐकण्यासाठी कर्ण आतुर झाले.
1: रेडिओ पुणेरी आवाज 107.8 FM, आनंदी रहा, आनंद लुटा.
2: नमस्कार रेडिओ श्रोतागण, प्रस्तुत है आपके पसंदीदा रेडिओ स्टेशन रेडिओ पुणेरी आवाज पर एक खास घोषणा. जी हाँ, हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं ज्ञान चिंतन, एक ऐसा प्रोग्राम जो आपको ज्ञान और सोच के नए आयामों से रूबरू कराएगा और बनाइए अपनी जीवन को खास. ज्ञान चिंतन केवल रेडियो पुनेरी आवाज पर, जहां हर आवाज है पुनेरी की पहचान. खुश रहो, खुशियां बांटो.
3: नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका मित्र विवेक जैन और आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM. हमेशा की तरह मैं आज फिर एक नया टॉपिक लेकर आया हूं और आज का टॉपिक है शुभ भावना और शुभकामना. हमारे जीवन में विचारों और भावनाओं का बहुत महत्व होता है. हमारी सोच और भावनाएं न केवल हमारे व्यवहार को प्रभावित करती हैं, बल्कि हमारे आसपास के वातावरण और संबंधों पर भी गहरा प्रभाव डालती हैं। जब हम किसी के प्रति शुभ भावना रखते हैं और उसे शुभ भावनाएं देते हैं, तो यह सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करता है जो जीवन को खुशहाल और आनंदमयी बनाता है. शुभ भावना का अर्थ होता है दूसरों के प्रति अच्छा सोचना और उनके प्रति मंगल कामना करना. जब हम किसी के प्रति स्नेह, आदर, करुणा और सहयोग की भावना रखते हैं, तो यह शुभ भावना कहलाती है. यह भावना हमें न केवल मानसिक रूप से शुद्ध और शांत बनाती है, बल्कि हमारे रिश्तों को भी मधुर बनाती है. शुभ भावनाएं हमें नकारात्मकता से दूर रखती हैं और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ावा देती हैं. शुभ भावना का विस्तार केवल हमारे परिवार और मित्रों तक ही सीमित नहीं रहता, बल्कि यह पूरे समाज और विश्व के प्रति हो सकती है. यदि हम हर व्यक्ति के प्रति शुभ भावनाएं रखें, तो समाज में प्रेम, भाईचारा और शांति का वातावरण बनेगा. शुभ भावना का अर्थ होता है किसी के सुख, समृद्धि, सफलता और अच्छे भविष्य की कामना करना. जब हम अपने प्रियजनों, मित्रों या किसी भी व्यक्ति के लिए अच्छे भविष्य की प्रार्थना करते हैं, तो इसे शुभ कामना कहते हैं. भारतीय संस्कृति में शुभ कामनाओं का बहुत महत्व है. त्योहारों, व्यवहार, जन्मदिवस और अन्य विशेष अवसरों पर हम एक दूसरे को शुभकामनाएं देते हैं, जिससे प्रेम और स्नेह का संचार होता है. शुभकामनाएं केवल औपचारिकता नहीं होती, बल्कि यह हृदय से निकलने वाली सकारात्मक ऊर्जा होती है जो व्यक्ति के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव डालती है. जब हम सच्चे मन से किसी के लिए शुभकामना करते हैं, तो वह ऊर्जा ब्रह्मांड में फैलती है और किसी न किसी रूप में उस व्यक्ति तक पहुंचती है. शुभ भावना और शुभकामना को जीवन में अपनाने के अनेक तरीके हैं. सभी के प्रति प्रेम और सहानुभूति रखें, दूसरों की सफलता और खुशी में सच्चे मन से प्रसन्न हों, किसी के प्रति ईर्ष्या, घृणा और द्वेष की भावना न रखें, नियमित रूप से प्रार्थना और ध्यान करें जिससे मन शुद्ध और सकारात्मक बने, छोटे छोटे अवसरों पर अपने प्रियजनों और मित्रों को शुभकामनाएं दें, अपने आसपास के लोगों की भलाई और कल्याण की कामना करें. शुभ भावना और शुभकामना जीवन को सुखमय और आनंदमय बनाती है. यह केवल शब्दों तक सीमित नहीं होती, बल्कि हमारे विचारों, कर्मों में भी प्रकट होनी चाहिए. यदि हम सच्चे मन से सभी के लिए शुभकामनाएं रखें और शुभ भावनाएं रखें, तो न केवल हमारा जीवन सफल होगा, बल्कि संपूर्ण समाज भी प्रेम, शांति और सद्भाव से भर जाएगा. ये था मेरा आज का चिंतन. फिर मिलूंगा एक नए चिंतन के साथ. बने रहें हमारे साथ पुनेरी आवाज 107.8 FM पर और सुनते रहें इसी तरह प्यार से. खुश रहें, खुशियां बांटे.
2: हम आशा करते हैं कि आज की ज्ञान चिंतन ने आपके मन में नई सोच और नए विचारों को जगा दिया होगा. साथियों बने रहें और अगले ज्ञान चिंतन में हम आपसे फिर जुड़ेंगे. रेडियो पुनेरी आवाज पर खुश रहो, खुशियां बांटो.
4: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार.
5: मेजोरिटी पीपल सिर्फ अगर अपने जीवन और अपने मन की एक्सरे करनी है, उस क्षण चेक करें जब सुबह उठते हैं. अगर सुबह उठते ही फर्स्ट थॉट आती है कि मुझे थोड़ा और सोना है, इसका मतलब मेरी जो 6 घंटे की 8 घंटे की नींद थी, मेरी उसमें रेस्ट और रिचार्जिंग नहीं हुई. क्यों नहीं हुई? शरीर सो रहा था, लेकिन मन अभी भी कंटिन्यूसली चल रहा था। मन की बात का समाधान नहीं मिला उसको। अब हमारा मन अगर उसको उसकी बात का समाधान नहीं मिलता है तो वो 5 दिन नहीं 5 साल चल सकता है उस प्रॉब्लम के साथ, 50 साल चल सकता है उस प्रॉब्लम के साथ। और अगर फिर भी समाधान नहीं मिला तो आत्मा शरीर छोड़ेगी, दूसरा शरीर लेगी और वो ही सोच और संस्कार अपने साथ लेकर जाएगी।
4: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

ख्वाब और हकीकत के फासले को कम करते हैं, नई जानकारियों से नए अवसर खड़े करते हैं। सुनते रहिए पुनेरी आवाज़ 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: नमस्कार, वेलकम टू अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज। सिस्टर शिवानी हमारे साथ हैं, वेलकम सिस्टर।
1: ओम शांति।
0: वेलकम टू बीइंग शक्ति।
1: थैंक यू सो मच
0: सिस्टर। लास्ट एपिसोड में आपसे बात हो रही थी कि अबाउट शक्ति एंड वीकनेस, तो मैं सोच रहा था कि ये अपने आप को वीक बोलना थोड़ा कंफ्यूजन ये हो रहा है कि यू फील देन यू स्टार्ट फीलिंग मोर वीक और अपने आप को कमजोर लगते कि क्या मैं इतना वीक हूं कि कोई कुछ बोल दे तो मुझे कुछ हो जाएगा। तो मैं समझ रहा था नेचुरल है, किसने बोला और मैं चिढ़ गया, सो व्हाट।
1: इसने बोला तो मैं चिढ़ गया, सो व्हाट नहीं, सो अ लॉट ऑफ थिंग्स।
0: छोटा बच्चा भी चिढ़ता है ना, जो खिलौना मांगता है नहीं दो तो चिढ़ जाता है, ये करो तो। फ्रॉम चाइल्डहुड ऐसे बाय नेचर है ना, उसको तो किसी ने नहीं सिखाया।
1: बाय नेचर वो आत्मा ने पिछले कॉस्ट्यूम से कैरी फॉरवर्ड किया ना, इसीलिए बच्चे भी तो अलग अलग तरह के होते हैं। कुछ बच्चों के लिए कहते हैं ये बच्चा बहुत शांत है, कुछ बच्चों के लिए कहते हैं ये बच्चा बहुत जल्दी जल्दी रोता है, कुछ बच्चों के लिए कहते हैं ये बच्चा ज्यादा गुस्सा करता है, किसी बच्चे के लिए कहते हैं ये बच्चा बहुत हसमुख है। बच्चे भी एक जैसे थोड़ी होते हैं। अगर बाय बर्थ होता है, व्हिच वी आर सेइंग कि बाय बर्थ कैसे आया, तो बाय बर्थ सारे आइडेंटिकल थोड़ी होते हैं, बाय बर्थ सारे अलग अलग होते हैं। क्यों हर बच्चा अलग अलग होता है? क्योंकि हर बच्चा क्लीन स्लेट नहीं स्टार्ट हो रहा। हमने सोचा बच्चा मीन्स स्टार्टिंग, इट्स नॉट अ स्टार्टिंग, इट्स ओनली अ न्यू बिगिनिंग आफ्टर अ कैरी फॉरवर्ड।
0: जैसे हम कैमरा में कट करते हैं शॉर्ट, बीच में अगर कोई डिस्टर्ब हो जाए फिर कंटिन्यू करते हैं।
1: जैसे हम 31 मार्च को कहते हैं ये साल पूरा हुआ, नया खाता शुरू हुआ, न्यू बिजनेस ईयर। लेकिन न्यू बिजनेस ईयर डजंट स्टार्ट फ्रॉम जीरो, न्यू बिजनेस ईयर स्टार्ट फ्रॉम द कैरी फॉरवर्ड ऑफ द प्रीवियस ईयर।
0: अगर न्यू बिजनेस जीरो से शुरू हो तो मेरी पिछली 20 साल की कमाई और मेहनत का क्या होगा?
1: वेरी इंपॉर्टेंट। तो मेरी पिछली 20 साल की कमाई और मेहनत का क्या होगा? अब कमाई हमारी दो तरह की हो सकती है, या तो हमारा बहुत प्रॉफिट था पिछले 20 सालों में, या लॉस था, इट डजेंट मैटर, स्टार्ट तो उधर से ही होना पड़ेगा। इट कैन नॉट बी कि हर 31 मार्च को हम 0-0 पे आ जाएं और स्टार्ट करें। सो इट कैन नॉट बी कि हर बच्चा 0-0 से स्टार्ट करे, अपनी बैलेंस शीट को एकदम फ्रेश स्टार्ट करे। हर बच्चा अपने पिछले 20 साल नहीं, लेकिन अपने पिछले सारे जन्मों का कैरी फॉरवर्ड संस्कार लेकर इस जन्म को स्टार्ट करता है। और इसीलिए बच्चे के अंदर भी हमें ये सारे संस्कार दिखाई देंगे, क्योंकि 2 साल पहले वो बच्चा एक 80 साल के शरीर में था, तो वो संस्कार तो दिखाई देंगे। अब आपने कहा समवन सेड समथिंग, आई गॉट डिस्टर्ब्ड, सो व्हाट, बट देन वी जस्ट सॉ लास्ट टाइम सो मेनी थिंग्स। आई गॉट डिस्टर्ब्ड, खुशी गई, शांति गई, मन उथल पुथल में आया, 1 घंटा उसका प्रभाव रहा, रिश्ता अफेक्ट हुआ, शब्द भी कुछ मुख से गलत निकल गए, राइट। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट हमने देखा कि शरीर पर भी उसका प्रभाव पड़ा।
0: और रात को खाना खाते समय फिर शक्ल देख ली तो खाना रोक दिया,
1: खाना भी रोक दिया, और रात को नींद भी नहीं अच्छी आई। तो सो व्हाट जो आपने कहा ना, फिल इन द ब्लैंक,
0: सो दिस,
1: सो मेनी थिंग्स। सो वी कैन नॉट से सो व्हाट, वी विल इन फैक्ट हैव टू से सो मच। इतना कुछ हो गया उस 1 घंटे में डिस्टर्ब होने की वजह से। एंड नाउ मोस्ट इम्पोर्टेंट, 1 घंटे में जब हम थोड़ा सा डिस्टर्ब होते हैं तो वो कोई उस दिन की लास्ट सिचुएशन भी तो नहीं थी। उस 1 घंटे में डिस्टर्ब होने से हमारी मन की शक्ति क्या हुई?
0: डिप्लीट होती,
1: थोड़ी सी डिप्लीट होती गई। आधे 1 घंटे के अंदर कोई और बात आएगी, कोई और बात भी तो आएगी। अब कोई और कुछ कहेगा, कुछ और हमारे अनुसार नहीं होगा, तो क्योंकि वो मन पहले से ही फ्लक्चुएटिंग स्थिति में
0: तो था। जल्दी आग में घी का 1 चम्मच और डाल दिया।
1: और डाला तो आग तो बहुत ज्यादा अब उड़गी,
0: बढ़ेगी।
1: तो अब सो व्हाट का इम्पैक्ट और देखें। अब ये सिर्फ पूरे दिन की एक सिचुएशन नहीं आती ना, अगर एक सिचुएशन आए पूरे दिन के अंदर हम डिस्टर्ब हो, फिर 1 घंटे में 2 घंटे में हम ठीक हो जाएंगे। लेकिन सिचुएशन आफ्टर सिचुएशन आफ्टर सिचुएशन, सीन आफ्टर सीन आफ्टर सीन, पीपल आफ्टर पीपल आफ्टर पीपल, हर एक हमारे अनुसार नहीं होगा। दिस इज डीप डीप डीप रियलाइजेशन एंड डीप डीप डीप प्रोग्रामिंग। लोग सिचुएशन, लोगों के सेंटेंसेस, लोगों के बिहेवियर मेरे अनुसार नहीं होंगे अगर हर बात को,
0: बट एक चीज मेरे अनुसार, एक ही चीज कभी और वो मेरे अनुसार हो सकती है और कभी किसी टाइम पे ये मेरे अनुसार वही चीज नहीं हो, और वही सेम चीज कोई मेरा अपना बोले और कोई दूसरा बोले, या एक्स वाई जेड में मेरी चॉइस का पर्सन बोले मुझे अच्छा लगता है, वही चीज कोई दूसरा बोले बुरा लगता है, फिर वो चीज के अनुसार की तो बात हुई नहीं ना।
1: राइट,
0: फिर मेरी चॉइस आ गई यहाँ,
1: चॉइस आ गई ना, तो चॉइस तो है।
0: मैं कई बार मेरे घर पे भी बोलते हैं, सांप डांटेंगे तो ठीक है, आप मुझे मत डांटो।
1: हाँ।
0: अब एक मेरे एक स्टाफ की बात कर रहा
1: हूं। राइट,
0: मैं डांटू हिस इज एक्सेप्टेबल है, वो बोले तुम नहीं।
1: तो उस आत्मा ने अपनी प्रोग्रामिंग कर ली है, ठीक है ना, उस आत्मा ने प्रोग्रामिंग कर ली है कि ये डांटेंगे तो इट्स फाइन विद मी, ये डांटेंगे तो आई विल गेट डिस्टर्ब्ड। हो गई प्रोग्रामिंग, कितनी क्लियर है, इसी से क्लियर हो जाता है कि सब कुछ मेरी चॉइस है और मेरे कंट्रोल में है। ये डांटेंगे इट्स ओके विद मी, ये डांटेंगे तो आई विल गेट डिस्टर्ब।
0: चीज वही, डांटना वही, शब्द वही,
1: प्रोग्रामिंग है, कंडीशनिंग है।
0: तो इसका मतलब चीज हैज नथिंग टू डू,
1: इट हैज नेवर एनीथिंग टू डू।
0: यू मीन टू से, हाँ मैं खुद ही बोल आंसर दे दिया इसका,
1: इट हैज नथिंग टू डू। लेकिन जितनी बार हम डिस्टर्ब हुए, हमने उस चीज को अपने ऊपर हावी होने दिया। लेट से मैं कहूं आप डांटेंगे तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये कुछ बोलेंगे तो मुझे बुरा लगता है। तो मैंने अपने अंदर प्रोग्रामिंग क्या कर ली कि आप कुछ बोलेंगे माई माइंड विल एक्सेप्ट एंड आई एम फाइन विद इट, लेकिन ये बोलेंगे तो आई एम टेलिंग माई सेल्फ यू आर अलाउड टू गेट डिस्टर्ब्ड। लेकिन नाउ आई नीड टू आस्क माई सेल्फ, ये बोलेंगे फिर कोई और बोलेगा, फिर कुछ और बोलेगा, कोई और कुछ करेगा, हर बार डिस्टर्ब होते होते होते मेरी अपनी शक्ति। इट्स लाइक सेइंग गर्मी होगी तो आई एम फाइन विद इट, लेकिन ठंड मेरे से जहन नहीं होती, तो ठंड में तो मैंने बीमार पड़ना ही है, तो मैंने अपने आप को कंडीशनिंग दे दी कि गर्मी में आई विल बी फाइन, लेकिन ठंड में तो मैंने बीमार पड़ना ही है। विच मीन्स मैं अपना ध्यान नहीं रखूंगी, ठंड में बीमार पड़ना अलाउड है। तो अब एक महीना दो महीना मैंने अपने आप को बीमार रहना अलाउड हुआ, अगले साल ठंड छह महीने रही और मेरी प्रोग्रामिंग मैंने चेंज नहीं की और मैंने अपने आप को प्रोटेक्ट भी नहीं किया, तो अगले साल मैं छह महीने बीमार रही। उसके दो साल के बाद इतनी ठंड आई और क्योंकि मेरा इम्यूनिटी सिस्टम हर साल बीमार होते होते होते होते कमजोर होता जा रहा था, उसके चार साल बाद इतनी ठंड आई दैट आई जस्ट कुडंट टेक इट, एंड देन वी से डिप्रेशन, नर्वस ब्रेकडाउन, दिस। क्योंकि करते करते करते करते ताकत तो कम होती जाएगी और दुनिया की परिस्थितियां बढ़ती जाएंगी।
0: सिस्टर आपने जो कहा था अभी, ये हमारी वीकनेस है, हमारी शक्ति की कमी है कि दूसरे की बात को का मुझ पर इतना असर होता है, तो यहाँ पर भी ये भी तो थॉट एक डिप्रेसिंग ही है ना, कि मैं इतना कमजोर हूँ, मैं कब ठीक हो जाऊंगा, अभी कल उसने ये बोला फिर मैंने ऐसा कर दिया, परसों उसने बोला फिर मैंने ऐसा कर दिया, मैं कब सुधरूंगा, आई एम दूसरे आदमी देखो शक्तिवान है, मैं शक्ति नहीं हूँ, तो ये भी तो एंगल उधर ही लेके जा रहा है ना।
1: इस थॉट को अब चेंज करते कि आज कोई कुछ बोलेगा मैं हूं नहीं, आज मुझे क्या करना है, आज कोई कुछ बोलेगा आई विल फेस इट इन अनदर वे।
0: अगर मेरा नेचर ऐसा बन चुका है तो कहाँ फेस करूं,
1: नेचर बना कैसे,
0: हो गई बात, चलो नेचर जैसे आदत हो गई,
1: आदत बनी कैसे,
0: आदत हो जाती है,
1: आदत सिगरेट की हुई कैसे,
0: पीते पीते पीते
1: पीते पीते पीते पीते सिंपल, फिर छूटती है किसी की या नहीं छूटती,
0: फिर मेहनत
1: मेहनत, नेवर माइंड, लेकिन आदत बनी कैसे, करते करते करते करते आदत बनी, अब एक नए तरीके से उन्हीं चीजों को करेंगे तो एक नई आदत बन जाएगी। जब हम एक ही तरह से सोचते जाते हैं हर सिचुएशन में, अगर हमारा एक टिपिकल वे ऑफ रिस्पॉन्ड होने लग गया या रिएक्ट होने लग गए, जैसे किसी की आदत हो गई इरिटेट होने की कि चिढ़ के बोलना है, कुछ भी हुआ चिढ़ के बोलना है, किसी की आदत हुई क्रिटिसाइज करना है कि सामने वाले ने कुछ भी काम किया हो ना उसने उसके अंदर कोई ना कोई नुक्स निकाल ही लेना। अब करते करते एक बार किया होगा, दो बार किया होगा, दस बार किया होगा, दस लोगों को किया होगा, करते करते उस आत्मा को खुद ही नहीं पता चलता
0: कई लोगों को आदत हो जाती है, सिस्टर चाय लाया स्टाफ पूछता है कहाँ रखूँ, बोले मेरे सर पर रख दे। तो मैंने अगर पूछो भी तो फिर टेबल दिख रही है ना उसको। तो क्या करूँ। तो बोलते बोलते बोलते फिर एक ताने मारने की और ये एक हैबिट हो ही जाती है। लेकिन
1: बट इट डजंट
0: अवेयर, इट इज नॉट इजी। जो आप बोल रहे हैं कि आप अभी आप बोल रहे थे कि जन्मों जन्मों से बच्चा लेके आ रहा है एक चीज। तो
1: अच्छा सिंपल ये वाली लेते हैं कि कोई चाय लेकर आया और आपने कहा, उसने
0: पूछा साहब कहाँ रखूं, तो बोले सामने टेबल चाय रखना भाई।
1: तो वो नहीं बोला ना, क्या बोला उसकी जगह,
0: मेरे सर पे रख,
1: मेरे सर पे रख। लेट से ये करते करते ये आदत बन चुकी है, ठीक है। एंड इट्स नॉट जस्ट फॉर दैट पर्टिकुलर लाइन, लेकिन कभी भी कोई भी ऐसी कोई बात पूछेगा या करेगा जो आपको लगता है कि इतनी ऑब्वियस आंसर है, फिर ये पूछता है, तो आप उसको सीधा आंसर नहीं देते, ठीक है। आपने ये टेढ़ा आंसर दिया ना। अब अगर आज आप अपने आप को कहते हैं कि दिस इज नॉट अ रॉयल वे ऑफ आंसरिंग,
0: आई लाइक दैट,
1: नॉट अ रॉयल वे ऑफ आंसरिंग,
0: ये अच्छा
1: है ना। सी खुद ही हमें रियलाइज,
0: हमको अच्छा लगा
1: है ना, ये आपको
0: रॉयल वे, तो आई वुड लव टू बी।
1: तो अब आप ये बताइए कि रॉयल वे ऑफ आंसरिंग दिस क्वेश्चन क्या है। किसी ने आके पूछा ये चाय कहाँ रखूं,
0: आप यहाँ रख दीजिए,
1: सिंपल है। डू यू फील दैट्स मोर कम्फर्टेबल?
0: आई जस्ट एक्टेड आउट एंड आई फेल्ट नाइस।
1: यू फेल्ट नाइस बट यू फील दिस इज अ बेटर रिस्पॉन्स?
0: 100%
1: कन्विंस्ड,
0: 100%।
1: लेकिन उसकी बात फिर भी उतनी ही कहें बचकानी थी या सिली थी कि कैसा क्वेश्चन पूछ रहा है, फिर भी व्हाट इज द वे, द बेस्ट वे टू रिस्पॉन्ड?
0: मे बी पॉइंट ऑफ व्यू, अगर आपसे बात करते करते कि थॉट आया कि उसके तरह से वो भी राइट है ना, कहाँ रखूं, यहाँ वहाँ हाथ में दो।
1: अब ये तो ये भी नहीं पता कि अगर वो बिना पूछे वहाँ रख देता
0: पूछ तो लेता,
1: दूसरे का नजरिया तो अभी सोचा ही नहीं,
0: बच्चे खेल रहे गर्म हाथ डाल देंगे ये करेंगे, इतना भी नहीं सोचा है, वो भी नहीं किया,
1: पूछना चाहिए था रखने से पहले।
0: हाँ।
1: वो तो एक अलग एस्पेक्ट है, वो तो दूसरे का नजर
0: रोज चलते है मेरे घर में, छोटे छोटे बच्चे खेलते रहते तो चाय कोई टेबल पर रहते, मतलब देखो क्या कर दिया तुमने यार, बच्चा हाथ डाल देगा गरम गरम उबलती चाय, यहाँ रखने की जगह है।
1: अब इसको देखते हैं, एक बार सामने वाले ने बिना पूछे रख दिया, ठीक है, तो आपने उसको डांटा और कहा पूछ के रखना चाहिए था, ठीक है। अब नेक्स्ट टाइम कोई नहीं भी होगा रूम में, बच्चे भी नहीं होंगे, तो उसने तो क्या करना है,
0: पूछना है,
1: उसने तो पूछना है, तो इज ही राइट?
0: अपनी तरफ से तो राइट है, बोला
1: वेदर ही इज राइट और ही इज नॉट राइट। अब हमने उसके बारे में तो सोचना ही नहीं है, अब हम क्या चेक कर रहे हैं, विच इज माय मोस्ट कंफर्टेबल वे टू रिस्पॉन्ड, मेरा सही जवाब इस समय क्या होना चाहिए। तो आपने अभी कहा कि यहां रख दो, अब आदत पड़ गई है कहने की सिर पे रख दो, इधर नीचे रख दो, ये टेढ़े आंसर देने की आदत पड़ गई है। आज हमने डिसाइड किया अब वो आएगा पूछेगा, आई विल रिस्पॉन्ड इन अ रॉयल वे, हो जाएगा आज?
0: आज जब तक अवेयर रहूंगा
1: हो जाएगा, नहीं होगा, जस्ट इट्स अ सिंपल। अभी इसमें तो कोई संस्कार की बात नहीं, नेचर की बात नहीं,
0: as long as I'm aware, होगा।
1: आज डिसाइड किया है कि आज वो आएगा ही, इट्स अ रिपीटेड सिचुएशन। सी कुछ सिचुएशंस जीवन में बड़ी रेपिटेटिव होती है, रोज आती है, ऑलमोस्ट रोज आती है, एंड हम ऑलमोस्ट हर रोज उसी आउट ऑफ कंट्रोल वे से बिहेव करते हैं। जब हमने एक ऐसा जवाब दिया जो हमारे लिए सही नहीं था, तो विच मीन्स मेरे मन और मुख ने वो नहीं किया जो मुझे सही लगता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमें उस बात पे तो गुस्सा आ जाता है कि लोगों ने वो नहीं किया जो सही है, लेकिन व्हाट अबाउट जब मेरी ही ये इंद्रियां, मेरी इंद्रियां है ना ये सारी, माय सेंस ऑर्गन्स, व्हाट अबाउट जब ये वो चीजें नहीं कर रही जो मुझे सही लगती है, तो बीइंग शक्ति मतलब आई एम गोइंग टू टेक बैक कंट्रोल ओवर ऑल दीज, जो आज अपने आप चलती है अपने
0: आप। ये थॉट आई बात सुन के कि ये चीज भी तो वीकनेस हुई, जो बार बार मैंने जैसे सिगरेट की आदत पड़ी, ये भी बार बार बोलते बोलते ताना मारने की, छिड़के बात करने की एक हैबिट हो जाती है।
1: अगर हमें लगता है कि ये सही नहीं है, कंफर्टेबल नहीं,
0: तो लग रहा है ना, रॉयल तो नहीं लग रहा,
1: रॉयल नहीं है ना, रॉयल नहीं है, हेल्दी नहीं है, इट्स नॉट हेल्दी ऑल्सो,
0: इट्स ऑल्सो हर्टिंग द अदर चैप ना,
1: इट्स हर्टिंग द अदर पर्सन, वो तो है ही, लेकिन हर्टिंग उससे ज्यादा,
0: मैं कभी सोचा भी नहीं था,
1: उससे ज्यादा हर्ट किसका हो रहा है।
0: अभी डिस्कशन में सिर्फ मैं अपना ही सोच रहा हूँ, व्हाट अबाउट दैट पर्सन,
1: उस आत्मा को तो तकलीफ होगी लेकिन फिर भी क्योंकि बार बार हो रहा है ना, थोड़े टाइम के बाद उस आत्मा को कोई असर नहीं होगा इस बात का।
0: हंसेगा वो बाहर जाके,
1: सी इफ आई सी यू नॉट बिहेविंग इन अ रॉयल वे, आफ्टर सम टाइम आई विल नॉट गेट अफेक्टेड, बट यू कैन नॉट सेव योर सेल्फ फ्रॉम दैट इफेक्ट।
0: आई सी आई ट्राइड दिस थिंग, इवन आर्टिफिशियली अच्छा लगता है रॉयल बिगिनिंग में, छोटा छोटा ऐसे, हाँ बेटा यहाँ रख दो, हालांकि कंट्रोल करके, लेकिन फिर उसकी आदत पड़ सकती है बात रॉयल में रहने की, हमेशा जैसे इसकी पड़ी उसकी भी पड़ जाएगी।
1: जैसे ट्रैक्स बने होते हैं एंड पानी उसमें बह रहा है, ठीक है, गार्डन है, रास्ते हैं, ट्रैक सपोज इधर ही इस सड़क पर एक ट्रैक बना हुआ है, अब वो रोज पानी उसी में बहता है, ठीक है, अब पानी का बहते बहते उस एरिया के अंदर वो एक ट्रैक बन ही गया ना, अब जैसे ही पानी आएगा वो दूसरी साइड पे कहीं जाएगा ही नहीं, राइट, वो ऑटोमेटिकली उसी ट्रैक में फ्लो होगा, होते होते होते वो ट्रैक उस पानी के लिए एक परमानेंट पाथ बन चुका है,
0: सही,
1: राइट। अब अगर हम आज से चाहते हैं कि वो उस ट्रैक में नहीं जाए, उस डायरेक्शन में वो पानी नहीं जाए, लेकिन वो एक नए तरह से जाए, तो हमें थोड़े दिन के लिए, सिर्फ ज्यादा नहीं, थोड़े दिन के लिए जैसे ही वो पानी आता है, फ्लो होने लगता है, हमें उसको चैनलाइज करके एक डिफरेंट डायरेक्शन में जाना है। ऐसे ही माइंड भी जब एक थॉट क्रिएट करता है, फिर अगले दिन वो ही थॉट क्रिएट करता है, फिर अगली बार वो सिचुएशन आती है, फिर वो उसी तरह रिस्पॉन्ड करता है, तो एक फिक्स्ड पैटर्न बन जाएगा अंदर, जिसको हम कहते हैं ब्रेन में भी उसका एक ग्रूव बन जाता है। अब नेक्स्ट टाइम जब वो सिचुएशन आएगी तो आप चूज नहीं करते, आपकी थिंकिंग ऑटोमेटिकली उस पैटर्न से ही होती है, एंड करते करते करते वो ग्रूव एक बहुत स्ट्रॉन्ग पैटर्न बन जाएगा, जिसको हम कहेंगे ब्रेन की मैपिंग, वो पैटर्न्स बन जाते हैं। अब हम एक जीवन अनेक जन्म उसी पैटर्न उसी मैपिंग से काम करते जा सकते हैं, लेकिन अगर हम आज डिसाइड करें तो हम आज चेंज कर सकते हैं। इट्स एज सिंपल एज दैट।
0: दिस इज शक्ति वी हैव,
1: दिस इज द पावर वी हैव। अगर हम नहीं चूज करें, हम उसी पैटर्न से जन्म जन्म वर्क कर सकते हैं, लेकिन आज चूज करें तो आज से ही उस ग्रूव में न जाने के बजाय हम कॉन्शियसली शुरू में थोड़ी सी मेहनत कि आज उस तरह से नहीं, एक अलग तरह से रिस्पॉन्ड करेंगे। अब मोस्ट इम्पोर्टेंट बात यह होगी, थोड़े दिन करने से एक नया पैटर्न बन जाएगा, एक नया ग्रूव बन जाएगा, और थोड़े दिन के बाद हमें कोई अटेंशन नहीं रखनी पड़ेगी, हमें कोई ध्यान नहीं रखना पड़ेगा, अब कोई भी बात आए, अब कोई भी परिस्थिति आए।
0: राजा के बेटे को अटेंशन रखना थोड़ा ही पड़ता है कि आई एम रॉयल,
1: दैट्स इट,
0: आप खुद बन जाओगे, जो
1: खुद बन जाओगे। लेकिन राजा का बेटा अगर भूल जाए कि मैं राजा का बेटा हूँ, तो हम भी भूल गए कि हम मन के, बुद्धि के, संस्कारों के, इन कर्म इंद्रियों के हम मालिक हैं, हम राजा हैं, हम भूल गए। आज हम कहते हैं मुंह से निकल गया, हाथ उठ गया, आंखों से देख लिया, किसी का बुरा बोल दिया, मन तो सारा दिन चलता है, वो तो कभी सोचा, वो तो उसके बारे में तो अवेयरनेस ही नहीं है,
0: पांचों इंद्रियों के गुलाम।
1: लेकिन कर्म इंद्रियों के भी गुलाम, ये तो सूक्ष्म इंद्रियां, इसको हम कहते हैं सटल ऑर्गन्स, मन बुद्धि संस्कार, लेकिन फिजिकल सेंस ऑर्गन्स, ये पांचों कर्म इंद्रियां, ये भी आज हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो आत्मा आउट ऑफ कंट्रोल ओवर इट्स ओन ऑर्गन्स, ट्राइंग टू कंट्रोल एवरीबडी एल्स।
0: बापरे,
1: इट्स लाइक ड्राइविंग ऑन द रोड, अपनी गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल, लेकिन चाहते हैं कि बाकी सबकी गाड़ी
0: कंट्रोल में,
1: मेरे हिसाब से चले। रिजल्ट क्या होगा? एक्सीडेंट के अलावा और तो कुछ हो ही नहीं सकता ना। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बाकी सब गाड़ियों में भी जो बैठे हैं ना, उनकी भी अपनी गाड़ी पे कंट्रोल नहीं है, उनकी भी अपनी गाड़ी पे कंट्रोल नहीं है, वो भी ये चाहते हैं कि हमारी गाड़ी उनके हिसाब से चले। जस्ट विजुअलाइज दिस सीन ऑन द रोड, जस्ट ओनली सी कि पांच गाड़ियां एक सड़क पर हैं, पांचों के ड्राइवर्स का अपनी अपनी गाड़ी पर कंट्रोल खत्म हो चुका है।
0: बाप रे,
1: ठीक है, एंड पांचों चाहते हैं कि जो बाकी चार है गाड़ियां वो उनके कंट्रोल से चले।
0: क्योटिक सिचुएशन है, क्या
1: तो यही वो पांच लोग हैं जो एक फैमिली में, एक घर में रहते हैं, सी आज मैं आत्मा ड्राइवर, ये गाड़ी मुझे चलानी है कि मेरी आंखें मेरे हिसाब से चले, मेरा मुख मेरे हिसाब से बोले, मेरा हाथ वो ही करे जो सही है कर्म, और मन वो ही सोचे जो सही है. दैट वुड बी दैट माई कार इज इन माई कंट्रोल. सो लाइक दिस फाइव पीपल आर स्टेइंग इन द हाउस. पांच आत्माएं ड्राइवर और उनकी अपनी अपनी एक गाड़ी. अगर हर आत्मा का अपनी गाड़ी पे कंट्रोल होता तो जर्नी कैसी होती उस रोड के ऊपर?
0: ब्यूटिफुल.
1: हर एक ने प्यार से निकल जाना, हर एक ने एक स्टीयरिंग व्हील घुमाना है, थोड़ा सा दूसरा आ भी रहा होगा तो उसने ऐसे टर्न करना है, उसने घूम जाना. एक्सीडेंट कभी होता ही ना.
0: और कोई आ भी रहा है तो खुद को स्लो डाउन कर ले,
1: सिंपल,
0: वो निकल गया आगे.
1: सो द पावर टू मोल्ड, द पावर टू एडजस्ट, द पावर टू टर्न हियर, द पावर टू ब्रेक स्टॉप, सब कुछ हो जाता अगर ये गाड़ी मेरे कंट्रोल में होती तो. और अगर पांचों की होती तो वो जीवन, वो घर स्वर्ग होता, राइट? अब अगर सपोज चार की भी नहीं है लेकिन एक भी अपने करना शुरू कर दे तो वो एक भी कितने सारे एक्सीडेंट बचा देगा सारा दिन के अंदर?
0: बाकी चार के साथ तो बचेंगे उसके.
1: तुम जब बाकी
0: तो चारों के बच गए,
1: चारों के बच गए, सी, तो कितनी सारी चीजें बचेंगी अगर एक आत्मा अपने ऊपर संयम ले आए. दिस इज द पावर दैट वी हैव. लेकिन अगर पांचों ने अपना ध्यान नहीं रखा, अपनी उनकी ब्रेक्स चलती नहीं, उनका स्टीयरिंग व्हील उनके कंट्रोल में नहीं, लेकिन वो चाहते हैं कि वो बाकी सब गाड़ियां मेरे हिसाब से चलें, तो एक क्षण भी बिना एक्सीडेंट के नहीं चलेगा उस घर के अंदर. दिस इज द रियलिटी ऑफ आवर लाइफ टुडे. जितना मेरी गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल होगी, लेकिन मैं चाहती तो नहीं एक्सीडेंट हो, ठीक है? यहां से मैं आ रही हूं, वहां से आप आ रहे हैं, ठीक है? देखो अगेन विजुअलाइज ऑन द रोड. सपोज मेरी गाड़ी की ब्रेक फेल हो जाए, ठीक है? लेकिन आई डोंट वॉन्ट टू मीट विद एन एक्सीडेंट. तो व्हाट डू आई ट्राई एंड डू ऑन द रोड? आई टेल अदर पीपल,
0: हट जाओ.
1: मीन्स यू मूव आउट ऑफ माई वे. आप मेरे रास्ते से हट जाओ, क्योंकि मेरे अंदर पावर नहीं है ब्रेक लगाने की या अपना रास्ता चेंज करने की.
0: वेरी ब्यूटिफुली एक्सप्लेन्ड.
1: मेरे अंदर पावर नहीं है तो मैं इशारा करती रहती हूँ कि तुम लोग हट जाओ रास्ते से. अगर आपने कहना मान लिया तो एक्सीडेंट बचेगा, लेकिन अगर आपने नहीं माना और आपने वहां से मुड़ के कहा मेरा भी ब्रेक नहीं चल रहा, या आपने मुड़ के कहा मैं क्यों हटू तुम हटो, तो फिर तो एक्सीडेंट होना ही है. आज क्योंकि सारा दिन में मेरा मन बुद्धि कर्म इंद्रिया मेरे कंट्रोल में नहीं है, तो हम हर सारे रास्ते में क्या करने की कोशिश.
0: तो कहीं भी जा सकते, तुम गाड़ी चलाने से पहले ब्रेक टेस्ट नहीं किया था क्या? देखा नहीं था क्या? ब्रेक नहीं थी तो आए क्यों सड़क पे?
1: उतनी देर में तो हो गया ना एक्सीडेंट. नाउ अगेन गो बैक टू दैट लेडी यस्टरडे. वो एक अलग गाड़ी, उन्होंने आकर कुछ कहा, ठीक है? यहां से आप हैं अपनी गाड़ी में, मतलब ये माय माउथ, माय माइंड, एवरीथिंग, माय बिहेवियर, ये है मेरी गाड़ी. अगर कल आपकी गाड़ी आपके कंट्रोल में होती तो फिर वो कुछ कहते भी तो कह के निकल जाते, आपका एक्सीडेंट बच जाता.
0: यू मीन टू से कोई मुझे खाते खाते रोक दे और बोले जानना पहचान बोले आपको परहेज करनी चाहिए तो आई शुड कीप क्वाइट? दैट मीन्स मेरा आउट ऑफ कंट्रोल था.
1: आपका
0: जवाब नहीं दूं?
1: जवाब दे सकते हैं, लेकिन जवाब ऑफ माय चॉइस, जवाब विच इज कंफर्टेबल फॉर मी, जवाब विच इज हेल्दी एंड हैप्पी फॉर मी.
0: बट एट दैट टाइम आई थॉट कि वो मेरे लिए कंफर्टेबल था. लेटर ऑन आई वाज नॉट कंफर्टेबल माय सेल्फ.
1: उस क्षण भी कंफर्टेबल नहीं थे, क्योंकि बात आते ही फर्स्ट रिएक्शन क्या हुआ?
0: चिढ़ गया
1: मतलब गाड़ी गई. ब्रेक अगर लगनी थी उस टाइम, क्योंकि उस समय क्या हुआ, बात आई और माइंड बहुत फास्ट स्पीड पर चला. कितनी फास्ट स्पीड पर माइंड चला. ऐसे क्यों बोला? बोलना चाहिए था. कोई तरीका है? कोई रिश्तेदार है मेरी जो बोल दिया? मैं कोई बीमार हूं ऐसे बोल दिया? लुक एट द स्पीड, थाउजेंड्स ऑफ थॉट्स ऐसे चलेंगे. ब्रेक लगाओ. बोल दिया, उनका नजरिया, उनको सही लगा, मुझे कोई बीमारी नहीं है, मुझे परहेज नहीं करनी, और करनी भी होती तो मेरा मन नहीं है अभी परहेज करने का. आई फील लाइक ईटिंग, फुल स्टॉप, फिनिश. Who are you is again कौन सी थॉट रेडिएट की फिर? हमें दूसरे, जैसे आपने कहा ना वो कितना हर्ट हुआ होगा स्टाफ, ऐसे कौन सा तीर हमने सामने वाले को भी मारा? वो तीर भी प्यार वाला होना चाहिए कि ठीक है आपने बोला, एक आपने अपने कंसर्न से बोला, या दूसरा हो सकता है इट्स ओके, आपको जो सही लगा आपने कहा. फुल स्टॉप ब्रेक, कल वो ब्रेक अगर लगती तो कम से कम 2 घंटे की शक्ति बच जाती, 2 आवर्स ऑफ थॉट पावर एंड 2 आवर्स ऑफ द इफेक्ट दैट थॉट पावर हैज ऑन माई बॉडी, ये सारा बच जाता अगर उस क्षण ब्रेक लग जाती। तो अब मुझे क्या करना है, सिर्फ मुझे वो ब्रेक लगाने की पावर, गाड़ी को अपने कंट्रोल में चलाने की पावर, उस चीज को वापस आई हैव टू गेट बैक इन टू कंट्रोल। अब जैसे ही आज जो हमने डिसाइड किया कि कोई आके कुछ कहेगा भी, तो हमारा जवाब देने का तरीका कैसा होगा आज?
0: बीइंग शक्ति एंड रॉयल
1: रॉयल। एंड आज जब हम वो करेंगे तो धीरे धीरे हम उस थॉट को उस ग्रूव में नहीं जाने देंगे, हम धीरे धीरे एक नया ग्रूव पैटर्न क्रिएट कर रहे हैं। हो जाएगा ना आज?
0: 100%।
1: वेरी गुड।
0: इस पिक्चर लेस मेडिटेशन,
1: सिट बैक एंड अपने आप को आज देखते हैं। हर रोज कुछ बातों को हमने एक ही तरह से रिएक्ट किया और करते करते वो मेरी आदत बन चुकी है। आज एक नया तरीका, अ न्यू वे ऑफ रिस्पॉन्डिंग, एक ऐसा रिस्पॉन्स जो मुझे खुशी, सेहत और सुंदर रिश्ते देगा, एक ऐसा रिस्पॉन्स जो मेरे लिए कंफर्टेबल एंड रॉयल होगा। आज अपनी किसी एक आदत, अपने किसी एक रिएक्शन को चूज करते हैं एंड देखें अपने आप को कि आज उसी परिस्थिति में अपने आप को एक नए तरह से रिस्पॉन्ड करते हुए देखें। धीरे धीरे अ न्यू वे ऑफ थिंकिंग, एक नया पैटर्न क्रिएट होना शुरू हो रहा है। दिस इज द पावरफुल बीइंग। ओम शांति।
0: थैंक यू सो मच सिस्टर।
1: ओम शांति।
0: ओम शांति। थैंक यू वेरी मच।
2: When we allow an external stimulus to affect our state of being, our emotional health, physical health, relationships, and quality of sleep get affected. Our vibrations of anxiety radiate to all who are around us and influence them too. When we get disturbed in one particular situation, our emotional strength gets depleted. Now, we are more vulnerable to get disturbed when the next stimulus comes. This is why anxiety, stress, irritability escalates during the day. And then, during our journey of life, our mind should be convinced that situations, other people's sanskars, their behaviors will not be according to what is comfortable for us. We cannot afford to get disturbed each time. It is our energy loss. One particular way of responding to a situation repeatedly creates a groove in our brain. After a few days, this will become a habitual pattern. We can consciously respond in a different manner and create a new groove.
1: If you wish to discuss your problem or have a question to ask or want to know your nearest Raj Yoga Meditation Center, write to us on awakening@pmtv.in or call us on 0999 55 9 660.

खुशियों की फुहार लाएगी हर दिन त्योहार। अब हर दिन बजेंगे मन में ढोल, अपने पन के रंग में अब रोज रंगेंगे, उड़ान भरेंगे सपनों के रॉकेट में। सिर्फ पुनेरी आवाज में 107.8 खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: किसी की एक लाइन मेरी मन, फीलिंग्स, वर्ड्स, एक्शन, रिलेशनशिप एंड बॉडी, छह चीजों पर असर हुआ मेरे। एक घंटे तक ये पूरी साइकोलॉजी, फिजियोलॉजी सब डिस्टर्ब्ड रही, रिश्ता डिस्टर्ब हुआ, रात को भी वो बात याद आई। एंड डेफिनेटली जब ये चीजें दिन में इतनी देर माइंड पे रही होंगी, ये नींद में जरूर चली होंगी, क्योंकि जो थॉट्स एक्टिव ड्यूरिंग द डे चलेगी ज्यादा, ये नींद में जरूर चली होंगी। नींद का नुकसान इसलिए क्योंकि आपने रात को सोने से पहले भी उस बात के साथ रिजोल्व नहीं किया अपने आप को, आप वो अनरिजोल्व्ड बात के साथ सो गए। तो मन क्या करता है, रात को सारा दिन की हुई बातें या जो कुछ हमारे माइंड पे है, देखो कोई प्रॉब्लम है, क्यों लोगों को नींद नहीं आती, व्हेन दे आर अंडर स्ट्रेस कोई प्रॉब्लम है, नींद नहीं आती, क्यों नहीं आती है? क्योंकि मन सोचना बंद नहीं करता है। सोने के लिए द माइंड नीड्स टू स्लो डाउन। इफ आई एम डिस्टर्ब्ड अबाउट समथिंग, द माइंड जस्ट गोज ऑन एंड ऑन। आपके साथ एक बच्चा बैठा है, वो पूछता जाएगा जब तक आप उसको आंसर नहीं देंगे। आंसर दिए बिना ही सो गए तो वो तो रात को भी सोचता रहेगा। एंड इसीलिए मोस्ट ऑफ अस टुडे एक्सपीरियंस कि हम अपने 6 घंटे तो सो रहे हैं, 6 घंटे 8 घंटे जितना सोना है, लेकिन जब हम सुबह उठ रहे हैं द माइंड इज नॉट एज फ्रेश एज इट नीड्स टू बी।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: पुनेरी आवाज 107.8 FM वर्ल्ड रिन्यूअल स्पिरिचुअल ट्रस्ट का सामुदायिक रेडियो स्टेशन। खुश रहो, खुशियां बांटो।
1: हमारा भोजन हमारा व्यक्तित्व। लेखिका सुधापुरी। पात्र परिचय: उन्नति, दृष्टि, यश, वेदांत, आदित्य प्रकाश, आदित्य, सैंडी, आकाश।
2: मजा आ गया, ये तरबूज तो बहुत ही मीठा है।
3: मेरे खरबूजे का तो कोई मुकाबला ही नहीं।
1: मैं क्या बात करते हो, फलों के राजा के सामने किसी और फल की तारीफ। लाहौल बिलाकवत।
4: वो क्या होता है?
1: मुझे भी पता नहीं, पर ऐसा ही कहते हैं ना जब कोई कुछ गलत करता है।
4: ये फलाहारी पिकनिक मुझे बहुत अच्छी लगती है।
2: हाँ, ये मेरी ही दादाजी का आइडिया था।
3: हाँ, मैं तो उन्हें बाबूजी कहकर पुकारता हूँ।
5: और मैं बाबा।
2: वो मेरे सब दोस्तों को बहुत प्यार करते हैं और कहते हैं बचपन में बहुत सारे दोस्त बनाने चाहिए, बचपन की दोस्ती हमेशा प्यारी लगती है।
6: मेरे पापा भी यही कहते हैं।
3: मैं भी इस बात में विश्वास रखता हूँ कि हर एक दोस्त जरूरी होता है।
1: जैसे किसी के साथ हम कोई खास खेल खेल सकते हैं,
4: कोई पढ़ाई में मदद करता है चाहे वो खेलने में उतनी दिलचस्पी नहीं लेता हो,
2: और कोई हमारा मजेदार चटपटा खाना खाने में हमारे साथ होता हो।
6: जैसे इस समय हम सभी मिलकर गर्मियों के मजेदार फल खा रहे हैं।
2: ये ठीक है।
5: ये फलों का आइडिया अच्छा है, कितना ही पेट भर के क्यों न खा लो, कभी सुस्ती ही नहीं आती।
6: बल्कि इन्हें खाकर हम ताज़ा ही महसूस करते हैं।
7: तुम्हें पता भी है फल हमारे शरीर की किस प्रकार मदद करते हैं?
2: मजे करने में।
7: वो तो है ही, पर सबसे जरूरी बात ये है कि ये हमारी बीमारियों से लड़ने में मदद करते हैं।
6: तो रोटी, पूरी, आलू, दाल, ये सब?
3: हाँ, और दूध।
7: वो सब भी जरूरी है, पर अलग अलग भोजन हमारे शरीर को अलग अलग तरीकों से मदद करते हैं।
8: अभी हम उस लक्ष्य पर पहुँचे ही हैं, विज्ञान में।
7: हाँ, तुम सब इन अलग अलग फूड ग्रुप्स के बारे में पढ़ोगे, जैसे कुछ बॉडी बिल्डिंग के लिए होते हैं, कुछ एनर्जी देने के लिए, तो कुछ बीमारियों से रक्षा के लिए।
1: सब भोजनों में अलग अलग पौष्टिक तत्व होते हैं ना?
7: जैसे दालों में प्रोटीन, जो बढ़ने में और शरीर की कोशिकाओं की मरम्मत करने में मदद करता है। अनाज में कार्बोहाइड्रेट, जो काम करने की शक्ति देता है। मक्खन और घी में वसा, ये भी हमें शक्ति देता है। और कई विटामिनों को शरीर में ग्रहण करने की भी क्षमता है। फल और सब्जियों में विटामिन और मिनरल होते हैं।
4: और दीदी, संपूर्ण आहार पता है किसे कहते हैं?
2: मुझे पता है, दूध को।
9: और संतुलित आहार?
5: ऐसा भोजन जिसमें सब पौष्टिक तत्व सही मात्रा में हो।
6: पर ऐसा तो किसी व्यक्ति की उम्र, अवस्था, लिंग, वो क्या कार्य करता है, इस सब पर भी तो निर्भर होगा ना कि उसके लिए हम किसे संतुलित आहार कहेंगे।
7: हाँ, जैसे बढ़ते बच्चों के लिए खाने में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अधिक होनी चाहिए।
3: और किसी मजदूर को शक्ति देने वाले भोजन की जरूरत होगी।
7: बिल्कुल ठीक,
1: पर मुख्य बात तो यह है ना कि हमें जीने और बढ़ने के लिए भोजन की जरूरत है।
4: क्यों, बीमारियों से रक्षा भी तो।
2: और ताकतवर बनने की भी।
6: कहते हैं सबसे पौष्टिक भोजन वह होता है जो सबसे कम पका हो।
7: हाँ, उसके पौष्टिक तत्व आग से और पकने से नष्ट नहीं होते।
5: पर कच्चा भोजन तो बस फली हुए ना, जैसे अमरूद, केला, खरबूजा,
6: अनार, सीताफल, खुरमानी, आलू बुखारा, नाशपाती।
7: केला भूल गए? छोटे बच्चों के

0: फिर नट्स भी तो, जैसे मूंगफली, बादाम, काजू, अखरोट,
1: किशमिश और चिलगोजे भी।
2: पता है अब चिलगोजे बहुत मुश्किल से मिलते हैं।
3: कहीं मौसम में बदलाव तो इनके कम उगने का कारण तो नहीं?
4: तुम भी ना हर बात को प्रदूषण तक ले जाते हो।
5: तो गलत क्या है जब पशुओं की इतनी प्रजातियां विलुप्त हो रही है मानव के प्रदूषण फैलाने से, तो पेड़ भी तो हो रहे हैं।
6: जरा सोचो ऐसा हो कहीं एक दिन हमें भोजन देने वाले पेड़ पौधे कहीं विलुप्त ना हो जाए, जैसे मक्का बाजरा।
4: क्यों, गेहूं भी तो है।
0: और दालें, फल, मटर, राजमा, चना,
1: सब्जियां जैसे पालक, गोभी।
2: पर अगर पौधे प्रदूषण से प्रभावित हुए तो हम सब भूखे ही मर जाएंगे, क्योंकि तेल और घी भी तो इन्हीं से आता है, कुछ सीधे सीधे और कुछ
3: पता है इनडायरेक्ट तरीके से।
4: गाय घास या पौधा खाती है, दूध देती है, मक्खन निकलता है और घी।
6: पर बात सुनो, अगर पौधों पर प्रदूषण का बुरा असर पड़ेगा तो पशुओं पर भी पड़ेगा, तो दूध पर भी, दही, शहद, पनीर, अंडे या मांस।
3: मैं तो शाकाहारी हूँ।
1: मैं भी मांसाहारी नहीं हूँ, शाकाहारी हूँ।
5: चलो कुछ सकारात्मक सोचते हैं, कुछ नहीं होगा, तुम सब हो ना। जब जानते हो क्या समस्या है तो समाधान भी तुम ही निकालोगे। अच्छा ये तो बताओ, क्या तुम सब खाने से पहले हाथ धोते हो?
3: मैं तो धोती हूँ।
0: मैं भी, अच्छी तरह साबुन से।
1: मैं भी।
2: सबको हाथ धोकर ही खाना खाना चाहिए और खाने को खूब अच्छी तरह से चबा चबा के खाना चाहिए।
3: दादाजी कहते थे हमारे 32 दांत होते हैं, तो हर एक दांत को एक एक बार तो भोजन चबाने का मौका मिलना ही चाहिए।
4: ये बात ठीक है, ऐसा हम हर कौर को कम से कम 32 बार चबा कर ही लेंगे।
5: हाँ, पर खाते खाते बातें नहीं करनी चाहिए।
6: मेरी मम्मी कहती है कि सही समय पर भोजन करना चाहिए।
4: वह कहते हैं कि जो बच्चे नाश्ता करके स्कूल जाते हैं उनका दिमाग बहुत तेज चलता है।
0: तो हमें नाश्ता जरूर करना चाहिए।
1: हमारी टीचर उस दिन कह रही थी कि दिन में नाश्ता, दोपहर को लंच और रात का खाना तो जरूर ही खाना चाहिए।
2: और दीदी सबसे जरूरी बात जो सब भूल ही रहे हैं वो है साफ खाना खाना, ढका हुआ और ताज़ा खाना।
3: बासी खाना या सड़ा गला भोजन करने से बीमारी हो सकती है।
4: हाँ, और उन पर मक्खियाँ बिल्कुल ना बैठी हों, ये ध्यान रखना चाहिए।
6: और साफ बर्तनों में खाए, इस बात का सबको ध्यान रखना चाहिए।
4: पर सबसे जरूरी बात तो ये है कि खाना वेस्ट नहीं करना चाहिए।
5: हाँ बिल्कुल नहीं, ऐसे कितने ही लोग हैं जिन्हें पर्याप्त भोजन नहीं मिल पाता। हमें शुक्रगुजार होना चाहिए कि हमें इतना अच्छा भोजन मिल रहा है, उतना ही लेना चाहिए जितना कि हम खा सके।
0: दीदी शादियों में देखा है लोग अपनी प्लेटों में कितना खाना भर लेते हैं और
1: फिर खाया नहीं जाता तो फेंक देते हैं।
2: चलो आज मिलके कसम खाते हैं, न खाना वेस्ट करेंगे न किसी को करने देंगे।
3: हाँ उतना ही प्लेट में डालेंगे जितना खा सके।
4: इन सब बातों से ही तो एक अच्छा व्यक्तित्व का निर्माण होगा।
7: अच्छा भोजन अच्छा व्यक्तित्व,
4: ताज़ा, लाभदायक, रुचिकर, सबको पसंद आने वाला, सही मात्रा में सब गुणों वाला, साफ, सशक्त, समस्याओं से लड़ने में सहायक।
5: ये भोजन की बात कर रहे हो कि व्यक्तित्व की?
7: दोनों की।

दूंगा, मुझको खा लो, मैं तुमको मोटा कर दूंगा। पालक बोला, मुझको खा लो, मैं तो तुमको ताकत दूंगा। गोभी मटर टमाटर बोले, गाजर भिंडी

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: हम याद रखें कि वो एक बार भी जब हमें गुस्सा आया, हम इस विश्व को दूषित कर रहे हैं। हम मन को, शरीर को, रिश्तों को, प्रकृति को दूषित कर रहे हैं। और अगर एक बार भी हमने आज क्रोध को त्याग कर शांति को धारण किया, तो हम सिर्फ अपने मन को सुकून नहीं, रिश्तों में प्यार नहीं, प्रकृति को सद्भावना नहीं, हम विश्व को सुंदर बनाने की सेवा कर रहे हैं। तो क्या हम सेवा करने के लिए तैयार हैं?
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

पुटों पे उल्फत के फसाने नहीं आते, जो बीत गए फिर वो जमाने नहीं आते, दोस्त ही होते हैं दोस्तों के हम दर्द, कोई फरिश्ते यहाँ साथ निभाने नहीं आते। आप सुना है रेडियो पुनीरी आवाज 107.8 FM पर, मैं हूँ आपका हम सफर सनी, लेकर आया हूँ रेडियो प्रोग्राम खाबों का सफर। जी हाँ, आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। बहुत ही अच्छा लगता है आप लोगों के साथ रूबरू होते हैं, कुछ बातें आपकी सुनते कुछ मैं सुनाता हूँ तो बड़ी खुशी होती है। तो आइए मैं आपको आज भी 50s and 60s के हमारे ओल्ड मेलोडीज को हम सुनते हैं इस प्रोग्राम में। बहुत ही प्यारे प्यारे जो गाने हैं, उस जमाने में जो बने थे गाने, आज उस तरह का संगीत, उस तरह के गायक, उस तरह की जो टेक्निक है, बहुत अच्छा उमदा टेक्निक आ जाया है, लेकिन फिर भी वो जो सलीका या जो गाने हैं या जो उसके लिरिक्स हैं, जो याद रहने वाले लिरिक्स हैं, वो शायद आज के ज़माने में कम होता जा रहा है। तो चलिए उसको ज़िंदा रखने के लिए मैं आप सभी को 50s and 60s के ओल्ड मेलोडीज़ को सुनाता हूँ इस प्रोग्राम में। तो आइए बात करते हैं, 1954 में एक फिल्म आई थी जिसका नाम था नागिन। जी हाँ, इस फिल्म में बहुत सारे गाने थे और बहुत सारे गाने जितने भी थे सारे हिट थे, लेकिन अभी मैं जो आज इस प्रोग्राम के जरिए आपको सुनाने वाला हूँ, किसी एक अल्फावेट से हम लोग गाने सुनाते हैं, तो आज हम लोग सुनाएंगे जे अक्षर वाले सारे 50s and 60s के गाने आपको। तो जे अक्षर से इस फिल्म में एक बहुत ही खूबसूरत गाना है जिसको सुनते ही वो पहला लाइन आपको याद हो जाएगा, जादूगर सैया छोड़ो मोरे भैया। तो ये इस खूबसूरत गाने को कार्यक्रम की शुरुआत में आपको मैं सुनाने वाला हूँ। नागिन फिल्म 1954 में बनी हिंदी भाषी फिल्म है और भारत में रिलीज हुई थी। सुनील नाम का एक लड़का एक दिन शिकार करते समय अनजाने में एक सांप को मार देता है और नागिन आती है और सुनील को मारना चाहती है, डसना चाहती है, लेकिन वो बच निकलता है। फिर देखिए नागिन उससे किस तरह से बदला लेता है, ये पूरा फिल्म उसी पर बना है। तो ये इस फिल्म का एक खूबसूरत गाना आपको सुना रहा हूँ मैं अभी, जिसे राजेंद्र कृष्ण साहब ने लिखा है, लता मंगेशकर ने गाया है, हेमंत कुमार साहब ने संगीत से सवारा है। आप सुनाए हैं रेडियो पुनेरी आवाज, खुश रहो खुशियां बांटो।

नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो पुनी आवाज 107.8 FM पर। बहुत ही प्यारा सा गीत आपने सुना नागिन फिल्म का। खुशी होती है जब हम लोग इस तरह की जो पिक्चराइजेशन को देखते हैं या जो नागिन का म्यूजिक अलग सा है उसको जब सुनते हैं, तो कहीं ना कहीं वो सारे जंगल, नाग, वो सारे चित्रण हमारे बीच में आ जाता है और एक अलग फीलिंग आता है, एक जिज्ञासा बनी रहती है कि क्या हो रहा है, ये देखने का दिल करता है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। 1956 में मैं ले चल रहा हूँ आपको, जागते रहो ये एक फिल्म बनी थी और इस फिल्म के मुख्य कलाकार थे राज कपूर, नरगिस, प्रदीप कुमार, मोतीलाल और सुमित विश्वास। इन सभी ने काम किया था इस फिल्म में और ये एक गरीब ग्रामीण व्यक्ति जो है नौकरी की तलाश में शहर में आता है और एक दिन उसे प्यास लगती है और अपनी प्यास बुझाने के दौरान उसे कई बाधाओं का सामना करना पड़ता है। तो ये इस फिल्म में बातें दिखाई गई हैं, इसलिए फिल्म का नाम है जागते रहो। तो आइए इस फिल्म का एक खूबसूरत गाना मैं आपको सुनाऊंगा, शैलेंद्र साहब का लिखा, लता मंगेशकर का गाया, सलील चौधरी साहब का संगीत और शंभू मित्रा, अमित मैत्रा इनका निर्देशन में ये फिल्म बनी थी। आपके लिए ये खूबसूरत गाना इस फिल्म का, जागो मोहन प्यारे, खुश रहो खुशियां बांटो।

अब तो आंसू भी नहीं आते आंखों में, हर जख्म नासूर सा लगता है। मोहब्बत ऐसे मोड़ पर लाई है कि अब अपना नाम भी बेगाना सा लगता है। आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज। ये बहुत ही प्यारा सा गीत आपने अभी सुना। अब मैं आपको फिर से एक और फिल्म आई थी 1956 में, जिसका नाम था चोरी चोरी। जी हाँ, ये भी बहुत ही खूबसूरत फिल्म जिसमें किशोर दा ने एक्टिंग किया था। और 1956 का चोरी चोरी फिल्म का एक गाना मैं आपको अभी सुनाने वाला हूँ। कम्मो नाम की एक लड़की रहती है, जिसके पिता जब सुमन कुमार के साथ उसके रिश्ते की बात करते हैं या उसके रिश्ते की बात आती है तो उसे वो ठुकरा देते हैं। अब वो भाग जाती है कम्मो, लेकिन कुछ दिनों के बाद वो घर लौट आती है और उसका स्वभाव बदला हुआ होता है। ये देखकर उसके पिता बिल्कुल हैरान हो जाते हैं। तो इसी पर यह पूरी फिल्म बनी है, जिसका नाम है चोरी चोरी। अनंत ठाकुर के निर्देशन में बनी फिल्म, शंकर जयकिशन का संगीत। और आइए इस फिल्म का खूबसूरत गाना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, जिसे सलील शैलेंद्र साहब ने लिखा था, लता और मन्ना डे ने इसे गाया था। तो आइए ये खूबसूरत गाना अभी सुनेंगे। चिंगारी का खौफ न दो हमें, दिल में आग का दरिया बसाए बैठे हैं। जल जाते कब के इस आग में, मगर खुद को आंसुओं में भिगोए बैठे हैं। आप सुने हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM पर, खाबों का सफर। खुश रहो, खुशियां बांटो।

आप सुन रहे हैं रेडियो पुनीरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो। नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो पुनीरी आवाज 107.8 FM पर खाबों का सफर। मैं हूं आपका हम सफर सनी। तो आइए इस सफर को और आगे बढ़ाते हैं। आप चलते हैं 1958 में एक फिल्म आई थी जो खास अदालत नाम का, नरगिस, प्रदीप कुमार, प्राण, अचला सखदेव और प्रतिमा देवी इन पर पिक्चराइज किया गया था। कालिदास के निर्देशन में मदन मोहन साहब का संगीत में ये फिल्म बना था। और इसमें एक जैसे कि कानून की बात बताई जाती है और कानून में जैसे कि अदालत शब्द सुनकर ही आपको पता होगा कि फिल्म किस तरह से बना है। और कई बार गलत व्यक्ति के ऊपर आरोप लग जाता है और उसे फिर जेल के चक्कर में अपना जिंदगी काटनी पड़ती है। और ऐसे में जो है घर की सिचुएशन कैसा होता है और प्रेमी से आश्रय मिलने के बाद वो इस तरह से चीजें बनती है, वो सारी चीजें इसमें दिखाई गई है। तो आइए, इस फिल्म का एक बहुत ही अच्छा गीत है जो मैं आपको अभी सुनाऊंगा, राजेंद्र कृष्ण साहब का लिखा, लता मंगेशकर का गाया, मदन मोहन साहब का संगीत। ये खूबसूरत गीत, खुश रहो, खुशियां बांटो।

नमस्कार, ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। बहुत ही खूबसूरत गाना आपने सुना, इस पर चार लाइनें मुझे याद आ रहा है। जिंदगी के उलझे सवालों के जवाब ढूंढता हूँ, कर सके जो दर्द कम वो नशा ढूंढता हूँ। वक्त से मजबूर हालत से लाचार हूँ मैं, जो दे दे जीने का बहाना ऐसी राह ढूंढता हूँ। आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज। तो आइए, बहुत ही अच्छे अच्छे गीत आप सुन रहे हैं, आशा करता हूँ आप सभी को अच्छा लग रहा है। एक फिल्म 1959 में आई थी जिसका नाम था सुजाता। नूतन, सुनील दत्त, ललिता पवार, शशिकला और सुलोचना लोटकर, इन पर यह पिक्चराइज किया गया था। और इसमें एक अछूत अनाथ व्यक्ति की कहानी बताया गया है और सुजाता को ब्राह्मण दाम्पति द्वारा अपनाया जाता है और ब्राह्मण आदमी सुजाता के प्यार में पड़ता है, लेकिन वे एक साथ रहने के लिए संघर्ष करते हैं, जैसे समाज उन्हें नीची नजर से देखता है। तो ये इस फिल्म में एक जात पात की बात इसमें बताने की कोशिश की है और मैसेज ये है कि इंसान सब एक है और सबको समान रूप से देखना है। वसुदेव कुटुंबकम की भावनाओं को व्यक्त करने की कोशिश बिमल रॉय ने अपने इस फिल्म में की है और सुबोध घोष ने इस कहानी को लिखा था। एस डी बर्मन का संगीतबद्ध ये फिल्म, और इस फिल्म में एक जे अक्षर वाला गाना है, तो आइए उसको सुनते हैं अभी तलत महमूद की आवाज में। मजरू सुल्तानपुरी साहब का लिखा सचिन देव बर्मन का संगीत आपके लिए खास। सदका भी दे दिया है, नजर भी उतार दी, दौलत सुकूनो चैन की सब मुझ पे वार दी। कल शाम मैंने क्या कहा, तबीयत खराब है, माँ ने तमाम रात दुआ में गुजार दी। आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज। खुश रहो, खुशियां बांटो।

आप सुन रहे हैं रेडियो पुनीरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो। नमस्कार, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। बहुत ही प्यारे प्यारे गीत 50s और 60s के ओल्ड मेलोडीज आप सुन रहे हैं। तो आइए एक और खूबसूरत गाना मैं आपको सुनाने वाला हूँ जो जे अक्षर से शुरू होता है और ये 1961 में रिलीज हुई एक फिल्म जिसका नाम था हम दोनों। देवानंद, साधना, नंदा, ललिता पवार और रसीद खान पर पिक्चराइज किया गया था ये फिल्म और इस फिल्म को संगीत से संवारा था जयदेव ने और विजय आनंद अमरजीत ने इस फिल्म का निर्देशन किया था। तो इस फिल्म की छोटी सी भूमिका इस तरह से है, एक जैसे दिखने वाले सैनिक एक दूसरे के जीवन में उलझते हैं, जब उनमें से एक लड़ाई में हार जाता है, जब एक को मर जाना होता है तब दूसरा परिवार को सूचित करने चला जाता है, लेकिन वो एक समान देखने से क्या ब्रह्म होता है ये इस फिल्म में दिखाया गया है। विजय आनंद अमरजीत का खूबसूरत निर्देशन में बनी ये फिल्म हम दोनों डबल रोल दिखाया है। तो ये डबल रोल है देवानंद साहब का। तो आइए इस फिल्म का एक खूबसूरत गाना है जो मैं आपको सुनाने वाला हूँ अभी, साहिल लुधियानवी साहब का लिखा, आशा भोसले का गाया, जयदेव साहब का संगीत, आपके लिए खास ये खूबसूरत नगमा अभी।

आप सुन रहे हैं रेडियो पुनीरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो। कोई मिलता ही नहीं हमसे हमारा बनकर, वो मिले भी तो एक किनारा बनकर। हर ख्वाब टूट के बिखरा कांच की तरह, हर ख्वाब टूट के बिखरा कांच की तरह, बस एक इंतजार है साथ सहारा बनकर। आप सुनाए हैं रेडियो पुनीरी आवाज 107.8 FM पर ख्वाबों का सफर। सिकंदर आजम इस फिल्म के बारे में जो 1965 में रिलीज हुई थी, और ये फिल्म जो है बहुत ही खूबसूरत ऐतिहासिक फिल्म जिसको कह सकते हैं, पृथ्वीराज चव्हाण, धारा सिंह और मुमताज वीना प्रेम चोपड़ा पर पिक्चराइज किया गया था, और इसको लिखा था कमर जलालाबादी ने। और यहाँ पर एक राजा की कहानी बताई जाती है। उस राजा की कुर्सी को हथियाने के लिए वहाँ के मिनिस्टर राजा को मार देते हैं। सिकंदर उस राजा को मारकर राजा बन जाता है खुद, और इस तरह की जो कहानी है वो बताया गया है। बाकी सब देश जीतने के बाद वो जब हिंदुस्तान आता है तो वहाँ पर एक जो सिपाही है उसके साथ उसकी बातचीत चलती है, और वहाँ पर कहानी जो है मोड़ नया लेती है। अलेक्जेंडर द ग्रेट की कहानी पर बेस्ड ये फिल्म बनी थी। तो आइए, इस फिल्म का एक खूबसूरत गाना है जो मैं आपको सुना रहा हूँ अभी, राजेंद्र कृष्ण जी का लिखा, मोहम्मद रफी साहब का गाया, हंसराज बहल इनका संगीत, फिल्म सिकंदर आजम आपके लिए खास। ये बहुत ही खूबसूरत गाना है, देशभक्ति का ये प्यारा सा गीत, जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया होगी।

का जो गुणगान है वो दिल को छू लेता है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। ऊंचे लोग नाम का फिल्म आई थी 1965 में। इसके कलाकार थे अशोक कुमार, राजकुमार, कन्हैयालाल जी, तरुण बोस और के आर विजया। और ये फिल्म 19 अगस्त 1965 को रिलीज हुई थी। फनी मजुमदार के निर्देशन में, चित्रगुप्त का संगीत, मजरू सुल्तानपुरी के गीत इस फिल्म में है। तो आइए, इस फिल्म का छोटा सा स्टोरी ऐसा है। ऊंचे लोग, ये मुंबई में रिलीज हुई थी। ऊंचे लोगों का मतलब है कि बहुत सारी चीजें आ जाती है उसमें। आप किसको ऊंचे कह सकते हैं, पैसे वाले को या फिर जिनके अंदर समझ है। तो ये बहुत बड़ा एक सुंदर चीज इसमें दिखाने की कोशिश किया है फनी मजुमदार ने। तो ये इस फिल्म का एक खूबसूरत गाना है जो मैं आपको सुना रहा हूँ, अक्षर जी से। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

आप सुन रहे हैं रेडियो पुनीरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो। दिल में हर राज दबा कर रखते हैं, होठों पर मुस्कुराहट सजा कर रखते हैं। ये दुनिया सिर्फ खुशी में साथ देती है, इसलिए हम अपने आंसुओं को छुपा कर रखते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं ख्वाबों के सफर में। आदमी और इंसान इस नाम से एक फिल्म आई थी 1969 में, और ये बहुत ही खूबसूरत फिल्म बनी थी जिसमें बहुत सारे मसालेदार फिल्म कह सकता हूँ मैं, कॉमेडी भी है, रोमांस भी है, लड़ाई भी है, फाइट भी है। तो ये बहुत ही खूबसूरत गाना है इसमें, जो जे अक्षर से शुरू होता है, और इसमें एक दोस्ती वाली बात बताई गई है। पुराने दोस्त फिर वो दुश्मन में बदल जाते हैं, और फिर कैसे एक लड़की के प्यार में दोनों पड़ते हैं, फिर किस तरह से वो चीजें जो है खत्म हो जाती हैं। एक रेलवे पुल से जुड़ा हुआ कहानी इसमें दिखाया गया है, जो बहुत ही खूबसूरत है। 8 अगस्त 1969 को ये फिल्म रिलीज हुई थी। बलदेव राज चोपड़ा ने इसका निर्माण किया था, रवि साहब ने इसे संगीत से संवारा था। तो ये फिल्म धर्मेंद्र, मुमताज, सायरा बानो और जॉनी वॉकर पर पिक्चराइज किया गया था। तो साहिर लुधियानवी साहब का लिखा, महेंद्र कपूर का गाया, रवि साहब के संगीत से सजा ये गाना। खुश रहो, खुशियां बांटो।

मौत के बाद याद आ रहा है कोई, मिट्टी मेरी कब्र से उठा रहा है कोई। या खुदा दो पल की मोहलत और दे दे, उदास मेरी कब्र से जा रहा है कोई। तुमसे अच्छा कौन है। जी हाँ, मैं गाना नहीं गा रहा हूँ, फिल्म का नाम है ये, जो 1961 में रिलीज हुई थी। ये फिल्म सचिन भूमिका द्वारा लिखी गई और प्रमोद चक्रवर्ती द्वारा निर्मित निर्देशित फिल्म में शम्मी कपूर, बबीता महमूद, ललिता पवार और प्राण ने अभिनय किया था। एक लव स्टोरी है इसमें। तो आइए इस फिल्म का एक खूबसूरत गाना मैं आपको सुना रहा हूँ अभी। हसरत जयपुरी साहब का लिखा, मोहम्मद रफी का गाया, शंकर जयकिशन का संगीत बद्ध, ये गाना जे अक्षर वाला चंद लाइनों के साथ। मैं आपसे चाहूंगा इजाजत, चुप न होगी हवा भी, कुछ करेगी घटा भी, और मुमकिन है तेरा जिक्र कर दे खुदा भी, फिर तो पत्थर ही शायद जब्त से काम लेंगे, हुस्न की बात चली तो सब तेरा नाम लेंगे। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। सलाम नमस्ते, शबाकर, शुभ रात्रि। आप सुनाए रेडियो पुनेरी आवाज, खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: रिश्तों में सरलता और प्यार बनाए रखने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: एंगर इज अ वेपन जिसको हमने हर परिस्थिति में यूज करना शुरू कर दिया है। व्हाट वी आर नॉट रियलाइजिंग दैट वेपन डजंट वर्क, इट्स नॉट प्रोवाइडिंग एनी रिजल्ट, लेकिन फिर भी हम उसी शस्त्र को बार बार यूज करे जा रहे हैं और उससे चोट दूसरे को नहीं लगती उतनी ज्यादा, वो भूल जाएगा। बॉडी के अंदर भी उसका इफेक्ट होता है, माइंड पर भी होता है। तो अगर हम ये याद रख लें कि ये एक हथियार है मेरे हाथ में जिससे मैं दूसरों को मारने की कोशिश कर रहा हूँ, उसका किसी और पर कोई अच्छा इफेक्ट नहीं होने वाला है, वो सिर्फ मेरा ही नुकसान करे जा रहा है, तो हम उसको धीरे धीरे ऑटोमेटिकली खत्म कर देंगे। बहुत ईजी है खत्म करना, इट्स जस्ट दिस अंडरस्टैंडिंग ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। कि दूसरा, सबसे पहला निवारण यही होगा कि दूसरा मुझे गुस्सा नहीं दिला सकता, ये खुद मेरे हाथ में। तो आधा तो इसी से खत्म हो जाता है, क्योंकि अभी तक हमेशा कोई और मुझे गुस्सा दिला रहा। ये अंडरस्टैंडिंग ही अपने आप, क्योंकि मैं खुद से गुस्सा नहीं करना चाहूंगी जब मुझे समझ में आ गया कि उसका इतना डैमेज है, लेकिन मैं खुद से नहीं कर रही ना, आप मुझे दिला रहे हैं, तो देन आई फील कि नथिंग इज इन माय कंट्रोल। सो दैट इटसेल्फ चेंजेस सो मच ऑफ द पर्सपेक्टिव देखने का।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवम सरस्व, आपका अपना डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट, और आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

वरना अपना नाम नहीं है बन्ने खां भोपाली। मुन्ने मियां बधाई बनो।

काम को अच्छे करना, सिर्फ अल्लाह से डरना, सभी को गले लगाना, मोहब्बत में लुट जाना। मोहब्बत दो खजाना है, कभी जोखिम नहीं होता है जिसके पास ये दौलत।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: लाइफ का जो स्टाइल है उसको लाइफस्टाइल कहते हैं। लाइफस्टाइल इज नॉट ओनली अबाउट व्हाट वी आर ईटिंग, ड्रिंकिंग, वेयरिंग। लाइफस्टाइल इज अबाउट व्हाट वी आर थिंकिंग, स्पीकिंग, बिहेविंग। दैट्स माय लाइफस्टाइल।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: फुलेरी आवाज 107.8 FM वर्ल्ड रिन्यूअल स्पिरिचुअल ट्रस्ट का सामुदायिक रेडियो स्टेशन। खुश रहो, खुशियां बांटो।
1: नमस्कार साथियों, आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज। अब हम आपके लिए रेडियो मधुबन द्वारा निर्मित एक विशेष कार्यक्रम

नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के स्पेशल एपिसोड में। आशा करूंगा बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे। आइए, आपकी खुशी को बढ़ाने के लिए आज हम लोग करियर ऑप्शन जीवन कौशल इस कार्यक्रम में बात करने वाले हैं लेखा पाल के बारे में। जी हाँ साथियों, अकाउंटेंट करियर के बारे में बातें करेंगे, क्योंकि अकाउंटेंट अपने आप में एक बहुत ही सुंदर करियर है, जहाँ पर सभी लोगों का मन होता है कि आप भी इस जगह पर अपनी करियर को बनाए। तो साथियों, यहाँ पर हम लोग जैसे कि एक सीए के बारे में बातें किए थे, वैसे ही यहाँ पर सीए का ही ये एक जो है करियर है जिसमें हम लोग आज बात करने वाले एक अकाउंटेंट के बारे में। और राजस्थान के एक छोटे गांव में रहने वाले रमेश शर्मा जी की अगर मैं बात करूँ, तो ये इनके पिता जो है एक साधारण किसान थे और परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर थी, लेकिन रमेश शर्मा ने पढ़ाई का बहुत ज़्यादा शौक था और इसीलिए उनको जो है एक अच्छा अवसर प्राप्त हुआ। 12वीं के बाद वो बीकॉम के स्ट्रीम में गए और वहाँ से उन्होंने सीए की तैयारी की। कई बार असफलता मिली उनको, क्योंकि एक टाइम में करियर को क्रैक करना, सीए क्रैक करना मुश्किल होता है, लेकिन बार बार प्रयास करने से कहते हैं कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। बिल्कुल इसी तरह कई बार प्रयास करने के बाद रमेश शर्मा को आखिरी में सफलता मिल ही गई और दिन में वो दुकान में अकाउंटेंट का काम करते थे और रात में पढ़ाई करते थे। इस तरह से उन्होंने रात दिन एक कर दिया और मेहनत बहुत ज़्यादा की। वर्षों की मेहनत के बाद उनको जो है सीए में सफलता हासिल हुई और फिर वो धीरे धीरे जो है अपने कुछ जगह पे असिस्टेंट बनकर काम करते रहे। एक बहुत ही अच्छी कंपनी में फाइनेंस धीरे धीरे हेड भी बन गए और फिर हर महीने लाखों की सैलरी के साथ गांव के बच्चों की पढ़ाई में भी मदद करते रहे। तो इस तरह से अपना जो है करियर अच्छा मजबूत बनाने के बाद गांव के बच्चों के लिए उन्होंने पढ़ाई में मदद की। और रमेश हमेशा कहते थे कि लेखापाल बनना सिर्फ पैसे गिनना नहीं है, अकाउंटेंट बनना सिर्फ पैसों को गिनना नहीं है, बल्कि भरोसा का काम है और भरोसा कमाने का काम है। इसीलिए एक अच्छे अकाउंटेंट की जो खूबसूरती है वो है लोगों का भरोसा। साथियों, यहाँ पर जितना ज़्यादा हम लोगों को अपने भरोसे में रखेंगे, लोग हम पर भरोसा करेंगे और उनके भरोसे पर हम खरा उतरते हैं, तो हम अपने जीवन में सबसे आगे बढ़ने लगते हैं। तो इस तरह से ये विशेष लेखापाल का करियर है जो आप सबके लिए एक सुनहरा अवसर देता है और समाज में एक सम्मान भी प्राप्त होता है। तो आइए साथियों, आज हम इसी विषय को लेकर बातें करने वाले हैं। और आज के समय में जब हर संस्था, व्यापार, उद्योग, संगठन को पारदर्शिता, नियमबद्धता और आर्थिक अनुशासन की आवश्यकता होती है, तब अकाउंटेंट की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है। लेखापाल वो व्यक्ति होता है जो किसी भी संस्था के आय व्यय, कर, टैक्स, बजट, बैलेंस शीट, ऑडिट और वित्तीय रिपोर्ट का सही सही लेखा जोखा रखता है। एक कुशल लेखापाल न केवल संस्थान की आर्थिक स्थिति को मजबूत करता है, बल्कि गलतियों और धोखाधड़ी से भी बचाव करता है। तो आइए आज हम लोग इसी सम्मानजनक सुरक्षित करियर के बारे में बातें करेंगे आप सबके लिए। यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, सुनते हैं बहुत ही प्यारा संगीत। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहो, मस्कराते रहो।

नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फिर एक बार ढेर सारी खुशियों के साथ करियर ऑप्शन जीवन कौशल इस कार्यक्रम को आप सुन रहे हैं और लेखापाल के बारे में बातें कर रहे हैं। साथियों, इसमें जो अकाउंटेंट है उसकी मुख्य कार्य प्रणाली इस प्रकार होती है, जैसे कि आय और व्यय का लेखा जोखा रखना, यानी जो इनकम है हमारा वो कितना आता है और कितना हम उसमें खर्च करते हैं, इसका जो हिसाब है वो रखना, चाहे वो घर की बात हो, बिजनेस की बात हो, या फिर किसी संस्था की या फिर सरकारी किसी विभाग की बात हो। बिल, वाउचर और भुगतान का रिकॉर्ड बनाना, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट तैयार करना, टैक्स रिटर्न फाइल करना, जीएसटी, इनकम टैक्स आदि ऑडिट में सहयोग करना, बजट बनाना और खर्च पर नियंत्रण रखना, मैनेजमेंट को वित्तीय सलाह देना। आज के समय में जब डिजिटल युग में लेखापाल को टैली, एक्सेल, एसएपी, जीएसटी पोर्टल, इनकम टैक्स पोर्टल जैसे सॉफ्टवेयर और ऑनलाइन सिस्टम की भी अच्छी जानकारी होनी चाहिए, जैसे आप अपना अकाउंटिंग जो है बढ़िया कर सकते हैं। साथियों, यहाँ पर आगे ये भी बताना चाहूँगा, लेखापाल यानी अकाउंटेंट बनने के लिए कुछ रास्ते उपलब्ध हैं। जैसे 12वीं के बाद आप एक कॉमर्स स्ट्रीम लेकर अकाउंट, इकोनॉमिक, बिजनेस स्टडीज विषयों का अध्ययन सबसे अच्छा आधार माना गया है और सबसे अच्छा काम इसमें होता है। दूसरा, यहाँ ग्रेजुएशन के बाद भी बीकॉम, बैचलर ऑफ कॉमर्स, बीबीए फाइनेंस, बीकॉम ऑनर्स, इन सारी स्ट्रीम को आप क्रैक कर सकते हैं। तीसरा, प्रोफेशनल कोर्सेज भी कर सकते हैं, जैसे कि चार्टर्ड अकाउंट हो गया, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट हो गया, कंपनी सेक्रेटरी जिसको सीएस कहा जाता है आंशिक रूप से, और एमकॉम, एमबीए फाइनेंस, ये सारी चीजें भी आपके लिए मददगार साबित होता है। इसके बाद भी अगर ये सारी चीजें नहीं भी करते हैं, 12वीं के बाद आप डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स भी अगर करते हैं जिसमें टैली प्लस जीएसटी, कंप्यूटराइज अकाउंटिंग, टैक्सेशन कोर्सेस भी होते हैं, इनमें से कुछ भी अगर आप करके असिस्ट करते हैं तब भी आप जो है बहुत अच्छा कमा सकते हैं। तो धीरे धीरे आप अपनी पकड़ मजबूत करके आप कस्टमर भी बना सकते हैं और उन्हें अच्छी सर्विस देने पर आपको जो है अच्छी मुनाफा हो जाता है। तो आइए आगे बढ़ते हैं और आशा करूंगा कि आप सभी को अकाउंट्स के बारे में काफी अच्छी जानकारी मिल रही है और इन चीजों को जब हम ठीक से समझ लेते हैं और समझ के अगर काम करते हैं तो हमारा करियर अच्छा बन जाता है। देखिए, सपना हमेशा बड़ा होना चाहिए, सीए बनना हमारा लक्ष्य हो, अगर नहीं बन पाते उस रास्ते में जो भी आपके, जैसे कि मैंने

ये बताया डिप्लोमा कोर्सेस ये सारी चीजें करते हुए भी अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो भी आप एक अच्छा जो है अपना परिवार चलाने के लिए सफिशिएंट आपको इनकम मिल जाता है, तो है ना अच्छी बात। तो हमेशा कहा जाता है कि भाई लक्ष्य बड़ा रखो ताकि आप उसके नजदीक पहुंच कर भी अपने जीवन को खुशहाल बना सकते हैं। इन्हीं शुभ आशाओं के साथ आइए यहाँ पर लेते हैं छोटा सा ब्रेक, सुनते हैं बहुत ही प्यारा संगीत। आप सुनाए हैं रेडियो मधुबन पर करियर ऑप्शन जीवन कौशल, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।

नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के स्पेशल एपिसोड में करियर ऑप्शन जीवन कौशल। इस कार्यक्रम को आप सुन रहे हैं। लेखापाल के करियर विकल्प भी बहुत सारे हैं साथियों। मैंने कहा था ना, एक बड़ा ऊंचा लक्ष्य रखिए और उसके बाद आप जो है उसके नजदीक के अनेकों अवसर आपके सामने खुल जाते हैं। जैसे कि आप अगर अकाउंटेंट के लिए करियर में अनेक जो अवसर है उसको अगर आप समझ लेते हैं तब भी आपका मन होगा कि हाँ, हमें इस और जाना चाहिए। एक तो प्राइवेट कंपनियों में बहुत जरूरत होती है अकाउंटेंट की, दूसरा सरकारी विभागों में भी एक लेखा अधिकारी का बहुत अच्छा पद होता है, तीसरा आप बैंकिंग और वित्तीय संस्थाओं में भी अपनी जो है जगह बना सकते हैं, चौथा यहाँ पर CA फॉर्म्स और ऑडिट फॉर्म्स होते हैं जो बड़ी कंपनी का ही रूप होता है, उसमें भी आप अपनी जगह बना सकते हैं, पांचवी बात यहाँ पर NGO होते हैं, ट्रस्ट बने हुए होते हैं, बहुत सारे लोग सामाजिक सेवा अर्थ NGOs बनाते हैं और उसमें भी बहुत सारा पैसा आता है और उसको खर्च करना पड़ता है, तो इसके लिए भी यहाँ पर एक अच्छे अकाउंटेंट और एक समझदार व्यक्ति की मानवता से भावना से भरपूर सेवा कार्य से समृद्ध व्यक्ति की भी जरूरत पड़ती है। इसके बाद आता है आप स्कूल कॉलेजेस विश्वविद्यालय जितने भी बड़े संस्थान हैं उसमें भी अकाउंटेंट का बहुत बड़ा रोल होता है, और इसके अलावा आप स्वयं भी खुद एक अपनी कंपनी खोल सकते हैं, अकाउंटिंग ऑफिस बना सकते हैं, फ्री लांस अकाउंटेंट बन के आप लोगों के काम कर सकते हैं। मुझे याद है बचपन में मैं पढ़ाई करते हुए मेडिकल स्टोर में एज ए पार्ट टाइम सीखने के दृष्टिकोण से काम किया करता था, तो मेडिकल स्टोर एक छोटा सा काउंटर होता है जहाँ पर आप रेगुलर जो है लोग दवाई लेते हैं, और अगर कोई हॉस्पिटल होता है तो फिर वो थोड़ा सा बड़ा जो है मेडिकल स्टोर होता है, तो उसमें भी जो है जब रोज का बिजनेस करते हैं और फिर CA को विशेष रूप से वहाँ पर बुलाया जाता है और वो बंदा आकर 6 महीने में साल में 3-3 महीने में उनके अकाउंट्स बनाते हैं और फिर उनका जो है टैक्स भरा जाता है। तो ऐसे भी होता है कि भाई तब मुझे पता चला कि अकाउंटेंट का काम क्या हो रहा है। तो किसी भी बिजनेस में अगर आप एक अवधि से आपका बिजनेस बढ़ जाता है तो वहां पर आपको इनकम टैक्स भरना पड़ता है, तब आपको अकाउंटेंट की जरूरत पड़ती है। तो कहने का भाव ये है कि जहां भी बिजनेस होता है, पैसे का आवक जावक होता है, वहां पर अकाउंटेंट की जरूरत पड़ती है। यहाँ पर साथियों अनुभव बढ़ाने के साथ साथ व्यक्ति सीनियर अकाउंटेंट फाइनेंस मैनेजर CFO चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर तक बन सकते हैं। हाइट बहुत ज्यादा है लेकिन मेहनत उतना ही करना है दिल से, जब आप करते हैं तो आपको कोई भी रोक नहीं पाता एक अच्छा करियर बनाने में। साथियों आइए सैलरी की बात करते हैं। जैसे कि एक फ्रेशर अकाउंटेंट होता है सैलरी समानता उनकी 15,000 से शुरू हो जाती है और 25,000 हर महीने आपको मिल जाता है। फिर जैसे जैसे आपके अनुभव बढ़ता जाता है तो फिर आप मिड लेवल यानी 40,000 से 70,000 प्रति महीना पेमेंट पाते हैं। उसके बाद अगर आप बड़े अहदे

नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 FM पर आप सभी का फिर एक बार स्वागत है। ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ मंगल कामनाएं करते हुए आइए आगे बढ़ते हैं और बात कर रहे थे हम लोग अकाउंटेंट के बारे में, लेखापाल के बारे में। और जैसे कि मैंने कहा, पेमेंट आपको अच्छी मिल जाती है, लेकिन इसके साथ में आपके अंदर स्किल्स के साथ साथ वैल्यूज भी बहुत जरूरी है। जैसे कहते हैं, आपके अंदर कला भी हो, गुणवत्ता भी हो। तो गुणवत्ता के बारे में अगर बात करूं, तो लेखापाल के लिए जरूरी गुणवत्ता एक ये है कि एक सफल लेखापाल बनने के लिए ईमानदारी और नैतिकता, गणितीय समझ, धैर्य और एकाग्रता, नियम कानून की जानकारी, समय प्रबंधन, गोपनीयता बनाए रखने की क्षमता, ये सारे गुण आपके अंदर निहित होना चाहिए। तो इसकी प्रैक्टिस आप करके देखिएगा, इन चीजों को समय पर जो है ये गुण आपके जीवन में बहुत बड़ा यूनिक काम आता है। प्रेरक कहानी की बात करें तो एक और कहानी मुझे याद आता है जहां पर ईमानदारी बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है और वो आपके जीवन को अकाउंटेंट करियर में बहुत ज्यादा जंप देता है, आपको उन्नति देता है। तो यहाँ पर सुनीता वर्मा की बात मुझे याद आती है। एक मध्यम वर्गीय परिवार में से थी और उन्होंने बीकॉम किया और फिर टैली जीएसटी कोर्स किया और फिर उसके बाद एक एनजीओ में अकाउंटेंट की नौकरी शुरू कर दी। एक बार ऑडिट के दौरान उन्हें कुछ अनियमितता दिखाई दी। दबाव के बावजूद सुनीता ने सच्चाई का साथ दिया और पूरी रिपोर्ट ईमानदारी से तैयार करके बनाया। उनकी इस ईमानदारी से संस्था की छवि सुधरी और बाद में उन्हें एक बड़ी अंतर्राष्ट्रीय एनजीओ में सीनियर अकाउंटेंट की जिम्मेवारी मिली। आज सुनीता कई युवाओं को अकाउंटिंग का ट्रेनिंग देती है। उनका मानना है कि अकाउंटेंट की सबसे बड़ी पूंजी उसकी सच्चाई होती है। साथियों, जब आप उसकी सच्चाई पे खरा उतरते हैं तो आपका जीवन बेहतर बनता है। निष्कर्ष यही है साथियों, एक अकाउंटेंट का करियर उन लोगों के लिए श्रेष्ठ है जो स्थिरता, सम्मान और जिम्मेदारी चाहते हैं। ये क्षेत्र मेहनत, अनुशासन और ईमानदारी की मांग करता है, लेकिन बदले में एक सुरक्षित भविष्य और समाज में भरोसे की पहचान देता है। सही शिक्षा, निरंतर सीखने की इच्छा और नैतिक मूल्यों के साथ कोई भी व्यक्ति इस क्षेत्र में ऊंचाई तक पहुंच सकता है। यदि आप संख्याओं से दोस्ती कर सकते हैं और जिम्मेवारी निभाने का साहस रखते हैं तो लेखापाल का करियर आपके लिए एक उज्ज्वल रास्ता है। अगर आप चाहे तो इसमें धीरे धीरे करके आप अपने करियर को सेट कर सकते हैं। शुरू शुरू में आप अपनी पढ़ाई को जारी रखें। 12वीं के बाद जब आप कॉलेज में प्रवेश करते हैं, बीकॉम से जरूर लें और बीकॉम करते हुए आप छोटे छोटे फॉर्म में थोड़ा थोड़ा जो है बीच में सैटरडे संडे आप प्रैक्टिकल भी चीज़ों को सीखते जाए, करते जाए। और मैं चाहूँगा कि आप पैसे के लिए काम मत कीजिए शुरू शुरू में, सीखने की वजह से आप जाइए और पेमेंट मत लीजिए। जब आप पेमेंट नहीं लेंगे तो लोग भी आप पर ईमानदारी से आपको जो है चीज़ें बहुत अच्छी तरह से बताएंगे और आपका सम्मान भी होगा। जब आप पैसे लेंगे तो लोग आपको सिखाएंगे काम, है ना, और आप पैसे के चक्कर में जो है पढ़ाई पर ध्यान कम देंगे। इसीलिए पैसे मत लीजिए, आप अपना पढ़ाई करते हुए सीखने की वजह से आप ऑफिस में अपना काम कीजिए, उनको हेल्प कीजिए और सीखते जाइए। इससे क्या होगा, आपकी जो एक्सपीरियंस है उसके साथ में आपकी पढ़ाई में उसका हेल्प मिलेगा। और जब 5 साल आप पूरी तरह से बीकॉम पूरा करके डिग्री आपके हाथ में आएगा तो उसके बाद आप कहीं भी जाएंगे, पढ़ाई के साथ साथ अनुभव का सर्टिफिकेट आप अगर लगा देते हैं तो किसी भी कंपनी में आपको जल्दी जो है नौकरी मिल जाती है और आपको एक अच्छा पैकेज मिल जाता है। तो ये बात जरूर ध्यान रखिए और साथ में जो कला के साथ में मैंने कहा गुणवत्ता, वो अगर ईमानदारी से आप अपने जीवन में अपनाते हैं ईमानदारी को, तो वो आपके लिए 4 चांद लगा देता है। इन्हीं शुभ आशाओं के साथ आप सभी विद्यार्थी मित्रों को फिर से एक बार अपने करियर के लिए ढेर सारी खुशियां, ढेर सारी शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं करते हैं। फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड में, एक नए स्ट्रीम के बारे में बात करेंगे। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ। सलाम, नमस्ते, खमा गणिसा, जय हिंद, जय भारत, ओम शांति। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
1: अपने आप को देखें एंड प्रिपेयर माइसेल्फ फॉर टुडे। आज सारा दिन में बातें आएंगी, लोग कुछ कुछ ऐसा करेंगे या कहेंगे विच विल नॉट बी अकॉर्डिंग टू द वे आई वॉन्ट देम टू बी। आज सारा दिन अवेयरनेस एंड चेकिंग, कौन ज्यादा पावरफुल है, बातें, सिचुएशंस और मी, किसका प्रभाव किस पर पड़ता है। आज सारा दिन सिर्फ चेकिंग, बात आई बात गई, मुझ पर उसका कितना प्रभाव पड़ा। दिस इज माई चेकिंग फॉर टुडे।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0102 बोरियत की एरर, नएपन की कमांड रिजेक्टेड। अब हर चीज हर जगह तो नहीं मिलती, कुछ नयापन चाहिए तो सुनिए पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: अपने आप को आज देखते हैं, हर रोज कुछ बातों को हमने एक ही तरह से रिएक्ट किया और करते करते वो मेरी आदत बन चुकी है। आज एक नया तरीका, अ न्यू वे ऑफ रिस्पोंडिंग, एक ऐसा रिस्पॉन्स जो मुझे खुशी, सेहत और सुंदर रिश्ते देगा, एक ऐसा रिस्पॉन्स जो मेरे लिए कंफर्टेबल एंड रॉयल होगा। आज अपनी किसी एक आदत, अपने किसी एक रिएक्शन को चूज करते हैं एंड देखें अपने आप को कि आज उसी परिस्थिति में अपने आप को एक नए तरह से रिस्पॉन्ड करते हुए देखें। धीरे धीरे अ न्यू वे ऑफ थिंकिंग

0: नया पैटर्न क्रिएट होना शुरू हो रहा है। दिस इज द पावरफुल बीइंग।
1: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: हम खुश बैठे हैं, हम प्यार से वो चीज खा रहे हैं जो हमें पसंद है, तो पूरी सिचुएशन तो हमारी एक्चुअली। सी द सिचुएशन इज ऑल अबाउट मी। मैं आराम से इस कुर्सी पे बैठी हूँ, मेरे सामने मेरी फेवरेट मिठाई है, मैं प्यार से खा रही हूँ, एवरीथिंग इज परफेक्ट, हैप्पी हैप्पी। और सामने से कोई आया, किसी ने एक लाइन बोल दी। इस केस में लाइन इतनी बहुत ज्यादा कड़वी भी नहीं है, लेकिन हो सकता है किसी ने कोई कड़वी लाइन भी बोल दी, कोई अब्यूजिव लैंग्वेज यूज कर ली, किसी ने झूठ बोल दिया, किसी ने डांट दिया। इस केस में तो कुछ भी नहीं था, इस केस में थोड़ा सा बोला कि आपको थोड़ी परहेज करनी चाहिए थी। हियर माई वर्ल्ड वॉज परफेक्ट, सब कुछ मेरे अनुसार था, लेकिन सामने से कोई आया, सामने से किसी ने एक लाइन बोली और वो एक लाइन ने मेरे पूरे वर्ल्ड को आउट ऑफ कंट्रोल कर दिया। मन डिस्टर्ब्ड, फीलिंग्स डिस्टर्ब्ड, फिर वर्ड्स डिस्टर्ब्ड, काफी देर तक डिस्टर्ब्ड। मीनिंग वन लाइन, किसी की एक लाइन मेरी इस दुनिया को एक घंटे के लिए डिस्टर्ब कर सकती है। और ये भी हो सकता है कि अगली बार जब आप उनसे मिलेंगे तब भी आपको वो वाली बात याद आ जाएगी। सो इट विल नॉट इवन रिस्ट्रिक्ट टू दिस वन आवर। ये हो सकता है कि इट स्टेज ऑन माई माइंड एंड इट कम्स बैक टू माई माइंड लेटर ऑन। शायद कभी जब वो लड्डू खा लिया तब वो बात याद आ जाएगी, या शायद वो बहन सामने कभी आ जाएगी तो वो बात याद आ जाएगी। मतलब माई माइंड, ये हमारा एक्सरे है।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

चल चल चल मेरे कंप्यूटर, चल चल चल मेरे कंप्यूटर। कुछ चीजें ओरिजिनल ही अच्छी लगती हैं। सुनिए पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: नो स्मोकिंग जोन जैसे बन गए हर जगह, वैसे नो एंगर जोन। इधर गुस्सा नहीं कर सकते, आया है तो बाहर जाओ, कर क्या, यहाँ नहीं कर सकते, यहाँ नहीं कर सकते। क्यों स्मोकिंग के लिए क्यों अलग जगह बनाई, क्यों नहीं कर सकते सबके बीच? क्योंकि कर आप रहे हैं, नुकसान हमारा हो रहा है। इसी तरह गुस्सा कर आप रहे हैं, सारे वातावरण में और सब लोगों का नुकसान हो रहा है। तो आप जाइए, वहां वो कमरा है, उधर गुस्सा करिए, वापस आइए।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: आइए आइए, दरवाजे पे क्यों खड़े हैं? अंदर आइए। ये घर है मुस्कुराहट का, यहाँ बसती है खुशियाँ। ये है पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।
1: तुझे तकने को एक नजर

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: हम याद रखें कि वो एक बार भी जब हमें गुस्सा आया, हम इस विश्व को दूषित कर रहे हैं। हम मन को, शरीर को, रिश्तों को, प्रकृति को दूषित कर रहे हैं। और अगर एक बार भी हमने आज क्रोध को त्याग कर शांति को धारण किया, तो हम सिर्फ अपने मन को सुकून नहीं, रिश्तों में प्यार नहीं, प्रकृति को सद्भावना नहीं, हम विश्व को सुंदर बनाने की सेवा कर रहे हैं। तो क्या हम सेवा करने के लिए तैयार हैं?
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
1: सपोज आपने मुझे अभी आकर कहा कि आपका शरीर कमजोर है, एक आपकी बात को इग्नोर कर दो, ठीक है। सेकंड, मैं कहूँ कि मैं कुछ नहीं कर सकती उस बारे में, है कमजोर तो है, आई कांट हेल्प, खाना ऐसा है आजकल, पानी ऐसा है, मौसम ऐसा है, तो ये कमजोर है। थर्ड ऑप्शन इज ठीक है, आई स्टार्ट वर्किंग ऑन इट टूडे, एंड अगर मैं आज भी उस पर काम करना शुरू कर दू, चाहे मैंने 50 साल कोई काम नहीं किया उसके ऊपर एंड वो कमजोर हो चुका है, बिल्कुल कमजोर हो गया, लेकिन आज भी अगर उस पर काम करना शुरू कर दिया, आई एम मूविंग फ्रॉम डिजीज टू हेल्थ। आज अगर काम करना नहीं शुरू किया उस पर, देन इट्स डिक्लाइनिंग फर्दर फर्दर फर्दर। तो आज डिप्रेशन नहीं होगा ये बात सुन के, लेकिन आज अगर ध्यान नहीं रखा और कल अगर कोई बड़ी बात आ गई तो ताकत नहीं होगी उसको फेस करने में, तब डिप्रेशन होने का चांस होता है। आज इस बात को सुनने से नहीं होना चाहिए, आज एक रियलाइजेशन होने चाहिए।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: Assertiveness without generating anger. तभी वो रियल मायने में असर्टिवनेस होगा, क्योंकि असर्टिवनेस इनर स्टेबिलिटी। तो हम ये नहीं कह सकते कि हम गुस्सा भी है और स्टेबल भी है, क्योंकि जैसे ही गुस्सा अंदर जेनरेट हुआ, चाहे वो सप्रेस कर दिया, लेकिन हम स्टेबल नहीं होते हैं तब, यू नो। तो देन आई कैन नॉट से कि आई एम इंटरनली स्टेबल बट नाउ आई एम बीइंग असर्टिव। तो इंटरनल स्टेबिलिटी मीन्स यू नो नो ट्रेस ऑफ एंगर। उसको जो पूरा खत्म होगा, इंटरनली बिल्कुल काम एंड इन कंट्रोल है, लेकिन फिर भी आपको डिसिप्लिन करना, यू नो। एंड असर्टिव जब हम होते हैं, हमें बहुत कम बोलना पड़ेगा, बहुत ज्यादा यू नो, और बहुत सोच समझ के एक एक बोल निकलेगा, क्योंकि आप फुल इन कंट्रोल है। एंगर में या सप्रेशन वाली स्टेज में आप इंटरनली डिस्टर्ब्ड है कि वो हो सकता है कि मुख से कोई ना कोई ऐसा बोल निकल ही जाए कि दूसरे को भी बुरा लगेगा और खुद को भी पश्चाताप हो।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: ओह क्या बात है, यहाँ तो आज बड़ी संख्या में सैलानी आए हैं, देश के विदेश के। ओहो यहाँ तो बड़े ही सारे लोग हैं। लगता है मेरा दोस्त पुराना स्तंभ बहुत बिजी होगा आज, लेकिन मुझे तो आगे की कहानी जाननी है। चलो एक बार चल के पूछ ही लेती हूँ, वो रहा पुराना स्तंभ।
1: वाह मनु तुम इतनी जल्दी लौट आई।
0: हाँ मुझे तो आना ही था। जब छत्रपति शिवाजी महाराज अफजल खान से मिलने गए तो क्या हुआ, कब से यही तो चल रहा है मेरे मन में।
1: पता है आज यहाँ भी जो सैलानी आए वो कुछ इसी बारे में बात कर रहे थे। छत्रपति शिवाजी महाराज सभी के दिलों में जो है।
0: हाँ वैसे आपने पिछली बार बताया था ना कि कैसे शिवाजी ने बचपन में ही हिंदवी स्वराज्य स्थापित करने का प्रण लिया था और कैसे उन्होंने गांव-गांव घूमकर अपनी सेना बनाई थी। और उनके पिताजी शाहजी भोसले को जब आदिल शाह ने कैद कर लिया तो उन्हें छुड़वाया भी था। उन्होंने अपना किला भी बनवाया था रायगढ़। कुशल योद्धा की तरह कितने युद्ध भी किए और बाद में तो अफजल खान से युद्ध भी हुआ था। पर शिवाजी और अफजल खान सुलह करने के लिए मिलने जा रहे थे, फिर क्या हुआ।
1: क्या बात है, तुम्हें तो सब याद है मनु। ठीक है चलो अब मैं तुम्हें आगे की कहानी सुनाता हूँ।
0: हाँ हाँ प्लीज आई एम वेटिंग फॉर इट।
1: तो सुनो, शिवाजी और अफजल खान दोनों को ही एक दूसरे पर भरोसा नहीं था। बाहर से बिना किसी हथियार के दिख रहे शिवाजी ने अपने गुप्त हथियार से अफजल खान को मृत्यु को समर्पित कर दिया। इसके बाद मराठा सेना ने अफजल खान की सेना पर हमला कर दिया और मुगलों को एक बड़ी शिकस्त का सामना करना पड़ा। इस बात को अधिक समय भी नहीं बीता था कि अगली चुनौती शिवाजी के समक्ष आ खड़ी थी। औरंगजेब ने अब की बार अपने मामा मुगल जनरल शाहिस्त खान को शिवाजी के विरुद्ध खड़ा कर दिया। शाहिस्त खान ने पुणे के लाल महल पर भी कब्जा कर लिया।
0: अच्छा
1: पुणे में किसी भी मराठा को आने की अनुमति नहीं थी।
0: ओह
1: तो शिवाजी ने अपने कुछ गिने चुने सिपाहियों के साथ आज की भाषा में सर्जिकल स्ट्राइक के तरीके से शाहिस्त खान पर उसके महल में ही हमला कर दिया।
0: सर्जिकल स्ट्राइक, और उस जमाने में।
1: जी इस हमले में शाहिस्त खान तो बच गया लेकिन उसकी 3 उंगलियां कट गई।
0: अच्छा
1: साथ ही उसका बेटा और कई अधिकारी भी मारे गए। 3 साल तक शाहिस्त खान का पुणे पर कब्जा रहा और जान माल की भारी हानि हुई। इसलिए शिवाजी ने मुगलों के व्यापारिक नगर सूरत पर हमला करने का फैसला किया। पुरंदर संधि के बाद औरंगजेब ने शिवाजी को आगरा आमंत्रित किया, परंतु वहां शिवाजी के साथ अपमानजनक व्यवहार किया गया। शिवाजी को आगरा के किले में नजरबंद कर दिया गया। शिवाजी ने आगरा में मौजूद अपने मित्र और अंगरक्षकों को वापस भेजने का अनुरोध किया, जिसे औरंगजेब ने मान लिया और फिर खुद भी एक तरकीब से फलों की टोकरी में छिपकर खुद को भी आजाद करा लिया। 3 साल तक शिवाजी ने कोई कदम नहीं उठाया।
0: अच्छा
1: उसके बाद उन्होंने दक्षिण में एक बार हमला किया और अपने किले वापस लिए। उन्होंने सूरत पर भी हमला किया।
0: ओह
1: अब तक शिवाजी का राज्याभिषेक नहीं हुआ था, इसलिए उनके राज्याभिषेक का भव्य और विशाल आयोजन किया गया।
0: अच्छा
1: शिवाजी ने मणियों से सजा छत्र धारण किया और उन्हें छत्रपति शिवाजी कहा जाने लगा।
0: अच्छा वो तो बहुत ही भव्य लगता होगा ना।
1: बिल्कुल बहुत भव्य।

0: शिवाजी महाराज सब धर्मों को समान महत्व देते थे। हिंदवी राज्य की स्थापना से छत्रपति शिवाजी की संकल्पना एक हिंदू राज्य की नहीं थी।
1: अच्छा,
0: अपितु वे यही चाहते थे कि सभी धर्म पूर्ण सम्मान के साथ रहे।
1: ओह,
0: और इसलिए उन्होंने औरंगजेब को भी पत्र लिखा जिसमें उन्होंने हिंदुओं पर लगाए जाने वाले जजिया कर को हटाने के लिए कहा। इससे पहले मुगल बादशाह अकबर ने जजिया को हटा दिया था, परंतु औरंगजेब ने इसे पुनः लागू किया था।
1: अच्छा।
0: हालांकि औरंगजेब ने शिवाजी की बात नहीं मानी, परंतु शिवाजी महाराज ने कभी अपने राज्य में धर्मों का भेदभाव नहीं किया।
1: अरे वाह।
0: उन्होंने हिंदुत्व की रक्षा अवश्य की, परंतु किसी अन्य धर्म का बहिष्कार या नुकसान नहीं किया।
1: ये तो बड़ी अच्छी बात है।
0: और सैनिकों को भी निर्देश थे कि दुश्मन देश की महिलाओं और बच्चों को नुकसान न पहुंचाया जाए। वे महिलाओं की गरिमा की सदैव रक्षा करते थे। मनु,
1: अच्छा,
0: इतिहासकारों की माने तो शिवाजी महाराज का राज्य आज के गुजरात से लेकर तमिलनाडु के मद्रास तक 48 डिस्ट्रिक्ट में फैला हुआ था।
1: क्या बात है, इतना बड़ा राज्य।
0: बहुत बड़ा। शिवाजी को फादर ऑफ इंडियन नेवी भी कहा जाता है, तुम्हें पता है?
1: नहीं, ये बात तो मुझे पता ही नहीं थी।
0: अपनी विलक्षण प्रतिभा और तीक्ष्ण बुद्धि के चलते उन्होंने बहुत से ऐसे काम किए जिन्हें आज भी बड़े गर्व से याद करते हैं पुणे। सच, उनके जन्म से ये भूमि धन्य धन्य हो गई। जिस दौरान अंग्रेज अपनी जड़ें भारत में जमा रहे थे, उस शुरुआती दौर में अंग्रेजों के साथ उन्होंने अच्छा व्यवहार रखा।
1: अच्छा,
0: परंतु 1660 में अंग्रेजों ने बीजापुर की सल्तनत के साथ मिलकर जब उनके विरुद्ध पनाड़ा के किले पर कब्जा करने के लिए साथ दिया, तो उस व्यावहारिक रिश्ते का भी अंत हो गया।
1: ओह,
0: इसका खामियाजा अंग्रेजों को तब भुगतना पड़ा जब 1670 में बॉम्बे में शिवाजी ने अंग्रेजों को लड़ाई की सामग्री बेचने से इनकार कर दिया।
1: अच्छा, तो ये बात है।
0: हाँ, छत्रपति शिवाजी ने पेशवा जैसे शब्दों को भी बदल दिया और अपने राज्य में अष्ट प्रधान नियुक्त किए जो राज कारोबार चलाने में मदद करते थे।
1: अरे वाह।
0: और भाषा की बात करूं तो शिवाजी महाराज ने पर्शियन भाषा की जगह मराठी और संस्कृत भाषा का इस्तेमाल किए जाने का आदेश दिया।
1: अरे वाह।
0: उन्होंने अपने राज दरबार में हर धर्म के व्यक्तियों का स्वागत किया और जाति के आधार पर कभी भेदभाव नहीं किया।
1: अरे वाह।
0: टैक्स एकत्रित करने के लिए उन्होंने ऐसा सिस्टम लागू किया जिसमें बिचौलियों की जगह नहीं थी।
1: अच्छा।
0: अपितु सीधा उत्पादक से ही कर वसूल किया जा सके। अपने राज्य में उन्होंने दो तरीके के कर लगाए।
1: कौन से?
0: एक का नाम था चौथ और सरदेशमुखी। चार प्रांतों में शिवाजी ने राज्य को विभाजित किया। गांव इस व्यवस्था की सबसे छोटी इकाई था, जिसके प्रमुख को देशपांडे कहा गया, जो कि पंचायत का प्रमुख था।
1: अच्छा, और फिर?
0: शिवाजी सदैव एक मजबूत सेना बनाकर आगे बढ़े। कोंकण और गोवा तट पर भी उन्होंने अपनी उपस्थिति को बनाए रखा। छत्रपति शिवाजी की मृत्यु 52 वर्ष की कम उम्र में 3 अप्रैल 1660 को राजगढ़ के किले में हुई।
1: ओह।
0: शिवाजी की मृत्यु के तुरंत बाद ही उनके बड़े बेटे संभाजी और तीसरी रानी के 10 वर्ष के बेटे राजा राम में उत्तराधिकारी बनाए जाने का संघर्ष हुआ।
1: ओ,
0: ये कहानी फिर कभी आगे सुनेंगे। और आज मैं नतमस्तक होकर भी शिवाजी महाराज को प्रणाम करता हूँ।
1: मैं भी शिवाजी महाराज को शत शत नमन करती हूँ।

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: जैसा अन्न वैसा मन, तो तामसिक भोजन का पर्यावरण पे तो असर हो रहा है, लेकिन तामसिक भोजन का हमारे मन पर क्या असर हो रहा है? अगर उस भोजन में नफरत की, क्रोध की, दर्द की ऊर्जा है, तो हमारी मन की स्थिति भी वही हो जाएगी उसको ग्रहण करने के बाद। तो अगर आज हम सिर्फ दो प्रतिज्ञा ले, एक हमारा अन्न सात्विक हो और दूसरा हम सिर्फ आज एक संस्कार का त्याग करें, वो है क्रोध, तो सही मायने में हमने आज इस यज्ञ में आहुति डालकर विश्व में शांति लाने की सेवा की, वो सच्ची सेवा है।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: हम दो लोग बिजनेस कर रहे हैं, बहुत साल हमने अच्छे से किया, करते करते एक की नियत खराब हो गई तो उन्होंने हमें चीट किया, हमारी दुकान के सामने एक और दुकान खोल दी। अब हमें अपनी दुकान में बैठकर चॉइस है कि हमने उनके बारे में क्या सोचना है। हम ये भी सोच सकते हैं कि इसने मेरे साथ ऐसा किया, इसके साथ इतना बुरा हो इसको पता चले कि दुख क्या चीज होती है। कई लोग तो इतना भी कहते हैं भगवान इसको दिखाए कि इसने मेरे साथ क्या किया है। अगर भगवान है तो मुझे प्रत्यक्ष दिखाई देना चाहिए कि इसको दुख कैसे मिलता है। ये भी एक तरह की सोच है। हम इतना ब्लैक बॉल फेंक सकते हैं, इतनी ब्लैक बॉल फेंक सकते हैं कि उनके फ्यूनरल पर भी जाके आ सकते हैं बैठे बैठे दुकान में। कर सकते हैं या नहीं कर सकते, क्योंकि नेगेटिव सोचने की कोई लिमिट नहीं है, कितना भी हम सोच सकते हैं। जैसे नेगेटिव सोचने की लिमिट नहीं है, वैसे किसी के लिए अच्छा सोचने की भी कोई लिमिट नहीं है। हम ये भी सोच सकते हैं जो हुआ हमारा कोई हिसाब किताब था, पूरा हुआ, अब ये अपना बिजनेस अलग करे, मैं अलग करूं, मेरा भी बहुत अच्छा चले, इनका भी बहुत अच्छा चले। क्या मुश्किल होगा ऐसा सोचना? जब हम किसी के लिए अच्छा सोचेंगे, सबसे पहला फायदा हमें होने वाला है। व्हाइट बॉल जब हम फेंकेंगे तो वो जाएगी, हिट करेगी, वापस आएगी, वो तो होगा बाद में, फेंकते हुए फायदा किसका होने वाला है? आज जब हम किसी के प्रति पुरानी बातें पकड़ के रखते हैं, दर्द पकड़ के रखते हैं, नफरत पकड़ के रखते हैं, तो नुकसान किसका हो रहा है? मेरा। तबीयत किसकी खराब हो रही है? मेरी। घुटना किसका दर्द हो रहा है? सर्वाइकल किसका दर्द हो रहा है? मेरा। हार्ट की ब्लॉकेज किसको हो रही है? मेरे को। वो एंजॉय कर रहे हैं लाइफ। तो हमने अगर व्हाइट बॉल भेजनी तो किसके फायदे के लिए भेजनी? अपने। हमने क्षमा करना अगर उनको, तो हमने एक्चुअली किसको क्षमा किया? दुनिया में कहते ईंट का जवाब पत्थर से देना। अब अगर ईंट का जवाब पत्थर से देंगे तो क्या हो जाएगा? पहली बार ईंट फेंकी थी इसलिए ईंट आई, अब अगर पत्थर फेंकेंगे तो पत्थर आएगा, अब ईंट का जवाब किससे भेंगे?
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: आवाज
1: सामाजिक व सांस्कृतिक माहिती देणारे आपले झकास रेडिओ स्टेशन
0: पुणेरी आवाज
1: ऐकत रहा 107.8 FM
0: आनंदी रहा आणि आनंद लुटा।
2: शिवाजी की तलवार है, लावणी बेमिसाल है, टेक्नोलॉजी के साथ संस्कार है, मराठी करती स्वागत हर भाषा का, यहाँ भूमि अपनाती हर त्योहार है। सुनिए पुणेरी आवाज 107.8, खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: नमस्कार, अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में आज फिर आप सबका स्वागत। ओम शांति। रिश्तों को तलाशते हम एक नए रूप में देखते आ रहे हैं इस श्रृंखला में, और अभी तक जो हमने बातचीत की है उसमें कई रिश्तों को एक नए रूप में देखकर ऐसे लगता है कि अभी तक हम जिस स्वरूप को देख रहे थे उससे कहीं भिन्न है। और जैसे ही नजर देखने का अंदाज बदला, जिंदगी बहुत मधुर हो गई। पति पत्नी का रिश्ता सबसे सुदृढ़, सबसे गहरा, सबसे खूबसूरत रिश्ता, लेकिन आज उस रिश्ते में बहुत सी दरारें नजर आती हैं। किस तरह से विश्वास को कायम रख सकते हैं हम अपने इस रिश्ते में? विश्वास है क्या? उसके सही मायने हमने जाने थे अपनी पिछली कड़ी में। एक बार फिर उसी को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं, और हर बार की तरह बातचीत के लिए हमारे साथ है ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। ओम शांति।
1: ओम शांति।
0: सिस्टर शिवानी, अगर हम पिछली कड़ी की बात करें तो आपने कहा था कि विश्वास करना या ट्रस्ट करना मेरा अपना अपनी फैकल्टी है। मैं चाहती हूँ तो मैं ट्रस्ट करती हूँ, अदरवाइज मैं किसी पे एहसान नहीं कर रही कि मैं ट्रस्ट कर रही हूँ, मुझे खुद को अच्छा लगता है। और उसके साथ भी आपने एक और बात ये कही थी कि कहीं ना कहीं क्योंकि मेरे अंदर ही कॉन्फ्लिक्ट होता है जो मैं सोच रही हूँ और जो मैं कह रही हूँ, तो मुझे लगता है कि दूसरा व्यक्ति उसको थोड़ा सा और एक बार हम रिवाइव करते हैं।
1: इसका एक दिन एक्सपेरिमेंट करके देखें कि सारा दिन में कितनी बार ऐसी परिस्थिति आती है जब हम सोच कुछ और रहे हैं लेकिन बोलते कुछ और है, या जिसको हम नाम देंगे लेकिन ऐसा बोलना पड़ता है। यू नो, नॉर्मली वी विल हैव अ जस्टिफिकेशन फॉर इट। वी आर वेरी गुड एट जस्टिफिकेशंस फॉर आवर बिहेवियर, एंड दैट्स व्हाई वी सेड के नोबडी इज रॉन्ग। जो हमने बात की थी कि कभी भी जब हम डील हम इंटरैक्ट कर रहे हैं तो हमें ये याद रखना पड़ेगा कि कोई भी रॉन्ग नहीं है, क्योंकि अपने दृष्टिकोण से उनके पास कोई जस्टिफिकेशन है उस गलत को भी सही बोलने के लिए। तो हम जो भी इस तरह से अपने मन और वचन में जब डिसइंटीग्रिटी लाते हैं, हमारे पास कोई जस्टिफिकेशन है। मैं आपको कुछ कहना चाह रही हूँ लेकिन मैं उस तरह से नहीं कह पा रही हूँ, और उसके लिए मैं जस्टिफिकेशन ये दे देती हूँ, कहीं आपको बुरा तो नहीं लगेगा। तो फिर मैं आपके लिए सोचना शुरू करती हूँ कि आपको क्या अच्छा लगेगा, और मैं अपनी थॉट को चेंज करके आपके अच्छे लगने के अनुसार बोलना शुरू करती हूँ कि आपको ये अच्छा लगेगा, विच इज फाइन, जिसको हम शायद वर्ड्स दे देंगे कि दिस इज केयर और दिस इज कंसर्न, बट इट इज चीटिंग, आई एम लाइंग टू यू, मैं आपसे झूठ बोल रही हूँ। इट्स प्लेन वर्ड्स, मैं आपसे झूठ बोल रही हूँ, चाहे

0: कि आप झूठ बोल रहे हैं इज नॉट अ ट्रस्ट, इट्स अ डाउट कि आप झूठ बोल रहे हैं. एंड देन फिर हमें बार बार वेरीफाई करवाना पड़ता है कि आप सच बोल रहे हैं, क्या सचमुच यही बात
1: है, झूठ बोलते हैं, इट्स नॉट राइट,
0: कोई और बात नहीं है, पूरी बात यही थी, छुपाया तो नहीं है. सो मच डाउट. ट्रस्ट ये होना चाहिए कि इवन इफ आई फील कि ऐसा नहीं है, लेकिन अगर आपने एक बार कह दिया ऐसा है एंड इफ आई क्लेम दैट आई ट्रस्ट यू देन ऐसा है. तब तक भले मैं अपने अंदर कॉन्फ्लिक्ट से चल रही हूँ कि ऐसा है या नहीं, लेकिन आपने अगर एक बार कह दिया ऐसा है एंड इफ आई से आई ट्रस्ट यू देन ऐसा है बिकॉज आई एक्सेप्ट व्हाट यू आर सेइंग. लेकिन आई कैन नॉट डू दैट क्योंकि आई एम नॉट डूइंग दैट. तो जिस तरह मेरा अंदर का मैकेनिज्म वर्क करता है, ऑब्वियसली मैं औरों को भी उसी की परछाई में देखती हूँ कि सबका मैकेनिज्म ऐसे ही वर्क करता है.
1: इस पे और थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, लेकिन रिश्तों से बीच में एक मेरे को ऐसे सवाल उपज रहा है कि जब आपने हमने ये कहा कि मैं अगर आपको ये बात कह दूं जो मेरे दिल में है, आप हर्ट हो जाएंगे, तो क्या मैं अपना वो थॉट कन्वर्ट कर सकती हूँ?
0: सी, हर्ट क्या करता है, अगेन हमने देखा कि एनर्जी है, थॉट एनर्जी भी, वर्ड एनर्जी भी, दोनों साउंड एनर्जी दोनों ट्रैवल कर रहे हैं. अब हमारी थॉट एनर्जी तो हर्ट वाली है, क्योंकि मेरे मन में संकल्प तो ऐसा कोई है जो आपको हर्ट करने वाला है. अब आई एम सेइंग कि मैं बोल को चेंज कर देती हूँ ताकि आपको हर्ट नहीं होगा.
1: ये तो क्या मैं संकल्प को चेंज कर सकती
0: हूँ? संकल्प को चेंज करना है. किसके संकल्प को चेंज करना? अपने कि हर्ट वाले संकल्प को हटाना पड़ेगा. ऐसा नहीं कर सकते हैं कि वो ही वाली बात आ गई ना, थॉट को छोड़ वर्ड को छोड़, एनर्जी ट्रैवल कर रही है, ऊपर से तो हम बहुत अच्छे हैं, रिश्ते फिर भी दूर होते जा रहे हैं, रिश्तों में वो बॉन्डिंग क्यों नहीं है? क्योंकि हमने सोचा कि मैंने बोला तो वही जो उनको अच्छा लगेगा, लेकिन मैंने सोचा वो नहीं जो उनको अच्छा लगेगा. तो अगर सच में औरों के बारे में सोचना चाहते हैं कि उनके लिए अच्छा ही सोचे, देन थिंक प्योर, नॉट ओनली टॉक पॉजिटिव, नॉट ओनली थिंक पॉजिटिव, थिंक प्योर, एब्सोल्यूट प्योरिटी. कि अपवित्रता का अंश भी जब संकल्प से हट जाएगा, तब वो थॉट वर्ड एक्शन में इंटेग्रिटी आ जाएगी. तो अगर कहीं डिस इंटेग्रिटी आ रही है, तो उसको ये झूठ बोल के उसको फिनिश नहीं कर दो, क्योंकि हमने डबल नुकसान किया. जो हर्ट वाली एनर्जी थी वो तो पहुंची गई, वो पहले पहुंची, फिर उसके बाद झूठ बोला, तो भले दूसरे को शब्द अच्छे सुनाई दिए, पर दूसरे को हमारी वाइब्स आ जाती है डिसइंटेग्रिटी की, कि ये सोच कुछ और रहे, बोल कुछ और रहे. जैसे हमें औरों की वाइब्स आती है, तो औरों को भी हमारी वाइब्स आती है, चाहे हम कितनी भी अच्छी तरह से उसको बोल लें. तो डबल नुकसान हुआ ना, एक पेनफुल एनर्जी भेजी, दूसरा डिसइंटेग्रिटी अपनी दिखाई, तो वो हमारे पे ट्रस्ट कैसे करेंगे? एक है कि हम औरों पे ट्रस्ट करें, दूसरा है हम विश्वास के पात्र कैसे बने कि दूसरे हमारे पे ट्रस्ट करें. जितना हमारे अंदर इंटेग्रिटी होगी, दोनों काम हो जाएंगे. एवरीथिंग कम्स बैक टू माइसेल्फ एंड नॉट टू द वर्ल्ड.
1: इनफैक्ट वंस आई स्टार्ट ट्रस्टिंग समबडी, द अदर पर्सन विल एक्चुअली केयर फॉर दैट ट्रस्ट.
0: इट बिकम्स वेरी वैल्यूएबल. विश्वास बहुत वैल्यूएबल चीज है. दूसरा कुछ ऐसा गलत करना ही नहीं चाहेगा जिससे उसके विश्वास पर कोई परिवर्तन आए. तो वो उल्टा आप करेंगे अगर कोई अभी वो विश्वास के लायक भी नहीं है. परमात्मा और आत्मा का संबंध, शिव बाबा इस समय कलयुग के अंतिम समय पर आते हैं. हम आत्माएं बिल्कुल पांच विकारों से पूरी घिरी हुई है, टोटली पवित्रता का अंश भी नहीं है, सुख शांति दिखाई नहीं दे रही है हमारे अंदर. परमात्मा आके हम पे संपूर्ण विश्वास करते हैं कि तुम आत्माएं ही वो 100% जो चार्ज होनी है उस तक पहुंचेंगे. जब शिव बाबा सबसे पहली बात ये हमें कहते हैं कि यू वर दैट 100% प्योर, यू आर गोइंग टू बिकम 100% प्योर, इवन वी आर नॉट एबल टू ट्रस्ट आवरसेल्फ्स. नो, इट्स वेरी डिफिकल्ट, इट्स वेरी डिफिकल्ट. बट हम इस यात्रा पर कैसे शुरू हुए? ही सेड यू कैन डू इट, यू कैन डू इट, यू विल डू इट. तो परमात्मा का विश्वास बच्चों पर, तो बच्चे वो करके दिखाते हैं जो उनको खुद नहीं पता था कि उनके अंदर वो कैपेबिलिटी है. परमात्मा जिस रथ का आधार लेते हैं, जो हमने देखा कि साकार माध्यम प्रजापिता ब्रह्मा, जिनके द्वारा फिर ये विद्यालय स्थापन हुआ, उन्होंने भी यही मेथडोलॉजी अडॉप्ट किया, यही ज्ञान उन्होंने यूज किया के विश्वास करते जाओ. जब बच्चे उनके सामने आते थे, आत्माएं उनके सामने आती थी, उनके अंदर शायद वो विशेषता नहीं थी, लेकिन ब्रह्मा बाबा कहते थे आप कर

0: सकते हो, ये मुझे पूरा विश्वास है कि आप कर सकते हो. दैट एनर्जी, नॉट वर्ड्स, बट वो एनर्जी ट्रांसमिट करना वो उस आत्मा को एम्पावर कर देता है. ट्रस्ट करने से हम एम्पावर कर देते हैं दूसरे को, और डाउट करने से हम डिस एम्पावर करते हैं. कई बार दूसरा कर भी रहा होता है सही राह पर, लेकिन हम इतना डाउट करते हैं, इतना डाउट करते हैं कि वो भी उस राह से हट कर, क्योंकि हम वो एनर्जी ट्रांसमिट कर रहे हैं. सो अलॉट डिपेंड्स ऑन मी, वॉट एनर्जी आई वॉन्ट टू ट्रांसमिट. विश्वास करें, कोई धोखा नहीं देगा.
1: अगेन यहाँ ये विश्वास किया, मैं 100% विश्वास करती हूँ, मतलब कहीं भी अगर हम कहते हैं ये करता हूँ, मुझे 100% फेथ है कंप्लीट द वे यू नो इट्स एक्सपेक्टेड, क्योंकि मैं विश्वास कर रहा हूँ. जहाँ धोखा हो गया तब क्या होगा, क्योंकि मैं तो पूरी तरह से डिपेंडेंट हो गया हूँ ना, मैं पूरी तरह से मान के चल रहा हूँ कि मैंने यहाँ कुछ गलत नहीं हो सकता, और बाय चांस गलत हो गया.
0: सी, विश्वास अर्थात क्या, कि मैं आप पे ये विश्वास करती हूँ कि जो आप बोल रहे हैं वो सच है, वो ही आप सोच रहे हैं. दिस इज विश्वास. विश्वास ये नहीं है कि आप जो कर्म करेंगे उसमें 100% परफेक्शन अचीव करेंगे. दिस इज नॉट कॉल्ड ट्रस्ट. ट्रस्टिंग इज ट्रस्ट द इंटेग्रिटी ऑफ द पर्सन. बाकी वो एक इंसान है, उसकी कुछ कैपेसिटीज है, उसकी कुछ कैपेबिलिटीज है. आप उसको टास्क उसकी कैपेबिलिटी देख कर देंगे, ऐसे नहीं कि हाँ आपको ये काम करना है, मैं विश्वास करता हूँ, और फिर उसने वो गलत किया तो हमने कहा आपने वो विश्वास तोड़ दिया. कोई हमारा विश्वास तोड़ नहीं सकता, एज लॉन्ग एज वो आकर हमें ये कह पाए कि मेरे से ये गलती हो चुकी है, तो विश्वास कायम है, चाहे वो बड़ी से बड़ी गलती क्यों नहीं करके आया हो.
1: अगेन, गलती और विश्वास
0: मतलब
1: तोड़ने में
0: उसके
1: फर्क
0: आपके
1: है.
0: लिए जो गलती लग रही है,
1: नहीं, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, कि गलती कर देना और विश्वास टूट जाना, दोनों में फर्क है इसका
0: मतलब
1: मतलब.
0: यस एब्सोल्युटली फर्क है. इट्स लाइक लेट्स से हस्बैंड एंड वाइफ रिलेशनशिप, या एक पेरेंट एंड अ चाइल्ड रिलेशनशिप. बच्चे से गलती हो सकती है, उस गलती के लिए उसको ये ना कहा जाए कि आपने मेरा विश्वास तोड़ दिया. लेट्स से मुझे एक्सपेक्टेड था कि आप 90% लेकर आए, और मैं पूरा साल यही सोचती रही एज अ पेरेंट कि मेरा बच्चा 90% लेकर आएगा, और बच्चा 80% लाया या 60% लेकर आया. लेट्स से हम कहते मैंने आप पर इतना विश्वास किया, आपने मेरा विश्वास तोड़ दिया.
1: चलिए, परसेंटेज तो उसके हाथ में नहीं है. उसने कहा मैं कभी सिगरेट नहीं पीऊंगा, मैं कभी ऑकुट पे नहीं जाऊंगा, मैं कभी चैटिंग नहीं करूंगा, या मैं कुछ और भी चीज कुछ गलत नहीं करूंगा, और मैंने किया.
0: किया तो आपने किया, वो विश्वास तोड़ना नहीं होगा. लेकिन अगर आपने किया और सच नहीं बताया तो वो भी विश्वास तोड़ना नहीं होगा. लेकिन वो भी फिर कारण ये है कि मैं शायद आपको राइट तरह से रिसीव ना कर पाती जब आप सच बोलते, इसलिए आपने झूठ बोला. मैंने आप पर विश्वास किया, ये मेरी चॉइस है. अब आप क्या करते हैं वो आपकी चॉइस होगी. फिर आपके कर्म को मैं किस तरह से परसीव करूंगी, अगेन वो मेरी चॉइस है. तो आपने अगर सिगरेट पी, या आप चैटिंग कर रहे हैं, या जो भी कर रहे हैं, अब मेरी कॉन्शियसनेस उस इमेज को कैसे परसीव करती है. मी एज एन इंडिविजुअल आई वुड गेट हर्ट मोर इफ आई हैव टू गेट हर्ट इज ओनली इफ द अदर पर्सन डजंट टेल द ट्रुथ, नॉट बिकॉज आपने ये कर्म किया. क्योंकि आपने ये कर्म किया कुछ सोच कर किया, पीयर प्रेशर में आके किया, या कुछ भी
1: उसकी
0: किया.
1: कोई ना कोई जस्टिफिकेशन.
0: राइट.
1: एक्चुअली अगर मैं इतना कॉन्फिडेंस देती हूँ उस व्यक्ति को
0: तभी
1: कि कुछ
0: तो
1: नहीं होगा.
0: वो रिलेशनशिप ऐसा बनता है जो वो आकर आपको हर बात सच बताएंगे, बड़ी से बड़ी गलती भी आकर सच बताएंगे, अगर उनको पता है कि आप उनको एक्सेप्ट कर लेंगे इररिस्पेक्टिव ऑफ उन्होंने जो गलती की है. तो विश्वास कहाँ टूटा, उल्टा ऐसे इंसिडेंट्स जब होते जाते हैं तो हमारा विश्वास एक दूसरे के ऊपर और भी ज्यादा बढ़ता जाता है. विश्वास ये चीज है कि आप किस तरह से रिस्पॉन्ड मुझे करेंगे. मैं अगर कोई गलती करती हूँ और आपके सामने आऊं, अब मुझे क्या आप पर विश्वास है कि आप मेरी गलती को स्वीकार करेंगे. ये विश्वास है, ये विश्वास चाहिए कि आप मुझे फिर से उसी प्यार के साथ स्वीकार करेंगे. ये अगर है तो मैं आकर आपको गलती बताऊंगी, फिर से अगर आप मेरे से उसी तरह से प्यार से चलेंगे रिलेशनशिप और भी
1: तो
0: स्ट्रोंग हो.
1: लेकिन फिर मैं बार बार वही गलती करूंगा.
0: नहीं, कभी नहीं हो नहीं सकता, क्योंकि आपको बहुत प्यार और पॉजिटिव एनर्जी मिली है, आपको एम्पावरिंग एनर्जी मिली है, आपको डिस एम्पावरिंग एनर्जी नहीं मिलती है. आप मेजोरिटी घरों में देखो कब झूठ बोलना पड़ रहा है एक दूसरे से, हस्बैंड वाइफ को कब झूठ बोलना पड़ रहा है एक दूसरे से, जब पता है कि सच को सामने वाला स्वीकार नहीं करेगा. टुडे इफ अ हस्बैंड गोज आउट फॉर डिनर अपनी कंपनी के बाद, ऑफिस के बाद, वो कंपनी के किसी कोलीग के साथ डिनर पे चले गए, ठीक है, घर आके क्या बोलेंगे? घर आ गए 10-11 बजे. दो ऑप्शन है, या तो आप बोल दो कि मैं अपने किसी कोलीग के साथ डिनर पे चला गया, या आप बोल दो ऑफिस में बहुत ज्यादा काम था.
1: वो ज्यादा आसान लगा,
0: तो वो ज्यादा आसान लगा, डिपेंडिंग ऑन सामने वाला उसको कैसे रिसीव करेगा. अगर आपको ये पता है कि आपकी वाइफ बोलेगी अच्छा आप डिनर पे चले गए, वंडरफुल, हाउ वाज द डिनर, यू विल कम एंड से कि आप डिनर पर गए थे. लेकिन अगर आपको ये पता है, सी वी नो आवर रिस्पॉन्सेज ना, क्योंकि हम एक साथ बहुत रहते हैं, कि आपकी वाइफ कहेगी क्यों, क्या, किसके साथ, कैसे, मैं वेट कर रही थी, यू नो ऑल दोस, आपने मेरा विश्वास तोड़ दिया, ये वो. तो आप आकर बोल देंगे कि आई वॉज लेट एट वर्क, मैं बहुत काम था, 10 बजे तक काम कर रहा था. फिर आप वो एक बार बोलेंगे,
1: फिर वो नींद पड़ गई, धीरे धीरे धीरे धीरे धीरे साइकिल.
0: अब ऊपर से वो रिश्ता ठीक ही लग रहा है, वाइफ भी बहुत खुश है, हस्बैंड देर तक काम कर रहे थे, आ रहे हैं, कोई बात नहीं, थके हुए, ऊपर से तो कुछ भी नहीं लगेगा, लेकिन उस रिश्ते की कोई फाउंडेशन नहीं है. और छोटा सा इंसिडेंट उस रिश्ते को शैटर कर सकता है, क्योंकि बहुत झूठ एक दूसरे के साथ बोलना पड़ रहा है. अब अगर हस्बैंड ये एक्सक्यूज दे कि मैं इसलिए झूठ बोल रहा हूँ क्योंकि वो दुखी होगी, या वाइफ ये क्वेश्चन करे, तो हमें एक दूसरे को क्वेश्चन नहीं करना है. हस्बैंड विल हैव टू चेक कि मैंने झूठ क्यों बोला, क्योंकि मेरे अंदर सच बोलने की ताकत नहीं थी, या क्योंकि मुझे लगा कि डिनर पर जाना राइट नहीं था, व्हाटएवर, तब मैं झूठ बोल रहा हूँ. एंड वाइफ अपने पर्सपेक्टिव से अगर देखे, तो मुझे एक्सेप्ट करने की पावर नहीं थी कि आफ्टर वर्क वो कहीं डिनर पर जा सकते हैं. तो हम लोग ज्यादातर क्या करते हैं, दूसरे का राइट एंड रॉन्ग,
1: कि उसे सही लगे या वो बहुत कहेंगी तो इसलिए चलो उनको वो हर्ट ना हो जाए. अच्छा, यहाँ एक बात मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि इसी पर्सपेक्टिव में, ट्रस्ट के पर्सपेक्टिव में अगर देखें, आज का वो दौर है जब दोनों हस्बैंड वाइफ बाहर हैं, और देखा ये जा रहा है कि जरूरत से ज्यादा ही बाहर हैं, ज्यादा हम अपने ऑफिस में वक्त गुजार रहे होते हैं घर की बजाय. तो यहाँ एक इनसिक्योरिटी अगेन, यू नो, कि वो इतनी देर तक बाहर हैं, जैसे कि वाइफ के लिए कि वो किसी और कलीग के साथ है, दैट कलीग कैन बी अ मेल, कैन बी अ फीमेल, एंड देन द क्वेश्चन स्टार्ट्स हैपनिंग, यू नो, दिस फॉर द मेल आल्सो, फॉर द हस्बैंड आल्सो, कि वो इतनी देर तक बाहर हैं, कहाँ हैं, किसके साथ हैं, कहीं बाहर कॉफी पीने गई हैं, चाय पीने गई हैं, इतने बजे आ जाना चाहिए था. तो ये सारा जो यहाँ जो मिसट्रस्ट है, बेसिकली इट्स नॉट अबाउट कि आप लेट आए हैं या नहीं, आप कहाँ किसके साथ हैं, दैट इज अ मेजर, जिसको बहुत टाइम बाद जाके बोला जाता है. यू नो, ये सवाल बहुत पहले से आना शुरू हो जाता है. अगेन आई थिंक वो कॉन्फ्लिक्ट चल ही रहा होता है, क्योंकि मुंह से बोलना बाद में जाता है,
0: लेकिन मन में बहुत पहले से क्रिएट किया होता है. और वो क्यों क्रिएट हो रहा है, इसीलिए हमने कहा रिश्ते की फाउंडेशन ट्रस्ट है. तो जहां इसीलिए हमने बताया कि शिव बाबा ने कहा अगर एक संकल्प भी संशय का है, तो अभी आप संशय वाली साइड पर हैं. आप ट्रस्ट नहीं बोलो, मतलब आज हम क्या कहते हैं, आई ट्रस्ट यू, आई ट्रस्ट यू, लेकिन दिन में कम से कम 10 संकल्प डाउट वाले क्रिएट करते होंगे उस व्यक्ति पे. तो आई ट्रस्ट यू का भाव क्या, कि एक भी संकल्प मिसट्रस्ट का नहीं. अब जब इस तरह के संकल्प आए, तो ये कहीं ना कहीं मेरी फाउंडेशन तो बहुत ज्यादा कमजोर है, और कहीं ना कहीं मेरा परसेप्शन उस चीज को देखने का, कि आप अपने कोलीग्स के साथ जाते हैं, तो व्हाट इज रॉन्ग इन दैट और व्हाट इज राइट इन दैट, आई हैव टू चेक माई सेल्फ. एंड समहाउ एक डायलॉग कि हम अपनी फैमिली में या अपने रिलेशनशिप में डिसाइड करें कि हमारे लिए राइट एंड रॉन्ग क्या है, क्योंकि वी आर नोबडी टू डिसाइड कि समाज के लिए राइट एंड रॉन्ग क्या है, कि किसी को किसी के साथ जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए. नोबडी इज देयर टू गिव, यू नो, दिस इज राइट और दिस इज रॉन्ग. मेरे लिए राइट एंड रॉन्ग क्या है, एंड फॉर माई स्पाउस राइट एंड रॉन्ग क्या है, आई नीड टू सिट एंड डिस्कस. एंड वो भी इस भाव से नहीं कि मेरे हिसाब से आपको नहीं जाना चाहिए. नो, द अदर पर्सन विल से ठीक है, आई विल कम बैक होम एंड टेल यू कि मैं लेट काम कर रहा था, क्योंकि आई नो कि आपके हिसाब से ये राइट नहीं है. टू पीपल डिस्कसिंग कि इसमें राइट और रॉन्ग क्या है, वो तभी डिस्कस कर पाएंगे जब हम ये सोच के बैठेंगे कि आप भी राइट है, मैं भी राइट हूँ. नाउ डिस्कस एंड क्रिएट अ पैरामीटर फॉर योर हाउस. इवन फॉर अ पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप, हमारे परिवार के लिए वैल्यू सिस्टम जो है उसमें राइट एंड रॉन्ग हमारे परिवार के लिए क्या होगा वो हमें आपस में डिसाइड करना पड़ेगा, नॉट इंडिविजुअल. इंडिविजुअल को नहीं डिसाइड करना चाहिए. अभी क्या हो गया, दो लोग अपना राइट एंड रॉन्ग की डेफिनेशन अलग क्रिएट कर ली, तो इनके लिए कुछ और राइट है, इनके लिए कुछ और राइट है, और इनको झूठ बोल बोल के इनका राइट सुनाते रहते हैं. पेरेंट चाइल्ड में भी यही है. पेरेंट सोचेगा इंटरनेट पे चैटिंग नहीं करनी चाहिए, उसके लिए वो राइट है. बच्चा सोचेगा करनी चाहिए, तो वो करता रहता है, इनको बताता रहता है कि मैं नहीं कर रहा हूँ, तो नींव क्या बन रही है. और यही अगर दोनों बैठे और बच्चा उनके साथ डिस्कस करे कि उसके लिए वो करना क्यों इम्पोर्टेंट है, व्हाट डज ही गेट आउट ऑफ इट, एंड दे ऑल्सो ट्राई एंड अंडरस्टैंड, फिर वो उसको गाइड भी कर सकेंगे कि इसमें नुकसान क्या होंगे. आप अगर चैट, इट विल बी सो ब्यूटीफुल. वो बच्चा जो जो चैट करेगा वो आके अपने पेरेंट्स से डिस्कस करेगा, जब उसे पता होगा कि दे डोंट फील इट्स रॉन्ग. We should always have a common right and wrong definition in the family. अभी तक क्या हो रहा था, हम अपना right and wrong दूसरे पर impose कर देते हैं, कि जैसे parent child पर impose कर देगा या husband wife एक दूसरे पर impose कर देते हैं, फिर हम expect करते हैं कि वो हमारे right and wrong के definition के हिसाब से चलते रहे. तो वो फिर उनके पास option क्या होता है, या तो वो हमें झूठ बोलते रहते हैं, और फिर जिस दिन उनका झूठ पकड़ा जाता है तो हम कहते हैं आपने हमारे विश्वास को तोड़ दिया, क्योंकि हमारी जो डेफिनेशन थी आपको उस डेफिनेशन के हिसाब से चलना था, आपकी अपनी क्या चॉइस है उसके बारे में हमने नहीं सोचा, आपके राइट और रॉन्ग की डेफिनेशन क्या थी.
1: एक्चुअली दैट रियली मेक्स सेंस, यू नो, उससे कोई ऑप्रेस्ड फील नहीं करेगा, और यू नो, ये सचमुच का लोकतंत्र.
0: यस, एंड एवरीबॉडी विल बी कंफर्टेबल टू बी देमसेल्व्स विद ईच अदर. हस्बैंड एंड वाइफ कैन बी देमसेल्व्स. उन्हें प्रिटेंड नहीं करना पड़ेगा, झूठ नहीं बोलना पड़ेगा, छुपाना नहीं पड़ेगा. यू नो, पेरेंट चाइल्ड भी इतनी कॉम्प्लेक्सिटीज इसकी वजह से आ जाती है, क्योंकि हमें एक दूसरे से कितनी बातें छुपानी पड़ती है.
1: इनफैक्ट आप ये भी हो सकता है कि जब हम बच्चे को ये बता रहे हो कि आप लेट नाइट नहीं आना है, हम सिर्फ एक ये रूल बना दें कि नो लेट नाइट पार्टीज, नो टॉकिंग ऑन फोन, उसकी बजाय इफ यू हैव अ डिस्कशन, एंड देन गॉड, इट कैन बी एक्चुअली वेरी गुड.
0: We have to give the freedom to each other to decide our rights and wrongs, and then come to a mutual decision कि ठीक है हमारे लिए ये right है. ऐसा परिवार नहीं होना चाहिए जहाँ right and wrong अलग अलग है, कि husband का right wife के लिए wrong है, या parent का right बच्चे के लिए wrong है, या vice versa. तब there is going to be a lot of cheating. Cheating with each other in relationships. क्योंकि क्या करें, तब हम बोलते हैं कि we do not understand each other. हम एक दूसरे को क्यों नहीं समझ पा रहे, क्योंकि आपकी राइट की इमेज अलग है और मेरी राइट की इमेज अलग है. हमारे पास दो ऑप्शंस हम क्रिएट कर देते हैं, या तो झूठ ही बोल देते हैं एक दूसरे को, या फिर दूसरे की फीलिंग्स की परवाह नहीं करते. लाइक बच्चे को कुछ करना है तो बोलेगा मुझे करना ही है, भले आपको गलत लगे, तो जिद, या झूठ बोल देते हैं या जिद करके अपनी बात मनवा लेते हैं. तो इन द प्रोसेस क्या होता है, दोनों में से एक जना तो परेशान रहता है.
1: So, आज के इस दौर में अगर हम जिस एक ऐसे परिवार को तलाश रहे हैं, एक ऐसे रिश्ते को तलाश रहे हैं जहां ये मुश्किलें ना हो, सो आई थिंक डिसीजन हैज टू बी कंबाइंड, यू नो, क्यूमुलेटिव डिसीजन होना बहुत जरूरी है. तो यहाँ इफेक्टिव
0: कम्युनिकेशन
1: हम, क्योंकि इस वक्त बात हस्बैंड वाइफ के रिश्ते को ही कर रहे हैं, देखा ये गया है कि जब तक कम्युनिकेशन जारी रहती है, जब तक बातचीत जारी रहती है, तब तक सब ठीक है. प्रॉब्लम सब शुरू होती है जहां एक चुप हो जाता है, दूसरे व्यक्ति को बहुत देर बाद पता चलता है कि व्यक्ति चुप हो गया, या कहीं ना कहीं वो दूरियां बढ़नी शुरू हो जाती हैं. सो वो कायम कैसे रखे जाए, जहां लगे कि मेरा हस्बैंड बात नहीं कर रहा है, डाउट होना शुरू हो जाता है यहाँ वाइफ को कि बात क्यों नहीं कर रहे हैं, बात क्यों नहीं कर, जो इतनी बातें करते थे वो बात क्यों नहीं कर रहे. सो उस बैरियर को कैसे ब्रेक किया जाए.
0: कहीं भी कम्युनिकेशन गैप बिल्कुल नहीं आना चाहिए एक रिश्ते के अंदर, क्योंकि वो एक क्रैक जैसे बनना शुरू हो जाता है. पहली बात, ये कम्युनिकेशन गैप शुरू कैसे होता है, जैसे आपने कहा विड्रॉ करना हम शुरू कर देते हैं, जब हमें कहीं फील होता है कि दूसरा हमारी पर्सपेक्टिव को नहीं देख पाता, तो हम अपने पर्सपेक्टिव को अपने तक ही रखना शुरू कर देते हैं. कई बार क्या होता है, हम आते हैं आपसे शेयर करने के लिए, लेकिन आप हमारी बात सुनने के बजाय अपना ही ओपिनियन सारा बोलकर और हमारा अपना ओपिनियन हमारे ऊपर इम्पोज कर देते हो, और फिर आपको लगता है आपकी बात हो गई. देन स्लोली स्लोली आई विल मूव अवे, कि आप मेरी वाली बात तो बिल्कुल भी नहीं समझ पाते हो, तो मैं अपना थॉट अपने तक रखना शुरू करता हूँ. सो द रीजन फॉर दिस इज लैक ऑफ लिसनिंग, एक दूसरे को सुनने की शक्ति. हमारे को ज्यादा आदत बोलने की है कि हम बोलें और दूसरा हमारी बात सुने, और उसमें भी हमारा थॉट ऑलरेडी बना हुआ है कि ये मेरी बात माने. ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग चीज है. मे बी आई डोंट नो वेदर इट्स लाइक अ पर्सनल विक्ट्री या क्या है, लेकिन आपने मेरी बात मानी. और अगर मैंने आपकी बात मानी तो इट्स लाइक मैं आपको चार बार सुना दूंगी कि मैंने आपकी बात मानी थी ना उस दिन, अब आपको मेरी बात माननी पड़ेगी. It shouldn't be there in a relationship, ideally. Ideally, it should be what's the best.
1: No, in fact, मैं मानू तभी ही जब मुझे भी वो सही लग जाए. सही लग अच्छा, और जब मुझे सही लग जाए तो वो आपकी बात कहाँ रहेगी?
0: कहीं नहीं. वो तो एक म्यूचुअल डिस्कशन में निकल कर एक डिसीशन निकला. तो कहीं भी कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए. आपके मन में जो भी आए, यू नो, कई बार कम्युनिकेशन गैप इसलिए भी आता है क्योंकि मैं जो फील कर रही हूँ वो शायद आपको अच्छा नहीं लगने वाला है. एंड तब हम चुप हो जाते हैं क्योंकि हम केयर करते हैं सामने वाले के लिए, और हम सोचते हैं बोलूंगी तो इनको बुरा लगेगा.
1: नहीं, और हम चाहते नहीं कि उस वक्त कुछ भी हो. यू नो, वो सिचुएशन अभी ठीक रहे. कितनी बार देखा गया है कि रिश्तों में प्रॉब्लम ना आए कि चलो चलो अभी चुप हो जाओ, कुछ नहीं होता, निकल जाने दो, वक्त निकल जाने दो, लेकिन थॉट तो रहेगा.
0: थॉट तो रह जाएगा बिकॉज एनर्जी यहाँ है. तो कहीं अगर आपको लग रहा है कि सामने वाले को बुरा लगने वाली है वो बात, लेकिन अगर वो आपके लिए बहुत ज्यादा मायने रखती है तो प्लीज स्पीक इट आउट, डोंट बॉदर. क्योंकि अभी थोड़ा सा बुरा लगना वो इम्पोर्टेंट नहीं है. लॉन्ग टर्म वी विल गेट इनटू दिस हैबिट कि ये बात इनको अच्छी नहीं लगती, लेट मी कीप इट टू माई सेल्फ. वो भी ऐसे ही सोचने लगेंगे कि ये बात इनको नहीं अच्छी लगती, लेट मी कीप इट टू माई सेल्फ. धीरे धीरे हमारे पास बहुत सारी ऐसी बातें हो जाएंगी विच वी विल स्टार्ट कीपिंग टू आर सेल्फ, एंड देन वी हैव मूव्ड अवे. सो शेयर, स्पीक इट आउट एवरीथिंग, चाहे उनको बुरा भी लगे, लेकिन अगर यहाँ ऑनेस्टी होगी तो बुरा नहीं लगेगा.
1: इनफैक्ट एक और बात जो अभी मुझे समझ में आ रही है, कम्युनिकेशन की जब हम बात करते हैं तो हम यही सोचते हैं कि कम्युनिकेशन मतलब बोलना, लेकिन उसका सबसे बड़ा एस्पेक्ट है सुनना.
0: सुनना वही टोटल है कि दूसरा जो कहना, सुनना तो, लेकिन सिर्फ सुनना नहीं, सुनना विद दिस इंटेंशन कि आप सही कह रहे हैं. हम सुनते तो बहुत बार है, अच्छा बोलो बोलो और क्या बात है, बोलो बोलो, जैसे कि हम वेट कर रहे हैं कि आप अपना सारा बोलो और फिर मैं आपको बोलूं कि आप पूरी तरह से रॉन्ग थे, क्योंकि हमने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया कि आप रॉन्ग है. तो सुने लेकिन विद दिस थॉट कि आप राइट कह रहे हैं, देन इट विल बी अ गुड हेल्दी डायलॉग.
1: अगेन एक अलग पर्सपेक्टिव इस पूरी बातचीत में आज हमारे सामने आया है शिवानी की, किसी भी रिश्ते में, क्योंकि रिश्ते हमारे बहुत नजदीकी हैं, मतलब इतने प्यारे होते हैं रिश्ते, और रिश्तों पर ही हमारी पूरी जिंदगी मुझे लगता है टिकी है. अगर आगे चलेंगे हम प्रोफेशन में भी जाएंगे, वहां पे भी रिश्ते ही होते हैं. सो एक इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, वही ऊर्जा का ऊर्जा के साथ जो संपर्क है, या आत्मा का आत्मा के साथ, या फिर हम कहें तो जिस लिबास में है हम, उस लिबास के साथ भी एक इंट्रैक्शन है. तो उस इंटरेक्शन को कितना खूबसूरत बनाया जा सकता है. हस्बैंड वाइफ के रिश्ते में जो एक नई बात बहुत सुंदर जो समझ के आई है परिवार की, कि डूज एंड डोंट्स ऑफ लाइफ शुड बी कॉमन. जो आदर्श या जो बातें सही और गलत मेरे परिवार के लिए हैं, वो सबकी साझा होनी चाहिए और सबके एक मत के साथ होकर सामने बैठी जानी चाहिए. बहुत अच्छा लगा. आई थिंक ये दिस कैन एक्चुअली चेंज लॉट ऑफ पर्सपेक्टिव एंड लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स. शिवानी, आज की इस पूरी बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद.
0: ओम शांति.
1: ओम शांति. अच्छा लगता है जब हम उन्हीं रिश्तों को एक नए नजर, एक नए अंदाज से देखते हैं, और जब साथ बैठकर हम खाना खा रहे हैं या बातचीत कर रहे हैं, तब इधर उधर मुंह करके क्यों बैठे, क्यों कॉन्फ्लिक्ट में रहें, क्यों नहीं हम हार्मनी में रह सकते, और उसके छोटे छोटे जो हमें एस्पेक्ट नजर आ रहे हैं उन्हें हम अगेन इम्प्लीमेंट करके, जब भी इम्प्लीमेंट करेंगे, जब भी एक्सपेरिमेंट करेंगे, जरूर सोल्यूशन सामने आएंगे. अगर आपके पास कोई बात है, कोई सवाल है जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, आपका स्वागत करते हैं. आप हमें ईमेल कीजिए या फिर फोन पर भी संपर्क कर सकते हैं. हमारे फोन नंबर है 9999344555, 9999344666, 9873666555, और हमारा ईमेल आईडी है omshantistudio@gmail.com. अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में रिश्तों को यूं साथ किस तरह से मिलकर आगे बढ़ा सकते हैं, कैसे और मधुर कर सकते हैं, इन्हें जानने का प्रयास करते रहेंगे. फिर होगी आपसे मुलाकात. दीजिए इजाजत. ओम शांति.

खुशियों की फुहार लाएगी हर दिन त्योहार। अब हर दिन बजेंगे मन में ढोल, अपने पन के रंग में अब रोज रंगेंगे, उड़ान भरेंगे सपनों के रॉकेट में, सिर्फ पुनेरी आवाज में 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
1: हम जब कहते हैं ना क्षमा करना तो बहुत डिफिकल्ट है, नहीं कर सकते हम, उनकी गलती इतनी बड़ी थी, और अगर हम क्षमा कर देंगे तो वो रियलाइज कैसे करेंगे, और अगर वो रियलाइज नहीं करेंगे वो उसी गलती को दोबारा करेंगे। ये सब चीजें सोचकर हम उस बात को, उस घाव को, उस दर्द को पकड़ते रहते हैं। जितना हम किसी भी घाव को पकड़ के रखेंगे और हम कहेंगे मैं इसको ठीक नहीं करने वाला हूं, सपोज पांव पे चोट लगे, दीक्षित जी ने हथौड़ा लिया, जोर से मारा, चोट लग गई, फिजिकल घाव लग गया, और मैंने कहा इस घाव को मैं जीवन भर भरने नहीं दूंगे, ये कहा, तो फिर उस घाव के पांव को लेकर चलते गए जीवन में। कई और लोग मिलेंगे जो हथौड़ा मारेंगे, मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? मिलेंगे। जितना घाव को नहीं भरेंगे तो अगला वाला हथौड़ा, अगली वाली चोट और जोर से लगेगी, जितनी और जोर से लगेगी दर्द और जोर से होगा। हम कहेंगे इस बात को भी मैं नहीं भूलूंगा, अगली बार कोई मारेगा तो क्या होगा, और जोर से लगेगी। तो घाव को रहने दें या भरते जाएं? घाव को रहने देना चाहिए या भरना चाहिए? भरना चाहिए, ऑब्वियस है। हर चीज फिजिकल तो ऑब्वियस होती है और हर चीज इमोशनल इम्पॉसिबल होती है। फिजिकल चीज को भरना है ऑब्वियस है। आप शाम को चाय पी रहे हैं, चाय पीते पीते सोफे पर आप बैठे हैं, सोफे पे चाय गिर गई, तुरंत क्या करेंगे? तुरंत क्या करेंगे? चाय गिर गई चाय पीते पीते, अभी कप में चाय है, लेकिन तुरंत क्या करेंगे? उठकर साफ करेंगे। ये ऑब्वियस है, ये बात ऑब्वियस है, नेचुरल है। क्यों तुरंत उसी टाइम बैठ उठकर साफ करना है? कल सुबह भी तो साफ कर सकते हैं। इसका मतलब अगर सोफे पे कुछ गिरा उसी टाइम साफ करना है, अगर उसी टाइम साफ नहीं किया तो क्या हो जाएगा? दाग लग जाएगा। और यहां कुछ गिरा, यहां कुछ गिरा, कोई आया कुछ कह दिया, दूसरा कोई आया कुछ और कह दिया, तीसरा कोई मिला उसने और कुछ कह दिया, चीजें गिरती गई गिरती गई गिरती गई, लास्ट कब साफ किया? और धीरे धीरे धीरे इतने दाग पड़ते गए, इतने दाग पड़ते गए कि क्या हो गया, कि ओरिजिनल कलर ही भूल गया।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

नमस्कार, मैं हूँ पेंटल। आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: नमस्कार एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज। सजगता या अवेयरनेस की इस जर्नी में कई पड़ाव हमने अब तक तय कर लिए हैं, बहुत कुछ जान लिया है अपने बारे में भी, लेकिन जो टेक्निक्स हम अपनाने की कोशिश कर रहे हैं वो कई बार ऐसा लगता है कि क्या ये पॉसिबल हो पाएगा, लेकिन जब प्रैक्टिकली करके देखते हैं तो सचमुच मुझे अपने एक्सपीरियंस से भी ये पता चल रहा है कि हाँ, ये संभव है। आप भी जरूर इन्हें अपनाने की कोशिश कर रहे होंगे। आज फिर इसी पर कुछ और चर्चा करते हैं कि किस तरह से अवेयरनेस, सजगता और फिर वो जो थॉट्स आ रहे हैं, जो नेगेटिव हैं, उन्हें कैच करना है, किस तरह से उन्हें अंडरलाइन करके समझना है कि ये है जो प्रॉब्लम की जड़ है, और उसके बाद स्टॉप करके उन्हें ट्रांसफॉर्म कर देना है, उन्हें बदल देना है। और इसी पर बातचीत करने के लिए और इन टेक्निक्स के बारे में ज्यादा हमें जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं जाने माने साइकोथेरेपिस्ट डॉक्टर गिरीश पटेल। आपका बहुत बहुत स्वागत।
1: नमस्कार।
0: और हर बार की तरह हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी, आपका भी स्वागत करते हैं।
2: ओम शांति।
0: डॉक्टर पटेल, अगर हम याद करें तो हम ट्रांसफॉर्मेशन तक पहुंच गए थे कि किस तरह से हमें कहना है कि भाई अब इसको हम या तो सब्स्टिट्यूट करेंगे अगर ये नेगेटिव थॉट हमें समझ में आ गया है, या फिर उसी से जुड़ा हुआ हो, उसी सब्जेक्ट से जुड़ा हुआ कोई और थॉट आएगा या टोटली ऑपोजिट थॉट हम उसको लेकर आएंगे। अब भी मुश्किल आ रही है, इतना आसान नहीं हो रहा है, क्योंकि वो थॉट जो है वो जाने का नाम ही नहीं लेता, आता ही है। दिस इज लाइक समथिंग, ऐसा कोई खेल ना करके प्रैक्टिकल लाइफ में इतना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, तो कैसे करेंगे?
1: एक और विधि बताता हूँ कि लिखना शुरू कर दो। एक पेज लो, उसको दो भाग में डिवाइड करके, एक और जिसको कहते हैं कि इरेशनल थॉट्स, या तो ऑटोमेटिक थॉट्स भी कहते हैं, कि ये जो नेगेटिव है ना ऑटोमेटिक आता है, और फिर उसके सामने रैशनल थॉट्स क्या है। मैं आपको कुछ उदाहरण देता हूं कि अगर आपको ये विचार आया कि आई विल फेल, अब उसके सामने रैशनल थॉट दो कि भी ठीक है, समटाइम आई फेल, समटाइम आई सक्सीड, पिछली बार मैं सक्सेसफुल भी हुई थी, संभव है दो बार फेल हुई थी, तीन बार मैं सक्सेसफुल भी हुई थी। फिर अगर दूसरा विचार आता है कि भी मेरे से नहीं होगा,
0: तो कभी कभी मुझसे हो जाएगा, कभी कभी मुझसे
1: नहीं, या तो ऐसा भी कि थोड़ा तो होगा ना। किसने कहा है कि पूरा एक ही बार में करो?
0: शिवानी, वही तर्क वितर्क की बात पे आ जाते हैं हम फाइनली, कि
2: प्यार से, द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज इस प्रोसेस को प्यार से करना, जबरदस्ती से नहीं करना। जैसे एक बच्चे को मनाना है तो जबरदस्ती, अगर उसके हाथ में चाकू है, यू नो यू आर सीइंग द चाइल्ड कि वो चाकू से खेल रहा है या किसी तेज चीज से खेल रहा है, आप क्या करेंगे?
0: हम उसे हाँ प्यार से ही समझाएंगे कि भाई रुको रुको रुको,
2: वो शायद नहीं सुनेगा, आप क्या करेंगे?
0: हम उसके पास जाएंगे, आराम से प्यार से बैठेंगे और धीरे धीरे वेट करेंगे कि कब वो थोड़ा शांत।
2: लेकिन वो खेलना चाहता है उस चाकू से,
0: फिर हम उसे समझाएंगे कि इससे चोट लग सकती
2: है, लेकिन उसे अच्छा लग रहा है, उसे उससे खेलना है।
0: हम उसे एक अल्टरनेट खिलौना,
2: दैट्स द ओनली टाइम इट विल वर्क। जैसे आप कह रहे हो ना कि हम उस नेगेटिव थॉट को छोड़ना चाहते हैं लेकिन वो नहीं जाता, बिकॉज हमने उसको पकड़ा हुआ है, हमें अच्छा लग रहा है वो खिलौना, तो हमें उससे ज्यादा अट्रैक्टिव खिलौना जब हम अपने आप को देते हैं तो फिर हमें वो चाकू को छोड़ना नहीं पड़ता, क्योंकि एक टाइम पे तो हाथ में एक ही खिलौना आएगा, तो वो ऑटोमेटिकली छूट जाता है। तो खींचेंगे अगर वो चाकू को हाथ से तो चोट लगेगी, यू नो इट्स वेरी पेनफुल। अगर आप नेगेटिव थॉट को जबरदस्ती रोकें या सप्रेस करें या फोर्सफुली रोकें, इट विल कम इवन, यू नो, इवन मोर, तो आप सोचेंगे ये तो बहुत मुश्किल है, यू नो, एंड यू विल गिव अप। लेकिन आप अपने आप को पॉजिटिव थॉट्स दें, डोंट फाइट विद दैट नेगेटिव थॉट, आप पॉजिटिव दें और थोड़े दिन में आपको लगेगा, मतलब यू विल फॉरगेट वो, जैसे ना थोड़े टाइम के बाद लगेगा पता ही नहीं चला कि वो चाकू कहाँ गिरा पड़ा है वहां पे, एंड आफ्टर सम टाइम यू विल सी कि आप तो दूसरे खिलौने से खेल रहे। यू विल नॉट डू इट वेरी कॉन्शियसली, इट विल हैपन ऑटोमेटिकली। आप सिर्फ मन को वो दूसरा खिलौना देना शुरू कर दीजिए, फिर भी वो चाकू से खेल रहा है कोई बात नहीं, उसे खेलने दीजिए, लेकिन आप उसके पास वो दूसरा खिलौना देना शुरू कर दीजिए, स्टार्ट गिविंग इट द पॉजिटिव थॉट। थोड़े टाइम के बाद इट विल गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स दैट पॉजिटिव थॉट एंड आपको पता ही नहीं चलेगा कि नेगेटिव थॉट कहाँ चला गया।
0: बहुत सुंदर आपने बात की, क्योंकि कुछ दिन पहले मेरे पास एक SMS आया था कि एग्जिस्टेंस जब हमारे हाथ से कुछ ले लेती है इसका मतलब हमारा हाथ खाली है, क्योंकि उसने कुछ बेहतर देना होता है। तो ये एक जो बात है पूरी उसी तरह से सामने
1: और
0: आती है
1: सब्स्टिट्यूट भी जैसे शिवानी बेन ने कहा वो भी ठीक है, फिर पॉसिबिलिटी भी सोचो ये बात उसमें छोटा सा भी ठीक है ना, तिनका ही चाहिए हमें मन को एक छोटा सा भी सहारा मिल जाए
0: बाहर
1: तो उस पर वो सोचते सोचते नेगेटिव से मुक्त हो जाएगा, बड़े डिप्रेशन से भी वो मुक्त हो सकता।
0: कहते हैं ना कि दूसरा कांटा ही देगा पहले कांटे से निजात, तो एक दूसरा कांटा चाहिए ही, लेकिन हम वो कांटा ही क्यों माने, हम उसे फूल भी तो मान सकते कि क्या वो, लेकिन हमें कैसे एहसास हो कि ये जो कांटा है हमारे पास ये पहला कांटा है और जो दूसरा आ रहा है हमारे पास वो फूल है, और कहीं हम उसके ऊपर तो नहीं डिपेंडेंट हो जाएंगे।
1: लेकिन वो पॉजिटिव ही है ना, अगर जो कांटा है वो कहीं ना कहीं नेगेटिव है जो आप में कोई भी बुरी भावना लाने वाला है, आपको
0: जब हम
1: नीचे दिखाने
0: ये कोशिश
1: वाला
0: कर रहे हैं कि हम डिपेंडेंसी हटा दें विचारों से भी या थॉट्स के ऊपर भी, किसी भी एक पर्टिकुलर चीज पे हम डिपेंडेंट ना रहे, खिलौने पर डिपेंडेंट ना रहे, तो कहीं हम जो
2: थॉट्स पर डिपेंडेंट नहीं हो सकते हैं कभी भी, थॉट्स हमारी अपनी क्रिएशन है, डिपेंडेंसी इज ऑन समथिंग एक्सटर्नल, थॉट्स इज मी,
0: द थॉट्स एक्चुअली गिव्स यू फीलिंग,
2: दैट्स द सब product, you know, that's the second stage of the process.
0: No, but I what I just wanted to ask is that if there is one thought, even if it's negative, even if I know it's negative, it is able to give me some kind of a comfort, you know, some feeling, comfort.
1: No, if it is negative, it won't give comfort.
0: Okay.
1: Negative
2: wo to pain ki feeling hi dega, comforting feeling nahi dega.
0: Okay.
1: Or maybe you are escaping. Kin wo theek nahi hai.
0: Haan.
1: Hona to right thought hona chahiye, positive thought hona chahiye. और आप जो आगे बात कर रहे थे थोड़ी और ऊंची बात है कि भाई वो हो ही नहीं, टू राइज अबाउ माइंड वेल डिफिकल्ट है, लेकिन योग में भी वो चरम सीमा है, योग का भी अच्छे से अभ्यास करते जाए राजयोग में भी यही हमने अनुभव किया है कि एक स्थिति आती है कि जब आप सचमुच थॉटलेस हो जाते, इनफैक्ट यू राइज अबाउ दैट, पहले अंत में आएगी कुछ अभ्यास के बाद आएगी, परंतु वह बेस्ट स्टेज है,
2: मतलब स्टिलनेस बहुत ज्यादा हो जाएगी, यू नो जो गैप बहुत ज्यादा हो जाएगा, साइलेंस पीरियड बिटवीन थॉट्स, तो कोई थॉट नहीं
1: होगा, यू आर डिटैच, कभी आपको लगेगा ये तो बहुत छोटी बात है, जैसे ऊपर से प्लेन में से देखो मकान छोटे छोटे दिखाई देते हैं, इफ यू आर रियली इन हाई मेडिटेटिव स्टेज यू विल फाइंड ये तो पीटी थिंग्स, इट्स नथिंग,
0: छोटी छोटी बातें
1: एकदम, नो मींस नो, यू विल बी रियली फील की क्या मैं तो टाइम वेस्ट कर रहा था इस पे सारा सोच करके, दिस इज नथिंग। और मेडिटेशन में दूसरा तो एक मैंने ऑब्जर्व किया है, जो ट्रांसफॉर्मेशन सिखाते हैं सीबीटी में वो ऑटोमेटिक है, क्योंकि मेडिटेशन में जैसे कोई भी चीज है ना, अभी एक्सरसाइज करने हम क्यों जाते हैं, क्योंकि मसल स्ट्रांग
0: फिट रहे हैं,
1: एक बार आपके मसल स्ट्रांग हो गए फिर जहां भी वो स्ट्रेंथ को आपको चाहिए आप यूज कर सकेंगे, तो मेडिटेशन भी ऐसे ही है, मेडिटेशन में हम बैठते हैं और जब ये चिंतन करते हैं कि मैं आत्मा हूँ, कैसे मैं शरीर से परे दिव्य चेतना हूँ, मेरे ओरिजिनल क्वालिटीज क्या है, मैं कैसे मेडिटेशन और आगे तो भी परमात्मा से कम्युनियन करना है ना, तो भी परमात्मा से कैसे मेरा कम्युनियन है, जब ये थॉट्स हम करते हैं तो दैट इज ऑल्सो ट्रांसफॉर्मेशन शरीर से देह से आत्मा की ओर,
2: दिस इज दैट अदर खिलौना, यू नो ये वो दूसरा वाला, दीज गुड थॉट्स, दीज रियल थॉट्स, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इट्स नॉट इवन गुड और बैड, दीज आर द रियल थॉट्स, क्योंकि ये मैं हूँ, ये सब मैंने एक यू नो इमेजिनेशन जैसे एक इमेज क्रिएट किया, बट दिस इज द ट्रू मी, तो ये वाला खिलौना जब मन खेलना शुरू कर देता है वो चाकू अपने आप छूट जाएगा,
1: एक तो ये छूटना, दिस इज ऑल्सो बेनिफिट, लेकिन उससे हायर बेनिफिट है कि अगर आप रोज करते हैं 10 मिनट भी करते हैं, अगर डेली आप कर रहे हैं तो दिस इज ऑल्सो मेंटल एक्सरसाइज, जैसे मैं रोज वेट लिफ्टिंग करता हूँ 25 किलो उठाता हूँ तो मेरे बाइसेप स्ट्रांग हो जाते हैं, तो ऐसे अगर रोज मैं ये ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा हूँ तब मेरा माइंड भी स्ट्रांग
0: और इंटरनली मैं स्ट्रांग होते जाऊंगे, फिर सिचुएशंस आएंगे या कोई मुझे हर्ट नहीं कर पाएगा, बिकॉज आई एम इंटरनली वेरी स्ट्रांग, यू नो कोई मुझे परेशान नहीं कर पाएगा, कोई मुझे गुस्सा नहीं दिला पाएगा, वाओ
2: वो अभी भी नहीं कर रहे, हम अपने आप को वो करना बंद कर देंगे, बिकॉज आई हैव बिकम स्ट्रांग, सी दे आर स्टिल द सेम, वो तो वो ही है, वो अभी भी वो ही बोलेंगे जो पहले बोलते थे, लेकिन
0: अभी भी हम अभी भी यही कह रहे हैं ना कि मुझे गुस्सा नहीं दिलवा पाएगा, मुझे हर्ट नहीं कर पाएगा, मतलब मैं खुद जो हो रही हूँ, लेकिन मैं कारण वही मानती हूँ कि उनके कारण, किसी और की वजह से मैं हुई हूँ या हुआ हूं।
2: इसको भी अगर आप बार बार अवेयरनेस में रख के बार बार चेंज कर दोगे ना अपनी वोकैबुलरी को, हाफ द पेन इज गॉन। बिकॉज अभी भी अगर हम ये कहें ना कि वो मुझे गुस्सा नहीं दिला पाएगा, यू से इट देन स्टॉप एंड चेक, लेकिन वो तो वैसे भी नहीं दिलाता। दिस इज द जर्नी, तो वो तो वैसे भी नहीं दिलाता। हाँ, मैं अपने आप को तकलीफ देना अब बंद करते जाऊंगी। सो दिस इज दैट कॉन्स्टेंट टॉक।
1: जो बहुत बड़ी बात है राजयुग में, कि हम परमात्मा से डायरेक्ट संबंध जोड़ते हैं। मुझे भी कैसे क्लिक हुआ मैं आपको बता दे ना, मैं कहीं अपने लेक्चर्स में भी इस बात को एम्फसाइज करता हूँ। करीब 1981 की बात है कि जब मैं कटक में गया था और वहां पर एक बहन से मेरा परिचय कराया गया, जब उनको मिले तो आपकी तरह ही थे, उनके चेहरे पे कोई निराशा के निशाने नहीं थे, कुछ नहीं था। परंतु मुझे बताया गया कि इनके जीवन में बहुत ही भयानक हादसा हुआ है। उनके पति बिजनेसमैन थे, उनका हर्निया का ऑपरेशन हुआ था। डॉक्टर ने तो कहा था कि भी ये नॉर्मल ऑपरेशन है, हम हमेशा करते हैं, परंतु किसी को पता नहीं कहाँ गलती हुई। जब उनको एनेस्थेशिया दिया गया तो वह उसी स्टेज में डीप में चले गए, एनेस्थेशिया से बाहर आए नहीं, कोमा में चले गए। बहुत कोशिश की, अच्छे पैसे तो थे, भारत में कई स्थानों पर ले गए, परंतु जब इम्प्रूव नहीं हुए तो एकदम डिप्रेशन में चले गए। उसने 3 बार आत्महत्या करने की भी कोशिश की, लेकिन कोई ना कोई उनको बचा लेता था। जब मेरे से मिलना हुआ और जब मैंने देखा कि ये तो बिल्कुल नॉर्मल है, चेहरे से नहीं लगता है, तो मैं हमेशा ये बात पूछता हूँ जब भी ऐसे किस्से सामने आते हैं कि मेडिटेशन ने कैसे आपको मदद की। यही कहना पर्याप्त नहीं है कि भी मैंने राजयोग किया तो मेरा डिप्रेशन खत्म हो गया। तो बहन बता भी सकी, उसने कहा मुझे पहले बिल्कुल रुचि नहीं थी, तो मेरी सास ने कहा था चलो ब्रह्मा कुमारी सेंटर, तो मैं गई। परंतु वहां वो बहन मेरी बात को सुन रही थी, मेरे प्रॉब्लम्स को सुन रही थी, मैं जाके रोती थी, उनको अपनी बात बताती थी, तो इसके लिए मैंने जाना कायम रखा। और फिर कुछ समय के बाद उन्होंने मुझे ये सिखाया कि भी परमात्मा से डायरेक्ट संबंध कैसे जोड़ना। उन्होंने कहा इससे मुझे बहुत बड़ा सपोर्ट मिला। पहले भी मैं पूजा पाठ आदि करती थी, उसे अच्छा लगता था, परंतु टोटली डिप्रेशन नहीं गया था। जब ये डायरेक्ट संबंध जोड़ना मैंने सीखा तो 100% मेरा डिप्रेशन चला गया। मैं समझता हूँ ये मोस्ट पावरफुल चीज है। जैसे कहा भी क्या ना, व्हेन गॉड इज विथ यू, हु कैन बी अगेंस्ट यू।
0: बिल्कुल, एक करेज के साथ हम फेस कर सकते हैं। तो ये जो परमात्मा के साथ संबंध जुड़ना है,
2: साइकोथेरेपिस्ट ही इज
0: जो आपके कहीं ना कहीं हर इतनी करेज दे देगा आपको,
2: यू नो। एंड अ साइकोथेरेपिस्ट भी, जैसे कई बार जो हम साइकैट्रिस्ट के पास भी जाएं, लेकिन साइकैट्रिस्ट की खुद की मनोस्थिति भी उस समय कैसी है उस पर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है कि वो हमें किस तरह काउंसिल करेंगे।
1: ह्यूमन बींग
2: प्रॉब्लम्स है उनके पास भी, तो वो हमें किस तरह की एनर्जी ट्रांसमिट करेंगे। यू नो इट्स इजी टू टेल समबडी कि नहीं कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा, लेकिन अंदर मेरी क्वालिटी ऑफ एनर्जी क्या है, तो वो ट्रांसमिट अगर हम कर पाए दूसरे को, तो दूसरे के अंदर वो जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो इजीली आएगा। तो द साइकैट्रिस्ट ऑल्सो इज गोइंग थ्रू हिज ओन जर्नी, लेकिन परमात्मा से साइकोथेरेपी करवाने का वो फायदा है।
0: लेकिन परमात्मा से साइकोथेरेपी कराना इज लाइक समथिंग, बट हाउ डू वी गो अबाउट इट, यू नो, लाइक हम सब भगवान को मानते हैं, अपने अपने खुदा को, ईश्वर को मानते हैं।
2: हम भगवान को मानते हैं, लेकिन पता नहीं कि उनको जानते हैं कि नहीं।
0: हाँ, so वो हम
2: See, it's a belief. You know, normally people say, I believe in God. आप ये कभी नहीं कहते कि I believe in my parents. You never say that. I believe in my parents.

0: सकते हैं क्या अभी
1: बिल्कुल कर
0: वर्तमान समय हो रहा है?
1: सकते
0: फर्स्ट दैट आई हैव टू आस्क मायसेल्फ.
2: आई डोंट थिंक फॉर टू मी इट्स नॉट यू नो बिकॉज टू मी इट इज क्योंकि कई बार वो एक किसी रूप में अगर हम उनको इमेजिन करते हैं कई बार एक पावर के रूप में कई बार एनर्जी के रूप में कई अलग अलग रूपों में मुझे लगता है कि हमें से कई
0: अभी आपने कहा हम उनको इमेजिन करते हैं. आप अपने पेरेंट्स को कभी इमेजिन नहीं करते. दिस इज वेयर इट इज हम इमेजिन इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि हम उनको जानते नहीं. अगर आप मुझे अभी कहें कि मिस्टर सो एंड सो मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड हैं, मैं उनको नहीं जानती तो मैं इमेजिन करना शुरू करूंगी. देन यू कैन स्टार्ट डिस्क्राइबिंग कि वो ऐसे हैं ऐसे हैं वो ऐसा करते हैं. बट फॉर मी इट इज एन इमेजिनेशन. लेकिन फॉर यू आप उनको बहुत अच्छी तरह से जानते हैं तो आप उनको जानते हैं आप उनको अनुभव करते हैं लेकिन मेरे लिए वो एक इमेजिनेशन है. आई कीप इमेजिनिंग. अब जो चित्र मैं इमेजिन करके क्रिएट कर दूं वो शायद रियलिटी नहीं होगा. और इमेजिन करने से वो चित्र बन जाएगा लेकिन उसके साथ वो रिश्ता नहीं बनेगा. तो अभी भी और मेजोरिटी हम ये कहेंगे आई इमेजिन गॉड टू बी लाइक दिस.
2: नहीं तो अगर मैं अब आपसे ये पूछूं कि मैं अगर जानना चाहती हूं परमात्मा को और आप मुझे बताएंगी तो अगेन मैं भी तो एक इमेजिन ही करूंगी.
0: आई विल नो वी आर जस्ट इंस्ट्रूमेंट्स. इमेजिन नहीं आप करेंगे आपका इंट्रोडक्शन हो जाएगा.
2: अच्छा अपने आप में
0: यू नो जैसे हम गिरीश भाई यहाँ आए तो हमने इंट्रोडक्शन किया.
2: राइट
0: पहले एपिसोड में आपका परिचय बहुत ज्यादा नहीं था. एक इंट्रोडक्शन हुआ लेकिन इतने दिन की इस यात्रा के दौरान नाउ
2: आई थिंक
0: यू डोंट नीड मी इन बिटवीन सो इट्स लाइक दिस नाउ. तो फिर आगे का रिलेशनशिप
2: मेरा और उनके ऊपर डिपेंड करता है.
0: अपना
1: गॉड का भी ऐसा ही है.
2: सो आप गॉड से कौन मिलवाएगा मुझे ये बताइए. हमारे सभी दर्शक भी इंतजार कर रहे हैं कि हम परमात्मा से कौन मिलवाएगा.
1: सबसे पहले तो मैं ये आपको बताता हूँ जो मैंने ऑब्जर्व किया है ना साइकोलॉजी की स्टडी की तो लोगों की साइकोलॉजी को देखता हूँ. मैंने एक तो ऑब्जर्व किया है लोगों को भगवान से कोई रास्ता नहीं. कोई भगवान को मिलना नहीं चाहता है. मिलना चाहते आप नहीं चाहते. क्यों बताता हूँ पता है कोई भगवान लोगों को संबंध क्या पता मेरा काम हो जाए. लोगों को जो भी भगवान कर दे किसको
2: उनको पता है. मुझे तो पता ही नहीं था. मुझे लगता है बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है कि हम भगवान से मिल सकते हैं एक्चुअली. तो हमने एक वो ही है कि भाई काम करने का एक वो है कि या कुछ कहने के लिए एक भगवान है. लेकिन अगर हम उनसे मिल सकते हैं तो व्हाई नॉट. व्हाई नॉट क्या आई वुड लाइक टू मीट. आई थिंक लॉट ऑफ पीपल आर आउट देयर हु वुड लाइक टू मीट.
1: और रियल नो एक अंदर में जिज्ञासा होनी चाहिए. आज जो वर्तमान हमारी साइकोलॉजी ऐसी है कि भाई मेरा काम हो जाए मुझे प्रमोशन मिल जाए मेरे बच्चे का एडमिशन हो जाए जो भी भगवान करा दे. आज कोई एक देवी देवता को आप उसको इष्ट देव मान के पूज रहे कल दूसरा आपको बताएंगे ये नहीं ये इसको करो ना तुम्हारे बच्चे का मेडिकल में एडमिशन हो जाएगा उसको आप छोड़ देंगे. तो इसका मतलब आपका भगवान से संबंध नहीं है आपका वो आपका स्वार्थ से संबंध. तो पहला तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि सचमुच हमारे में जिज्ञासा होनी चाहिए कि भी भगवान से मिलना है. बल थोड़ा पुरुषार्थ करना पड़े सही समझ होनी चाहिए परमात्मा से मिलना है. मेरे कई प्रवचन में ये भी पूछते हैं भगवान कितने हैं. हाँ कई लोग हमने कई बार देखा है लोग सो रहे हैं कोई इंटरेस्ट नहीं है लेकिन जवाब भी नहीं दे रहे पूछो तो. लेकिन जब पूछो ना भगवान कितने तो एक है सारे के सारे बोलेंगे. तो ये पक्का है कि भगवान एक है पांच तो नहीं है. तो एटलीस्ट ये तो करना ही है कि डेवलप वो जिज्ञासा डेवलप करो कि वो भगवान जब एक है तो कहीं ना कहीं गलती है. जब इतना हम ज्यादा मान रहे हैं तो उस एक को ढूंढने का मुझे पुरुषार्थ करना है. बस वो भी अगर हो जाए इस प्रोग्राम से तो धीरे धीरे आप सत्य के नजदीक जरूर पहुंच जाएंगे.
2: मेरा तो हो चुका है. आई तो रियली वॉन्ट टू मीट. आई थिंक लॉट ऑफ आर व्यूअर्स एक्चुअली हमारे बहुत सारे व्यूअर्स जो है वो जरूर मिलना चाहते हैं जानना चाहते हैं. आज तक हमें अभी एहसास ही नहीं था कि हम मिल सकते हैं.
0: और ये भी क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो कि मिलना क्यों है. यू नो फादर है.
2: आई वॉन्ट मीट माई फादर.
0: राइट एंड फादर से एक बच्चे को क्या मिलता है. फादर से एक बच्चे को प्रॉपर्टी मिलती है. यू नो जो फादर का है वो सब कुछ बच्चे का ऑटोमेटिकली जिस क्षण बच्चा पैदा होता है तो घर में कहते हैं वारिस आ गया। अभी वो बच्चे को कुछ भी नहीं पता कि वो किस परिवार में पैदा हुआ है, लेकिन उसे टाइटल मिल जाता है कि इस परिवार का वारिस आ गया, जो पिता का

0: है वो बच्चे का है। मेरा पिता शांति का सागर है, मेरा पिता प्रेम का सागर है, वो ऑलमाइटी अथॉरिटी है, वो सर्वशक्तिवान है, वो प्रेम का सागर है, वो प्योरिटी का सागर है। ये मेरा पिता है और ये सब इसकी प्रॉपर्टी है,
1: ये मैं सब इनहेरिट करूंगा।
0: यू सी इट्स वेरी इजी देन। सो मोस्ट ऑफ द हार्ड वर्क जो अभी तक लग रहा था इतने दिन से कि कैसे अवेयरनेस, फिर कैसे पीस, कैसे हाउ टू रिमेम्बर, इट्स जस्ट कम्स वेरी इजीली
1: बिकॉज इट इज इनहेरेंट। आई एम गोइंग टू इनहेरिट।
0: अभी क्या, जैसे अगर एक राजा का बच्चा है लेकिन वो बच्चा गुम गया, तो भले वो है राजा का बच्चा, वो बहुत अमीर है, लेकिन फिर भी वो सड़क पे शायद कहीं खड़ा हुआ है इस तरह मांगते हुए। जिस दिन वो फिर राजा से मिल जाएगा, तब उसे ऐसे नहीं मांगना है। जिस क्षण याद आ गया कि मैं राजा का बच्चा हूँ, जो राजा का है उस दिन मैं राजकुमार बन गया। तो मैं, हम सब, हर आत्मा जो अपने आप को परमात्मा का बच्चा कहती है, वो परमात्मा, मैं आत्मा, हम उसकी महिमा करते हैं कि आप शांति के सागर हो। तो परमात्मा हमें बहुत प्यार से कहते हैं कि मैं शांति का सागर हूँ। इट्स लाइक इफ यू नो आई एम मिस्टर वर्मा, सो माय सन इज मास्टर वर्मा, सो इट इज आप बच्चे मास्टर शांति के सागर हो। सो दैट इट्सेल्फ, दैट रियलाइजेशन कि मैं परमात्मा का बच्चा, मैं मास्टर शांति का सागर हूँ, तो वेयर इज द क्वेश्चन ऑफ सेइंग कि मुझे टेंशन हो रही है। तो वो प्रॉपर्टी, अब मैं हूं ही मास्टर शांति का सागर, मैं आत्मा हूं ही शांत स्वरूप, लेकिन मैं डिस्कनेक्ट हो गई थी, मैं भूल गई थी कि मैं किसका बच्चा हूं। तो मैं कहने लगी एक मिनट की शांति दे दो, एक क्षण शांति से बैठने दो। यू सी फ्रॉम वेयर टू वेयर वी रीच्ड, जिस क्षण वापस याद आया, जिस क्षण वापस वो संबंध जुड़ गया, मैं हूं ही शांत स्वरूप।
1: एक तो मुझे कोई माइथोलॉजिकल कहानी भी आ गई एकदम से कि जब हम याददाश्त खो गए, यू नो, कहीं ना कहीं हमने अपनी याददाश्त खोई है कि और अब जैसे ही याददाश्त लौटेगी तो हमें रियलाइज हो जाएगा कि व्हाट वी आर, हु,
0: एंड वी मीट द फादर। सी इट्स नॉट इमेजिनेशन। अगर ये इमेजिनेशन से होगा तो ये कुछ क्षण एक टेम्पररी एक्साइटमेंट की तरह आएगा, ओ आई एम पीसफुल, यू वोंट फील एनीथिंग। थोड़ी देर के बाद फिर कोई परिस्थिति आएगी एंड आप फिर से वही,
1: you know, तो अगर मैं अपने पिता को याददाश्त भूल गई हूँ, मैं अपने पिता को तलाश रही हूँ, पिता भी तो तलाशेगा।
0: पिता ही आपको तलाश रहा एक्चुअली। परमात्मा खुद ही अपना परिचय आकर बच्चों को देते हैं। हमारे में उतनी ताकत ही नहीं रही है, हम अपने आप को ही नहीं पहचान पा रहे। तो परमात्मा को हम ढूंढ लें, और इतने सालों से, क्या इतने जन्मों से हम ढूंढते आ रहे हैं, हमने कितना ना प्रयास किया है परमात्मा को ढूंढने का, मतलब सालों साल, सौ सौ वर्ष संन्यास, तपस्या, नंगे पांव चलना, हमने सब कुछ किया कि एक क्षण परमात्मा का साक्षात्कार हो जाए। इतनी मेहनत की एक क्षण के साक्षात्कार के लिए, कितना डिफिकल्ट था। और अब जब परमात्मा खुद आकर हमें ढूंढ लेता है, तो वो एक क्षण के लिए नहीं, हर क्षण हमारे साथ होता है, क्योंकि वो हमारा पिता है।
2: ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सभी सेवा केंद्रों पर यही कार्य हो रहा है कि कैसे आज परमात्मा हमको ढूंढ रहा है। और बस हमें एक आवश्यकता है कि उन्हें समझने की, पहचानने की, तो सचमुच हम उनसे भी रूबरू हो सकते हैं। और एक बहुत बड़ी बात जो मैं समझता हूँ कि संबंध जोड़ना, डिप्रेशन की हम चर्चा कर रहे थे कई समय से।
1: ऑफ कोर्स द मोमेंट एक्चुअली आई फील सो एलिवेटेड, यू नो, द मोमेंट आई फील दैट मेरे तो वो पिता हैं और मैं उनकी बेटी हूँ, सो आई एम ऑलरेडी, यू नो, लाइक अबव एवरीथिंग एल्स एक्चुअली।
2: सब संबंध है, सिर्फ पिता का ही नहीं, हम कहते भी ना माता पिता बंधु सखा, सब संबंध है। यहाँ तक कहेंगे कि भी परमात्मा को अपना बच्चा भी बना दो।
1: सारे रिश्ते उसी में।
2: हाँ, वो बच्चे तो आपके बहुत बड़े हो जाएंगे, आपने उसको बहुत पढ़ाई की, आईएएस बना दिए, बहुत बड़े साइंटिस्ट हो गए, बड़े होके उनको कहने में भी शर्म आएगी कि हमारे माता पिता हैं। परंतु परमात्मा को बच्चा बनाओ, हमेशा वो आपकी संभाल करेगा। और अगर वो हो गया तो डिप्रेशन का कारण भी यही है कि संबंधों में डिससेटिस्फेक्शन है। पिता और पुत्र के संबंध में कहीं कॉन्फ्लिक्ट है, पति पत्नी के संबंध में कॉन्फ्लिक्ट है। अगर परमात्मा से सर्व संबंधों का प्यार मिल जाए तो ये कॉन्फ्लिक्ट ऑटोमेटिक खत्म हो जाए। तो थोड़ी गहरी बात है, मैंने तो सिर्फ एक आपको सजेशन दिया है, अभी इस पाथ पर आपको आगे बढ़ना है।
1: बिल्कुल, और ये एक एक्चुअली इट्स क्वाइट अ बिग रेवलेशन क्योंकि एक पूरा एक खुलासा कि जिसे हम सोच रहे हैं कि हम तलाश रहे हैं वही हमें तलाश रहे हैं और कहीं ना कहीं वही तो मंजिल है। हम ये कहते हैं कि आत्मा से परमात्मा का मिलन जो है वही सच्चा मिलन है। ये अभी तक सुनी सुनाई बातें थी। आत्मा से आत्मा का मिलन कोई मिलन नहीं हो सकता, इट इज नॉट, ये शाश्वत नहीं होगा। आत्मा से परमात्मा का मिलन, ये एक हम अभी तक मुझे ये लगता था कि ये हम सुनते आ रहे हैं, कहीं ना कहीं होगा, कुछ है, सच है, लेकिन आज मुझे ये एहसास हो रहा है कि इट इज पॉसिबल,
0: इट्स अ रियलिटी अगेन। This is a reality जो हम सब अनुभव कर रहे हैं, and we would like to tell everybody कि you know ये वो समय चल रहा है जिस समय का आज दिन तक हम गायन करते आए थे कि जब जब इस सृष्टि पर धर्म की ग्लानि होगी तब परमात्मा को स्वयं इस सृष्टि पर आना पड़ेगा। हमने हर धर्म शास्त्र में ये पढ़ा और आज अगर हम चारों तरफ समाज में देखें तो वो धर्म ग्लानि के जो चिन्ह है वो हमें चारों तरफ दिखाई दे रहे हैं। तो परमात्मा स्वयं इस सृष्टि पर आ चुके हैं, वो अपना कार्य कर रहे हैं और हर एक बच्चे को वो अपना वर्षा देने आए हैं। अब हमारे ऊपर सिर्फ वो एक कदम बचा है जो हम आगे बढ़े और वो सारा वर्षा अपने पिता से ले ले।
1: परमात्मा आ चुके हैं, हमें तलाश रहे हैं, कैसे हैं वो? आप क्या हम उनसे मिल सकते हैं? किस मतलब कैन वी सी हिम?
0: परमात्मा, परम आत्मा, जैसे हम आत्मा को नहीं देख सकते, इट्स एनर्जी, इट्स कॉन्शियसनेस, सिमिलरली परम आत्मा, सोल एंड सुप्रीम सोल, सुप्रीम सोल, दैट्स यू नो इनकॉर्पोरियल सुप्रीम सोल, कोई कॉर्प्स नहीं है, निराकार, जिसका कोई आकार, साकारी शरीर नहीं है, तो वो कोई देहधारी नहीं है, वो भी एक एनर्जी है, वो भी एक शक्ति है। जैसे हम एक पॉइंट ऑफ एनर्जी, एक लाइट है, तो परमात्मा भी एक पॉइंट ऑफ लाइट, एक एनर्जी है, लेकिन वो एक बहुत सुंदर रूप से इस सृष्टि पर अवतरित होकर अपना कार्य शुरू करते हैं।
1: ओके,
2: गुरु नहीं,
0: कोई देहधारी नहीं है, इट्स नॉट अ ह्यूमन फिगर,
1: हाँ, किसी इंसान या किसी ऐसी प्रतिमूर्ति में नहीं है।
0: हम सब आत्माएं हैं, सारे जितने भी ह्यूमन बीइंग्स हैं हम सब आत्माएं हैं और वो परमात्मा है। तो वो भी निराकार, एक पॉइंट ऑफ लाइट, एनर्जी है।
2: शिवानी बहन ने जो बात बताई बहुत अच्छी है, अगर गहराई से सोचा जाए तो हर धर्म में यह बात है कि परमात्मा निराकार है। जैसे जीसस ने कहा गॉड इज लाइट, ऐसे नूरे इलाही, एक ओमकार निराकार, शिवलिंग की भी बात है, भारत में छोटे छोटे गांव में भी आप देखेंगे, तो सभी धर्म में यह है कि परमात्मा कोई साकारी स्वरूप नहीं, वह निराकार है। उस रूप से उनसे संबंध जोड़ेंगे तो डायरेक्ट शक्ति प्राप्त होगी।
1: बिल्कुल, बहुत सुंदर आपने बात कही कि आज एक्चुअली बाकी सारी बातें जो हम करते आ रहे हैं वो मायने ही नहीं रखती, बिकॉज दिस इज सो लॉजिकल। अगर हम धर्म की बात करते हैं, हम जो इतने वर्षों से जो चली आ रही है बात की सोर्स ऑफ लाइट कहा जाता है कि वो एक एनर्जी सोर्स है, हम हमेशा से ये कहते आ रहे हैं कि पावर हाउस है या एक ज्योति का एक पुंज है, तो वो कहीं ना कहीं है, ये आज लॉजिकली भी सही लगता है, लेकिन अब हमारा उनसे तारुफ कैसे होगा? ये हम क्योंकि सिस्टर शिवानी और डॉक्टर गिरीश पटेल, बहुत अच्छा लगा आज ये जो एक हमारे सामने सच सामने आया है कि परमात्मा आ चुके हैं, हमें खुद तलाश रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इस सच का हमें सामना कराने के लिए, इस सच्चाई को हमारे सामने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। क्या कहेंगे आप? नहीं मिलना चाहेंगे अपने पिता से? मैं तो जरूर मिलना चाहूंगी, क्योंकि यही वो तलाश थी शायद जो अभी तक हम इधर से उधर, उधर से इधर, कहीं ना कहीं सेटिस्फेक्शन नहीं पा रहे थे। शायद ये जो कब के बिछड़े हैं हम अपने पिता से, अब जब हमारी उनसे मुलाकात होगी तो कैसा होगा वो रिश्ता, कैसा होगा वो वक्त, कैसा होगा वो समय? इंतजार कीजिए, क्योंकि शायद आने वाली कड़ियों में हम मुलाकात कर पाए, वो जो तारुफ कराने की बात है हमारे अपने परम पिता से वो हो पाए। अगर आपके पास कोई सवाल है, कोई बात है, या आप भी एप्लीकेशन देना चाहते हैं कि हाँ मुझे भी मुलाकात करनी है, तो आप फोन पर हमसे संपर्क कीजिए या फिर ईमेल द्वारा भी हमें संपर्क कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 9873666555 और हमारा ईमेल आईडी है omshantistudio@gmail.com। तो आज इस सच के साथ आपसे विदा लेते हैं कि परमात्मा आ चुके हैं, हमसे मिलने को बेताब हैं, अब हमें अपना पहला कदम बढ़ाना है। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में दीजिए इजाजत, अगली कड़ी में फिर करेंगे मुलाकात। नमस्कार।

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: गर्मी होगी तो आई एम फाइन विद इट, लेकिन ठंड मेरे से जहन नहीं होती। ठंड में तो मैंने बीमार पड़ना ही है, तो मैंने अपने आप को कंडीशनिंग दे दी कि गर्मी में आई विल बी फाइन, लेकिन ठंड में तो मैंने बीमार पड़ना ही है। विच मीन्स मैं अपना ध्यान नहीं रखूंगी, ठंड में बीमार पड़ना अलाउड है। तो अब एक महीना दो महीना मैंने अपने आप को बीमार रहना अलाउड हुआ। अगले साल ठंड 6 महीने रही और मेरी प्रोग्रामिंग मैंने चेंज नहीं की और मैंने अपने आप को प्रोटेक्ट भी नहीं किया, तो अगले साल मैं 6 महीने बीमार रही। उसके 2 साल के बाद इतनी ठंड आई, और क्योंकि मेरा इम्यूनिटी सिस्टम हर साल बीमार होते होते होते होते कमजोर होता जा रहा था, उसके 4 साल बाद इतनी ठंड आई दैट आई जस्ट कुडंट टेक इट। एंड देन वी से डिप्रेशन, नर्वस ब्रेकडाउन, दिस, क्योंकि करते करते करते करते ताकत तो कम होती जाएगी और दुनिया की परिस्थितियां बढ़ती जाएंगी।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: नमस्कार, मी वर्षा उसगावकर। तुम्ही ऐकता आहात पुणेरी आवाज 107.8 FM वर। आनंदित रहा आणि नेहमी सगळ्यांना आनंदित ठेवा।
1: मुझे कुछ कहना है,
2: मुझे भी कुछ कहना है,
1: मुझे कुछ कहना है,

0: देखो जिस तरह लखनऊ के दो नवाबों की गाड़ी पहले आप पहले आप पहले आप पहले आप करके निकल गई थी, उस तरह हमारी पहले तुम पहले तुम पहले तुम पहले तुम में ये मस्ती भरे रुत न चली जाए।
1: अच्छा मैं कहती हूँ

0: आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: मेजोरिटी पीपल सिर्फ अगर अपने जीवन और अपने मन की एक्सरे करनी है उस क्षण चेक करें जब सुबह उठते हैं। अगर सुबह उठते ही फर्स्ट थॉट आती है कि मुझे थोड़ा और सोना है, इसका मतलब मेरी जो 6 घंटे के 8 घंटे की नींद थी मेरी उसमें रेस्ट और रिचार्जिंग नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? शरीर सो रहा था लेकिन मन अभी भी कंटिन्यूसली चल रहा था। मन की बात का समाधान नहीं मिला उसको। अब हमारा मन अगर उसको उसकी बात का समाधान नहीं मिलता है तो वो 5 दिन नहीं 5 साल चल सकता है उस प्रॉब्लम के साथ, 50 साल चल सकता है उस प्रॉब्लम के साथ। और अगर फिर भी समाधान नहीं मिला तो आत्मा शरीर छोड़ेगी, दूसरा शरीर लेगी और वो ही सोच और संस्कार अपने साथ लेकर जाएगी।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: हिंदुस्तान हमारा स्वाधीनता संघर्ष की महाकथा, आजादी के रणबांकुरों की क्रांति कथा के जाने पहचाने और अनजाने पन्ने, अनुसूचित जाति और जनजाति सहित सभी अमर बलिदानियों की प्रेरक कथाएं।
1: महावीर सिंह, चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह के साथी और हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातंत्र सेना के सदस्य थे। काकोरी कांड के समय महावीर सिंह डीएवी कॉलेज कानपुर में पढ़ रहे थे। कानपुर का ये कॉलेज राष्ट्रीय चेतना का केंद्र था। महावीर सिंह का झुकाव भी क्रांतिकारी गतिविधियों की ओर हुआ और वे आजाद के दल में शामिल हो गए। दल के आह्वान पर महावीर ने कॉलेज की पढ़ाई छोड़कर मोटर चलाने का प्रशिक्षण लिया और लाला लाजपत राय के हत्यारे सांडर्स के वध के समय भगत सिंह, राजगुरु और चंद्रशेखर आजाद को कार में बिठाकर सुरक्षित स्थान तक ले गए। दिल्ली असेंबली में बम विस्फोट के बाद पुलिस की सरगर्मी से पार्टी के अधिकांश सदस्य गिरफ्तार किए गए। उस समय महावीर सिंह को भी गिरफ्तार करके लाहौर जेल भेज दिया गया। महावीर सिंह को भगत सिंह का ये कथन बहुत पसंद था कि शासन के साथ लड़ाई किसी न किसी रूप में चलती रहना चाहिए, इसलिए उन्होंने जेल के अधिकारियों के साथ शारीरिक कुश्ती लड़ने के अलावा बौद्धिक कुश्ती लड़ना भी आरंभ कर दिया। उन्होंने अंग्रेज सरकार की अदालत को मान्यता देना बंद कर दिया। शासन ने महावीर सिंह जैसे उद्दंड कैदियों को अंडमान की कालकोठरियों में स्थानांतरित करने का फैसला लिया तो उन्होंने अपने ठहाकों से सेलुलर जेल की दीवारों को भी गुंजायमान कर दिया। जेल अधिकारियों ने सोचा कि अंडमान की खबरें बाहर पहुंच ही नहीं सकती तो फिर अत्याचार करने से क्यों चूका जाए। क्रांतिकारियों ने दुर्व्यवहार का प्रतिकार सामूहिक अनशन करके किया। अनशन प्रारंभ हुए 3 ही दिन हुए थे कि कुछ क्रांतिकारियों की हालत बिगड़ने लगी। जेल अधिकारियों ने और अधिक प्रतीक्षा न करके उन लोगों को बलात्पान कराने की ठान ली। महावीर सिंह के साथ भी जोर जबरदस्ती करके नाक से नली घुसेड़ दी गई। वो नली पेट में न जाकर उनके फेफड़ों में घुस गई। जब कीप लगाकर दूध उड़ेला गया तो दूध उनके फेफड़ों में पहुंच गया। महावीर सिंह मछली की तरह तड़पने लगे। उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया मगर वहां जाकर उन्होंने दम तोड़ दिया। महावीर सिंह की शहादत बेकार नहीं गई। इस अनशन यज्ञ के फलस्वरूप भारत में एक तूफान उठ खड़ा हुआ और शासन को अंडमान के राजबंदियों को सुविधाएं देने के लिए झुकना पड़ा।
2: साहब, थोड़ी देर यहीं रुकते हैं।
3: हाँ हाँ ठीक है, मैं भी काका से मिल लूंगा, दोस्त है मेरे।
2: अरे चल यार, अपन अंताक्षरी खेल रहे थे।
4: पूरे रास्ते तो अंताक्षरी खेल ली यार, अब कुछ और करते हैं।
5: चलो कोई कवि ववी है यहाँ तो कविता हो जाए।
2: भैया माफ करो, ये कविता ववीता हम नहीं सुनने वाले।
4: क्यों नहीं, अच्छी चीजों से वास्ता ही छूट गया है तुम लोगों का महावीर। बहुत कल्पना शक्ति की जरूरत होती है कविता लिखने के लिए।
6: सही कहा मैडम आपने, आजकल के बच्चे तो बस। बेटा तुम्हारा नाम महावीर है ना?
2: जी हाँ।
6: अब देखो बेटा, तुम जानते भी नहीं होगे कि तुम्हारे नाम के इतने बड़े क्रांतिकारी वीर थे जिन्होंने मातृभूमि के लिए अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया।
2: महावीर सिंह कौन थे वो?
3: सुन लो काका से, इनको स्वतंत्रता संग्राम के बारे में बहुत कुछ मालूम है, कुछ अच्छा ही सीख जाएंगे हम लोग।
6: अरे बहुत तो नहीं, पर हाँ ऐसी चीजें कहना और सुनना दोनों ही बहुत पसंद है मुझे। चलो महावीर के बारे में ही बताता हूँ।
7: अरे छोटू जरा मेरी वो लाल किताब लाना।
6: हाँ ला बेटा, इधर ला। देखो बेटा मैं तुम्हारे लिए निकालता हूँ महावीर की। हाँ ये हाँ ये देखो महावीर की तस्वीर। देखा यार, रोबीले और सुंदर दिखते थे महावीर। कासगंज नगर है, जिला एटा, उत्तर प्रदेश। अरे अंग्रेजों को खुश करने के लिए, उनकी चापलूसी करने के लिए बहुत सारी मीटिंगें होती थी। सभा में भीड़ बढ़ाने के लिए स्कूली बच्चों को धकेल दिया जाता था। ऐसी ही एक सभा में एक दिन
7: महावीर भी गया था।
8: टीचर राम, आई होप द प्रोग्राम इज रेडी।
9: जी हुजूर।
10: अब मैं श्री वीरेंद्र को आमंत्रित करता हूँ कि हमारे प्रशासनिक क्रियाकलाप की प्रशंसा में विचार व्यक्त करें और दो शब्द कहें।
11: ऑनरेबल कलेक्टर, वेरी रिस्पेक्टेड पुलिस कमिश्नर,
12: महात्मा गांधी की जय।
8: What is this, Mr. Supervisor? You are going to be responsible for this. Find out the boy who started it.
10: Ji, yes, ji, huzoor. Teacher Mohan, bring the child to the principal.
13: Mahavir, tumhari is harkat ne sharminda kar diya hai hame. Saza to tumhe milni hi chahiye. Lao, baith lao meri.
12: महात्मा गांधी की जय। महात्मा गांधी की जय।
7: बस उसी दिन से बैत खाकर बालक महावीर विद्रोही महावीर हो गया और छात्रों का क्रांतिकारी नेता बन गया। जन्म से राजपूत और कर्म से क्रांतिकारी। 1925 में जब काकोरी स्टेशन के पास क्रांतिकारियों ने अंग्रेजी खजाना लूटा तब महावीर कानपुर के डीएवी कॉलेज में पढ़ते थे। वहाँ उनकी ही तरह क्रांतिकारी विचारधारा के शिव वर्मा से उनकी दोस्ती हुई जो बहुत ही गहरी दोस्ती में बदल गई। महावीर बहुत ही खुश मिजाज इंसान थे, जोरदार हंसी के ठहाके उनकी पहचान थे। पर एक दिन,
14: अरे कुंवर साहब क्या बात है, आज खिलखिलाते चांद से चेहरे को ग्रहण कैसा भाई?
15: बहुत परेशान हूँ शिव भाई, पिताजी ने मेरी शादी तय कर दी है और लड़की देखने के लिए बुलाया है मुझे।
14: वाह वाह वाह भाई, इसे बुरी खबर कहते हो भाई। मिठाई खिलाने से बचना ही है तो हम खिला देंगे।
15: नहीं शिव भाई, मेरे लिए तो ये जरा भी खुशखबरी नहीं। मैं क्रांति की राह पर प्रतिबद्ध हो चुका हूँ। एक क्रांतिकारी के लिए मृत्यु का निमंत्रण ही खुशखबरी हो सकती है शिव। क्या तुम चाहोगे कि मैं देश के प्रति अपने कर्तव्य से विमुख हो जाऊं?
14: आखिर तुम चाहते क्या हो
15: शिव? अब सारे मोहमाया के बंधनों को तोड़कर जाने का समय आ गया है।
14: मित्र होने के नाते एक सलाह तुम्हें देना चाहता हूं महावीर, जो शायद किसी और को नहीं देता। घर छोड़ने के बजाय एक पत्र के द्वारा बातें स्पष्ट करो और अपने संकल्प के बारे में उन्हें बताओ। यदि पिताजी बात ना माने और तुम्हें लेने आए तो तुम घर से भाग ही सकते हो, पर यदि उन्होंने तुम्हारी भावनाएं समझी और तुम्हारी बात मान

0: मान ली तो उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकोगे।
1: शिव की बात महावीर को ठीक लगी और उन्होंने पिताजी को पत्र लिख दिया। कुछ दिनों के बाद महावीर सिंह खुशी के मारे पागलों की तरह दौड़ते दौड़ते शिववर्मा के पास पहुंचे।
2: शिव भाई बस मेरे गले लग जाओ यार।
3: ये क्या कर रहे हो भाई? अरे भाई कहां तुम्हारी पहलवानी दे और कहां मैं हड्डियों का ढांचा। अरे भाई ज्यादा ताकत मत दिखाओ, कहीं मेरी पसलियां चरमरा ना जाए। अरे बताओ तो भाई इतने प्रसन्न क्यों हो?
1: अरे ये पत्र तो पढ़ो, सब जान जाओगे।
0: ये तो तुम्हारे पिताजी का खत है। लिखते हैं, मुझे ये जानकर बड़ी खुशी हुई कि तुमने अपना जीवन देश के काम में लगाने का निश्चय किया है। मैं तो समझता था कि हमारे वंश में पूर्वजों का खून अब रहा ही नहीं और हमने दिल से गुलामी कबूल कर ली। तुम्हारा पत्र पाकर आज मैं अपने को बड़ा भाग्यशाली महसूस कर रहा हूँ। शादी की बात जहाँ चल रही है उन्हें आज जवाब लिख दिया। निश्चिंत रहो, मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जो तुम्हारे मार्ग में बाधा बन। देश की सेवा का मार्ग जो तुमने चुना है वो बड़ी तपस्या का और बड़ा कठिन मार्ग है। जब तुम उस पर चल ही पड़े हो तो पीछे ना मुड़ना, साथियों को धोखा मत देना और अपने वृद्ध पिता का नाम ध्यान रखना। तुम जहां भी रहोगे मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ रहेगा। तुम्हारे पिता देवी सिंह।
3: बहुत भाग्यशाली हो यार जो तुमने इतने प्रगतिशील विचारों वाला पिता पाया है। ये पत्र पाकर जितनी खुशियां मनाओ कम है दोस्त, पर हां भाई ताकत मत आजमाना।
4: ऐसी सोच के पिता मिलना भी तो बहुत बड़ी बात है।
5: फिर वो क्रांतिकारियों से कैसे जुड़े?
1: फिर क्या था, सबसे पहले वो सीधे लाहौर पहुंचे जहां उन्होंने मोटर चलाना सीखा और कुछ ही दिनों में बहुत अच्छे ड्राइवर बन गए। लाला राजपत राय ने हत्यारे सैंडर्स को मारा जिसमें भगत सिंह, राजगुरु और चंद्रशेखर आजाद के साथ महावीर सिंह की भी अहम भूमिका थी। सैंडर्स को मारने के बाद सब लोग साइकिलों से भागे और बाद में महावीर सिंह ही उन्हें कार में सुरक्षित स्थान तक ले गए। जब महावीर सिंह बहुत ज्यादा बीमार पड़े उनके दोस्त शिव वर्मा ने उनसे कहा,
0: महावीर तुम्हारी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है और कोई वारंट भी नहीं तुम्हारे खिलाफ, तुम कुछ दिनों के लिए घर क्यों नहीं हो आते? ठीक होने पर वापस लौट आना।
6: तुम पिताजी का पत्र भूल गए शायद, पीछे मुड़कर मत देखना। जानते हो उसका अर्थ, घर की मोह माया के बंधनों और सुख सुविधाओं को तिलांजलि देना है। मेरे घर जाने से उन्हें दुखी होगा। मैं तो यहीं ठीक हो जाऊंगा। तुम जरा भी चिंता ना करो, मैं ठीक हो जाऊंगा।
1: दिल्ली असेंबली में विस्फोट के बाद भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने खुद गिरफ्तारी दी, पर फिरंगियों ने उनके साथियों को भी नहीं छोड़ा और उनमें महावीर भी गिरफ्तार हुए। इन सबको लाहौर जेल में रखा गया। वहां भगत सिंह ने साथियों से अपील की,
7: साथियों भले ही हम जेल में हैं परंतु हमें किसी न किसी रूप में शासन के खिलाफ अपनी लड़ाई जारी रखनी है।
1: बस महावीर सिंह को ये बात इतनी पसंद आई कि उन्होंने तुरंत जेल में उठा पटक शुरू कर दी। तगड़े लोग सबसे आगे रहते थे मारपीट में और पुलिस के पहलवान भी उन्हीं पर टूट पड़ते थे। इनमें सबसे आगे भगत सिंह, महावीर सिंह, जयदेव और गया प्रसाद रहते थे। रोज 500 दंड और 1000 बैठकें। भला शरीर पर अपने प्रभाव को क्यों नहीं दिखाते, पर अपनी जिंदा दिली और हंसी मजाक में महावीर कहां पीछे रहने वाले थे।
8: ओ मेरे दुबले पतले साथियों, तुम्हारे हिस्से की पिटाई तो हम चारों ने खा ली, चलो अब हमारी सेवा करो।
6: अच्छा साथियों, अब अपने दूसरे कदम में हम जेल में दुर्व्यवहार के विरोध में सामूहिक भूख हड़ताल करेंगे। आप सबका साथ चाहिए।
9: मंजूर है, हम सब साथ हैं महावीर भाई।
10: They are very stubborn. We'll have to find some way to break their fast.
11: We will have to force them.
12: उनको खिलाने के लिए जबरदस्ती करना होगी।

0: The strike is still not over. They will die in the jail one by one. It is urgent to find some way.
1: Hujur, हमें उन्हें अपने पहलवानों से बंधवाकर जबरदस्ती खिलवाना होगा.
0: Oh no, no. Do you think they will ever eat like this? I have some other way. Call the jail doctor.
2: असल में जेल अधिकारियों ने जबरदस्ती नाक से क्रांतिकारियों को दूध पिलाने की योजना बनाई थी, जिसमें नाक में एक नली घुसेड़ दी जाती थी और उसमें जबरदस्ती दूध उड़ेल दिया जाता था. पर अंग्रेजों को नाक को चने चबवा दिए क्रांतिकारियों ने. सबसे ज्यादा मुश्किल था महावीर सिंह को काबू में करना. अरे उनके लिए कम से कम 6-6, 8-8 पहलवानों की जरूरत पड़ती थी.
3: 6-8 पहलवान?
2: हाँ भाई हाँ. और फिर भी महावीर को दूध या पानी पिलाना असफल होता था. पर महावीर कहाँ चुप बैठने वाले थे. महावीर ने और उनके साथियों ने एक अलग तरह से विरोध करने की योजना बनाई.
4: साथी कुंदनलाल, बटुकेश्वर, डॉक्टर गया प्रसाद और जितेंद्र सान्याल भाई, हम लोग अंग्रेजी सरकार की अदालत को मान्यता देना बंद कर रहे हैं. हम अदालत की किसी भी कार्यवाही में भाग नहीं लेंगे. हम एक मत बयान देंगे. हम पर ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध युद्ध छेड़ने का अभियोग लगाया गया है. हम ब्रिटिश सरकार द्वारा बनाई हुई किसी भी अदालत से न्याय की आशा नहीं करते और इसीलिए हम इस न्याय नाटक में भाग नहीं लेंगे.
2: इस केस में महावीर सिंह और 7 साथियों को आजीवन कारावास का दंड सुनाया गया. कुछ दिन बाद उनको वेल्लारी जेल भेज दिया गया. पर वो कहां चुप बैठने वाले थे. वहां भी जेल सुपरिंटेंडेंट के साथ भिड़ गए और बदले में भयंकर बेतों की सजा पाई.
3: बेत की सजा?
2: अरे ये तो कुछ भी नहीं. उन्हें बेतों की इतनी भयंकर मार पड़ी कि पूरा शरीर लहूलुहान हो गया और वे बेहोश जैसे गिर पड़े. उन्हें कोठरी तक ले जाने के लिए स्ट्रेचर बुलाया गया और उस बेहोशी की हालत में भी उन्होंने स्ट्रेचर को एक लात मारी और घृणा की नजर से सुपरिंटेंडेंट की ओर देखा. फिर बिना किसी सहारे के कोठरी की ओर चले गए.
3: इससे और कड़ी सजा क्या दी होगी फिर.
2: दी ना बेटा दी. 84 क्रांतिकारियों को काला पानी की सजा दी गई और वहां की यातनाओं से कौन वाकिफ नहीं था. पर इन लोगों ने अरे वहां भी मस्ती बिखेर दी. महावीर सिंह के ठाकों से सेलुलर जेल गूंज उठा. कहावत बन गई, महावीर है जहां, जीवन है वहां.

प्यार हो, चल रहे बयार हो, घोर अंधकार हो, चल रहे बयार हो।

0: हाँ तो साथियों, चुप तो हमें किसी भी हाल में नहीं रहना है, क्यों ना सामूहिक अनशन का रास्ता अपनाया जाए।
1: परंतु महावीर भाई, भारत से इतनी दूर अनशन करना व्यर्थ नहीं होगा, इतनी दूर से तो बाहर प्रचार भी नहीं हो पाएगा और हम अपने दो चार साथी और गवा बैठेंगे। शासन का क्या है, वहां तो लिखा जाएगा कि कोई हैजे से मरा तो कोई निमोनिया से।
0: आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इसीलिए हम लोग अनशन लंबा नहीं चलाएंगे। शुरू से ही हमारी कोशिश होना चाहिए कि हम में से दो चार लोग बलिदान दे दें। अगर मरने पर उतारू हो जाएं, तो दुनिया की कोई ताकत हमें जिंदा नहीं रख सकती। दूसरी ओर मैं जिम्मेदारी लेता हूं कि कोई तिकड़म भिड़ा के किसी तरह अनशन की खबर बाहर भिजवाऊं।
2: हाँ, हम सब साथ हैं। भारत माता की जय।
0: ये तो तय हुआ कि सामूहिक अनशन करना है। अब बताएं कि पहले कौन से दो साथी आत्म बलिदान के लिए तैयार है।
2: हम सब साथ हैं।
0: ये तो बहुत हर्ष की बात है कि सब लोग इतने उत्साहित हैं, पर पहले कोई दो ही बलिदान दे। एक नाम तो मैं अपना ही ले रहा हूं और दूसरे नाम की पर्ची निकाल ले।
1: अगर आप अपने नाम पर जोर देंगे तो हर कोई खुद का ही नाम लेगा। हम दोनों ही नामों के लिए पर्ची निकालें तो ठीक रहेगा।
0: ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो चलिए ऐसा करते हैं कि 84 पर्चियां बनाई जाए। दोस्तों, क्यों ना हम पर्ची उठाने के लिए जेल वार्डर से अनुरोध करें।
3: महावीर भाई, जिंदा दिली और खुश मिजाजी तो कोई आपसे सीखे, वार्डर भी सोच में पड़ जाएगा। ये लीजिए, पर्चियां डाल दी हैं मटके में।
0: वार्डर भाई साहब, जरा इधर आएंगे। देखिए, आप इस मटके में से दो पर्चियां उठा दीजिए। दरअसल हम लोग अपने में से नेता और उपनेता का चुनाव कर रहे हैं।
4: लाइए।
0: लाइए, मैं पढ़ता हूं। पहला नाम है मोहन किशोर नामदास और दूसरा है मोहित मैत्रेय। बंगभूमि को प्रणाम। दोनों सपूत बंगभूमि के हैं।
2: भारत माता की जय। भारत माता की जय।
0: इन दोनों फूल जैसे कोमल बच्चों को मौत के मुंह में धकेलना मैं कभी स्वीकार नहीं कर सकता। मैं नैसर्गिक न्याय की अवहेलना भी नहीं करना चाहता, पर चूंकि मौलिक प्रस्ताव मेरा ही था, इसलिए तीसरे साथी के रूप में मैं भी इनके साथ बलिदान दूंगा। मैं तो अपनी ठकुरास की ठसक चला कर ही मानूंगा। जेल अधिकारियों को नोटिस दे दो कि हम सामूहिक अनशन पर हैं।
5: मई की भीषण गर्मी और अनशन सिर्फ 3 दिनों में क्रांतिकारियों की हालत बिगड़ने लगी। इधर महावीर सिंह ने जेल के एक वार्डर को पटाकर अनशन का समाचार एक भारतीय पत्रकार तक पहुंचा दिया।
6: We must take some step to stop them. हमको फिर से जबरदस्ती पुराने स्थल से दूध या पानी पिलाना पड़ेगा उन लोगों को। डॉक्टर को बुलाओ।
7: महावीर भाई, सुना है फिर बलात्पान द्वारा जबरदस्ती हमारा अनशन तोड़ना चाहते हैं ये लोग।
0: आने दो भाई, आने दो। हम तो पुराने खिलाड़ी हैं, आज तक कोई नहीं पिला पाया हमें नली डाल के दूध। जानते हो, जब डॉक्टर नली घुसेड़ता है अंदर, तो मैं जोरदार खांसी के साथ नली मुंह से खींच लेता हूं और दांतों में चबा लेता हूं। अब शेर के मुंह में हाथ डालने की हिम्मत डॉक्टर तो क्या, वो 8-8 मुस्तंडे पहलवान भी नहीं कर सकते।
5: कुछ लोगों को तो सफलतापूर्वक दूध पिला दिया गया, पर महावीर सिंह को काबू में करके जब डॉक्टर नली अंदर घुसेड़ रहा था, तो नली पेट में न जाकर उनके फेफड़ों में घुस गई। बेरहम डॉक्टर ने बिना जाने समझे एक ग्लास दूध डाल दिया।
4: फिर क्या हुआ काका?
5: क्या होना था, एक वीर दमदार योद्धा वीर गति को प्राप्त हुआ, पर जाते जाते भी अनशन की खबर पूरे भारत भर में पहुंचा गया। उसी के नतीजे में कालापानी जेल में दी जाने वाली तकलीफों का हिसाब मांगा गया और नए नियम लागू किए गए। जानते हो शहीद महावीर के सामान में उनके साथी जयदेव को क्या मिला?
4: क्या मिला?
5: उनके पिता की भेजी हुई चिट्ठी और एक अंग्रेजी कविता का अनुवाद जो उनके दोस्त शिव वर्मा ने किया था। और ये कविता अब हम लोगों को ये छोटे महावीर पढ़ के सुनाएंगे, क्यों बेटा?
4: हाँ काका जरूर, लाइए किताब दीजिए। ये तो पुष्किन की कविता है और अनुवाद शिव वर्मा का। मैं पढ़ने की कोशिश करता हूँ।
8: मैंने देखा मृत्यु निमंत्रण, उसके द्वारे आया, अत्याचारी से आगे बढ़, जो पहले टकराया, बंद हो गया है मेरा भी
9: आज भाग्य का द्वार, बलि के बिना मिला किसको आजादी का उपहार। मातृभूमि के लिए खुशी से देता हूं मैं प्राण, इसका मुझको पूर्ण ज्ञान है और पूर्ण अनुमान। और पिता मैं वरण कर रहा अंतर से साभार, महानाश की वह सुंदर छवि उसे नमन सौ बार,
8: उसे नमन सौ बार,
9: सौ बार
8: उसे नमन सौ बार, उसे नमन सौ बार।
10: वाह वाह वाह वाह वाह, क्या बात है। देखो इस बहाने आज तुम्हारे अंदर का छिपा भाव भी बाहर आ गया।
4: धन्यवाद काका, आज हम लोगों की आउटिंग का मजा ही कुछ और हो गया। आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला काका। अच्छा काका अब हम सब चलते हैं।
11: अच्छा काका, राम राम, फिर मिलते हैं।
10: अच्छा राम राम भैया, फिर वापस आना।
4: जरूर काका, एक और महावीर की कहानी सुनने।
12: निर्देशन श्रुति धर्मेश, परिकल्पना श्रीराम तिवारी, समन्वय संजय यादव, निर्माण और प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग।

0: अजी सुनते हो?
1: हाँ सुनी तो रहा हूँ।
0: क्या सुन रहे हो?
1: रेडियो पुनेरी आवाज।
0: ओ रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: किसी की एक लाइन मेरी मन, फीलिंग्स, वर्ड्स, एक्शन, रिलेशनशिप एंड बॉडी, छह चीजों पर असर हुआ मेरे। एक घंटे तक ये पूरी साइकोलॉजी, फिजियोलॉजी सब डिस्टर्ब्ड रही, रिश्ता डिस्टर्ब हुआ, रात को भी वो बात याद आई। एंड डेफिनेटली जब ये चीजें दिन में इतनी देर माइंड पे रही होंगी, ये नींद में जरूर चली होंगे, क्योंकि जो थॉट्स एक्टिव ड्यूरिंग द डे चलेगी ज्यादा, ये नींद में जरूर चले होंगे। नींद का नुकसान इसलिए क्योंकि आपने रात को सोने से पहले भी उस बात के साथ रिजोल्व नहीं किया अपने आप को, आप वो अनरिजोल्व्ड बात के साथ सो गए। तो मन क्या करता है, रात को सारा दिन की हुई बातें या जो कुछ हमारे माइंड पे है, देखो कोई प्रॉब्लम है, क्यों लोगों को नींद नहीं आती, व्हेन दे आर अंडर स्ट्रेस कोई प्रॉब्लम है, नींद नहीं आती, क्यों नहीं आती है? क्योंकि मन सोचना बंद नहीं करता है। सोने के लिए द माइंड नीड्स टू स्लो डाउन। इफ आई एम डिस्टर्ब्ड अबाउट समथिंग द माइंड जस्ट गोज ऑन एंड ऑन। आपके साथ एक बच्चा बैठा है, वो पूछता जाएगा जब तक आप उसको आंसर नहीं देंगे। आंसर दिए बिना ही सो गए तो वो तो रात को भी सोचता रहेगा। एंड इसीलिए मोस्ट ऑफ अस टुडे एक्सपीरियंस कि हम अपने 6 घंटे तो सो रहे हैं, 6 घंटे, 8 घंटे, जितना सोना है, लेकिन जब हम सुबह उठ रहे हैं द माइंड इज नॉट एज फ्रेश एज इट नीड्स टू बी।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM, खुश रहो खुशियां बांटो।
2: आला आला आला
3: अहो काय आला
2: आला आला आवाज।

0: आवाज सामाजिक व सांस्कृतिक माहिती देणारे आपले रेडिओ स्टेशन ऐकत रहा 107.8 FM। आनंदी रहा आणि आनंद लुटा।
1: शिवाजी की तलवार है, लावणी बेमिसाल है, टेक्नोलॉजी के साथ संस्कार है, मराठी करती स्वागत हर भाषा का, यहाँ भूमि अपनाती हर त्योहार है। सुनिए पुनेरी आवाज 107.8, खुश रहो, खुशियाँ बांटो।
2: नमस्कार, वेलकम टू अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज। वेलकम सिस्टर।
3: ओम शांति।
2: ओम शांति एंड वेलकम टू बीइंग शक्ति।
3: थैंक यू सो मच।
2: पिछली बार जो आप बात कर रहे थे लेट गो की, उसी सिलसिले में मैं कुछ आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। समबडी सेंड दिस टू मी, दे से समटाइम्स पीपल नेवर गेट व्हाट दे डिजर्व बिकॉज दे आर टू बिजी होल्डिंग ऑन टू थिंग्स दे आर सपोज्ड टू लेट गो ऑफ।
3: सो ट्रू, राइट?
2: हाउ?
3: नॉट ट्रू।
2: कौन सी चीज मैंने पकड़ के रखी है जो एक चीज जिसको मैं डिजर्व करता हूँ वो भी नहीं मिलती? मतलब जगह बनानी पड़ती है क्या? अलमारी में जैसे कपड़े हैं, पुराने निकालो नए लगाओ, ऐसा कुछ?
3: सपोज वी डिजर्व हैप्पीनेस, we deserve health, we deserve beautiful loving relationships,
2: जी,
3: लेकिन हमने पुरानी बातें पकड़ के रखी हुई है। वो इतने साल पहले ये हुआ था, उस दिन उसने वो कहा था, पिछली बार उसने ऐसा कर दिया था, मेरे साथ ही बार बार ऐसा होता है, कितना भी कोशिश करो मुझे ही सक्सेस नहीं मिलती है। I deserve happiness, health and beautiful relationships. I deserve success in life. बट क्योंकि मैंने पुरानी चीजों को लेट गो नहीं किया तो मेरा हर दिन कैसे बीतने वाला है? हर दिन ऐसे ही चलेगा? यही कमेंट्री अंदर चलेगी क्योंकि मैं पुरानी बीती हुई बातों को नहीं छोड़ रही। फिर इतने साल चलते चलते ये मेरे ऊपर, फिर मेरी सेहत पर भी असर करना शुरू करेगी, मेरी पर्सनालिटी चेंज होने लग जाएगी, मुझे लोगों पर विश्वास नहीं होगा क्योंकि मैंने सोचा लोग धोखा ही देते हैं, कितना भी किसी के लिए करो आजकल दुनिया ही ऐसी है, रिश्तों में कुछ बचा ही नहीं है। क्यों? क्योंकि पहले किसी ने कुछ ऐसा किया था। सो व्हाट आई डिजर्व आई विल नॉट गेट।
2: सपोजिंग पहले कुछ किसी ने मेरे साथ रिश्ते में ऐसा किया था, लेकिन आज एक अच्छा रिश्ता मेरे सामने है, मेरे साथ है, मुझे डिजर्विंग, क्योंकि मैं डिजर्व करता था मुझे मिला भी, लेकिन फिर भी मैं वो पुरानी बात को ला के इसको एंजॉय नहीं कर पा रहा हूँ और जान नहीं चाह पा रहा हूँ, पहचान नहीं पा रहा हूँ, डाउट कर रहा हूँ कि ये भी ऐसी होगी।
3: एंड कई बार तो जरूरी नहीं है कि व्यक्ति डिफरेंट है।
2: अच्छा।
3: वो ही व्यक्ति के साथ, इट्स नॉट नेसेसरी कि पास्ट में एक व्यक्ति के साथ मुझे कुछ धोखा हुआ तो मैंने अगली बार और व्यक्ति पर ट्रस्ट करने से मुझे मतलब एक संकोच सा हुआ कि कहीं वैसा ही ना फिर से मेरे साथ हो जाए। सपोज बिजनेस में भी हम एक बिजनेस पार्टनर है, चीट किया या जैसा हमने सोचा था वैसे नहीं हुआ तो फिर कई लोग कहते हैं पार्टनरशिप नहीं करनी है, क्योंकि एक पार्टनर के साथ का मेरा एक्सपीरियंस लेट गो क्योंकि हम नहीं कर पा रहे, हम नेक्स्ट में करने से डरेंगे और जो हम डिजर्व करते हैं वो हमें नहीं मिलेगा। लर्न करना, नेक्स्ट टाइम कैसे केयरफुल रहना है वो करना, लेकिन उस दर्द को लेट गो करना ताकि नेक्स्ट टाइम आई कैन बिगिन समथिंग विद अ ब्यूटिफुल एनर्जी। सो इट कुड बी अ पास्ट एक्सपीरियंस ऑफ वन पर्सन कैरिंग फॉरवर्ड टू अनदर पर्सन, it could be a past experience of one person carrying forward the next day again to that person. Suppose kal mera aapke sath interaction mein kuch hua wo kal ki baat thi, lekin aaj subah bhi uthkar agar maine wohi thought process se shuru kiya to meri energy aaj ke interaction mein kis energy se shuru hogi? kal wali. to aaj jo main deserve karti hu वो मुझे नहीं मिलेगा क्योंकि आई हैव नॉट लेट गो ऑफ व्हाट हैड हैपेंड यस्टरडे। पावर टू लेट गो, जितना हम कल्टीवेट करते जाएंगे तो हमारी जीवन की जो क्वालिटी है एनर्जी वो कम्प्लीटली चेंज हो जाएगी। बिकॉज दिस लाइन इज वेरी ट्रू, वी आर लिविंग विद एनर्जीज ऑफ द पास्ट।
2: मैं क्या सोचता था सिस्टर हमेशा कि जब भी कोई लेट गो वाली बात होती थी तो मैं कहता था देखो भाई अगर एक कुत्ता है जो काटता है मुझे मालूम है तो मैं इसको अवॉइड करूंगा कि नहीं कि मैं वो एक बार काट और मैं बोला लेट गो फिर जाऊं उसके पास फिर बोला लेट गो तू काट भाई तो इस फिर हाउ
3: कैन इसमें फर्क फिर से करते हैं. सपोज किसी ने बाइट किया मुझे जानवर ने कल, ठीक है, तो जब कल बाइट किया था तब दर्द हुआ था, इंजरी भी हुई थी, वो पेन वो एक्सपीरियंस वो ट्रॉमा वो यहां पे रिकॉर्डेड हो गया. अब इसको मैंने लेट गो नहीं किया, लर्न कर लिया वो अलग बात है कि लर्न कर लिया कि उसके पास नहीं जाना, सपोज इन केस ऑफ एन एनिमल कि उसके पास नहीं जाना फिर से, लेकिन पेन को लेट गो नहीं किया, पास्ट मेमोरी को लेट गो नहीं किया, तो हर बार उसके नजदीक या वैसा कोई भी जानवर कहीं भी दिख गया तो मुझे पैनिक फियर वो सारी इमोशंस फिर से क्रिएट हो जाते हैं, जबकि इस बार उस जानवर ने कुछ भी नहीं करना.
2: पर सिस्टर लर्निंग और लेट गो में फिर फर्क क्या हुआ? अगर सपोजिंग एक आदमी है या एक औरत है जिसको कभी मैं कुछ समझाने जाऊं कि ये सही है ये नहीं, जी मुझे सब मालूम है आप रहने दो आई डोंट डू सपोज ऐसे आपको बेइज्जती कर दे कि भाई आप क्यों मुझे ऐसा करें, पहले आप अपने आप को तो सुधारो, इस तरह का जवाब मिल जाए तो वहां क्या लेट गो करें, लर्न करें, क्या करें? नेक्स्ट टाइम तो मैं बात भी नहीं करना चाहूंगा.
3: लास्ट टाइम किसी ने आपकी बात नहीं सुनी?
2: लास्ट टाइम नहीं, एक बार दो बार तीन बार,
3: चलो एक बार दो बार तीन बार दस बार,
2: ठीक है,
3: चलो तीन भी नहीं दस बार.
2: तो उसको लेट गो कैसे करें? याद तो रहेगा कि भाई इसको बोलो तो ये तो आगे बढ़ता है.
3: अच्छा, ज्यादा से ज्यादा उससे लर्निंग कर सकते हैं. लेट्स से एक बच्चा आग में हाथ डालता है, उसके हाथ को थोड़ा सा जलन सी होती है, सेक होती है. लर्निंग फ्रॉम द पास्ट क्या है कि मुझे अगली बार इस आग में हाथ नहीं डालना, फाइन. लेकिन नॉट बीइंग एबल टू लेट गो ऑफ द पास्ट क्या है कि जब भी वो आग को देखता है
2: फियर हो जाए,
3: या जब भी उसको वो इंसिडेंट याद आता है, जब भी उसको आग की फोटो भी दिखाई दे जाती है कहीं,
2: तो
3: जब भी उसको पिक्चर टीवी में वो आग कहीं दिखाई दे जाती है
2: तो वो इमोशन को रिलीव करे,
3: वो रिलीव करता है. दिस इज नॉट लर्निंग, दिस इज रीलिविंग दैट एक्सपीरियंस अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन.
2: इसका मतलब मैं जिसको सिखा रहा हूँ, सुधारने की कोशिश कर रहा हूँ, समझा रहा हूँ, वो मुझ पर झड़प के मेरी बेइज्जती कर दे, सो कॉल्ड बेइज्जती जो मैं समझता हूँ बेइज्जती, वो कर दे, और जब भी मैं उसको देखूं तो आई एम रीलिविंग.
3: एंड यू आर नॉट ओनली रीलिविंग, जब आप देखें
2: आई एम फीलिंग हर्ट कि उसने उस दिन मुझे ये बोला था, ऐसे ताना मारा था, ऐसे हर्ट किया था, वो हो रहा है.
3: और जब भी देखें तब नहीं, जब नहीं है, जब नहीं है तब भी हो रहा है ना माइंड में.
2: अच्छा,
3: सपोज किसी आत्मा ने, आपने कहा मुझे इंसल्ट किया, आप उनके फायदे के लिए कुछ कहने गए थे, उन्होंने नहीं लिया एडवाइस, रिजेक्ट किया, तो वी फील दैट इट वॉज एन इंसल्ट.
2: इतना सॉफ्टली मत बोली, नहीं लिया एडवाइस और रिजेक्ट किया, उन्होंने आपको बदतमीजी से जवाब दिया.
3: अच्छा चले ठीक, रिजेक्ट किया ना, रिजेक्ट ही हो गया वो वर्ड. वो कब हुआ था? लेट्स से वो एक बार पिछले साल हुआ था, फिर उसके बाद वो एक बार कुछ महीने पहले भी हुआ था, फिर वो एक बार पिछले हफ्ते भी हुआ था. होने चार पांच छह बार होते होते हमने एक चीज लर्न कर ली. क्या लर्न कर लिया?
2: कि ये आदमी ऐसा है,
3: ये आत्मा इस समय अभी कोई चीज लेने के लिए, एडवाइस लेने के लिए इस समय तैयार नहीं है. या फिर आपने जैसे कहा, वो बहुत बुरी तरह से ऊपर से जवाब दे देते हैं, उस एडवाइस को रिजेक्ट कर देते हैं, आपको ही रिजेक्ट कर देते हैं. ठीक है, व्हेन डिड दिस हैपन? लेट्स से दिस हैपेंड वन ईयर बैक, फर्स्ट टाइम. जब फर्स्ट टाइम ये हुआ होगा, क्या एक्सपीरियंस क्रिएट किया अंदर? एक्सपीरियंस क्या क्रिएट?
2: हर्ट एंड डिसरिस्पेक्ट.
3: आपकी डिसरिस्पेक्ट हुई,
2: खुद की
3: इंसल्टेड फील हुई, राइट? अब इंसिडेंट
2: एंड ऑल्सो फेल्ट वेरी बैड अबाउट माई सेल्फ, की बोलने की जरूरत क्या थी तुमको?
3: तो गिल्ट भी क्रिएट किया कि मुझे नहीं बोलना चाहिए था. ये जो सिचुएशन थी वो दो मिनट की थी. एक्सपीरियंस कितनी देर रहा
2: अभी तक? है
3: एक साल पहले का,
2: या तो है वो दर्द रहा काफी देर तक.
3: अच्छा,
2: वो दो चार दिन तो,
3: दो चार दिन तो बहुत ज्यादा रहा, लेकिन एक साल में कई बार वो थॉट्स बार बार आए?
2: हाँ, बार बार वो बात करने, और जब भी मेरा मन करे बोलने का कि आज मैं इनको ये बताऊं, फिर मैं पीछे हट जाऊं, उस वक्त वो फिर से याद आता था, चला जाता
3: तो फिर से, तो वो थॉट्स बार बार आते आते हर बार हम उसको रिलिव कर रहे हैं, उन्होंने ये बोला, उनको नहीं बोलना चाहिए था, ऐसा नहीं कर... हमने लर्न क्या किया उस दिन वो इंसिडेंट से? हर्ट रजिस्टर हुआ उस दिन सिर्फ, एंड ये रजिस्टर हुआ कि ये व्यक्ति ठीक नहीं है, इनको बिल्कुल मैनर्स नहीं है, बात करनी नहीं आती इनको, इनके फायदे के लिए कुछ बोला और इन्होंने इस तरह से जवाब दिया, ये रिकॉर्ड किया हमने,
2: बड़े छोटों की तमीज नहीं है,
3: ये रिकॉर्डिंग हुई मेमोरी के अंदर सारी,
2: हाँ, हुई ना।
3: ये रजिस्टर हुआ, लर्न क्या करके रजिस्टर किया उस दिन? लर्निंग तो कुछ किया ही नहीं, लर्निंग क्या करनी?
2: हमने ये किया कि आज के बाद इनको कुछ नहीं बताना।
3: अगर हमने ये लर्न कर लिया कि अभी के समय पर ये रेडी नहीं है आत्मा एडवाइस लेने के लिए, तो जब तक वो रेडी नहीं होते और मैं रेडी नहीं हूँ, इम्पोर्टेंट, मैं रेडी नहीं हूँ कि कोई मेरी एडवाइस को
2: रिजेक्ट करे,
3: तो थोड़े टाइम के लिए मैंने एडवाइस नहीं देनी। अगर ये लर्न कर लिया, लर्न करने के बाद मुझे उस दिन के एक्सपीरियंस को क्या करना पड़ेगा?
2: लेट गो,
3: ये डिलीट करना पड़ेगा।

0: because it's not good for me, for that soul and for this relationship. Learn kar le. Ab isko aage future mein do hi options hain. Ek, hum utne powerful ho jayenge कि हम फिर भी राय देंगे, सामने वाला नहीं लेगा तो हम कहेंगे कोई बात नहीं, मैंने तो राय देनी थी. वो एक स्थिति आ सकती है. दूसरी स्थिति ये भी आ सकती है कि वो आत्मा भी रिसेप्टिव हो जाए राय सुनने के लिए. दोनों में से कोई भी पॉसिबिलिटी आ सकती है. इसलिए कोई इम्प्रेशन ऐसा परमानेंट नहीं बनाना जो जीवन में फिर कभी नहीं चेंज होगा.
1: सेकेंड टाइम पहले वाला जो आपका आइडिया था वो भी ट्राई किया कि भाई कोई बात नहीं, हम बड़े हैं, हमारी ड्यूटी हमको बताना है.
0: हाँ.
1: क्योंकि बच्चे हैं.
0: हाँ.
1: और इनका बहुत नुकसान होगा तो मुझे भी दुख होगा.
0: तो बस फिर तो बहुत ब्यूटीफुल.
1: हाँ, लेकिन फिर डबल रिजेक्शन हुआ.
0: प्रिपेयर करना है अपने आप को. मतलब क्या करना है?
1: क्या
0: प्रिपेयर करना है अपने आप को सेकंड टाइम के पहले?
1: सेकंड टाइम के पहले रिजेक्शन वापस, उधर से तो रिजेक्शन आया, मुझे इतना बुरा नहीं लगा होगा.
0: अगर आपने लर्न करके अपने आप को प्रिपेयर कर लिया कि मुझे तो बताना है
1: चाहे कुछ भी हो,
0: मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरा ये रोल है, मेरा ये संस्कार है.
1: मैंने प्रिपेयर भी किया.
0: हाँ.
1: बोला भी ये शब्द.
0: हाँ.
1: कि मेरा ये रोल है, मेरी ड्यूटी है, मेरा संस्कार है. आप मानो या कैसे भी जवाब दो, मेरा काम मैं अपनी तरफ से कर रहा हूँ पूरा.
0: अब अगर उधर से रिजेक्शन भी आए तो हमें तो उस रिजेक्शन को यहाँ रजिस्टर ही नहीं करने देना चाहिए.
1: हम करना चाहिए
0: हम
1: लेकिन
0: हुआ. क्या कर रहे थे? इसका मतलब सेकेंड टाइम भी हम लर्निंग करके नहीं गए.
1: नहीं, सेकेंड टाइम ये लर्न करके नहीं गए कि मैं रिजेक्ट नहीं होऊंगा कुछ भी वहां से जवाब आए तो. सेकेंड टाइम फिर बोलने की आदत है अपनी, ड्यूटी बोल के पता नहीं क्या.
0: लेकिन फिर लर्निंग करके नहीं गए. दिस इज लर्निंग फ्रॉम द पास्ट. यू नो एवरीवन सेज बट वी नीड टू लर्न फ्रॉम द पास्ट. बट वी नीड टू लर्न. यस, वी नीड टू लर्न फ्रॉम द पास्ट. बट वॉट डू वी नीड टू लर्न फ्रॉम द पास्ट? आई नीड टू लर्न फ्रॉम द पास्ट कि पिछली बार मैंने ये किया और ये रिजल्ट हुआ, मैं इस तरह से डिस्टर्ब हुआ. इस बार अगर मैंने फिर से वो करना है तो मैं पहले ही प्रिपेयर हो जाऊं कि इरिस्पेक्टिव कि वहां से क्या रिस्पॉन्स आएगा, आई एम फाइन, आई एम प्लेइंग माई.
1: जो भी मुझसे मिलकर बात करने, अपने घर की बात करने को आता है, बोले आज का जमाना अजीब सा है, आज तो किसी को सिखा भी नहीं सकते. सिखाओ तो ऊपर हमको ही सिखाने लग जाते हैं, फलाना ये फलाना वो, सुनते ही नहीं है, ऐसे करते.
0: हमें किसी को सिखाना नहीं है
1: तो हम क्या कर रहे हैं?
0: किसी को समझाना नहीं है
1: तो एडवाइस देने का क्या मतलब?
0: हमें अपने अनुभव की राय देनी है. हमें सिखाना, समझाना और डेफिनेटली किसी को कंट्रोल करना या किसी को चेंज करना नहीं है जीवन का लक्ष्य. ये इंटेंशन एनर्जी की ही ठीक नहीं है.
1: इसका मतलब ये है कि उधर से ऐसा रिजेक्शन आया होगा जस्ट बिकॉज द वे आई स्पोक.
0: Not necessary just because
1: maybe
0: of the way
1: I have the intention of controlling the person or teaching him or not understanding. ये भी grown up है.
0: जितना हम control करने की कोशिश करते हैं, मतलब हमने कहा तुमने माना, हमने कहा तुमने माना. अब ये कई बार हमारा successful हो जाता है कि हमने कहा तुमने माना, तो हमें भी तो आदत पड़ जाती है कि हमने कहा लोगों ने माना. एंड फिर हमें कोई मिलेंगे जो हमने कहा और उन्होंने नहीं माना. एंड दैट इज वेन आर ईगो इज गेटिंग हर्ट. कि हमने कहा और उन्होंने माना नहीं. ये हर्ट किस चीज का है?
1: उन्हीं बच्चों के साथ भी तो होता है. वो बच्चे पहले हमने कहा उन्होंने माना, हमने कहा उन्होंने माना, करते करते करते 20 साल 30 साल, उसके बाद बोले डैड मॉम प्लीज ग्रोन अप.
0: राइट,
1: हमने कहा तुमने माना, कब तक चलेगा?
0: हाँ, तो अब हमारे को अपनी इंटेंशन चेंज करनी है कि हमने कहा तुमने माना उसके लिए नहीं हम बोल रहे. हमें राय देनी है, इसीलिए हम राय दे रहे हैं. दैट्स इट. लर्निंग From the past. Learning is very important. अगर हमने past experience की बात को पकड़ के रखा और वो ही हमारी thoughts अंदर चल रही है, 99.9% the next time that person will react in the same way. क्योंकि हमने इतने दिन energy भी तो उनको वही भेजी है. Energy बहुत powerful काम करने वाली है. हमारा past हमारा future फिर बनता है क्योंकि हमने पास्ट के थॉट्स को ही फ्यूचर में फिर लेकर आए हैं. एंड सो मेनी टाइम्स इट्स एक्चुअली बी एंटिसिपेटेड कि ये होगा ही ऐसे. हम इनको कहेंगे ना इन्होंने ऐसे ही जवाब देना. क्यों? क्योंकि ये तो है ही ऐसे, ये तो करते ही ऐसे, ये तो हर बार ही ऐसे करते हैं. तो वहां से वही रिएक्शन आने की पॉसिबिलिटी कितनी गुणा ज्यादा बढ़

0: जाएगी।
1: कितनी शक्ति है ना थॉट्स
0: इनर
1: में।
0: कम्युनिकेशन कॉन्स्टेंटली चल रहा है, इस चीज की
1: इनर
0: पावर को
1: कम्युनिकेशन के
0: हम
1: बदले में
0: अंडर
1: एस्टिमेट
0: करते हैं।
1: इनर फ्रिक्शन,
0: वही वो तो क्वालिटी ऑफ कम्युनिकेशन कौन सी है, इसकी पावर को हम अंडर एस्टिमेट करते हैं। हमें लगता है नहीं दिखता किसी को जो हम सोचते हैं, हम जो बोलते हैं उससे भी ज्यादा क्लैरिटी से वो पहुंचता है जो हम सोचते हैं, क्योंकि वो डायरेक्ट है। इफ आई से समथिंग टू यू, अगर आपका माइंड कहीं और कुछ सोच रहा है, आप सुने ना सुने, कई बार रजिस्टर हो नहीं रजिस्टर हो पॉसिबल।
1: कई बार कान भी तो कुछ अलग सुनता है या कुछ टोन में
0: हाँ,
1: डिफरेंस
0: एंड मैंने
1: देता
0: दो लाइन ही बोलनी है ना सिर्फ, लेकिन जब हम सोचते हैं किसी के लिए, एक साल, 6 साल, 6 महीने, कितना भी हम सोच रहे हैं, और वो सोच बहुत पावरफुल वाइब्रेशन के साथ होती है जब वो नेगेटिव होती है, तो वो एनर्जी सामने वाले को रीच नहीं करेगी।
1: तो वो तो डायरेक्ट रिटर्न मैसेज जाता होगा।
0: इस फोन्स पे जो मैसेज हम भेजेंगे ना, उस पे भी शायद किसी को इंटेंशन नहीं समझ में आएगी कि इन्होंने बात तो लिखी, इसके पीछे इसका भाव क्या था, लेकिन जो हम सोचेंगे वो तो भाव भावना के साथ सीधा हिट करेगा। तो द प्रोबेबिलिटी के सामने वाला नेक्स्ट टाइम फिर वैसे ही रिएक्ट करने वाला है, उसको तो हम ही क्रिएट कर देते हैं पहले ही उनके लिए सोच के इतनी बार उस तरह से, और वो भी हमारे लिए बहुत फिर वैसा सोच रहे हैं। सो दैट कॉन्स्टेंट इंटरेक्शन ऑफ एनर्जी हैज अ ग्रेट चांस कि पास्ट फिर से फ्यूचर में क्रिएट हो जाएगा।
1: यहाँ इसको सुधारने के लिए एज हमारा जो टाइटल है बीइंग शक्ति, कौन सी शक्ति को यूज करें और कैसे करें?
0: पास्ट के एक्सपीरियंस को आज डिलीट करना पड़ेगा।
1: ऐसे कैसे हो जाएगा?
0: होता है, वर्क करना पड़ता है थोड़ा, ऐसे नहीं बोला लेट गो और हो गया लेट गो करके। यू वर्क विद योर सेल्फ। ये जो इंसिडेंट मेरा इनके साथ हुआ, ये जो एक्सपीरियंस मेरा इसके साथ हुआ, जो हर्ट मुझे उस दिन फील हुई, आज मैं आत्मा इसको यहां से लेट गो करती हूँ। इसको बोलते जाना है, बोलते जाना है, करते जाना है।
1: और जब जब आए थॉट उसको बोला
0: उसको
1: है लेट
0: तो
1: गो,
0: बिल्कुल रजिस्टर नहीं होने देना। उस दिन हमने पढ़ा था ना, वन थॉट विल अट्रैक्ट द नेक्स्ट थॉट, द नेक्स्ट थॉट, द नेक्स्ट थॉट। तो जब नेक्स्ट बार भी वो आए, इसे आई हैव लर्न्ड फ्रॉम इट, लेट गो।
1: अच्छा, आई हैव लर्न्ड फ्रॉम इट, नाउ लेट गो।
0: सी नेक्स्ट टाइम द थॉट विल स्टिल कम,
1: दिस इज वेरी गुड, आई लव
0: दिस, बट शी सेड दिस, बट देन ही सेड दिस, आई हैव लर्न्ड फ्रॉम इट,
1: बट दिस इज अ ब्यूटिफुल थिंग, आई कैन टॉक टेल माई माइंड कि देखो उस दिन जो हुआ सिचुएशन और पीपल एंड वॉट एवर एंड इमोशंस, फ्रॉम दैट आई हैव लर्न्ड फ्रॉम इट, नाउ लेट गो। अब आप जाइए, आपने हमको सिखाना था थॉट, अब चलो हटो।
0: ये जो आपने अभी बोला है ना, ये जितना आपने अभी बोला है अपने आप को
1: सेम तरीके
0: ये
1: से
0: हर बार बोलना है अपने मन को।
1: अच्छा,
0: उसी क्षण जैसे ही वो बोलना शुरू करेगा ना, उसी क्षण उसको ये बोल देना,
1: दिस इज इजियर देन फाइंडिंग देयर गुड क्वालिटीज,
0: गुड क्वालिटीज ऑफ
1: दैट पर्सन। आपने एक बार बोला था कि उनके अच्छे गुण भी देखो,
0: वो भी हमने करना है अभी
1: हाँ, लेकिन
0: उसके बाद
1: फाइन, बट एटलीस्ट नेक्स्ट स्टेप होगा अच्छे गुण देखना। बट ये मुझे बहुत एप्ट और अच्छा लगा कि भी देखो एक चीज परिस्थिति आई कि मैंने एक गाड़ी चला रहा था, जाते जाते एक बार गाड़ी खड्डे में गिर गई, ठीक है, उस खड्डे में मुझे मालूम है नेक्स्ट डे भी जाना है, मुझे रोज जाना है, तो आई हैव लर्न फ्रॉम इट, नाउ मैं साइड से हट जाऊंगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।
0: एक बार मैं गाड़ी चला रही थी,
1: गिर गई, सड़क किसने बनाई, म्यूनसिपैलिटी क्या करती है, इन लोग हमारा पैसा खाते, पब्लिक मनी, ये वो भी कर सकते हैं।
0: मोस्ट इम्पोर्टेंट, एक बार मैं गाड़ी चला रही थी, एक्सीडेंट हो गया, अब तो मैंने गाड़ी नहीं चलानी इसके बाद। लेटिंग गो ऑफ द पास्ट एक्सपीरियंस नहीं किया ना। इवन गाड़ी चलाने में कितने लोग गाड़ी चलाना बंद कर देते हैं, बिकॉज उन्होंने एक बार जब चलाई तब एक्सीडेंट हो गया, एक बार उस दिन मैंने ये किया तो ऐसा हो गया, अब मैंने फिर से नहीं करना। लेट गो ऑफ द पास्ट एक्सपीरियंस। वो दिन अलग था, माहौल अलग था, मूड अलग था सबका, उस दिन वो हो गया, हर बार वो नहीं होने वाला है। आई हैव लर्न्ड फ्रॉम द पास्ट, नाउ लेट गो। अगर मैंने पास्ट के थॉट, फीलिंग, इमोशन, मेमोरी, एक्सपीरियंस, पेन को लेट गो नहीं किया, दिस कोटेशन विल बिकम अ रियलिटी कि मुझे भविष्य में वो नहीं मिलेगा जो मैं डिजर्व करता हूँ, क्योंकि मैंने पास्ट की चीजों को पकड़ के रखा हुआ है। ये लेट गो करने में भी ना, जो सबसे बड़ा बिलीफ सिस्टम हमें लेट गो करना होगा, जो हम बार बार

0: अवेकनिंग में बोलते हैं, लेकिन ये तो हमें हर रोज अपने आप को बोलना पड़ता है। ये जितनी बार भी बोलें अपने आप को उतना कम है।
1: रिश्तों के लिए ये बहुत अच्छा लगा मुझे।
0: जो सबसे बड़ा डीप बिलीफ सिस्टम है जिसको लेट गो करना है, जो हम कोशिश कर रहे हैं, अचीव भी कर रहे हैं, लेकिन अभी और बहुत प्रैक्टिस करनी है उसके ऊपर। एंड दैट इज एब्सोल्यूटली नो वन एंड नो सिचुएशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द वे आई फील। इस बिलीफ सिस्टम को लेट गो करना बहुत बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। उनकी वजह से मुझे दर्द हुआ, उन्होंने मेरी इंसल्ट की, उनकी वजह से मुझे हर्ट हुआ, उन्होंने मेरी डिसरिस्पेक्ट की। इस बिलीफ सिस्टम को लेट गो करना है सबसे पहले, सबसे डीप बिलीफ सिस्टम। क्योंकि अभी ये जो सारा आपने सुनाया भी कि मैंने उनको राय दी, उन्होंने राय को रिजेक्ट किया, मैं हर्ट हुआ, बुरी तरह से किया, मैं हर्ट हुआ, उन्होंने मेरी इंसल्ट की, उन्होंने मुझे हर्ट किया। पहले तो इस डीप डीप बिलीफ सिस्टम को ही लेट गो करना है, तो बहुत सारी और चीजें लेट गो करनी नहीं पड़ेंगी। ये बिलीफ सिस्टम, उन्होंने मुझे हर्ट नहीं किया, उन्होंने मुझे इंसल्ट नहीं किया, उन्होंने मेरी डिसरिस्पेक्ट नहीं की, उनको जो सही लगा उन्होंने किया। नो वन, नो सिचुएशन, नो पर्सन कैन क्रिएट माई थॉट्स एंड फीलिंग्स। ये बिलीफ सिस्टम जितना इजी लगता है सुनने में, जितनी बार हम सुन चुके हैं, उतना ही ये डीप है और उतना ही हम इसको कितना पकड़ के रखे।
1: आपकी ये बात थोड़ी ठीक नहीं लगती है कि वो अगला बंदे को थोड़ा तो होना चाहिए कि बड़ा कोई समझा रहा है भाई, क्यों बोल रहा है, कोई डांट के तो नहीं बोल रहा है, कोई टोक भी नहीं रहे, कोई ताना भी नहीं मार रहे। अगर आप बोला बेटा ये नहीं ये, तो आपको इतना मतलब रिएक्ट करने की क्या जरूरत है?
0: उनको क्या सही है या नहीं है वो तो अलग बात है, वो तो ठीक है, वी आर नॉट सेइंग।
1: तो उस तरफ से जो आया वो स्वीटली आता तो फिर मैं डिस्कस ही नहीं करता
0: बात। लेकिन दुनिया हमारे साथ स्वीट नहीं हो सकती ना हर बार, और वो भी उतना स्वीट जितना हम चाहते हैं, वो तो पॉसिबल नहीं है। वो तो देन अगेन दैट्स कंट्रोल।
1: मेरे चाय का कप भी मेरे हिसाब से जो बराबर शुगर नहीं डाल सकते, मुझे ही डालनी पड़ती है। तो अगले बंदे को
0: अपनी
1: तो
0: चाय रोज किचन में खुद बनाने जाते हैं ना।
1: हाँ, क्योंकि उनको समझ नहीं आता मुझे।
0: जब इतनी सी चीज नहीं दूसरे को पता चल रही कि आपके लिए चाय कैसे बनानी है, तो व्हाई आर वी एक्सपेक्टिंग दैट द वर्ल्ड विल बी अकॉर्डिंग टू अस?
1: दैट्स ब्यूटीफुल।
0: व्हाई विल द वर्ल्ड बी अकॉर्डिंग टू अस? लोग वैसे ही होंगे जैसे वो कंफर्टेबल है ना। तो वो उसने स्वीटली बात करनी चाहिए, उनको ऐसे जवाब देना चाहिए। ऐसी की तो लंबी लिस्ट है कि दुनिया में क्या क्या होना चाहिए, लोगों को कैसे होना चाहिए। इस
1: सिस्टर, आप जो बोल रहे हो वो तो बिल्कुल एबीसीडी है। ये नहीं कि मैं आपको कुछ चीज बोलूं, आप कुर्सी उतर के डांट उड़ के कुर्सी छोड़ के चले जाओ, तो वो थोड़ी स्वीटनेस है। दैट्स बैड मैनर्स, कम ऑन।
0: दैट्स माय बैड मैनर्स, नो?
1: फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू, यस।
0: बट माय बैड मैनर्स, नो?
1: या द अदर पार्टीज, या
0: दैट्स माइन। टॉक अबाउट योरसेल्फ, दैट्स माय बैड मैनर्स। एम्पावर योरसेल्फ नॉट टू गेट अफेक्टेड बाय माय बैड मैनर्स।
1: How can I do that?
0: Why not? यही तो अवेकनिंग है, यही तो ज्ञान है, ये डिस्कशन नहीं है।
1: मैं तो कभी बात ही नहीं करता बाद में, हाय हेलो करके निकल जाता हूँ।
0: मेरे बैड मैनर्स हैं इज फाइन, लेकिन एम्पावर योर सेल्फ मतलब कि दूसरे का व्यवहार मेरे मन की स्थिति को टच नहीं कर सकता है। मेरे मन की स्थिति मेरी क्रिएशन है।
1: अच्छा चलिए, अगर आप जो सिखा रहे हैं मैंने सीख लिया, तो अगला बोलेगा इसको तो कुछ भी कभी भी बोल दो, डांट डूंट दो, फिर ये आ जाता है, मेरी क्या वैल्यू रहेगी?
0: एक्चुअली होने क्या वाला है? वैल्यू तो अभी भी नहीं थी ना आपके हिसाब से।
1: चल नहीं रही,
0: अभी नहीं थी ना,
1: नहीं थी,
0: अभी नहीं थी।
1: और गिरेंगे?
0: नहीं, उल्टा ऑपोजिट होगा।
1: क्या?
0: क्योंकि अब, क्योंकि जब आपका मन अफेक्टेड नहीं होगा, इंसल्टेड नहीं फील करेगा, हर्ट नहीं फील करेगा, तो मतलब उसकी वाइब्रेशन कैसी रहेगी? बड़ी प्योर और पॉजिटिव रहेगी। वो वाइब्रेशन दूसरे तक पहुंचती रहेगी। नेक्स्ट टाइम जब आप इंटरैक्ट करेंगे, आप ऑलरेडी एक बहुत पावरफुल और पॉजिटिव स्थिति से इंटरैक्ट करेंगे। सेकेंड टाइम भी वो जैसा बिहेव करेंगे आपके ऊपर असर तो होने ही नहीं वाला है। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, धीरे धीरे सामने वाले की वाइब्रेशन भी तो चेंज होने वाली है। इट इज गोइंग टू चेंज। इट कैन ईदर बिकम
1: ईदर
0: इट कैन बिकम अ विशियस साइकिल ऑफ नेगेटिव एनर्जी, और इट कैन स्टार्ट शिफ्टिंग टू अ साइकिल ऑफ पॉजिटिव एनर्जी।
1: आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट, दिस इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, कि अगर मैं अपनी तरफ से लेट गो करूं तो सामने वाले के पास से भी मेरी अच्छी उसको एनर्जी जाएगी।

0: ये पॉइंट मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं समझा नहीं था पहले,
1: और
0: सोचा
1: ये
0: नहीं
1: अगर
0: था।
1: नहीं जा रही तो बहुत कुछ दूसरा जा रहा
0: ये
1: है अभी
0: नहीं
1: तक।
0: जा रही का मतलब ये है कि मैं लेट गो नहीं कर रहा हूं, तो वहां से भी तो पिंग पोंग चल रहा है।
1: कॉन्स्टेंटली चल रहा है ना,
0: दिस इज अ
1: तो
0: वेरी गुड
1: कौन,
0: पॉइंट।
1: आपने कहा इसका मतलब उसके बाद वो मुझे और क्या बोला, तो कुछ और नीचे गिराएंगे,
0: और नीचे आप मुझे कर देंगे, मतलब और
1: मतलब
0: मुझे
1: वो और
0: बेइज्जती
1: नीचे
0: कर दे, और
1: गिराएंगे,
0: मेरी बेइज्जती कर देंगे।
1: वो हमारी बेइज्जती कर रहे हैं या हम अपने आप को और नीचे गिरा रहे हैं? कौन किसको नीचे गिराता है? मेरे मन की स्थिति से, मेरी सीट से कौन मुझे नीचे गिराता है? दूसरे मुझे
0: सिस्टर
1: नीचे
0: आई नीड अ
1: गिराते,
0: फुल एपिसोड फॉर दिस।
1: पर मेरी सीट से मुझे कौन नीचे गिराता है?
0: मेरी
1: मैं
0: सीट
1: यहाँ
0: से
1: इनर बीइंग अलाइंड थी, मेरी सीट से मुझे कौन नीचे गिराता है?
0: जिसको भी मैं परमिट करूं गिराने के लिए, परमिशन दूं या अपने आप को या दूसरे
1: मेरी
0: को,
1: सीट से मुझे कौन नीचे गिराता है?
0: मैं
1: और तो मैं गिरा ही नहीं सकता। ओरिजिनल स्थिति से मुझे कौन शिफ्ट करा सकता है? सिर्फ मैं। हमें लगता है दूसरे हमें गिराते हैं, दूसरे हमें नीचे गिराते हैं। मैं अपनी स्थिति से, अपनी सीट ऑफ पावर से अपने आप को गिराता हूं।
0: सिस्टर, मैं अपनी सीट पे कैसे रहूं, अपनी कुर्सी पे कैसे रहूं, ये कौन सी शक्ति का अपनी इस्तेमाल करूं, ये मैं आपसे अगले एपिसोड में पूछना चाहूंगा।
1: श्योर,
0: थैंक यू
1: थैंक
0: सो
1: यू।
0: मच। ओम शांति,
1: ओम शांति।
0: ओम शांति।
2: व्हेन वी डू नॉट लेट गो ऑफ द पेन ऑफ आवर पास्ट एक्सपीरियंसेस विद द सोल, आवर प्रेजेंट एक्सपीरियंसेस विद देम विल गेट colored by the past. Whenever we interact with them, we are already radiating the past pain. We fear that we should not get hurt again. We perceive them through the filter of their past behavior and may not understand them correctly this time. All this pain is created by us in the present and carried into the future, not allowing us to heal ourselves or the relationship. Learning from the past means to be aware of how we reacted last time and prepare ourselves to respond in the right manner next time, even though the stimulus is the same. Learning does not mean to withdraw from situations and people. Learning means to withdraw from our past negative reactions. If we do not let go of the pain created in the past, we will create similar emotions each time we encounter the same stimulus or anything similar to that stimulus, like a photograph or television scene or even a mention about it. This reliving of pain repeatedly will deplete our happiness and health. Every time the past experience returns on the screen of the mind, gently tell the mind, I have learnt from the past. I have learnt. I have learnt. Let go the past experience and hurt.
3: If you wish to discuss your problem or have a question to ask or want to know your nearest Raj Yoga Meditation Center, write to us on awakening@pmtv.in or call us on 0999 559 660.

0: नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM पर। मैं स्मिता जयकर, खुश रहो, खुशियां बांटो।
1: तुझे तकने को एक नजर

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: हम भी भूल गए कि हम मन के, बुद्धि के, संस्कारों के, इन कर्म इंद्रियों के हम मालिक हैं, हम राजा हैं, हम भूल गए। आज हम कहते हैं मुंह से निकल गया, हाथ उठ गया, आंखों से देख लिया, किसी का बुरा बोल दिया। मन तो सारा दिन चलता है, वो तो कभी सोचा, वो तो उसके बारे में तो। कर्म इंद्रियों के भी गुलाम, ये तो सूक्ष्म इंद्रियां, इसको हम कहते हैं सटल ऑर्गन्स, मन, बुद्धि, संस्कार। लेकिन फिजिकल सेंस ऑर्गन्स, ये पांचों कर्म इंद्रियां, ये भी आज हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो आत्मा आउट ऑफ कंट्रोल ओवर इट्स ओन ऑर्गन्स, ट्राइंग टू कंट्रोल एवरीबडी एल्स। इट्स लाइक ड्राइविंग ऑन द रोड, अपनी गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल, लेकिन चाहते हैं कि बाकी सब की गाड़ी मेरे हिसाब से चले। रिजल्ट क्या होगा? एक्सीडेंट के अलावा और तो कुछ हो ही नहीं सकता ना। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बाकी सब गाड़ियों में भी जो बैठे हैं ना, उनकी भी अपनी गाड़ी पे कंट्रोल नहीं है, उनकी भी अपनी गाड़ी पे कंट्रोल नहीं है। वो भी ये चाहते हैं कि हमारी गाड़ी उनके हिसाब से चले। जस्ट विजुअलाइज दिस सीन ऑन द रोड, जस्ट ओनली सी कि पांच गाड़ियां एक सड़क पर हैं, पांचों के ड्राइवर्स का अपनी अपनी गाड़ी पर कंट्रोल खत्म हो चुका है। एंड पांचों चाहते हैं कि जो बाकी चार है गाड़ियां, वो उनके कंट्रोल से चले।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

उदयनी आवाज 107.8 FM वर्ल्ड रिन्यूअल स्पिरिचुअल ट्रस्ट का सामुदायिक रेडियो स्टेशन। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: ट्रैक्स बने होते हैं एंड पानी उसमें बह रहा है, ठीक है, गार्डन है, रास्ते हैं, ट्रैक, सपोज इधर ही इस सड़क पर एक ट्रैक बना हुआ है। अब वो रोज पानी उसी में बहता है, ठीक है। अब पानी का बहते बहते उस एरिया के अंदर वो एक ट्रैक बन ही गया ना। अब जैसे ही पानी आएगा वो दूसरी साइड पे कहीं जाएगा ही नहीं, राइट, वो ऑटोमेटिकली उसी ट्रैक

0: में फ्लो होगा, होते होते होते वो ट्रैक उस पानी के लिए एक परमानेंट पाथ बन चुका है, राइट। अब अगर हम आज से चाहते हैं कि वो उस ट्रैक में नहीं जाए, उस डायरेक्शन में वो पानी नहीं जाए, लेकिन वो एक नए तरह से जाए, तो हमें थोड़े दिन के लिए, सिर्फ ज्यादा नहीं, थोड़े दिन के लिए जैसे ही वो पानी आता है, फ्लो होने लगता है, हमें उसको चैनलाइज करके एक डिफरेंट डायरेक्शन में जाना है। ऐसे ही माइंड भी जब एक थॉट क्रिएट करता है, फिर अगले दिन वही थॉट क्रिएट करता है, फिर अगली बार वो सिचुएशन आती है, फिर वो उसी तरह रिस्पॉन्ड करता है, तो एक फिक्स्ड पैटर्न बन जाएगा अंदर, जिसको हम कहते हैं ब्रेन में भी उसका एक ग्रूव बन जाता है। अब नेक्स्ट टाइम जब वो सिचुएशन आएगी, तो आप चूज नहीं करते, आपकी थिंकिंग ऑटोमेटिकली उस पैटर्न से ही होती है, एंड करते करते करते वो ग्रूव एक बहुत स्ट्रॉन्ग पैटर्न बन जाएगा, जिसको हम कहेंगे ब्रेन की मैपिंग, वो पैटर्न्स बन जाते हैं। अब हम एक जीवन अनेक जन्म उसी पैटर्न उसी मैपिंग से काम करते जा सकते हैं, लेकिन अगर हम आज डिसाइड करें तो हम आज चेंज कर सकते हैं।
1: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM, खुश रहो खुशियां बांटो।
2: नमस्कार दोस्तों, ज्ञान की धारा इस कार्यक्रम में मैं ज्योत्सना आपका स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ आप सभी हेल्दी वेल्दी होंगे और प्रसन्न भी होंगे। जैसा कि हम सभी देखते हैं कि आज पूरे विश्व में आज शांति के लिए कोई मंदिर गुरुद्वारे मस्जिद हर जगह शांति की कामना के लिए भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन इन सब के होते हुए भी, इसके बावजूद भी विश्व में शांति नहीं होने का मुख्य कारण क्या है, तो आइए आज हम इसको समझते हैं। तो आज का हमारा विषय है विश्व परिवर्तन एवं राजयोग। तो आज हम इसी पे चर्चा करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं सतयुग के पावन आकाश के नीचे देवताओं का निवास था, धीरे धीरे प्रकृति ने पलटा खाया और अभी हम सब काली काल के काले आकाश के नीचे विचरण कर रहे हैं, परंतु मानव का मन बार बार उसे सतो प्रधान वातावरण, पारंपरिक जो स्नेह है, दिव्य मर्यादाएं, शांतमय सुखमय विश्व को देखना चाहता है, जिसमें बहुत समय वह विचरण कर चुका है। प्रश्न यह उठता है कि इस संसार को फिर से वही मोड़ कैसे दिया जाए। अब हम देखते हैं वातावरण को हमें बदलना, उसे हम कैसे बदले। सतयुग में मनुष्यात्माएं जो है वो सत्व प्रधान होने के कारण उसके मन के संकल्प भी पावन होते थे, जिसके कारण समस्त विश्व का वायुमंडल जो है वो भी पावन था। एक भी मनुष्य वहां अपवित्र संस्कारों वाला नहीं होता जो वातावरण को दूषित करे। उस पावन वायुमंडल में जो पलने वाले सभी जीव जंतु एवं प्रकृति भी उस स्तर पर थी, धीरे धीरे देवात्माओं का समापन होना शुरू हो गया और जैसे जैसे उनका समापन होता गया उसी अनुसार वातावरण भी बदलता गया और उसमें रहने वाले जीव प्राणी भी बदलते गए। आज सभी मनुष्य आत्माएं सत्व प्रधान से तमो प्रधान हो गई है, तो उसके विचार भी दूषित हो जाने के कारण सारा ही वातावरण दूषित हो चुका है। अगर कोई मनुष्यात्मा पुरुषार्थ कर अपने स्तर को श्रेष्ठ बनाना भी चाहे तो वह अपने को असमर्थ पाती है, क्योंकि वातावरण उसे बार बार अपने संग के रंग में रंगता ही रहता है। अभी आवश्यकता है इस दूषित वातावरण को बदलने की। मनुष्य जब किसी मंदिर में सत्संग में या पवित्र देवी देवताओं के स्थान पर जाता है तो थोड़े समय के लिए मन जो है वो पावन हो जाता है और वह अपने किए गए विकर्मों का पश्चाताप करने लगता है। अब यही प्रश्न रह जाता है कि हम वातावरण को कैसे बदलें। तो इसी के साथ हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद मैं फिर से आपसे आके मिलती हूँ और तब तक के लिए आइए सुनते हैं इस गीत को।

नमस्कार दोस्तों, तो ज्ञान की धारा इस कार्यक्रम में मैं ज्योत्सना आपका फिर से स्वागत करती हूँ और हम अपने आगे की चर्चा जारी रखते हैं। हमारा आज का विषय है विश्व परिवर्तन एवं राजयोग। अब हमें यहाँ पे देखना है कि स्थूल साधनों से वायुमंडल बदल सकता है या नहीं। वातावरण को पावन करने के लिए मनुष्य यज्ञ एवं हवनों का आयोजन किया करते हैं, परंतु विचार करें क्या इस तरह स्थूल साधनों से वायुमंडल बदल सकता है। वायुमंडल तो दूषित हुआ ही है, दूषित विचारों से, पतित संकल्पों से, तो उसे पवित्र भी शुद्ध संकल्पों से ही बनाया जा सकता है। यज्ञ हवन तो हम बहुत पुराने काल से करते आए हैं, परंतु वातावरण तो बदला ही नहीं, तो कैसे आशा की जाए कि इन स्थूल साधनों से वातावरण बदल जाएगा। दूसरी ओर हम देखते हैं कि यज्ञ आदि में जो भी इतने द्रव्य पदार्थ स्वाहा किए जाते हैं, संसार में उनका तो अभाव ही होता है। यज्ञ हवन करने से जो थोड़ा बहुत वातावरण शुद्ध होता है, वह तो उसी क्षण मनुष्यों के अशुद्ध विचारों से पुनः दूषित हो जाता है, क्योंकि इतने अधिक यज्ञ तो आयोजित किए ही नहीं जा सकते हैं। सभी मनुष्यों के व्यर्थ संकल्पों से बने वातावरण को शुद्ध कर सके। यहाँ पे हम एक चीज और देखते हैं कि चंद्रमा पर गए यात्रियों का अपना एक अनुभव है कि कुछ समय पहले एक मानव रहित चंद्रयान को चंद्रमा पर भेजा गया, परंतु कुछ दशकों पहले जो यात्री चंद्रमा पर गए थे उनके बारे में छपे एक लेख में बताया गया था कि उन यात्रियों का जीवन एकदम वैराग्य से भरपूर हो गया। कुछ एकांत में जाकर निवास करने लगे, क्योंकि उन्हें इस संसार से वैराग्य आ गया। कुछ को विषय विकार से, घृणा से आ गई। कईयों ने धर्म प्रचारक का कार्य अपना लिया, क्योंकि पहले नास्तिक ही थे। इनके जीवन में ये परिवर्तन क्यों आए? इसका कारण यही है कि ज्यों ज्यों वे लोग इस विश्व के दूषित वातावरण से परे होते गए, तो उनका मन भी शुद्ध होता गया, उनके विचार बदल गए, उन्हें विषय विकारों से रक्त जीवन निरस लगने लगा। उन्होंने अपने जीवन को बदलने की ठान ली, अर्थात उस वातावरण का प्रभाव उनके मन पर पड़ा। राजयोग से हम क्या करते हैं? विचारों का शुद्धिकरण करते हैं। तो ऊपर की जो भी घटना अभी हमने बताई, इससे यही स्पष्ट होता है कि जैसे जैसे मनुष्य ऊपर जाता है, उसके विचारों में शुद्धता आती है, उसके ऊंचे से ऊंचा स्थान तो आत्माओं की दुनिया ही है, जिसे परमधाम कहते हैं, जहां निराकार परमात्मा का भी निवास है। वह धाम स्वयं भी पवित्र धाम, शांति धाम है। तो अगर मनुष्य वहां का ही यात्री बन जाए, अथवा बुद्धि से वहां की ही यात्रा करने लगे, तो कितना शीघ्र उसके विचारों में परिवर्तन आ जाएगा। इस समय जबकि घोर कलयुग है, परमपिता परमात्मा ने स्वयं आकर राजयोग सिखाया और कहा कि अपनी बुद्धि को परमधाम से जोड़ करके देखो और मुझ निराकार परमात्मा पर स्थित करो, तो तुम्हारे विचार शुद्ध होते जाएंगे। राजयोग का अभ्यास करने से हमारे संकल्प पावन होते जाते हैं, जिनका प्रभाव वातावरण पर भी पड़ता है।
तो इसी के साथ हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद मैं फिर से आपसे अगर मिलती हूँ। तब तक के लिए आइए सुनते हैं इस गीत को।

नमस्कार दोस्तों, तो ज्ञान की धारा इस कार्यक्रम में मैं ज्योत्सना आपका फिर से स्वागत करती हूँ और हम अपने आगे की चर्चा जारी रखते हैं। हमारा आज का विषय है विश्व परिवर्तन एवं राजयोग। अभी जैसा कि हम देख रहे हैं वर्तमान समय की आपाधापी, पैसे कमाने की होड़, धन का संग्रह और उसकी सुरक्षा का भय आदि कारणों से मनुष्य को 2400 घंटे तनाव में वो जीता है और जिससे उसके मन पर अतिरिक्त दबाव बना रहता है। दबाव के कारण वह जीवन की समस्याओं का हल नहीं ढूंढ सकता। आज मानव ने मिसाइलें बम बनाने में सफलता तो प्राप्त कर ली और अभी भी नए नए आविष्कारों में लगा हुआ है, किंतु स्वयं को नहीं खोज पाया कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, किस लिए आया हूँ, वापस कहाँ जाना है। इसी कारण तनाव से ग्रसित होता जाता है। निर्णय लेने की क्षमता प्रायः खत्म हो जाती है। रिश्तों में दरार आ जाती है, रोगों का शिकार हो जाता है, तब वह चिकित्सक के पास दौड़ता है। चिकित्सक उपचार करने का प्रयास करता है, नींद की गोलियां भी देते हैं, गोलियों से मस्तिष्क को आराम देने का प्रयास करता है, पर मन पर पड़ने वाले अनावश्यक दबाव को कम नहीं कर सकता। यहाँ पर तात्पर्य यह है कि ये नहीं है कि मतलब हम चिकित्सक के पास ना जाएं और दवाई ना लें, लेकिन हम बताना ये चाहते हैं कि राजयोग का आप जो अभ्यास है उससे मन को हल्का और तनाव से मुक्त करने का एक उपाय है। परमात्मा को याद करते हुए मन में कोई भी परमात्मा की कमेंट्री करे, राजयोग से व्यक्ति का मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहता है। वो हर समय अपने को प्रसन्न महसूस करता है। राजयोग का अर्थ है जोड़ना या संबंध स्थापित करना, आत्मा और परमात्मा में संबंध स्थापित करने का योग है राजयोग। यह सहज और सरल योग है जिसे प्रत्येक महिला, पुरुष और युवा सहज तरीके से कर सकते हैं। ऐसे तो राजयोग का अभ्यास कभी भी कर सकते हैं, पर प्रातः अमृत वेले ब्रह्म मुहूर्त में वो समय जो है वो सर्वश्रेष्ठ है। वो समय है 4 बजे से 4:45 बजे तक। तो इसे करने वाला व्यक्ति सर्वप्रथम परमपिता परमात्मा का शुक्रिया करे जिन्होंने अमृत वेले में जागने का संबल प्रदान किया है। उसके बाद यदि फर्श पर बैठ सकते हो तो एक दरी बिछाकर और बाल्टी जोड़कर बैठ जाए, और यदि फर्श पर नहीं है बैठ सकते तो सोफे या कुर्सी पर बैठ सकते हैं। तो इस प्रकार प्रतिदिन ध्यान लगाने से स्वतः ही मन हल्का महसूस करने लगेंगे और इससे मन भी प्रसन्न रहेगा। राजयोग सीखने के लिए ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के प्रत्येक राज, जिले, तहसील, मुख्यालय व कस्बों में, गाँव में भी सेवा केंद्र बने हुए हैं। वहाँ निःशुल्क राजयोग का अभ्यास कराया जाता है। अपने नजदीकी केंद्र में संपर्क कर मात्र 7 दिवस में प्रत्येक दिन 1 घंटे का समय निकालकर इस अभ्यास को सीख सकते हैं। बाद में अपनी सुविधा अनुसार अपने घर में सहज तरीके से राजयोग का ध्यान अभ्यास कर मन को हल्का रखने में निश्चिंत रूप से निश्चिंत रखने में
आप निश्चित रूप से ही सफल हो सकते हैं। राजयोग के द्वारा वातावरण दिनों दिन बदलता जाता है। जब यह वातावरण बहुत अधिक बदल जाएगा तो इसमें रहने वाले मनुष्यों को भी बदलने की प्रेरणा स्वतः ही आएगी और पवित्र वातावरण को पाकर सभी मनुष्य अपने विचारों को विशुद्ध करने में लग जाएंगे, जिससे शीघ्र ही इस विश्व का परिवर्तन हो जाएगा। विश्व को या वातावरण को बदलने का राजयोगी एकमात्र साधन है। तो इसी के साथ आज का कार्यक्रम हम यही समाप्त करते हैं और मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए आप हंसते रहिए, गाते रहिए और कुछ गुनगुनाते भी रहिए। नमस्कार, ओम शांति।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: लाइफ का जो स्टाइल है उसको लाइफस्टाइल कहते हैं। लाइफस्टाइल इज नॉट ओनली अबाउट व्हाट वी आर ईटिंग, ड्रिंकिंग, वेयरिंग। लाइफस्टाइल इज अबाउट व्हाट वी आर थिंकिंग, स्पीकिंग, बिहेविंग। दैट्स माय लाइफस्टाइल।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

पुनेरी आवाज 107.8 FM वर्ल्ड रिन्यूअल स्पिरिचुअल ट्रस्ट का सामुदायिक रेडियो स्टेशन। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: खुशी को निरंतर बनाए रखने के लिए सुनिए शिवानी बहन के प्रेरणादायी विचार।
1: तो वो लोग जो हमें छोटी छोटी बातों पे डांटते हैं, जो हमारी गलतियां निकालते हैं, जो हमारी निंदा करते रहते हैं, जो हमारी की हुई मेहनत का क्रेडिट ले लेते हैं, जो हमें धोखा दे देते हैं, जो हमारे पीठ पीछे गलत फैलाते हैं, कुछ भी लोग, वो छोटी ब्लैक बॉल हो सकती है, ग्रे हो सकती है या बहुत बड़ी ब्लैक बॉल हो सकती है, क्या हमारे पास पावर है कि हम ब्लैक का रिटर्न व्हाइट से भेजेंगे? वो हमारे साथ गलत करेंगे, हम उनको दुआएं भेजेंगे, इज दैट पॉसिबल? पहली बात, ये मेरे साथ गलत क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मैंने कभी ना कभी वो बॉल भेजी थी, तो गलती इनकी या मेरी? मेरी, तो इनके ऊपर से जो मैंने ब्लेम लगाया हुआ था वो पहले खत्म। वन सेकेंड, अब मैं अगर व्हाइट भेजूंगी तो किसके फायदे के लिए? उनके ऊपर एहसान नहीं, अपने फायदे के लिए व्हाइट भेजने में भी सोचना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। उनके लिए नहीं भेज रहे, अपने फायदे के लिए भेज रहे हैं, क्योंकि अब जब हम व्हाइट एनर्जी भेजेंगे, मतलब दुआएं देंगे अपने फायदे के लिए।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: ओह क्या बात है, यहाँ तो आज बड़ी संख्या में सैलानी आए हैं, देश के विदेश के। ओहो यहाँ तो बड़े ही सारे लोग हैं। लगता है मेरा दोस्त पुराना स्तंभ बहुत बिजी होगा आज, लेकिन मुझे तो आगे की कहानी जाननी है। चलो एक बार चल के पूछ ही लेती हूँ, वो रहा पुराना स्तंभ।
1: वाह मनु तुम इतनी जल्दी लौट आई।
0: हाँ मुझे तो आना ही था, जब छत्रपति शिवाजी महाराज अफजल खान से मिलने गए तो क्या हुआ, कब से यही तो चल रहा है मेरे मन में।
1: पता है आज यहाँ भी जो सैलानी आए वो कुछ इसी बारे में बात कर रहे थे, छत्रपति शिवाजी महाराज सभी के दिलों में जो है।
0: हाँ वैसे आपने पिछली बार बताया था ना कि कैसे शिवाजी ने बचपन में ही हिंदवी स्वराज्य स्थापित करने का प्रण लिया था, और कैसे उन्होंने गांव-गांव घूमकर अपनी सेना बनाई थी, और उनके पिताजी शाहजी भोसले को जब आदिल शाह ने कैद कर लिया तो उन्हें छुड़वाया भी था। उन्होंने अपना किला भी बनवाया था रायगढ़, कुशल योद्धा की तरह कितने युद्ध भी किए, और बाद में तो अफजल खान से युद्ध भी हुआ था, पर शिवाजी और अफजल खान सुलह करने के लिए मिलने जा रहे थे, फिर क्या हुआ।
1: क्या बात है, तुम्हें तो सब याद है मनु। ठीक है चलो अब मैं तुम्हें आगे की कहानी सुनाता हूँ।
0: हाँ हाँ प्लीज आई एम वेटिंग फॉर इट।
1: तो सुनो, शिवाजी और अफजल खान दोनों को ही एक दूसरे पर भरोसा नहीं था। बाहर से बिना किसी हथियार के दिख रहे शिवाजी ने अपने गुप्त हथियार से अफजल खान को मृत्यु को समर्पित कर दिया। इसके बाद मराठा सेना ने अफजल खान की सेना पर हमला कर दिया और मुगलों को एक बड़ी शिकस्त का सामना करना पड़ा। इस बात को अधिक समय भी नहीं बीता था कि अगली चुनौती शिवाजी के समक्ष आ खड़ी थी। औरंगजेब ने अब की बार अपने मामा मुगल जनरल शाहिस्त खान को शिवाजी के विरुद्ध खड़ा कर दिया। शाहिस्त खान ने पुणे के लाल महल पर भी कब्जा कर लिया।
0: अच्छा
1: पुणे में किसी भी मराठा को आने की अनुमति नहीं थी।
0: ओह
1: तो शिवाजी ने अपने कुछ गिने चुने सिपाहियों के साथ आज की भाषा में सर्जिकल स्ट्राइक के तरीके से शाहिस्त खान पर उसके महल में ही हमला कर दिया।
0: सर्जिकल स्ट्राइक, और उस जमाने में।
1: जी इस हमले में शाहिस्त खान तो बच गया लेकिन उसकी 3 उंगलियां कट गई।
0: अच्छा
1: साथ ही उसका बेटा और कई अधिकारी भी मारे गए। 3 साल तक शाहिस्त खान का पुणे पर कब्जा रहा और जान माल की भारी हानि हुई। इसलिए शिवाजी ने मुगलों के व्यापारिक नगर सूरत पर हमला करने का फैसला किया। पुरंदर संधि के बाद औरंगजेब ने शिवाजी को आगरा आमंत्रित किया, परंतु वहां शिवाजी के साथ अपमानजनक व्यवहार किया गया। शिवाजी को आगरा के किले में नजरबंद कर दिया गया। शिवाजी ने आगरा में मौजूद अपने मित्र और अंगरक्षकों को वापस भेजने का अनुरोध किया, जिसे औरंगजेब ने मान लिया और फिर खुद भी एक तरकीब से फलों की टोकरी में छिपकर खुद को भी आजाद करा लिया। 3 साल तक शिवाजी ने कोई कदम नहीं उठाया।
0: अच्छा
1: उसके बाद उन्होंने दक्षिण में एक बार हमला किया और अपने किले वापस लिए। उन्होंने सूरत पर भी हमला किया।
0: ओह
1: अब तक शिवाजी का राज्याभिषेक नहीं हुआ था, इसलिए उनके राज्याभिषेक का भव्य और विशाल आयोजन किया गया।
0: अच्छा
1: शिवाजी ने मणियों से सजा

0: छत्र धारण किया और उन्हें छत्रपति शिवाजी कहा जाने लगा।
1: अच्छा, वो तो बहुत ही भव्य लगता होगा ना?
0: बिल्कुल, बहुत भव्य।

0: शिवाजी महाराज सब धर्मों को समान महत्व देते थे। हिंदवी राज्य की स्थापना से छत्रपति शिवाजी की संकल्पना एक हिंदू राज्य की नहीं थी।
1: अच्छा,
0: अपितु वे यही चाहते थे कि सभी धर्म पूर्ण सम्मान के साथ रहे।
1: ओह,
0: और इसलिए उन्होंने औरंगजेब को भी पत्र लिखा जिसमें उन्होंने हिंदुओं पर लगाए जाने वाले जजिया कर को हटाने के लिए कहा। इससे पहले मुगल बादशाह अकबर ने जजिया को हटा दिया था, परंतु औरंगजेब ने इसे पुनः लागू किया था।
1: अच्छा।
0: हालांकि औरंगजेब ने शिवाजी की बात नहीं मानी, परंतु शिवाजी महाराज ने कभी अपने राज्य में धर्मों का भेदभाव नहीं किया।
1: अरे वाह।
0: उन्होंने हिंदुत्व की रक्षा अवश्य की, परंतु किसी अन्य धर्म का बहिष्कार या नुकसान नहीं किया।
1: ये तो बड़ी अच्छी बात है।
0: और सैनिकों को भी निर्देश थे कि दुश्मन देश की महिलाओं और बच्चों को नुकसान न पहुंचाया जाए। वे महिलाओं की गरिमा की सदैव रक्षा करते थे। मनु,
1: अच्छा,
0: इतिहासकारों की माने तो शिवाजी महाराज का राज्य आज के गुजरात से लेकर तमिलनाडु के मद्रास तक 48 डिस्ट्रिक्ट में फैला हुआ था।
1: क्या बात है, इतना बड़ा राज्य।
0: बहुत बड़ा। शिवाजी को फादर ऑफ इंडियन नेवी भी कहा जाता है, तुम्हें पता है?
1: नहीं, ये बात तो मुझे पता ही नहीं थी।
0: अपनी विलक्षण प्रतिभा और तीक्ष्ण बुद्धि के चलते उन्होंने बहुत से ऐसे काम किए जिन्हें आज भी बड़े गर्व से याद करते हैं पुणे। सच, उनके जन्म से ये भूमि धन्य धन्य हो गई। जिस दौरान अंग्रेज अपनी जड़ें भारत में जमा रहे थे, उस शुरुआती दौर में अंग्रेजों के साथ उन्होंने अच्छा व्यवहार रखा।
1: अच्छा।
0: परंतु 1660 में अंग्रेजों ने बीजापुर की सल्तनत के साथ मिलकर जब उनके विरुद्ध पन्हाड़ा के किले पर कब्जा करने के लिए साथ दिया, तो उस व्यावहारिक रिश्ते का भी अंत हो गया।
1: ओह।
0: इसका खामियाजा अंग्रेजों को तब भुगतना पड़ा जब 1670 में बॉम्बे में शिवाजी ने अंग्रेजों को लड़ाई की सामग्री बेचने से इनकार कर दिया।
1: अच्छा, तो ये बात है।
0: हाँ, छत्रपति शिवाजी ने पेशवा जैसे शब्दों को भी बदल दिया और अपने राज्य में अष्ट प्रधान नियुक्त किए जो राज कारोबार चलाने में मदद करते थे।
1: अरे वाह।
0: और भाषा की बात करूं तो शिवाजी महाराज ने पर्शियन भाषा की जगह मराठी और संस्कृत भाषा का इस्तेमाल किए जाने का आदेश दिया।
1: अरे वाह।
0: उन्होंने अपने राज दरबार में हर धर्म के व्यक्तियों का स्वागत किया और जाति के आधार पर कभी भेदभाव नहीं किया।
1: अरे वाह।
0: टैक्स एकत्रित करने के लिए उन्होंने ऐसा सिस्टम लागू किया जिसमें बिचौलियों की जगह नहीं थी।
1: अच्छा।
0: अपितु सीधा उत्पादक से ही कर वसूल किया जा सके। अपने राज्य में उन्होंने दो तरीके के कर लगाए।
1: कौन से?
0: एक का नाम था चौथ और सरदेशमुखी। चार प्रांतों में शिवाजी ने राज्य को विभाजित किया। गांव इस व्यवस्था की सबसे छोटी इकाई था, जिसके प्रमुख को देशपांडे कहा गया, जो कि पंचायत का प्रमुख था।
1: अच्छा, और फिर?
0: शिवाजी सदैव एक मजबूत सेना बनाकर आगे बढ़े। कोंकण और गोवा तट पर भी उन्होंने अपनी उपस्थिति को बनाए रखा। छत्रपति शिवाजी की मृत्यु 52 वर्ष की कम उम्र में 3 अप्रैल 1660 को राजगढ़ के किले में हुई।
1: ओह।
0: शिवाजी की मृत्यु के तुरंत बाद ही उनके बड़े बेटे संभाजी और तीसरी रानी के 10 वर्ष के बेटे राजा राम में उत्तराधिकारी बनाए जाने का संघर्ष हुआ।
1: ओह।
0: ये कहानी फिर कभी आगे सुनेंगे, पर आज मैं नतमस्तक होकर वीर शिवाजी महाराज को प्रणाम करता हूँ।
1: मैं भी शिवाजी महाराज को शत शत नमन करती हूँ।

नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शोभ सरवसु, आपका अपना डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट, और आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
1: अपने आप को देखे एंड प्रिपेयर माई सेल्फ फॉर टुडे। आज सारा दिन में बातें आएंगी, लोग कुछ कुछ ऐसा करेंगे या कहेंगे विच विल नॉट बी अकॉर्डिंग टू द वे आई वॉन्ट देम टू बी। आज सारा दिन अवेयरनेस एंड चेकिंग, कौन ज्यादा पावरफुल है, बातें, सिचुएशंस और मी, किसका प्रभाव किस पर पड़ता है। आज सारा दिन सिर्फ चेकिंग, बात आई बात गई, मुझ पर उसका कितना प्रभाव पड़ा। दिस इज माई चेकिंग फॉर टुडे।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: हाँ तो मैं क्या कह रहा था?
1: हाँ तो
0: मैं कुछ कह रहा था,
1: बोलो ना, भूल गए?
0: अरे हाँ भूल गया। चलो चलो।

बच्चे को आना जाना पड़ता है और रिंग मास्टर के घोड़े पर थोड़ा जो भूख है, थोड़ा जो पैसा है, थोड़ा जो किस्मत है, तर तर नाच के दिखाना यहाँ पड़ता है, बार बार रोना और गाना यहाँ पड़ता है।

0: बाहर है आता है कूड़ा भी रहता है भूखा भी फिर भी वो मालिक पे करता नहीं वार है और इंसान ये माल जिसका खाता है प्यार जिससे पाता है जीत जिसके खाता है उसके ही सीने में भौंकता का डर है।
1: चलिए श्रीमान आपका क्या विचार है।
0: माल जिसका खाता है प्यार जिससे पाता है जीत जिसके खाता है उसके ही सीने में भौंकता का डर है।

0: एक बार और
1: दिल की उमंग है जवां, रंग में डूबा है समां।

ए संजू, ए बिरजू, ए मुन्नी, तुम भी गाओ। ऐसे नहीं, बोलो में गाओ।

0: यही है वो मंदिर जो हमने अपनी देवी के लिए बनाया है। यही हमारी जिंदगी के बाहर आके रहेगी। लता, ये प्रेम नगर है, हमारे प्यार की जीती जागती तस्वीर। अगर हमारे पंख होते तो हम उड़कर आसमान से चांद और सितारे तोड़ के ले आते इस महल में रोशनी करने के लिए।
1: लेकिन वो देवी कहाँ है जिसके लिए आपने इतना सुंदर प्रेम नगर बनवाया है?
0: तुमने अब तक देखा नहीं उसे? देखोगे भी कैसे, वो तुम्हारे दिल में रहती है।

प्यारे बच्चे, प्यारे बच्चे, उम्र के कच्चे बात के सच्चे, जीवन की एक बात बताऊं, जीवन की एक बात बताऊं, मुसीबतों से डरो नहीं, बुजदिल बन के मरो नहीं, रोते रोते क्या है जीना, नाचो दुख में तान के सीना, नाचो दुख में तान के सीना।